मीडियम वेव 444.4 मीटर यानी 675 किलो हर्ट्ज और प्रसार भारती की न्यूज ऑन AIR ऐप पर ये आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। आज शनिवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 30वीं तिथि, तदनुसार 20 जून सन 2026। इस समय प्रातः के 5:59 हो रहे हैं। अब हमारी आज की प्रातःकालीन सभा आरंभ होती है।

मीडियम वेव 444.4 मीटर यानी 675 किलोहर्ट्ज और प्रसार भारती की न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर ये आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। प्रातः के 6 बजे ही समाचार अब हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पश्चिम बंगाल और ओडिशा के दौरे पर रहेंगे। ओडिशा में वे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के 68वें जन्मदिन के मौके पर उनसे मुलाकात करेंगे। इसके बाद दोनों नेता एक जनसभा को संबोधित करेंगे। ये जनसभा ओडिशा सरकार के 2 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आयोजित की जा रही है। पश्चिम बंगाल की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री हुगली के तारकेश्वर में पश्चिम बंगाल दिवस के समारोह में भागीदारी करेंगे। कोलकाता के रेड रोड पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे और देश में निर्मित 3 युद्धपोत दुनागिरी, अग्रय और संशोधक राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री लगभग 590 करोड़ रुपए की लागत की रेल परियोजनाओं, हावड़ा में 300 बिस्तरों वाले नए रेलवे अस्पताल और पूर्वी मिदनापुर में एक रेल ओवर ब्रिज सहित कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे और आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री 315 किलोमीटर से अधिक दूरी की प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 49 ग्रामीण सड़क परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में एक समारोह में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि का वितरण किया। योजना का उद्देश्य रोजगार सृजन में तेजी लाना और सभी क्षेत्रों में सामाजिक सुरक्षा का विस्तार करना है। श्री मोदी ने कहा कि इस योजना का लक्ष्य पहली बार रोजगार पाने वालों को सशक्त बनाना और युवाओं तथा उद्योग के बीच सेतु का निर्माण करना है।
1: दुनिया भारत के युवाओं की क्षमता को भली भांति पहचानने लगी है और ऐसे समय में हमारी कोशिश है कि भारत का हर युवा अपनी क्षमता को अवसर में बदल सके और इसी सोच के साथ प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का आरंभ हुआ।
0: देश में कोयले से अमोनियम नाइट्रेट बनाने का पहला वाणिज्यिक संयंत्र ओडिशा के झारसुगुड़ा जिले में 25,000 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इस कोयला गैसीकरण परियोजना की आधारशिला रखेंगे। ये परियोजना बीएचईएल की स्वदेशी रूप से विकसित कोयला गैसीकरण तकनीक का

0: उपयोग करके प्रतिदिन 2000 टन अमोनियम नाइट्रेट का उत्पादन करेगी। सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया है कि तय फुटपाथ पर चलने का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि किसी नागरिक का तय किए गए फुटपाथ पर चलने का मौलिक अधिकार प्राथमिक है और मोटर वाहनों की आवाजाही की तुलना में इसे प्राथमिकता दी जाएगी। न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि यह अनुच्छेद 21 जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार सहित अनुच्छेद 19 और अन्य मौलिक अधिकारों के अंतर्गत गारंटीकृत आवाजाही के अधिकार का हिस्सा है। एक दुखद मोटर दुर्घटना के क्षतिपूर्ति मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह फैसला सुनाया। अपने 5 वर्षीय पुत्र को पिता द्वारा स्कूल ले जाते समय कथित दुर्घटना में बच्चे की मौत हो गई थी। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने विश्व के मौजूदा अस्थिर दौर में राष्ट्रीय हितों, रणनीतिक स्वायत्तता और विविध मतों के साथ संतुलन बनाए रखते हुए सभी देशों के साथ बेहतर संबंधों पर बल दिया। कल शाम नई दिल्ली में भारत अमेरिका फोरम को संबोधित करते हुए डॉ जयशंकर ने जटिलताओं और चुनौतियों का सामना करते हुए विभिन्न क्षेत्रों में भारत और अमरीका की साझेदारी मजबूत करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि प्रगति के साथ साथ भारत के हितों का भी विस्तार होगा और विविधता बढ़ेगी। वरिष्ठ नौकरशाह विवेक अग्रवाल को वर्ष 2026-27 के लिए वित्तीय कार्रवाई कार्यबल का उपाध्यक्ष चुना गया है। वे ब्रिटेन के गाइल्स थॉमसन का स्थान लेंगे। श्री अग्रवाल वर्तमान में संस्कृति मंत्रालय में सचिव हैं। वे वित्तीय कार्रवाई कार्यबल में भारतीय शिष्टमंडल का नेतृत्व कर चुके हैं तथा धन शोधन और आतंकवाद के लिए धन मुहैया कराने पर अंकुश रखने वाली वैश्विक संस्था के साथ महत्वपूर्ण भूमिका निभा चुके हैं। 17-19 जून के दौरान कार्यबल की पूर्ण बैठक में यह निर्णय लिया गया। विदेश मंत्रालय ने श्री अग्रवाल के चयन को भारत के लिए एक बड़ी विजय बताया है। मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस नियुक्ति से आतंकवाद के लिए धन मुहैया कराने और गैर कानूनी वित्तीय नेटवर्क के खिलाफ संघर्ष की बात की भारत की प्रतिबद्धता मजबूत होती है। श्री गाइस थॉमसन को कार्यबल का अगला अध्यक्ष नियुक्त किए जाने का निर्णय हुआ है। भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरा और अंतिम एक दिवसीय क्रिकेट मैच आज दोपहर चेन्नई के एमए चिदम्बरम स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच दोपहर 1:30 बजे से शुरू होगा। मेजबान टीम 2-0 की बढ़त के साथ पहले ही श्रृंखला अपने नाम कर चुकी है। दोहा डायमंड लीग में भारत के जेवलिन खिलाड़ी नीरज चोपड़ा कतर में 4th स्थान पर रहे। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 444.4 मीटर यानी 675 किलोहर्ट्ज़ और प्रसार भारती की न्यूज ऑन AIR ऐप पर ये आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। सबसे पहले सुनिए समूह स्वर में मातृ वंदना।

वंदना में अभी आपने समूह स्वर में मातृ वंदना सुनी, अब लीजिए सुनिए लता मंगेशकर के स्वर में ये भजन।

वंदना में अभी आपने वाणी जयराम के स्वर में ये भजन सुना। अब लीजिए सुनिए अनुराधा पौडवाल के स्वर में साईं भजन।

अभी आपने अनुराधा पौडवाल के स्वर में ये साई भजन सुना। इसी के साथ वंदना कार्यक्रम आप समाप्त हुआ। इसमें सबसे पहले आपने समूह स्वर में मातृवंदना सुनी, फिर भजन सुने लता मंगेशकर की आवाज में, वाणी जयराम की आवाज में और अनुराधा पौडवाल की आवाज में।

मीडियम वेव 444.4 मीटर यानी 675 किलोहर्ट्ज और प्रसार भारती की न्यूज ऑन AIR ऐप पर ये आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। लीजिए सुनिए हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण। अब से कुछ देर बाद 6:35 पर आप सुनेंगे खेती किसानी, 7:20 पर बुंदेली सुगंध के अंतर्गत सुनिए सुधांशु राजपाल से कहानी गृहिणी से लेखिका, 6:40 पर सुनिए श्री रामचरित मानस गान, 6:50 पर होगा आज का चिंतन, 7:30 पर आप आनंद लेंगे फिल्म संगीत का, 8:30 पर सुनिए फिल्मी गीतों का संयोजित कार्यक्रम गीत गुंजन, 9:00 लोकरंग में सुनिए बुंदेली लोकगीत, कलाकार होंगे कैलाश कुमार यादव, 9:30 पर सुनिए श्रोताओं के पत्रों और ईमेल पर आधारित फिल्मी गीतों का संयोजित साप्ताहिक कार्यक्रम जब आप गुनगुना उठे, प्रस्तुति होगी रविंद्र कुमार प्रजापति की, 10:00 जिले की चिट्ठी हम आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे, 10:05 पर सुनेगा आकाशवाणी @90 के अंतर्गत रसावतरण, इसमें सुनिए कवि गोष्ठी, प्रतिभागी कवि होंगे सुरेश श्रीवास्तव, मुकेश कुमार पांडे, नीतेश पटेल, विवेक जैन और जसवेंद्र सिंह बुंदेला, 10:30 पर सुनिएगा श्रोताओं के पत्रों एवं ईमेल पर आधारित फिल्मी गीतों का फरमाइशी कार्यक्रम आपकी पसंद। आकाशवाणी के मध्य प्रदेश केंद्र से हम अनुप्रसारित करेंगे 11:00 सजी फोन इन कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे, 12:00 आपकी फरमाइश, 12:30 पर संग्रहालय से ये कार्यक्रम आकाशवाणी के भोपाल केंद्र की प्रस्तुति होंगे। इसके अलावा आकाशवाणी

के मध्य प्रदेश केंद्र से हम अनुप्रसारित करेंगे 1 बजे महिला कार्यक्रम, 1:30 पर लोक संगीत, 1:45 पर सुगम संगीत। ये कार्यक्रम आकाशवाणी रीवा की प्रस्तुति होंगे। 2 बजे फिल्म संगीत, 2:30 पर आपकी फरमाइश आकाशवाणी के मध्य प्रदेश केंद्र से अनुप्रसारित किए जाएंगे। शाम 5 बजे युववाणी कार्यक्रम आकाशवाणी के मध्य प्रदेश केंद्र से हम अनुप्रसारित करेंगे। ये कार्यक्रम आकाशवाणी रीवा की प्रस्तुति होंगे। 5:30 पर सुनिए लोक संगीत, कलाकार हैं शंकरलाल प्रजापति। 6 बजे सुगम संगीत में सुनिए सोनाली जलोटा को। 6:30 पर बुंदेली लोकगीतों के कार्यक्रम लोकधारा में सुनेगा बुंदेली लोकगीत, कलाकार होंगे महेश कुमार मिश्रा। 7:20 पर ग्रामीण भाई ग्राम सभा में सुनेंगे श्रोताओं के पत्रों और फोन कॉल्स पर आधारित बुंदेली लोकगीतों का फरमाइशी कार्यक्रम हेलो लोक रंजन। प्रस्तुति होगी रविन्द्र कुमार प्रजापति की और आज की सीख का विषय होगा घरों में सोकपिट बनवाएं। 8 बजे आकाशवाणी के मध्य प्रदेश केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे विशेष श्रृंखला सरकार के 12 वर्ष संस्कृति। 8:35 पर सुनिए फिल्म संगीत। 9:15 पर स्पॉटलाइट। 9:30 पर राष्ट्रीय फिल्म पत्रिका चित्र भारती और रात 10 बजे संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। ये तो थी हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। मीडियम वेव पर ये आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है खेती किसानी।

भैयारो अबे जॉन पंच भैयन ने जायद में करूं फसल नहीं लई आए, बे एक बहुत जरूरी काम कर सकत हैं और वो है अपने खेत की मिट्टी की जांच। मृदा परीक्षण एक तरह से मिट्टी को स्वास्थ्य परीक्षण है। इमे किसान भैया खेतों से मिट्टी के नमूना लेके उन्हें पोषक तत्वों की जांच करवाते हैं। यही के आधार पे कौन फसल के लाने पोषक तत्वों और खाद उर्वरक की सिफारिश करी जाते है। जो अपने पंच भैया जानते हैं कि पौधों की बढ़ोतरी के लाने मुख्य रूप से 16 तत्व आवश्यक होते हैं। सामान्य परिस्थितियों में इनमें से 3 तत्व नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम की कमी अपनी मिट्टी में पाई जाते है। इसके अलावा मिट्टी की अम्लीयता या क्षारीयता या घुलनशील लवणों की मात्रा भी पौधों की वृद्धि को प्रभावित करते है। मृदा परीक्षण से पौधों के लाने उपलब्ध पोषक तत्वों की मात्रा को पता चल जाते है। यही के आधार पे अगली फसलों से ज्यादा लाभ लेवे के लाने, ज्यादा उत्पादन लेवे के लाने उर्वरक और कार्बनिक खादों की मात्रा की सिफारिश करी जाते। अब मिट्टी परीक्षण के लाने नमूना इकट्ठो करने कैसे हैं, जो हम बता रहे। नमूना खेत को ऐसो लेने हैं जो से जो पता चले कि पूरे खेत की मिट्टी में कौन से पोषक तत्वों की कमी है। किसान भैया जो ध्यान रखें कि 1 हेक्टेयर के खेत में 10 से 15 स्थानों से मिट्टी इकट्ठी करी जाते। अब वे कौन से हिस्सा भाव चाहिए इसके बारे में बताएं कि खेत के निचले हिस्सा या ऐसो भाग जहां पानी भरो रहत हो, जहां गोबर की खाद रखी हो, मेड़ के पास की जगह या पेड़ की छाया के नीचे की जगह को छोड़ के मिट्टी के नमूना इकट्ठे करने हैं। मिट्टी के इकट्ठे करवे के लाने गर्मियों को समय यानी बरसात से पहले जब खेत में कोई फसल खड़ी ना हो उस समय उपयुक्त रहते। जोन खेत से अपन को मिट्टी के नमूना इकट्ठे करने हैं उनमें अपन को निशान लगा देने हैं, फिर उते घास कचरा पत्तियां पत्थर के टुकड़ा इन्हें हटा देने हैं। इसके बाद खुरपी या फावड़े से अंग्रेजी के भी आकार को 15 सेंटीमीटर यानी आधा फिट गहरो गड्ढा खोद रहे। इकी एक सतह से एक बार करीब आधा इंच परत सावधानी से अलग

0: करके इकट्ठी कर लेवे। नमूनों में ढेलों को हाथ से या लकड़ी से पीट के बारीक करने हैं। सभी स्थानों से इकट्ठी मिट्टी को ढेर बना के चार बराबर भागों में बांट लें। इनमें से दो परस्पर आमने सामने के भागों को रख के बाकी मिट्टी फेंक देवे, जो तब तक दोहराए जब तक कि करीब 500 ग्राम मिट्टी बची रहे। तैयार नमूनों को साफ थैली में भर देवे और एक सूचना पत्र लगाए। अब सूचना पत्र में कौन सी सूचनाएं देने हैं, जो भी हम बता दें। किसान को नाम और पूरा पता, खेत को खसरा नंबर, सिंचित है या बारानी अवस्था है, पिछली जोन फसल लई है बा और उमे कितो उर्वरक डालोगो एक ही मात्रा, और आगे कौन सी फसल लेने हैं एक ही बात। तो ई तरीका से अगर अपने पंच भैया खेत की मिट्टी को परीक्षण करवा थे, तो एक तो वे संतुलित मात्रा में खाद और उर्वरक अपने खेत में अपनी फसल को देवे हैं। मृदा परीक्षण न करावे की अवस्था में उन्हें या तो कम मात्रा में भी उर्वरक दे रहे थे या गोबर की खाद डाल देते जो उनसे फसल की ज्यादा उपज प्राप्त नहीं होती, या फिर ज्यादा मात्रा में उर्वरक डाल देते जिसे भी फसल को नुकसान होते। तो इसे जोन पंचभियन के खेत इस समय खाली है, वे मिट्टी की जांच हर हालत में करा लें। छतरपुर के पास नौगांव में मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला है, उसे अपने पंच भैया अपनी मिट्टी के नमूना भेजें और परीक्षण जरूर कराएं।
1: अभी खेती किसानी का प्रसारण किया जा रहा था, विषय था मिट्टी का परीक्षण। मीडियम वेव 444.4 मीटर यानी 675 किलोहर्ट्ज़ और प्रसार भारती की न्यूज ऑन AIR ऐप पर ये आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है श्री रामचरित मानस गान।

ब्रह्मा ने सब प्रकार से योग्य पाकर दक्ष को प्रजापतियों का नायक बना दिया था। इतना बड़ा अधिकार पाकर दक्ष को सत्ता का मद हो गया और उन्होंने शिव का अपमान करने की धृष्टता कर दी। जब यक्ष प्रजापति ने यज्ञ किया तो उसमें भगवान शंकर को निमंत्रित न करके उस अपमान को जैसे दोहरा कर दिया। यही कारण था कि जब सती ने पिता के यज्ञ में उपस्थित होने के लिए जाना चाहा, तो शिव ने बिना निमंत्रण जाना सती के शील स्नेह अथवा मान मर्यादा के अनुरूप नहीं पाया। जब सती ने पिता के यज्ञ में जाने की जिद ही कर दी तो भगवान शंकर ने अपने प्रमुख गणों के साथ उन्हें विदा कर दिया। उधर पिता ने सती का कुशल क्षेम तक नहीं पूछा। यज्ञ में सभी देवताओं के भाग की सामग्री थी, किंतु कहीं भी शिवजी का भाग दिखाई नहीं दिया। पति की ये उपेक्षा देख अपमान से सती के अंग प्रत्यंग जल उठे, उनके क्रोध की सीमा न रही। इस मदांधता तथा नादानी के लिए उन्होंने पिता की भर्त्सना ही नहीं की, बल्कि ग्लानि तथा क्रोध के वशीभूत होकर अपने को उसी यज्ञ की अग्नि में भस्म कर डाला।

0: अभी श्री रामचरितमानस गान का प्रसारण किया जा रहा था। स्वर महेंद्र कपूर और शोभना राव का था। संगीत संयोजन सतीश भाटिया का था। मीडियम वेव पर ये आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है आज का चिंतन।
1: आजकल निर्धन हो या धनी, शिक्षित हो या अशिक्षित, मूर्ख हो या बुद्धिमान, कुरूप हो या रूपवान, छोटा हो या बड़ा, सभी को प्रसिद्धि पाने, यश पाने की लालसा होती है। हर कोई अपना नाम चाहता है, सभी चर्चित होना चाहते हैं। इसके लिए सभी तरह तरह के उपक्रम करते रहते हैं। जो धनी होकर नाम कमाना चाहता है, वह एन केन प्रकार धन कमाता है। फिर आती है उस धन के उपयोग और सदुपयोग अथवा दुरुपयोग की बारी, जिसे सुयश की कामना होती है। वे अपना धन परोपकार एवं समाज उपयोगी कार्यों में व्यय करते हैं। कुछ ऐस आराम और भोग विलास पर खर्च करते हैं, परंतु उनकी ख्याति को ख्याति में बदल जाती है, नाम बदनामी में बदल जाता है और सत्य के पैमाने पर खरा नहीं उतरता। एक दिन समय उसे निकल जाता है और लोग भूल जाते हैं। समय एक दिन रावण के अहंकार को खा गया, लेकिन राम के सत्य और सुयश को कोई मिटा नहीं पाया। सिकंदर की विजय को आज कौन जानता है, परंतु तत्कालीन गौतम बुद्ध के सत्य, अहिंसा, प्रेम, करुणा आज भी समय के सिर पर बैठकर राज कर रहे हैं। समय की दीमक सत्य एवं वास्तविकता को कभी नहीं खा सकती, परंतु कृत्रिमता को एक न एक दिन मुंह की खानी पड़ती है। तो हम क्यों ना वास्तविकता के चिरस्थायी स्तंभ को अपनाएं? फिर भी समय किसी का एक सा नहीं रहता। समय के उतार चढ़ाव प्रत्येक के जीवन में आते जाते रहते हैं। पुरुष बलि नहीं होत है, समय होत बलवान, भीलन लूटी गोपिका, ओई अर्जुन ओई बाण। कितना भी बड़ा सूरमा क्यों ना हो, उसे समय के आगे झुकना ही पड़ता है, परंतु सुयश के आगे समय को भी झुकना पड़ता है। यश की पताका सदैव लहराती रहती है और रहेगी। यश को समय की दीमक कभी नहीं खा पाती। अपयश की कहानी लंबे समय तक नहीं चलती, लेकिन सुयश की गाथा सदियों तक गाई जाती है और गाई जाती रहेगी। सत्य को छुपाया, दबाया या झुठलाया जा सकता है, उस पर झूठ का पर्दा तो डाला जा सकता है, परंतु सत्य तो शाश्वत, चिरंतर और अमर होता है। जब सत्य का प्रकाश मुखर होता है तो सारे अंधकार दूर हो जाते हैं। सत्य की हमेशा विजय होती है। कहते हैं कि सत्य कभी भी पराजित नहीं होता है, वह एक ना एक दिन झूठ फरेब के आडंबर को चीर कर उद्घाटित होता है, तो सारी गलत फहमियां दूर हो जाती हैं। महाभारत में दुर्योधन ने कितना ही फरेब किया, वह पराजित ही हुआ। जनसेवक राजा महाराजाओं की कितनी ही कहानियां इतिहास में अमर हैं, जो प्रजापालक दयालु शासकों की यश गाथाओं से भरी पड़ी हैं। साथ ही क्रूर और अनाचारी अत्याचारियों का बुरा अंत हुआ। यह भी शाश्वत सत्य है कि अनीति से कमाया हुआ धन अधिक दिन तक नहीं टिकता, जबकि नीति, नियम और ईमानदारी से कमाया हुआ धन अधिक समय में धीरे धीरे तो आता है, परंतु स्थायी होता है और फल

0: तब ही है, जबकि अनीति द्वारा कमाया हुआ धन जैसे ही जल्दी जल्दी आता है वैसे ही चला जाता है। सत्य के सिवा यदि सभी कुछ नश्वर है, इसलिए हमें सत्य का दामन पकड़कर जीना चाहिए। निसंदेह धन और रूप से यश की आयु लंबी होती है। रूप को एक दिन वृद्धावस्था का शिकार होना ही पड़ता है। धन जतन से खर्च न किया जाए और वृद्धि करने का प्रयास न किया जाए तो वह भी एक दिन साथ छोड़ देता है, परंतु परोपकार रूपी सुयश पीढ़ियों तक साथ देता है, नाम अमर कर देता है, वही व्यक्ति का चरित्र अनुकरणीय हो जाता है। इसलिए हम जाते हुए समय की कद्र करना सीखें, क्योंकि समय ठहरता नहीं है, निरंतर आगे बढ़ता रहता है। समय के साथ हमें भी चलना चाहिए, उसके साथ अपने आप को ढालकर बदलने में ही समझदारी है। बीता हुआ कल वापस नहीं आता, अतः हमें जो भी करना है आज ही कर लेना चाहिए। कल पर टालने वालों के कार्य आज भी पूरे नहीं हुए हैं, इसलिए किसी काम को आने वाले कल पर कभी नहीं टालना चाहिए, क्योंकि कल कभी आता नहीं है और कल न जाने कौन सी परिस्थिति हो। अतः आज में जिए और यश कमाए।
1: अभी आप सुन रहे थे आज का चिंतन मीडियम वेव 444.4 मीटर यानी 675 किलोहर्ट्ज़ और प्रसार भारती की न्यूज ऑन AIR ऐप पर। ये आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। सुबह के 6:55 होने वाले हैं। अब आप सुनेंगे समाचार जिन्हें हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करते हैं। 6:55 पर आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार, 7:00 हिंदी में समाचार और 7:05 पर अंग्रेजी में समाचार सुनेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से ओडिशा और पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं। ओडिशा में वे आज मयूरभंज जिले के पहाड़पुर गांव में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से उनके 68वें जन्मदिन पर भेंट करेंगे। इसके बाद राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री मयूरभंज जिले के रायरंगपुर में मोहन चरण मांझी सरकार के 2 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगे। इस दौरान वे 47,000 करोड़ रूपये से अधिक लागत की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे। पश्चिम बंगाल के 2 दिन के दौरे में आज प्रधानमंत्री हुगली जिले के तारकेश्वर में पश्चिम बंग दिवस समारोह में शामिल होंगे। वे राज्य में विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। श्री मोदी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त भी जारी करेंगे। कल प्रधानमंत्री कोलकाता में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह में भाग लेंगे। देश में कोयले से अमोनियम नाइट्रेट बनाने का पहला वाणिज्यिक संयंत्र ओडिशा के झारसुगुड़ा जिले में 25,000 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इस कोयला गैसीकरण परियोजना की आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में एक समारोह में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2,400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि का वितरण किया। योजना का उद्देश्य रोजगार सृजन में तेजी लाना और सभी क्षेत्रों में सामाजिक सुरक्षा का विस्तार करना है। श्री मोदी ने कहा कि इस योजना का लक्ष्य पहली बार रोजगार पाने वालों को सशक्त बनाना और युवाओं तथा उद्योग के बीच सेतु का निर्माण करना है।
1: दुनिया भारत के युवाओं की क्षमता को भली भांति पहचानने लगी है और ऐसे समय में हमारी कोशिश है कि भारत का हर युवा अपनी क्षमता को अवसर में बदल सके और इसी सोच के साथ प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का आरंभ हुआ।
0: गृहमंत्री अमित शाह आज कोल्हापुर और इचलकरंजी के दौरे पर हैं। वे महालक्ष्मी मंदिर परिसर में विभिन्न विकास कार्यों का उद्घाटन करेंगे और मंदिर क्षेत्र में पश्चिमी महाराष्ट्र मंदिर विकास योजना के तहत चल रही विकास परियोजनाओं की समीक्षा करेंगे। श्री शाह कोल्हापुर के पुलिस परेड ग्राउंड में एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने विश्व के मौजूदा अस्थिर दौर में राष्ट्रीय हितों, रणनीतिक स्वायत्तता और विविध मतों के साथ संतुलन बनाए रखते हुए सभी देशों के साथ बेहतर संबंधों पर बल दिया है। कल शाम नई दिल्ली में भारत अमेरिका फोरम को संबोधित

0: संबोधित करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने जटिलताओं और चुनौतियों का सामना करते हुए विभिन्न क्षेत्रों में भारत और अमरीका की साझेदारी मजबूत करने पर जोर दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने बैंकों, परिसंपत्ति पुनर्गठन कंपनियों और ऋण लेने वालों के बीच साजिश पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। न्यायालय ने डूबे ऋण को निपटाने के तरीके पर भी सवाल उठाए। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति वी मोहन की पीठ ने कहा कि बैंक करदाताओं के पैसे ऋण के रूप में दे रहे हैं, लेकिन वसूलने के प्रभावी उपाय नहीं किए गए हैं। अदालत ने जनता के पैसे के दुरुपयोग पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि इस राशि का उपयोग जनकल्याण में होना चाहिए। वरिष्ठ नौकरशाह विवेक अग्रवाल को वर्ष 2026-27 के लिए वित्तीय कार्रवाई कार्यबल का उपाध्यक्ष चुना गया है। वे ब्रिटेन के गाइल्स थॉमसन का स्थान लेंगे। श्री अग्रवाल वर्तमान में संस्कृति मंत्रालय में सचिव हैं। 17 से 19 जून के दौरान कार्यबल की पूर्ण बैठक में यह निर्णय लिया गया। विदेश मंत्रालय ने श्री अग्रवाल के चयन को भारत के लिए बड़ी जीत बताया है। उत्तर प्रदेश ब्रिक्स देशों के साथ व्यापार, प्रौद्योगिकी और निवेश संपर्क बढ़ा रहा है। राज्य सरकार ने बताया है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान ब्रिक्स देशों और साझेदार देशों को 5 अरब 36 करोड़ डॉलर मूल्य से अधिक का निर्यात किया गया। आगरा में ब्रिक्स एमएसएमई फोरम में ब्रिक्स देशों और सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम क्षेत्र के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरा और अंतिम एकदिवसीय क्रिकेट मैच आज दोपहर चेन्नई के एम ए चिदम्बरम स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच दोपहर 1:30 बजे से शुरू होगा। मेजबान टीम 2-0 की बढ़त के साथ पहले ही श्रृंखला अपने नाम कर चुकी है। दोहा डायमंड लीग में भारत के जेवलिन खिलाड़ी नीरज चोपड़ा कल रात सीजन की पहली प्रतियोगिता में चौथे स्थान पर रहे। नीरज चोपड़ा ने अपने तीसरे प्रयास में 85.69 मीटर भाला फेंककर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Naresh Mago. Prime Minister Narendra Modi will be on a visit to Odisha and West Bengal from today. In Odisha, he will join President Draupadi Murmu at Pahadpur village in Mayurbhanj district on the occasion of the President's 68th birthday. The President and Prime Minister will visit Pahadpur and offer prayers at sacred groves Santhali Jahera and Ho Jahera Skill Centre and Pahadpur School. Later, they will participate in a program at Rai Rangpur in Mayurbhanj district, marking the completion of 2 years of the Mohan Charan Majhi-led state government. During the program, they will inaugurate and lay the foundation stones of various development projects worth over 47,000 crore rupees. During his two-day visit to West Bengal, the Prime Minister will participate in Paschim Banga Divas West Bengal Day celebrations at Tarakeshwar in Hooghly district today. He is also scheduled to launch Dedicate to the Nation and lay the foundation stones of multiple development projects in West Bengal. Mr. Modi will release the 23rd installment of the Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi, PM Kisan. India's senior bureaucrat Vivek Agarwal has been selected as the next vice president of the Financial Action Task Force, FATF, for the 2026-27 term. He will succeed Giles Thompson of the United Kingdom. Mr. Agarwal, currently serving as secretary in the Ministry of Culture, earlier headed the Indian delegation to the FATF and played a key role in India's engagement with the global anti-money laundering and counter-terror financing watchdog. The decision was made during the FATF plenary held from 17th to 19th June. The Ministry of External Affairs has termed Mr. Agarwal's selection a major win for India. In a social media post, the ministry spokesperson Randhir Jaiswal said, "The appointment reinforces India's relentless focus on combating global terrorist financing networks and dismantling illicit financial systems." The National Testing Agency, NTA, has said that it is fully prepared for the smooth, fair and transparent conduct of the National Eligibility Cum Entrance Test, NEET UG 2026, re-examination, which is scheduled for tomorrow. In a statement, NTA said that the exam will be conducted across 551 cities in India and 14 cities abroad for over 22.79 lakh candidates. The agency noted

0: ये आकाशवाणी भोपाल है, प्रादेशिक समाचार थोड़ी ही देर में।
1: आकाशवाणी का साकार हुआ सपना, जन जन सब गाएं मिल मधुर ग।

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं नवनीत चौबे। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओडिशा बंगाल दौरे पर, रायरंगपुर में 47,000 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास, बंगाल में किसानों को सम्मान।

मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर आज इंदौर के सागर में देंगे प्रधानमंत्री आवास योजना की सौगात। और प्रदेश में मानसून 8 से 10 दिन लेट, आज भोपाल इंदौर समेत 38 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से ओडिशा और पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं। ओडिशा में वे आज मयूरभंज जिले के पहाड़पुर गांव में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से उनके 68वें जन्मदिन पर भेंट करेंगे और दोनों संथाली जहेरा तथा हो जहेरा के पावन स्थलों पर प्रार्थना करेंगे। इसके बाद राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री रायरंगपुर में मोहन चरण मांझी सरकार के 2 वर्ष पूरे होने पर आयोजित कार्यक्रम में 47,000 करोड़ रूपये के से अधिक की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे। पश्चिम बंगाल दौरे में प्रधानमंत्री आज हुगली के तारकेश्वर में पश्चिम बंग दिवस समारोह में शामिल होंगे और पीएम किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त जारी करते हुए 9,44,00,000 किसानों के खातों में 18,880 करोड़ रूपये से अधिक की राशि अंतरित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के तहत

0: 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि का वितरण किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के युवा आने वाले वर्षों में वैश्विक विकास, नवाचार और उद्यमिता को गति देने में अग्रणी होंगे।
1: प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के सहयोग से अब तक करीब 70 लाख जॉब सृजित हुई है। करीब 20 लाख युवा अपनी पहली नौकरी के 6 महीने पूरे भी कर चुके हैं। 2000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंची है। यह राशि केवल आर्थिक सहायता नहीं है, यह उनके परिश्रम का सम्मान है।
0: मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल आज इंदौर जिले के सावेर में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 42,000 से अधिक हितग्राहियों को 2,500 करोड़ रुपए से अधिक की आवास स्वीकृतियां प्रदान करेंगे। इसके तहत 38,000 से अधिक परिवारों को नवीन पक्के आवासों में गृह प्रवेश कराया जाएगा। इस दौरान वे 2,935 करोड़ रुपए की लागत वाली करीब 48 किलोमीटर लंबी इंदौर उज्जैन ग्रीनफील्ड 4 लेन परियोजना का भूमि पूजन भी करेंगे। वहीं कल केंद्रीय मंत्री ने सिंहस्थ 2028 की तैयारियों के साथ ऊर्जा और स्वच्छ भारत मिशन की समीक्षा बैठक भी की। भोपाल में एमपीआईडीसी मुख्यालय में रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भरता को लेकर राज्य स्तरीय परामर्श कार्यशाला आयोजित की गई। रक्षा मंत्रालय के उप महानिदेशक सुशील कुमार सतपुते ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्य तभी साकार होगा जब उद्योग, एमएसएमई, स्टार्टअप और शिक्षण संस्थान साझा मंच पर आकर नवाचार आधारित रक्षा विनिर्माण को आगे बढ़ाएंगे। कार्यशाला में देशभर के 40 से अधिक प्रमुख उद्योगों और शोध संस्थानों ने भाग लिया। भोपाल में कल दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक होने वाली नीट परीक्षा को लेकर नगरीय यातायात पुलिस ने एडवाइजरी जारी की है। शहर में परीक्षा के लिए कुल 32 केंद्र बनाए गए हैं और मेट्रो निर्माण कार्य के चलते कुछ मार्गों पर यातायात प्रभावित रहेगा, जिसके लिए वैकल्पिक मार्ग सुझाए गए हैं। पुलिस ने परीक्षा केंद्रों के आसपास ध्वनि विस्तारक यंत्रों और वाहन पार्किंग पर प्रतिबंध लगाया है। परीक्षार्थियों से कम 30 मिनट पहले केंद्र पहुंचने की अपील की गई है। अब समाचारों में वक्त है ब्रेक का।
2: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक, साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर एक विशेष श्रृंखला 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के प्रस्तुत कर रहा है। आज के अंक में हम नक्सलवाद के उन्मूलन और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास के लिए सरकार द्वारा उठाए गए महत्वपूर्ण कदमों के बारे में बताएंगे।
3: नरेंद्र मोदी सरकार की सुरक्षा अभियान, नक्सलियों की फंडिंग पर रोक और प्रभावित इलाकों में तेज विकास कार्यों की संयुक्त रणनीति के चलते देश को नक्सलवाद और माओवादी आतंक से मुक्त करने में सफलता मिली है। पिछले कुछ वर्षों में कई बड़े सुरक्षा अभियानों ने माओवादी नेटवर्क को कमजोर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वर्ष 2024 में 217 माओवादी मारे गए, जबकि 2025 में यह संख्या बढ़कर 256 हो गई। सुरक्षा अभियानों के साथ साथ नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास कार्यों को भी तेजी से आगे बढ़ाया गया। नक्सलियों की फंडिंग रोकने में राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने भी अहम भूमिका निभाई। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार।
0: राज्य शासन ने 21 जून को मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए जिलेवार कार्यक्रमों की मुख्य अतिथि सूची जारी कर दी है। प्रदेश में जिला, विकासखंड और पंचायत स्तर पर सामूहिक योग कार्यक्रम होंगे, जिनमें विद्यालयों, महाविद्यालयों और तकनीकी शिक्षा संस्थानों की भागीदारी रहेगी। भारत सरकार ने इस वर्ष की थीम एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग रखी है। पासपोर्ट आवेदनों के पुलिस सत्यापन में बेहतरीन प्रदर्शन के लिए प्रदेश पुलिस को विदेश मंत्रालय द्वारा 5 लाख से कम आवेदन श्रेणी में देश में प्रथम स्थान दिया गया है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने नई दिल्ली में आयोजित समारोह में मध्य प्रदेश पुलिस को इंस्टीट्यूशनल परफॉर्मेंस अवार्ड फॉर स्टेट पुलिस से सम्मानित किया। पुलिस महानिदेशक कैलाश मकवाना ने बताया कि अप्रैल 2025 से मार्च 2026 के बीच प्रदेश में कुल 3,35,000 से अधिक पासपोर्ट सत्यापन समयबद्ध तरीके से पूरे किए गए। प्रदेश में अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत भोपाल मंडल के 15 रेलवे स्टेशनों पर अब ड्राइव इन सिनेमा की शुरुआत की जाएगी। साथ ही यहां स्टार्टअप्स और अन्य व्यावसायिक गतिविधियां भी संचालित होगी। इस योजना का उद्देश्य स्टेशनों को आधुनिक यात्री सुविधाओं से सुसज्जित बहुआयामी शहरी केंद्र के रूप में विकसित करना है।

ताकि वे व्यापार, पर्यटन और रोजगार सृजन के प्रमुख केंद्र बन सकें। आकाशवाणी की 90 वर्षों की स्वर्णिम यात्रा के अवसर पर आकाशवाणी के उद्घोषकों द्वारा लिखी गई अनाउंसर्स डायरी पुस्तक का विमोचन आज भोपाल के श्यामला हिल्स स्थित इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय में होगा। पुस्तक के प्रधान संपादक पुरुषोत्तम श्रीवास ने बताया कि इसमें 21 राज्यों के 41 उद्घोषकों के आलेख शामिल है। समारोह के मुख्य अतिथि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय के निदेशक प्रोफेसर डॉ अमिताभ पांडे होंगे, जबकि अध्यक्षता विविध भारती मुंबई के सेवानिवृत्त वरिष्ठ उद्घोषक जी श्याम करेंगे। पुस्तक पर चर्चा के लिए वरिष्ठ पत्रकार राजेश बादल और डॉ श्रीकांत पांडे भी मौजूद रहेंगे। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग 26 जून को मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस के उपलक्ष्य में 17 से 26 जून तक देशभर में नशा मुक्त भारत सप्ताह मना रहा है। इस अभियान की थीम नशा मुक्त भारत अभियान विकसित भारत की पहचान है। सप्ताह भर चलने वाले इस अभियान में जागरूकता रैलियां, युवा अभियान, नुक्कड़ नाटक, निबंध और पोस्टर प्रतियोगिताएं तथा सोशल मीडिया अभियान आयोजित किए जा रहे हैं। अब बात मौसम की। मौसम विभाग के मुताबिक इस बार प्रदेश में दक्षिण पश्चिम मानसून 8 से 10 दिन की देरी से 25 जून तक पहुंचने का अनुमान है, जबकि सामान्यतः मानसून 15 जून के आसपास प्रवेश करता है। मौसम विभाग ने आज भोपाल, इंदौर समेत प्रदेश के 38 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट जारी किया है। भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरा और अंतिम एक दिवसीय क्रिकेट मैच आज दोपहर 1:30 बजे से चेन्नई के एमी चिदम्बरम स्टेडियम में खेला जाएगा। मेजबान भारतीय टीम पहले ही 2-0 की बढ़त के साथ श्रृंखला अपने नाम कर चुकी है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने इंदौर में तुलसीनगर पुलिया से निपानिया तक सड़क और सीवर लाइन निर्माण कार्य का भूमि पूजन एवं शुभारंभ किया। खंडवा के कृषि महाविद्यालय में आज किसानों को प्राकृतिक खेती की तकनीकों से परिचित कराने के लिए एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित की जाएगी। आगरमालवा के ग्राम गाता में 750 बीघा शासकीय गोचर भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराते हुए सीमांकन किया गया। राजगढ़ में प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के तहत निर्माण श्रमिकों के लिए विशेष पंजीयन शिविर आयोजित किया गया। बैतूल में कलेक्टर डॉ सौरभ संजय सोनवणे और पुलिस अधीक्षक वीरेंद्र जैन ने नीट परीक्षा केंद्रों का औचक निरीक्षण किया और इंदौर, धार, झाबुआ और अलीराजपुर जिलों में रेशम समृद्धि योजना के तहत वर्ष 2026-27 के लिए नवीन कृषकों का ऑनलाइन पंजीयन प्रारंभ कर दिया गया है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए दोपहर 2:10 पर। नमस्कार।

0: मीडियम वेव 444.4 मीटर यानी 675 किलोहर्ट्ज़ और प्रसार भारती की न्यूज ऑन AIR ऐप पर ये आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। लीजिए सुनिए बुंदेली सुगंध। इसमें सुनिए सुधांशु राजपाल से कहानी, गृहिणी से लेखिका।
1: मेरी उम्र 16 साल थी जब मैं बीए फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट थी। अग्रिम पढ़ाई सरस्वती शिशु मंदिर से की थी और सातवीं कक्षा की पढ़ाई न करके सीधा आठवीं में एडमिशन मिल गया था, जिस वजह से मैंने 15 साल की उम्र में ही इंटर की परीक्षा फर्स्ट डिवीजन में पास कर ली थी। बीए में पहली बार मनोविज्ञान विषय लिया था, जिसे पढ़कर मुझे आगे साइकोलॉजी में रुचि बढ़ गई थी और मैं एक साइकोलॉजिस्ट या साइकोलॉजी प्रोफेसर बनना चाहती थी। अभी बीए के एग्जाम खत्म ही हुए थे तो नानी के घर पर आई हुई थी। उस दिन कोई छोटी दावत थी, हम सब बच्चे मिलकर खेल रहे थे। तभी मेरी बड़ी दीदी ससुराल से आई। दीदी ने मम्मी को बताया कि पास वाले घर के लड़के से उस मौसी सास की बेटी की रिश्ते की बात चल रही है, जिस वजह से आने में देर हो गई। मम्मी ने कहा लड़का पड़ोस में है तो चलकर बात कराते हैं और तृप्ति यानी मेरी शादी की बात कर लेते हैं। मुझे इस समय शादी या इस सब चीजों में कोई रुचि नहीं थी, सो मामा के बच्चों के साथ मिलकर खेलते रहे। एक घंटे बाद माँ और मौसी पड़ोस से लौटी तो उन दोनों के चेहरे पर खुशी के भाव थे। उनके बड़े बेटे की शादी पड़ोस में हुई थी और घर के सब छोटे भाई की शादी साथ करवाने का सोच रहे थे, तो शादी 10 दिन बाद है। सारी बातें तय हो गई। उधर मुझसे न तो किसी ने पूछा, न ही मुझे कुछ समझ आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। पापा से कहा था कि पापा मुझे शादी नहीं करनी, पढ़ाई करनी है, तो माँ ने

बोल दिया था कि सिर्फ शादी हो रही है, विदाई नहीं होगी। तेरे ससुर जी से बात कर ली है, वो लोग भी पढ़े लिखे घर से ही हैं। उन्होंने कहा कि जब तक चाहो पढ़ना, दिल में सुकून मिला। अगले दिन मम्मी ने कहा कि अब कॉलेज नहीं जाना है, जब तक शादी ना हो जाए। देखते ही देखते 10 दिन यूं ही गुजर गए और शादी का दिन भी आ गया। शादी वाले दिन जब तक हल्दी तेल ना चढ़ जाए तब तक वर वधू को खाना नहीं देते हैं। शाम के 6 बज गए, रस्म खत्म होते होते जल्दी से हल्दी चढ़ी और मम्मी बोली, नहा कर तैयार हो जाना, बारात 7 बजे तक आ जाएगी। यहाँ मुझे तो जोर की भूख लग रही थी, कोई कुछ सुनने को भी तैयार नहीं। रात 9 बज गए, बारात जब गई तो स्टेज से उतरते ही मैं रोने लगी। सबने पूछा, क्या हुआ, क्यों रो रही हो? किसी ने कुछ कहा, मैंने सर हिलाकर ना करते हुए कहा कि ये शादी बहुत बुरी होती है, जिस शादी उसी को सुबह से खाना नहीं दिया, मुझे नहीं करनी शादी। तब चाची ने चुप करा कर बोला, चल पहले कुछ खा ले। बच्ची थी तो उस समय बुद्धि भी छोटे बच्चों जैसी थी। जैसे तैसे शादी की रस्में पूरी हुई। दीदी रस्मों के लिए अलग अलग साड़ी पहनाती तो मैं बार बार बोलती कि यार एक बार ही पहना दो जो पहनाना है। हर 2 घंटे में साड़ी बदल देते हैं। शादी के बाद विदाई नहीं हुई थी, बस हर रविवार ससुराल जाना होता था, शाम को घर वापस, सब कुछ ठीक था। इसी बीच एग्जाम आ गए और वहाँ लड़के वालों ने विदाई की मांग की। 4 मई को विदाई और 5 मई को मेरा इंग्लिश का एग्जाम था। एग्जाम में ही विदाई आ गई। यहाँ विदाई की रस्म चल रही थी, मेरा ध्यान मेरे एग्जाम में था। विदाई हुई और दोपहर को एग्जाम था। जैसे तैसे एग्जाम खत्म हुए, ये साल तो बीत गया। आखिरी साल बहुत मुश्किल से गुजरा। एक तरफ परिवार में नए होने और सबसे छोटी होने के कारण संघर्ष ज्यादा करना पड़ा, सबके दिल में खुद के लिए जगह बनाने के लिए, फिर पढ़ाई के साथ साथ पहली बार माँ बनने का भी अनुभव, और वो ही जब खुद आप वयस्क न हो तो मुश्किल होता है। जब एग्जाम आए उस समय 9 महीने गर्भ से थी। प्रैक्टिकल में एग्जामिनर ने किया पहला सवाल, इतनी जल्दी शादी क्यों करनी, क्या पढ़ाई नहीं करनी आगे, प्रेग्नेंट हो तो फिर एग्जाम क्यों दे रही हो? मेरा जवाब था, सर शादी घर वालों ने कर दी है, एग्जाम खुद अपनी मर्जी से दे रही हूँ। दूसरा सवाल पूछा, प्रैक्टिकल कर लिया, किस विषय पर किया है? और जाने को बोल दिया, क्योंकि गर्मी अधिक होने से तबीयत ठीक नहीं थी। फिर पहले बेटे को जन्म दिया और उसी महीने 18 साल पूरे किए जिंदगी के। एक बच्चा जल्दी हो जाने से बच्चा दानी में सूजन आ गई थी, जिस वजह से दोबारा माँ बनने से पहले 4 बार गर्भपात हो गया। और एक बेटे को जन्म देने के बाद भी ससुराल में ताने के दौर से गुजरना पड़ा। आप सबने ये तो सुना ही होगा कि आप अपने समाज में बांझ यानी जिसके बच्चा न हो, लोग उसका मुंह देखना अपशगुन मानते हैं। लेकिन एक माँ जिसने की वंश के चिराग को जन्म दिया हो, उसे सुबह उठते ही ये सुनना कि बांझ भली, एक बांझ बुरी, एक बांझ का मुंह देख लिया, आज तो दिन बुरा निकलेगा, कैसा महसूस होता होगा, जरा सोचिए। जबकि इस बात का कारण भी उम्र से पहले उनके घर में एक स्वस्थ बच्चे को जन्म देना, जिस वजह से एक नहीं, दो नहीं, 4 बार गर्भपात हो और फिर भी ताने सुनने को मिले। खैर, वो कहावत है कि ईश्वर जिसका साथ दे वो हर मुसीबत को पार कर लेता है, और आपके खिलाफ बोलने वालों का मुंह भी बंद हो जाता है। तो नौकरी के चलते पति मुंबई शिफ्ट हो गए और उसी दौरान पुनः गर्भ धारण हुआ, तो मुंबई के डॉक्टर के कुशल इलाज से एक बार फिर एक बीबी बॉय को जन्म दिया। इस दौरान बड़े बेटे को 7 महीने तक खुद से दूर रखना पड़ा, जिसके कारण वो भी डर और प्यार की कमी से सहमा हुआ मिला। डर की वजह से बिस्तर गीला करना शुरू हो गया, उसकी ओर गोलू मोलू बदन से एक हरा बदन हो गया 7 महीने में उसका। लेकिन धीरे धीरे सब ठीक हो गया। पढ़ाई का समय तो नहीं मिला, लेकिन बच्चों पर ध्यान देने में उम्र गुजर गई। जिंदगी यूं ही गुजरती रही। सिर्फ एक माँ थी, सारी इच्छा मर चुकी थी, लगा कि खुद का नहीं।

0: अपनी लगन से बहुत सी पत्रिका और अखबारों से जुड़ पाई। मैं खुद को खुशनसीब समझती हूँ कि आज अमेरिका से लेकर अवार्ड तक के अखबारों में मेरी रचनाएं छप चुकी हैं। साहित्यिक क्षेत्र में सराहनीय कार्य के लिए सम्मान पत्र भी मिले हैं और बहुत शीघ्र ही गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का हिस्सा भी बनने जा रही हूँ। मेरी एक रचना जो देश के सबसे बड़े साझा अंक के लिए चयनित है, साझा संकलन का हिस्सा भी बन चुकी है। रचनाएं और वो सब भी निःशुल्क। शुरू में परिवार में बहुत विरोध भी हुआ, तब कसम खाई कि बिना आर्थिक मदद के खुद को साबित करके दिखाऊंगी। जानती हूँ ये कोई बड़ी उपलब्धि तो नहीं, पर तृप्ति इस बात से है कि लोग आपकी योग्यता और नाम से पहचानते हैं। यकीन मानिए कि लगन से दुनिया मिलती है। हाउसवाइफ एक जिम्मेदारी का काम है, लेकिन फिर भी आज की दुनिया में हाउसवाइफ को रिस्पेक्ट नहीं मिलता। कोशिश करें कि कुछ ऐसा करें कि आपके जाने के बाद भी आपका नाम रहे। आप में प्रतिभा है और कुछ करने की लगन है तो देर से ही सही पर मंजिल अवश्य मिलती है।
1: अभी आप सुन रहे थे बुंदेली सुगंध। इसमें आपने सुनी सुधांशु राजपाल से कहानी, गृहिणी से लेखिका। ये आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है फिल्म संगीत। फिल्म संगीत का पहला गीत है फिल्म धर्मयुद्ध से। आवाज आशा भोसले की है, गीत कुलवंत जानी का और संगीत राजेश रोशन का है।

अभी आपने फिल्म धर्मयुद्ध का ये गीत सुना आशा भोसले की आवाज में। अब लीजिए सुनिए अगला गीत है लता मंगेशकर और यशुदास की आवाज में फिल्म हत्या का ये गीत। गीत इंदिवर का है और संगीत बप्पी लहरी का।

0: हो गया इंतजाम।
1: किसका?
0: गुड्डी की फीस का।
1: दिखा। 20,000 का लोन तुरंत। पता है कौन दे रहा है, ब्याज कितना है? लोन विनियमित संस्थानों से ही ले और कर्ज उतना जितनी जरूरत, वो भी जांच कर। हो गया इंतजाम, पगार एडवांस में भेजिए।
2: आरबीआई कहता है,
3: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
4: जानते हैं, कुवैत जैसे देश की जीडीपी से करीब 3 गुना पैसा तो हमने सिर्फ अपने देश के छोटे उद्यमियों को दिया है, वो भी गारंटी फ्री 40 लाख करोड़ से भी अधिक के मुद्रा लोन से।
5: करोड़ों छोटे उद्यमियों को मुद्रा योजना से लोन मिला, उन्हें आज महसूस होता है कि डेमोक्रेसी कैन डिलीवर।
4: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
6: हर परिस्थिति में थामे रहे एक दूसरे का हाथ, बहुत खुशनुमा गुजरा इन 43 वर्षों का साथ। इसलिए तो सभी कहें कि चतुर्वेदी जी आप में कुछ अलग है बात। सभी बच्चों नाती पोतों की ओर से आपको शादी की 43वीं सालगिरह की बहुत बहुत शुभकामनाएं।
7: श्रोताओं, फिल्म संगीत आप सुन रहे हैं

अब लीजिए सुनिए फिल्म मैं कातिल हूँ का ये गीत अमित कुमार की आवाज में, गीत निदा फाजली का है और संगीत वासुदेव का।

अब लीजिए सुनिए कंचन की आवाज में फिल्म हीरो हीरालाल का ये गीत, गीत हृदय लानी का है और संगीत बाबला का।

अभी आपने कंचन फिल्म, कंचन की आवाज में फिल्म हीरो हीरालाल का ये गीत सुना। इसी के साथ फिल्म संगीत समाप्त हुआ। मीडियम वेव पर ये आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। सुबह के 8 बजने वाले हैं समाचार प्रभात। अब हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। पहले आप सुनेंगे हिंदी में समाचार 8:15 पर, मॉर्निंग न्यूज यानी अंग्रेजी में समाचार सुनेंगे।

0: प्यारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन अपनाएं, योग को जीवन का हिस्सा बनाएं। एक दिन नहीं, हर दिन योग, स्वास्थ्य और खुशहाली का अचूक संयोग।
1: करो योग, रहो निरोग। करो योग, रहो निरोग।
0: इस 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य केंद्र होगा सिटी ऑफ जॉय कोलकाता। यहीं से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देंगे विश्व को स्वास्थ्य और सद्भाव का संदेश। आयुष मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
2: लो फिर आ रहा 21 जून ला रहा नया संदेश, योग से जीवन बने विशेष। बढ़ती उम्र के साथ योग का साथ न्यारा, योग फॉर हेल्दी एजिंग, ये भरोसा हम सबका प्यारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन अपनाएं, योग को जीवन का हिस्सा बनाएं। एक दिन नहीं, हर दिन योग, स्वास्थ्य और खुशहाली का अचूक संयोग। इक्कीस जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य केंद्र होगा सिटी ऑफ जॉय कोलकाता। यहीं से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देंगे विश्व को स्वास्थ्य और सद्भाव का संदेश। आयुष मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

0: का प्यारा।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन अपनाएं, योग को जीवन का हिस्सा बनाएं। एक दिन नहीं, हर दिन योग, स्वास्थ्य और खुशहाली का अचूक संयोग।
0: करो योग, रहो निरोग। करो योग, रहो निरोग।
1: इस 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य केंद्र होगा सिटी ऑफ जॉय कोलकाता। यहीं से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देंगे विश्व को स्वास्थ्य और सद्भाव का संदेश। आयुष मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
2: लो फिर आ रहा 21 जून ला रहा नया संदेश, योग से जीवन बने विशेष। बढ़ती उम्र के साथ योग का साथ न्यारा, योग फॉर हेल्दी एजिंग, ये भरोसा हम सबका प्यारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन अपनाएं, योग को जीवन का हिस्सा बनाएं। एक दिन नहीं, हर दिन योग, स्वास्थ्य और खुशहाली का अचूक संयोग। इस जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य केंद्र होगा सिटी ऑफ जॉय कोलकाता। यहीं से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देंगे विश्व को स्वास्थ्य और सद्भाव का संदेश। आयुष मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

0: 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य केंद्र होगा सिटी ऑफ जॉय कोलकाता। यहीं से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देंगे विश्व को स्वास्थ्य और सद्भाव का संदेश। आयुष मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
1: लो फिर आ रहा 21 जून ला रहा नया संदेश, योग से जीवन बने विशेष। बढ़ती उम्र के साथ योग का साथ न्यारा, योग फॉर हेल्दी एजिंग, ये भरोसा हम सबका प्यारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन अपनाएं, योग को जीवन का हिस्सा बनाएं। एक दिन नहीं, हर दिन योग स्वास्थ्य और खुशहाली का अचूक संयोग। इस जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य केंद्र होगा सिटी ऑफ जॉय कोलकाता। यहीं से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देंगे विश्व को स्वास्थ्य और सद्भाव का संदेश। आयुष मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
2: आया खुशियों का पैगाम पीएम किसान।
3: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 20 जून को हुगली पश्चिम बंगाल से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किश्त जारी करेंगे। इसके तहत 9 करोड़ 44 लाख से अधिक किसानों के खातों में 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की सम्मान राशि सीधे हस्तांतरित की जाएगी। पीएम किसान की इस किश्त के साथ ही किसानों को हस्तांतरित कुल राशि 4,46,000 करोड़ रुपए से अधिक हो जाएगी, जो करोड़ों किसान परिवारों को आर्थिक संबल प्रदान कर रही है।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ओडिशा के मयूरभंज में 47,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी पश्चिम बंगाल के हुगली से पीएम किसान योजना की 23वीं किस्त जारी करेंगे। 9 करोड़ से अधिक किसान होंगे लाभान्वित। वरिष्ठ नौकरशाह विवेक अग्रवाल वित्तीय कार्रवाई कार्यबल के उपाध्यक्ष नियुक्त। भारत ने आतंकवाद वित्त पोषण से निपटने की प्रतिबद्धता दोहराई। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी की कल होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा से पहले आज राष्ट्रव्यापी मॉक ड्रिल। सेबी ने मृत निवेशकों के शेयर उनके कानूनी उत्तराधिकारियों को हस्तांतरित करने की प्रक्रिया आसान बनाई। और भारत और अफगानिस्तान के बीच एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला का तीसरा और अंतिम मैच आज चेन्नई में। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से ओडिशा और पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री आज ओडिशा के मयूरभंज जिले के पहाड़पुर गांव में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से उनके 68वें जन्मदिन पर भेंट करेंगे।
5: राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री मिलकर पवित्र संथाली जोहरा और हो जोहरा स्थलों पर पूजा अर्चना करेंगे और स्थानीय शिक्षण और कौशल विकास संस्थानों का दौरा करेंगे। इससे आदिवासी समुदायों के सशक्तिकरण के प्रति देश की प्रतिबद्धता जाहिर होगी। इसके बाद दोनों नेता रायरंगपुर में एक बड़े सार्वजनिक कार्यक्रम में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री 47,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे और ऊर्जा, परिवहन, स्वास्थ्य, शिक्षा, सिंचाई और औद्योगिक बुनियादी ढांचे जैसे प्रमुख क्षेत्रों में नई परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। राष्ट्रपति मुर्मू और प्रधानमंत्री मोदी एक विशाल जनसभा को भी संबोधित करेंगे। रायरंगपुर से प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार।
4: पश्चिम बंगाल के दौरे में आज प्रधानमंत्री हुगली जिले के तारकेश्वर में पश्चिम बंग दिवस समारोह में शामिल होंगे। वे राज्य में विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। श्री मोदी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त भी जारी करेंगे। इसके तहत देश के 9 करोड़ 44 लाख किसानों के बैंक खातों में 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे अंतरित की जायेगी। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
6: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हुगली के तारकेश्वर में पश्चिम बंगाल दिवस समारोह में शामिल होंगे और कलकत्ता में रेड रोड पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम में नेतृत्व करेंगे। इसी अवसर पर वे 3 स्वदेशी युद्धपोत INS दुनोगिरी, INS संशोधक और INS अग्रय राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री कई महत्वपूर्ण परियोजना का भी उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। कृषि क्षेत्र में श्री मोदी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत करेंगे। संदीपन दासगुप्त के साथ काशफिन नाहर, आकाशवाणी कोलकाता।
4: गृहमंत्री अमित शाह आज कोल्हापुर और इचलकरंजी के दौरे पर हैं। वे महालक्ष्मी मंदिर परिसर में विभिन्न

0: विकास कार्यों का उद्घाटन करेंगे और मंदिर क्षेत्र में पश्चिमी महाराष्ट्र मंदिर विकास योजना के तहत चल रही विकास परियोजनाओं की समीक्षा करेंगे। श्री शाह कोल्हापुर के पुलिस परेड ग्राउंड में एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। वरिष्ठ नौकरशाह विवेक अग्रवाल को वर्ष 2026-27 के लिए वित्तीय कार्रवाई कार्यबल का उपाध्यक्ष चुना गया है। वे ब्रिटेन के गाइल्स थॉमसन का स्थान लेंगे। कार्यबल की पूर्ण बैठक में यह निर्णय लिया गया। विदेश मंत्रालय ने श्री अग्रवाल के चयन को भारत के लिए बड़ी जीत बताया है। मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस नियुक्ति से आतंकवाद के लिए धन मुहैया कराने और गैर कानूनी वित्तीय नेटवर्क के खिलाफ संघर्ष की भारत की प्रतिबद्धता मजबूत होती है। देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के तहत पिछले 12 वर्ष में उल्लेखनीय बदलाव हुए हैं। आकाशवाणी समाचार पिछले 12 वर्ष में प्रमुख क्षेत्रों में सरकार के प्रयासों पर एक विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज जानकारी सशक्त भारत के संकल्प को साकार करने वाली सरकार की परिवर्तनकारी पहलों के बारे में।
1: पिछले 12 वर्षों में सरकार ने भारत के हाईटेक क्षेत्र में बड़ा बदलाव लाने का काम किया है। सशक्त भारत के दो महत्वपूर्ण आधार हैं सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम का विकास और स्पेस स्टार्टअप्स की तेजी से बढ़ती संख्या। सरकार की नीतियों और फैसलों से सेमीकंडक्टर क्षेत्र में सिर्फ योजनाएं ही नहीं बनी बल्कि अब निर्माण और डिजाइन से जुड़े कई इकाई भी काम कर रहे हैं। दिसंबर 2021 में इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन शुरू किया गया। इसके लिए 76,000 करोड़ रुपए का बजट रखा गया। इस योजना के तहत सिलिकॉन फैब कंपाउंड सेमीकंडक्टर इकाई असेंबली और टेस्टिंग सुविधाओं तथा चिप डिजाइन के लिए 50% तक वित्तीय सहायता दी गई। साल 2026 में सरकार ने सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 शुरू किया जिसके लिए 1,000 रुपए का प्रावधान किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य उद्योगों के सहयोग से शोध और प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करना नई तकनीकों का विकास करना और भविष्य के लिए कुशल मानव संसाधन तैयार करना है। इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि मिशन 1.0 ने इस जटिल उद्योग की मजबूत नींव रखी है।
2: हम अपने सेमीकंडक्टर मिशन के पहले चरण में ये हासिल कर पाए हैं। 75,000 से ज्यादा इंजीनियर इस क्षेत्र में प्रशिक्षित हो चुके हैं। 300 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज छात्रों को चिप डिजाइन करना सिखा रही हैं और भारत में 2 नैनोमीटर चिप्स डिजाइन की जा रही हैं, जो दुनिया के सबसे एडवांस चिप्स हैं। इनमें एनवीडिया और इंटेल की चिप्स भी शामिल हैं और ये सभी अब भारत में ही डिजाइन की जाती हैं।
1: वहीं भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 ने निजी कंपनियों को अंतरिक्ष क्षेत्र में पूरी तरह काम करने की अनुमति दी है। अब निजी संस्थाएं रॉकेट लॉन्च उपग्रह निर्माण और संचालन डेटा संग्रह और वितरण तथा ग्राउंड स्टेशन जैसी गतिविधियां कर सकती हैं। इस नीति के बाद भारत में स्पेस स्टार्टअप्स की संख्या 2014 में केवल 1 से बढ़कर 400 से अधिक हो गई है। इससे देश की निजी अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था को नई गति मिली है। भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था वर्तमान में लगभग $8 अरब से अधिक की है और अगले 8 से 10 वर्षों में इसके 4 से 5 गुना बढ़कर 40 से 45 अरब डॉलर तक पहुंचने की संभावना है। आकाशवाणी के साथ बातचीत में अनिल प्रकाश स्पेस इंडस्ट्री एसोसिएशन ऑफ इंडिया के महानिदेशक ने बताया कि भारत में अब 400 से अधिक स्पेस टेक स्टार्टअप्स हैं।
3: नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में स्पेस सेक्टर रिफॉर्म स्पेस की स्थापना और प्राइवेट पार्टिसिपेशन में को बढ़ावा देने वाली नीतियों ने एक नई क्रांति की शुरुआत की है। आज भारत में 400 से अधिक स्पेस टेक स्टार्टअप कार्यरत हैं जो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल अर्थ ऑब्जर्वेशन और डाटा सर्विस जैसे क्षेत्रों में इनोवेशन कर रहे हैं।
1: सेमीकंडक्टर मिशन की उपलब्धियों और तेजी से बढ़ती निजी अंतरिक्ष क्षेत्र के माध्यम से भारत विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में लगातार आगे बढ़ रहा है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए कल होने वाली नीट यूजी पुनः परीक्षा से पहले आज राष्ट्रव्यापी अभ्यास संचालित करेगा। परीक्षा से पहले मानक तैयारी के निरीक्षण के लिए ये मॉक ड्रिल की जा रही है। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी ने मृत निवेशकों के शेयरों के आसानी से हस्तांतरण के उद्देश्य से कानूनी उत्तराधिकारी और दावेदारों को प्रतिभूति अंतरित किए जाने के तरीके को सरल बनाया है। कल मुंबई में बोर्ड की 214वीं बैठक में सेबी ने बाजार क्षमता बढ़ाने अनुपालन में आसानी और नियामक व्यवस्था में मजबूती के लिए कई सुधारों को मंजूरी दी। और अब खेल खबरें। भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरा और अंतिम एक दिवसीय क्रिकेट मैच आज दोपहर चेन्नई के एमए चिदम्बरम स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच दोपहर 1:30 बजे से शुरू होगा। भारत 2-0 की बढ़त के साथ पहले ही श्रृंखला अपने नाम कर चुका है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
4: धन्यवाद विशाल। टेलीग्राम पर केंद्र सरकार की रोक पर दिल्ली उच्च न्यायालय का फैसला आज के सभी अखबारों के मुख्य पृष्ठ पर है। दैनिक जागरण की सुर्खी है टेलीग्राम पर प्रतिबंध सही। फुटपाथ पर पैदल

0: ना लोगों का मौलिक अधिकार, सर्वोच्च न्यायालय का ये निर्णय दैनिक ट्रिब्यून सहित कई अखबारों में है। इस खबर पर नवभारत टाइम्स ने पहला हक शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, सुरक्षित फुटपाथ केवल सड़क सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा नहीं, ये पर्यावरण और लोगों के सेहत से भी जुड़ा है। पाकिस्तान अपने ही भस्मासुरों का शिकार, आतंकियों की है खुली पनाह का, संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि अनुपमा सिंह का ये बयान अमर उजाला में है।
1: धन्यवाद फरहत। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ओडिशा के मयूरभंज में 47,000 करोड़ रूपये से अधिक की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी पश्चिम बंगाल के हुगली से पीएम किसान योजना की 23वीं किस्त जारी करेंगे। वरिष्ठ भारतीय नौकरशाह विवेक अग्रवाल वित्तीय कार्रवाई कार्यबल के उपाध्यक्ष नियुक्त। भारत ने आतंकवाद वित्त पोषण से निपटने की प्रतिबद्धता दोहराई। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी की कल होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा से पहले आज राष्ट्रव्यापी मॉक ड्रिल। और सेबी ने मृत निवेशकों के शेयर उनके कानूनी उत्तराधिकारियों को हस्तांतरित करने की प्रक्रिया आसान बनाई। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम नरेश मागो। द हेडलाइंस। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू एंड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टू इनॉग्युरेट एंड ले फाउंडेशन स्टोन ऑफ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स वर्थ ओवर 47,000 करोड़ रुपीज इन ओडिशा मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट टुडे। प्राइम मिनिस्टर मोदी टू रिलीज 23rd installment of the PM Kisan to over 9 crore farmers from Hooghly in West Bengal. Senior Indian bureaucrat Vivek Agrawal appointed as Vice President of Financial Action Task Force FATF. New Delhi reiterates its commitment to combat terror financing. NTA to conduct nationwide mock drill today ahead of NEET UG re-examination scheduled for tomorrow. SEBI clears channel for easier transfer of shares to legal heirs of deceased investors. And in men's cricket, India to take on Afghanistan in third and final ODI of the series in Chennai this afternoon. In a rare confluence of constitutional leadership and developmental vision, Prime Minister Narendra Modi is visiting Odisha this morning, where he will join President Draupadi Murmu in her home district of Mayurbhanj. The visit coincides with the President's 68th birthday and the celebrations marking 2 years of the Odisha government. Our correspondent reports from Rai Rangpur.
3: In a rare and significant engagement, the President and the Prime Minister will jointly offer prayers at the sacred Santhali Jahera and Ho Jahera groves and visit local educational and skill development institutions, underscoring the nation's commitment to the empowerment of tribal communities. Later, the two leaders will participate in a grand public program at Rai Rangpur, marking the completion of 2 years of the Mohan Charan Majhi-led Odisha government. Development projects worth more than 47,000 crore rupees will be inaugurated by the Prime Minister and foundation stones laid across key sectors, including energy, transportation, health, education, irrigation and industrial infrastructure. President Murmu and Prime Minister Modi are also scheduled to address a massive public gathering. Prakash Das from Rai Rangpur, Akashvani News.
2: Prime Minister Modi has extended greetings to President Murmu on her birthday. Mr. Modi said that the President's journey marked by courage, simplicity, humility and an unwavering commitment to public service that continues to inspire people across the country. Later in the day, Prime Minister Modi will release over 880 crore rupees to the bank accounts of 9.44 crore farmers nationwide under the PM Kisan scheme from Hooghly in West Bengal. This also includes over 900 crore rupees to the accounts of more than 45 lakh farmers of West Bengal. We have more details on the Prime Minister's visit from our correspondent.
4: Prime Minister Narendra Modi is arriving in West Bengal today on a 2 days visit for the first time since the BJP formed the government in the state. During his stay, he will attend the West Bengal Day celebrations in Tarakeshwar in Hooghly, lead the International Yoga Day program in Kolkata's Red Road and dedicate 3 indigenously built warships, INS Dunagiri, INS Sanshodhak and INS Agrahay to the nation. He will also inaugurate and lay foundation stones for several key projects. These include railway initiatives worth nearly Rs 590 crore, a new 300-bed railway hospitals in Howrah and a rail overbridge in East Midnapur. He will also launch 49 rural road projects under the Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana, strengthening connectivity across more than 315 kilometers.

तीसरे रविवार को फादर्स डे मनाया जाता है और फादर्स डे उस व्यक्तित्व को स्मरण करने और नमन करने के लिए है जिसका योगदान हमारे जीवन में इतना गहरा है कि उसे शब्दों में बांधना संभव नहीं। फादर्स डे केवल कैलेंडर की एक तिथि नहीं है, यह उस मौन तपस्वी के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने का अवसर है जिसने अपने जीवन का प्रत्येक क्षण अपने परिवार और अपने बच्चों के भविष्य के लिए समर्पित कर दिया। यह दिन हमें याद दिलाता है कि हमारी सफलताओं के पीछे यदि किसी का सबसे बड़ा त्याग और संघर्ष छिपा है तो वह हमारे पिता हैं।

पिता यह मात्र दो अक्षरों का शब्द नहीं बल्कि एक संपूर्ण संसार है। यह शब्द सुनते ही स्मृतियों के अनेक द्वार खुल जाते हैं। बचपन की वह उंगली याद आती है जिसे पकड़कर हमने चलना सीखा। वह कंधा याद आता है जहां बैठकर दुनिया सबसे सुंदर और सुरक्षित दिखाई देती थी। वह चेहरा याद आता है जो दिन भर की थकान के बाद भी हमारे लिए मुस्कुराना नहीं भूलता था। जब एक बच्चे का जन्म होता है तब केवल एक शिशु संसार में नहीं आता बल्कि उसी क्षण एक पिता का भी जन्म होता है। उस दिन से उसकी प्राथमिकताएं बदल जाती हैं, उसके सपनों की दिशा बदल जाती है। जो व्यक्ति कभी अपने लिए जीता था वह अब अपने बच्चों की मुस्कान में अपना सुख खोजने लगता है। उसके जीवन का केंद्र स्वयं नहीं उसका परिवार बन जाता है। माँ का प्रेम बहती हुई नदी की तरह दिखाई देता है, स्पष्ट, स्नेहमय और सहज। किंतु पिता का प्रेम उस नदी के किनारे खड़ी चट्टान की तरह होता है जो स्वयं स्थिर रहकर पूरी धारा को दिशा देता है। वह कम बोलता है, अपनी भावनाओं का प्रदर्शन कम करता है, परंतु उसके हर निर्णय, हर चिंता और हर संघर्ष में प्रेम का अथाह सागर छिपा होता है।

प्रेमिका अक्सर अपने प्रेम को शब्दों में व्यक्त नहीं करते, वे मैं तुमसे प्यार करता हूँ कम कहते हैं, लेकिन उनका पूरा जीवन इसी वाक्य का विस्तार होता है। उनकी मेहनत, उनका त्याग, उनकी चिंता और उनका समर्पण ही उनके प्रेम की भाषा बन जाता है। वह सुबह सबसे पहले उठता है और रात को सबसे बाद में सोता है। वह धूप में तपता है ताकि उसका परिवार छांव में रह सके। वह अपनी इच्छाओं को सीमित कर लेता है ताकि उसके बच्चों के सपने पूरे हो सके। वह वर्षों तक एक ही वस्त्र पहन सकता है, लेकिन अपने बच्चों को सर्वश्रेष्ठ देने में कभी कमी नहीं आने देता। उसकी खुशियां अक्सर परिवार की खुशियों में विलीन हो जाती हैं। हम में से कितनों ने कभी यह जानने की कोशिश की है कि हमारे पिता के अपने सपने क्या थे, कितनी इच्छाएं थी जिन्हें उन्होंने समय और परिस्थितियों के कारण अपने हृदय के किसी कोने में बंद कर दिया। उन्होंने अपने अनेक सपनों को इसलिए अधूरा छोड़ दिया ताकि उनके बच्चे

बच्चे अपने सपनों को पूरा कर सकें। उन्होंने अपने अरमानों का त्याग किया ताकि हमारे भविष्य की नींव मजबूत हो सके। घर लौटते समय वे अपने साथ दिन भर की थकान, संघर्ष और चिंताएं लेकर आते हैं, लेकिन घर की दहलीज पर पहुंचते पहुंचते वे सब कुछ भीतर ही कहीं छिपा लेते हैं। परिवार को कभी यह महसूस नहीं होने देते कि वे किन परिस्थितियों से गुजर रहे हैं। उनके

महत्वपूर्ण यह था कि वे हमें फिर से चलना सिखाते थे। वे हमें यह नहीं सिखाते कि जीवन में कभी गिरना नहीं चाहिए, वे हमें सिखाते हैं कि गिरकर भी उठना कैसे है। यह शिक्षा आगे चलकर हमारे व्यक्तित्व की सबसे बड़ी शक्ति बनती है। उनकी डांट हमें कभी कभी कठोर लगती थी, उनकी रोक टोक हमें बंधन जैसी प्रतीत होती थी, लेकिन समय के साथ समझ आता है कि वह डांट नहीं, अनुभव की

वह रोक टोक नहीं, सुरक्षा का कवच थी। वे जीवन की उन कठिन राहों को पहले ही देख चुके होते हैं जिनसे हमें गुजरना है, इसीलिए उनका हर शब्द हमारे भविष्य की रक्षा के लिए होता है। समय बीतता है, हम बड़े होते हैं, अपने जीवन की जिम्मेदारियों को संभालने लगते हैं, तब धीरे धीरे पिता का संघर्ष समझ में आने लगता है। तब एहसास होता है कि घर चलाना, परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करना, बच्चों की शिक्षा, भविष्य और सुरक्षा की चिंता करना कितना कठिन कार्य है। तब समझ आता है कि पिता की मुस्कान के पीछे कितनी चिंताएं छिपी थी और उनके आत्मविश्वास के पीछे कितनी बेचैन रातें थीं।

माता की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वे अपनी कमजोरियों को कभी अपने परिवार पर हावी नहीं होने देते। वे भी डरते हैं, वे भी चिंतित होते हैं, वे कभी कभी टूटते हैं, लेकिन वे अपने आंसुओं को अपनी पलकों तक ही सीमित रखते हैं। वे परिवार के लिए साहस का प्रतीक बने रहते हैं। जब सबको लगता है कि परिस्थितियां कठिन हैं, तब पिता कहते हैं, चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। और कई बार एक वाक्य पूरे परिवार को नई शक्ति दे देता है। पिता का प्रेम समुद्र की तरह गहरा और आकाश की तरह विशाल होता है। वह दिखाई कम देता है, परंतु उसका विस्तार अनंत होता है। उनके आशीर्वाद में ऐसी शक्ति होती है जो हमें हर संकट में संभाल लेती है। जीवन की सबसे कठिन परिस्थितियों में भी यदि पिता का हाथ सिर पर हो तो संघर्ष सरल लगने लगते हैं और असंभव लक्ष्य भी संभव प्रतीत होने लगते हैं। हमारे जीवन के पहले नायक हमारे पिता ही होते हैं। उनके पास कोई जादू शक्ति नहीं होती, ना वे किसी कहानी के सुपर हीरो होते हैं, लेकिन हमारे लिए वे हर असंभव को संभव बनाने का प्रयास करते हैं। वे स्वयं कठिनाइयों से लड़ते हैं ताकि हम सुरक्षित रह सकें। वे स्वयं अभाव सहते हैं ताकि हमें अवसर मिल सके। आज की तेज भागती हुई दुनिया में हम अक्सर अपने माता पिता, विशेषकर पिता के साथ समय बिताना भूल जाते हैं। हम उनके लिए उपहार खरीद लेते हैं, संदेश भेज देते हैं, लेकिन कई बार वह सबसे महत्वपूर्ण चीज देना भूल जाते हैं जिसकी उन्हें सबसे अधिक आवश्यकता होती है, हमारा समय, हमारा सम्मान और हमारा स्नेह। फादर्स डे हमें यही याद दिलाता है कि पिता केवल परिवार के कमाने वाले सदस्य नहीं हैं, वे परिवार की नींव हैं। वे वह आधार हैं जिस पर पूरे घर की इमारत खड़ी होती है। जब तक वह आधार मजबूत रहता है, परिवार सुरक्षित रहता है, और जब वह आधार कमजोर पड़ता है, तब हमें उनके महत्व का वास्तविक एहसास होता है। यदि आपके पिता आपके साथ हैं, तो उनके पास बैठिए, उनकी बातें सुनिए।

उनके संघर्षों को समझने का प्रयास कीजिए, उनके चरण स्पर्श कर उनका आशीर्वाद लीजिए, उन्हें यह महसूस कराइए कि उनका त्याग, उनका प्रेम और उनकी मेहनत आपके लिए अमूल्य है। और यदि आपके पिता इस संसार में नहीं हैं, तो उनके द्वारा दिए गए संस्कारों, मूल्यों और आदर्शों को अपने जीवन में उतार कर उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि दीजिए, क्योंकि पिता कभी पूरी तरह दूर नहीं जाते। वे अपनी सीख, अपने विचारों और अपने आशीर्वाद के रूप में सदैव हमारे साथ बने रहते हैं। अंत में मैं केवल इतना कहना चाहूंगी, पिता वह बरगद का वृक्ष है जो स्वयं धूप में खड़ा रहता है, लेकिन अपने परिवार को सदैव छाया देता है। पिता वह नींव है जो स्वयं दबकर भी पूरे परिवार को खड़ा रखती है। पिता वह अनकही दास्तान है जिसका हर अध्याय त्याग, संघर्ष और प्रेम से लिखा गया है। आइए इस फादर्स डे पर हम सभी अपने पिता के प्रति सम्मान, प्रेम और कृतज्ञता व्यक्त करें तथा यह संकल्प लें कि हम उन्हें केवल एक दिन नहीं बल्कि जीवन के प्रत्येक दिन वह आदर देंगे जिसके वे सच्चे अधिकारी हैं। सभी पिताओं को फादर्स डे की हार्दिक शुभकामनाएं। उनका स्नेह, उनका आशीर्वाद और उनके संस्कार हम सभी के जीवन को सदैव आलोकित

अभी आप सुन रहे थे फिल्मी गीतों का संयोजित कार्यक्रम गीत गुंजन। मीडियम वेव 444.4 मीटर यानी 675 किलोहर्ट्ज़ और प्रसार भारती की न्यूज ऑन AIR ऐप पर ये आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है बुंदेली लोकगीतों का कार्यक्रम लोक रंग। आज हमारे कलाकार हैं कैलाश कुमार यादव। आइए इनसे सुनते हैं ये लोक शैलीबद्ध चौकड़िया लोकगीत।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम लोकरंग, बुंदेली लोकगीतों का कार्यक्रम। आज हमारे कलाकार हैं कैलाश कुमार यादव। इनके साथ ढोलक पर संगत कर रहे हैं गोविंद, बेंजो पर लखनलाल वंशकार और हारमोनियम पर हैं सतीश कुमार पांडे। आइए इनसे सुनते हैं कहरवा लोकगीत।

0: अब कैंसर इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं,
1: क्योंकि अब ग्वालियर के कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में पेट सीटी स्कैन, लीनियर एक्सेलरेटर जैसे एडवांस मशीन उपलब्ध है। कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, कैंसर हिल्स, मंदिर की माता।
2: जानते हैं, कुवैत जैसे देश की जीडीपी से करीब 3 गुना पैसा तो हमने सिर्फ अपने देश के छोटे उद्यमियों को दिया है, वो भी गारंटी फ्री 40 लाख करोड़ से भी अधिक के मुद्रा लोन से।
3: करोड़ों छोटे उद्यमियों को मुद्रा योजना से लोन मिला, उन्हें आज महसूस होता है कि डेमोक्रेसी कैन डिलीवर।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
0: अब कैंसर इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं,
1: क्योंकि अब ग्वालियर के कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में पेट सीटी स्कैन, लीनियर एक्सेलरेटर जैसे एडवांस मशीन उपलब्ध है। कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, कैंसर हिल्स, मंदिर की माता।
4: लोकरंग कार्यक्रम में अब लीजिए सुनिए कैलाश कुमार यादव की आवाज में ये लेद लोकगीत।

0: लोकरंग कार्यक्रम में अब लीजिए सुनिए गारी कैलाश कुमार यादव की आवाज में।
1: काय खा विधाता ने

ढोला लोकगीत के साथ ही बुंदेली लोकगीतों का कार्यक्रम लोकरंग अब समाप्त हुआ। मीडियम वेव पर ये आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है श्रोताओं के पत्रों और ईमेल पर आधारित फिल्मी गीतों का संयोजित कार्यक्रम जब आप गुनगुना उठे।

माँ भारती रेडियो श्रोता संघ ग्राम पोस्ट अकटोहा तहसील लवकुश नगर जिला छतरपुर मध्य प्रदेश से सुरेश कुमार साहू लिखते हैं। एक छोटे से गांव में दीना नाम की एक महिला रहती थी। वह अपने बेटे राजू के साथ उसी गांव में रहती थी। रीना के पति की एक हादसे में मृत्यु हो चुकी थी और अब राजू ही उसकी दुनिया थी। रीना अपना घर चलाने के लिए सिलाई का काम करती थी और वह दिन रात मेहनत करके राजू को पढ़ाती थी। रीना की इच्छा थी कि राजू पढ़ लिख कर बहुत बड़ा आदमी बने और जीवन में सफल हो। एक दिन राजू ने अपनी माँ से स्कूल में नए जूते पहनकर जाने की इच्छा जताई। रीना जानती थी कि उसके पास ज्यादा पैसे नहीं हैं, लेकिन फिर भी उसने अपने गहने गिरवी रखकर राजू के लिए नए जूते खरीद दिए। जब राजू ने जूते को देखा तो वह बहुत खुश हुआ और अपनी माँ से बोला, माँ ये जूते तो बहुत महंगे लग रहे हैं, आपने इन्हें कैसे खरीदा? रीना ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा माँ के लिए तेरी खुशी ही सबसे बड़ी दौलत है। यह सुनकर राजू की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपनी माँ के हाथ पकड़ लिए और कहा, माँ मैं बड़ा होकर आपको हर खुशी दूंगा। समय बीतता गया। राजू ने बहुत मेहनत से पढ़ाई की और एक बहुत बड़ा अफसर बन गया। अब रीना को अपने बेटे पर गर्व था। एक दिन राजू ने माँ से कहा, माँ अब तुम्हें काम करने की जरूरत नहीं है, अब मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। रीना ने बड़े प्यार से कहा, बेटा मैं तो तब से खुश हूँ जब तुमने पहली बार मेरी आंखों में खुशी देखी थी। राजू ने माँ के पैर छुए और कहा, माँ आपने मेरे लिए जो त्याग किया है उसका कर्ज मैं कभी नहीं चुका सकता। इसके साथ याद आ जाता है ये गीत।

ग्राम ममना सरीला जिला हमीरपुर बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से रामशरण विश्वकर्मा और साहिल विश्वकर्मा लिखते हैं, बुढ़ापा वह दरवाजा है जहां से हर इंसान अकेले गुजरता है और अंदर सिर्फ सन्नाटा रहता है। कहते हैं मौत अचानक आती है, नहीं, मौत धीरे धीरे आती है। पहले रिश्तों से दूर करती है, फिर आवाजों से, फिर यादों से, और एक दिन इंसान अपने ही घर में अनजान बन जाता है। सबसे खतरनाक क्षण वह नहीं जब दिल धड़कना बंद हो, सबसे भयानक वह है जब कमरा भरा हो फिर भी आवाज सिर्फ घड़ी की टिक टिक की आए। बाहर लोग कहते हैं दादाजी आराम कर रहे होंगे, अंदर दिल चीख रहा होता है, कोई मुझे याद भी करता है या नहीं। बुढ़ापे में शरीर नहीं टूटता, उम्मीदें टूटती हैं, और उम्मीद टूट जाए तो इंसान सांस लेता हुआ भी मर चुका होता है। आज जो बुजुर्ग आपके घर में है यही कल आपके भविष्य का आईना है। उन्हें अनदेखा मत कीजिए, वरना कल आपकी भी आवाज कोई नहीं सुनेगा। अकेलापन मौत नहीं देता, अकेलापन पहले इंसान की आत्मा मारता है और शरीर बाद में गिरता है। जब भी मैं इस विषय पर सोचता हूँ तो अनायास ही मेरे होंठों से निकल पड़ता है ये गीत।

यवतमाल विदर्भ महाराष्ट्र से संतोष खडसे और विनोद खडसे लिखते हैं, स्त्री सहारा चाहती है इसलिए नहीं कि वो चल नहीं सकती, स्त्री तोहफे चाहती है इसलिए नहीं कि वो कमाकर खरीद नहीं सकती, स्त्री भारी कामों में मदद चाहती है इसलिए नहीं कि वो उन्हें करने की क्षमता नहीं रखती, स्त्री तुम्हारी आंखों में प्रेम चाहती है इसलिए नहीं कि प्रेम में देखने वाली आंखों की कमी रखती है, बल्कि इसलिए कि वो तुमसे प्यार करती है और प्यार तो बस परवाह चाहता है। यही भाव जब मेरे मन में उमड़ते हैं तो मैं गुनगुना उठता हूँ ये गीत।

ग्राम लोहेड़ी महुबा उत्तर प्रदेश से जयपाल यादव, इंद्रपाल यादव, अरविंद, राघवेंद्र, रिया, दिव्यांशी, रोनिका एवं रागिनी यादव लिखते हैं, जिंदगी हमेशा वैसी ही नहीं होती जैसी हम उसे देखना चाहते हैं, कि प्लान बनाते हैं, सपने सजाते हैं, हर चीज को अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं, लेकिन फिर अचानक कुछ ऐसा होता है जो सब बदल देता है। वो रास्ता जिस पर हम चल रहे होते हैं अचानक

खत्म सा लगने लगता है और हम सोचते हैं क्यों मेरे साथ ही ऐसा हो रहा है। लेकिन सच ये है कि जिंदगी हमारे हिसाब से नहीं, हमारी जरूरत के हिसाब से चलती है। कभी वक्त हमें रोक देता है ताकि हम गलत रास्ते से बच जाएं, कभी हालात हमें तोड़ते हैं ताकि हम पहले से ज्यादा मजबूत बन सकें, और जो कभी खो देते हैं वो हमें कुछ बेहतर बनाने के लिए तैयार कर रहा होता है। हमें लग सकता है कि सब कुछ हमारे खिलाफ हो रहा है। याद रखना, हर देरी, हर दर्द, हर ठोकर हमें ले जाने की तैयारी है जहां हम सच में डिजर्व करते हैं। इसीलिए खुद पर भरोसा रखो, वक्त पर भरोसा रखो, क्योंकि जो आज समझ नहीं आ रहा वो कल हमारी सबसे बड़ी सीख बनेगी। जिंदगी हमारी चाहत से नहीं, हमारी कहानी को बेहतर बनाने के लिए चलती है। आज जब

से ज्यादा मजबूत बन सके, और जो कभी खो देते हैं वो हमें कुछ बेहतर बनाने के लिए तैयार कर रहा होता है। हमें लग सकता है कि सब कुछ हमारे खिलाफ हो रहा है। याद रखना, हर देरी, हर दर्द, हर ठोकर हमें ले जाने की तैयारी है जहां हम सच में डिजर्व करते हैं। इसीलिए खुद पर भरोसा रखो, वक्त पर भरोसा रखो, क्योंकि जो आज समझ नहीं आ रहा वो कल हमारी सबसे बड़ी सीख बनेगी। जिंदगी हमारी चाहत से नहीं, हमारी कहानी को बेहतर बनाने के लिए चलती है। आज जब भी अतीत की यादों में जाकर देखता हूँ, जिंदगी का फलसफा नजर आने लगता है, तभी होंठों पर चला आता है ये गीत।

ग्राम खकल, तहसील कोंच, जिला जालौन, उत्तर प्रदेश से दीपक सिंह गुर्जर लिखते हैं, लोगों का मानना है कि कर्म करने से किस्मत बनती है, लेकिन मेरा तो मानना है कि किस्मत से ही सब कुछ मिलता है, क्योंकि एक ही सांचे में ढली ईंटें एक मंदिर के चौखट में लगकर मंदिर की शोभा बढ़ाती हैं और पूजनीय बन जाती हैं, तथा दूसरी ईंट शौचालय के टैंक में लगकर नारकीय जिंदगी जीती हैं, तथा एक ईंट जो रास्ते में पड़ा होता है उसकी तो हालत और ज्यादा बदतर होती है, जैसे कि इस गीत में।

मेरी यादों में से एक को साझा कर रहे हैं। बात 16 फरवरी 1993 की है, जब मैं युववाणी कार्यक्रम के तहत प्रसारित होने वाले कार्यक्रम रेडियो मित्र की रिकॉर्डिंग के लिए आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र गया था। रिकॉर्डिंग के निर्धारित समय से पूर्व ही मैं केंद्र में पहुंच गया। दुर्भाग्यवश उस दिन रिकॉर्डिंग में सहयोग करने वाले कर्मचारी पेन डाउन स्ट्राइक पर थे। जब मैंने तत्कालीन कार्यक्रम अधिकारी श्री सुनील केशव देवधर जी से इस बाबत संपर्क किया और उन्हें बताया कि आज रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई, तो उन्होंने मुझे एश्योर करवाया कि आप 18 फरवरी को कार्यक्रम प्रसारण की तिथि पर आ जाएं। यदि उस दिन हड़ताल जारी रहती है तो स्टूडियो से ही आपका कार्यक्रम लाइव प्रसारित करवाने की व्यवस्था कर दी जाएगी। 18 फरवरी को जब मैं आकाशवाणी केंद्र पहुंचा, तो कमलेश मिश्रा जी और एक अन्य महिला कंपियर ने कार्यक्रम प्रसारण से 45 मिनट पूर्व कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग करने के लिए अपनी सहमति दी। कार्यक्रम को सुचारू रूप से संपन्न करवाने के लिए मृदुभाषी और आकाशवाणी छतरपुर के सुस्पष्ट आवाज के लिए मशहूर प्रसारक सुनील केशव देवधर जी की अहम भूमिका रही। और जब वापसी आते समय मैंने पॉकेट रेडियो पर अपना साक्षात्कार सुना, तो मेरा मन मयूर नाच उठा और होठों पर ये गीत आ गया।

भटीपुरा महोबा उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता लिखते हैं, आज आपसे आकाशवाणी छतरपुर की अपनी सुनहरी

महोबा मिर्तला उत्तर प्रदेश से नरसिंह राजपूत लिखते हैं, मित्रों जून का महीना अपने साथ एक अलग ही एहसास लेकर आता है। तपती धूप, लंबी दोपहरें और शाम ढलते ही चलने वाली ठंडी हवाएं मन में अनेक भावनाओं को जन्म देती हैं। यह मौसम केवल गर्मी का प्रतीक नहीं होता, बल्कि इसमें प्रेम, अपनापन, प्रतीक्षा और मिलन की मधुर अनुभूतियां भी छिपी होती हैं। जब प्रकृति अपने अनोखे रंग बिखेरती है, तब मन भी किसी प्रिय की यादों में खो जाता है। दूर बैठे किसी अपने का ख्याल दिल को बार बार छूता है। ऐसा लगता है मानो हर हवा का झोंका कोई संदेश लेकर आया हो और हर शाम किसी विशेष मुलाकात की उम्मीद जगा रही हो। जून की तपिश के बीच भी रिश्तों की मिठास मन को ठंडक प्रदान करती है। यह महीना जीवन के उन पलों की याद दिलाता है जब किसी अपने का साथ सबसे अनमोल लगता है। कभी बचपन की छुट्टियों की स्मृतियां, तो कभी मित्रों और प्रियजनों के साथ बिताए गए सुनहरे क्षण मन के आंगन में दस्तक देते हैं। प्रकृति और भावनाओं का यह सुंदर संगम मन की कल्पनाओं के संसार में ले जाता है, जहां प्रेम, स्नेह और आत्मीयता का मधुर संगीत गूंजता रहता है।

जून का महीना केवल कैलेंडर का हिस्सा नहीं, बल्कि भावनाओं का एक ऐसा अध्याय है जो हर संवेदनशील हृदय को किसी न किसी रूप में स्पर्श करता है। ऐसे ही एक दिन मैं इसी जून के महीने में शीशम के पेड़ के नीचे बैठा इन विचारों को सोच रहा था, तो बस अनायास ही होंठों से निकल पड़ा ये गीत।

0: चले जाए।
1: अभी आप सुन रहे थे श्रोताओं के पत्रों और ईमेल पर आधारित फिल्मी गीतों का संयोजित कार्यक्रम जब आप गुनगुना उठे। मीडियम वेव 444.4 मीटर यानी 675 किलोहर्ट्ज और प्रसार भारती की न्यूज ऑन AIR ऐप पर यह आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। जिले की चिट्ठी अब हम आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे, कृपया प्रतीक्षा करें।

0: सिवनी जिले की चिट्ठी। आलेख है फिरोज खान का, वाचन स्वर नवनीत चौबे के।
1: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है सिवनी जिले की चिट्ठी। आलेख फिरोज खान, वाचन स्वर नवनीत चौबे। सिवनी जिले में मानसून के आगमन का इंतजार करते हुए किसान खरीफ फसलों की तैयारी में लग गए हैं। पिछली रबी फसल में अच्छी पैदावार मिलने से किसानों में उत्साह है। पिछले वर्ष जिले में 4 लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में खरीफ फसलों की बोवनी हुई थी। इस बार खेती का रकबा और बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। किसानों को नई तकनीकों की जानकारी देने के लिए जिले में कृषि रथ रवाना किया गया है। यह रथ सभी विकास खंडों की ग्राम पंचायतों का भ्रमण करेगा। कृषि वैज्ञानिक और विभागीय अधिकारी किसानों को उन्नत खेती, जैविक कृषि और सरकारी योजनाओं की जानकारी देंगे। साथ ही फसल विविधीकरण और मृदा स्वास्थ्य पर भी मार्गदर्शन दिया जाएगा। गंगा दशहरा के अवसर पर जिले में जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। मुख्य आयोजन लखनवाड़ा के वैन गंगा घाट पर हुआ। जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों और ग्रामीणों ने श्रमदान कर स्वच्छता अभियान चलाया। खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा आयोजित ग्रीष्मकालीन खेल प्रशिक्षण शिविर आरोह 2026 का समापन उत्साह के साथ हुआ। जिले भर के 2500 से अधिक खिलाड़ियों ने विभिन्न खेलों का प्रशिक्षण प्राप्त किया। इस दौरान नशा मुक्ति का संकल्प भी दिलाया गया। इसी क्रम में कृषि विज्ञान केंद्र सिवनी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रेडियो कार्यक्रम मन की बात का सामूहिक श्रवण किया गया। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों, किसानों और नागरिकों ने भाग लिया। प्रधानमंत्री ने जल संरक्षण, स्वच्छता, पर्यावरण और युवाओं की उपलब्धियों पर अपने विचार साझा किए। फिट इंडिया अभियान के तहत विश्व साइकिल दिवस पर सिवनी में संडे ऑन साइकिल रैली निकाली गई। रैली का उद्देश्य लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना और पर्यावरण संरक्षण का संदेश देना था। प्रतिभागियों ने नियमित साइकिल चलाने का संकल्प लिया। खेल जगत से एक अच्छी खबर आई है। एशिया कप में भारतीय अंडर 18 महिला हॉकी टीम को कांस्य पदक दिलाने वाली सिवनी की खिलाड़ी नौसी ननास का सम्मान किया गया। उन्होंने टूर्नामेंट में सर्वाधिक 12 गोल किए थे। कलेक्टर ने उन्हें सम्मानित करते हुए 50,000 रूपये की प्रोत्साहन राशि प्रदान की। जिले में पर्यावरण संरक्षण को लेकर भी जागरूकता बढ़ रही है। दल सागर तालाब में आयोजित श्रमदान अभियान में जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों और नागरिकों ने मिलकर सफाई की। कार्यक्रम के दौरान जल संरक्षण और हरित सिवनी बनाने का संकल्प लिया गया। इस बीच प्रदेश में समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी को लेकर जन परामर्श प्रक्रिया शुरू हो गई है। सिवनी के शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में आयोजित बैठक में नागरिकों से सुझाव लिए गए। जन सुनवाई कार्यक्रम के माध्यम से जिले के लोगों की समस्याओं का निराकरण भी लगातार किया जा रहा है। मई माह के पहले सप्ताह से अब तक करीब 800 आवेदनों पर सुनवाई की गई है। भूमि विवाद, आवास, पेयजल और आर्थिक सहायता जैसे मामलों पर आवेदन प्रस्तुत हुए। कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को शीघ्र कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। जिले में सड़क दुर्घटनाओं की घटनाएं चिंता का विषय बन गई है। मई माह के पहले सप्ताह से अब तक 12 सड़क दुर्घटनाओं में 17 लोगों की जान गई, वहीं 22 लोग घायल हुए हैं। इसके अलावा डूबने और आग की घटनाओं में भी 2 लोगों की मृत्यु हुई। सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों में भी सिवनी लगातार आगे बढ़ रहा है। साहित्य प्रेमियों को जोड़ने के लिए जिले में नियमित रूप से काव्य गोष्ठियां और विचार मंचों का आयोजन किया जाता है। इस कड़ी में एक कवि सम्मेलन और मुशायरा आयोजित किया गया। खेलों की बढ़ती लोकप्रियता के बीच जिले में क्रिकेट प्रतियोगिताओं का आयोजन भी जारी है। धनोरा ग्राम में आयोजित डीपीएल क्रिकेट प्रतियोगिता का फाइनल मुकाबला रोमांचक रहा। महिला की टीम ने लखनादौन को 3 विकेट से हराकर खिताब अपने नाम किया। 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर कल सिवनी के फुटबॉल स्टेडियम में जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इस वर्ष योग दिवस की थीम स्वस्थ आयु के लिए योग रखी गई है। कलेक्टर नेहा मीना के निर्देश पर कार्यक्रम की तैयारियां पूरी कर ली गई है। सिवनी विकास खंड के केकड़वानी आंगनवाड़ी केंद्र में कार्यकर्ता कौशल्या सरोआम और सहायिका लीलाबाई यादव ने अपनी मेहनत और समर्पण से पोषण वाटिका विकसित कर एक मिसाल पेश की है। जून 2024 से शुरू की गई इस वाटिका में आम, पपीता, केला, सहजन, टमाटर, पालक और अन्य फल सब्जियां उगाई जा रही है। यहां तैयार होने वाले फल बच्चों और उनके परिवारों को वितरित किए जाते हैं, जबकि सब्जियों का उपयोग आंगनबाड़ी के पोषण आहार में किया जाता है। जिले में मुख्यमंत्री दिव्यांगजन विवाह प्रोत्साहन योजना के तहत सिवनी जिले के रामगोपाल कहार को 2 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि का स्वीकृति पत्र प्रदान किया गया। रामगोपाल ने बताया कि यह आर्थिक सहायता उनके वैवाहिक जीवन की नई शुरुआत को मजबूती देगी। सिवनी जिले की चिट्ठी।

0: अभी आप सुन रहे थे शिवनी जिले की चिट्ठी। आलेख था फिरोज खान का, वाचन स्वर थे नवनीत चौबे के। ये आकाशवाणी भोपाल है।
1: मीडियम वेब पर ये आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। प्रस्तुत है आकाशवाणी एट 90 के अंतर्गत रसावतरण। इसमें सुनिए कवि गोष्ठी। प्रतिभागी कवि हैं सुरेश श्रीवास्तव, मुकेश कुमार पांडे, नीतेश पटेल, विवेक जैन और जसवेंद्र सिंह बुंदेला।
2: आकाशवाणी छतरपुर बुंदेलखंड की स्थान पहचान है। मैं हृदय से आभारी हूँ कि विगत 40 वर्षों से मुझे काव्य पाठ का अवसर मिल रहा है। आकाशवाणी बुंदेलखंड क्षेत्र के कलाकारों को अवसर देकर कला को बढ़ावा दे रहा है। जिन कलाकारों को एक समय कोई नहीं पहचानता था, आकाशवाणी से अवसर पाने के बाद आज उन्हें देश पहचान रहा है। मैं आकाशवाणी छतरपुर के 50 वर्ष होने पर आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं पन्ना से सुरेश श्रीवास्तव सौरभ आपका स्वागत करता हूं। एक तरफ राष्ट्रीय प्रसारण की गौरवशाली 9 दशक का महाउत्सव, तो दूसरी तरफ हमारी बुंदेली संस्कृति के संवाहक आकाशवाणी छतरपुर के स्वर्ण जयंती का उत्सव, यह महज साल नहीं करोड़ों दिलों के विश्वास और जुड़ाव का एक समर स्वर्णिम अध्याय है। बुंदेलखंड की शान आकाशवाणी छतरपुर की इस ऐतिहासिक स्वर्ण जयंती के पावन अवसर पर संस्था के कर्मठ कर्मचारियों, कलाकारों, करोड़ों श्रोताओं का को बधाई। प्रस्तुत है आकाशवाणी छतरपुर द्वारा आयोजित कवि गोष्ठी। आज के हमारे प्रतिभागी कवि हैं श्री मुकेश कुमार पांडे जी, श्री नितेश पटेल जी, श्री विवेक जैन जी, श्री जसवंत सिंह बुंदेला जी और मैं सुरेश श्रीवास्तव सौरभ। तो आइए चलते हैं, आज की कवि गोष्ठी प्रारंभ करते हैं। और मैं सर्वप्रथम आमंत्रित करता हूं श्री जसवंत सिंह बुंदेला जी को का पाठित। आपका स्वागत है।
3: बहुत बहुत धन्यवाद दादा। माँ शारदा को नमन करता हूँ और प्रसार भारती के समस्त श्रोताओं को नमन करता हूँ। मैं सीधे सीधे आपसे जुड़ने का प्रयास करता हूँ।
2: स्वागत
3: पंक्तियों से। ना चैन ना सुकून है कम

0: जाने के वास्ते,
1: बढ़िया बढ़िया बढ़िया,
0: हम सब यहाँ पे आए हैं जाने के वास्ते।
1: आप सभी श्रोताओं के बीच में एक गीत रखना चाहता हूँ। हम लोग हर वर्ष रावण का दहन करते हैं दशहरे पर, दशहरे मैदान पर जाकर, लेकिन हम ये अपने आप में सोचना ये भूल जाते हैं कि क्या हम सच में रावण का दहन करने योग्य हैं अथवा नहीं। एक आत्मविवेचना का गीत है, खुद से किया गया प्रश्न है, वो प्रश्न के माध्यम से आप सभी जुड़िए। मैं गीत रखता हूँ,
2: स्वागत है भैया।
0: करूँ

0: रावण
1: बढ़िया बढ़िया बढ़िया बढ़िया
2: क्या बात
0: करूं कैसे रावण दहन करूं कैसे रावण दहन। मैं बंद रखता हूं, सुनेगा क्या। अपनों को मैंने सदा अपना

0: और इस गीत का आखिरी बंद, मेरा मानना है कि राम सा चित्त राम सा चरित्र और राम सा दिल रहम चाहिए, राम सा चित्त राम सा चरित्र और राम सा दिल रहम चाहिए, और यदि रावण का अंत करना है तो राम स्वयं चाहिए।
1: वाह वाह,
0: तब मैं बन पड़ता हूं।

0: बहुत शान,
1: बहुत आभार, बहुत आभार।
2: नमस्कार, मैं नीतीश पटेल जिला दमोह के एक छोटे से ग्राम कनारी का रहने वाला हूं। आकाशवाणी हमारे लिए केवल एक संचार का माध्यम नहीं अपितु एक आत्मीय जुड़ाव का माध्यम है। ग्रामीण परिवेश में रेडियो या आकाशवाणी के माध्यम से लोगों की दिनचर्या शुरू होती है और उसको दिन भर किस तरीके से जीते हैं वो आकाशवाणी एक आत्मीय भाव लाती है। पुराने समय में आकाशवाणी जब टीवी उतनी प्रचलित नहीं थी, उतनी लोकप्रिय नहीं थी, उतनी आसानी से उपलब्धता नहीं थी, तब आकाशवाणी थी जो पूरे ग्रामीण परिवेश को शहरों से जोड़ के रखती थी। तो वो एक तरीके से धुरी का कार्य भी आकाशवाणी ने किया है और आकाशवाणी को मैं बचपन से देखते आ रहा हूं कि यह आकाशवाणी ग्रामीण और शहरी जीवन को जोड़ने के एक पुल के रूप में भी कार्य किया है। ग्रामीण लोगों की दिनचर्या कहीं ना कहीं जब टेलीविजन

0: टेलीविजन नहीं था तो इससे ही शुरू होती थी और गाने सुनना, न्यूज सुनना, मैच की कमेंट्री सुनना कहीं ना कहीं आज भी रोमांचित करता है। समय के साथ आकाशवाणी ने भी अपना स्वरूप बदला, डिजिटलाइजेशन हुआ और आज आकाशवाणी को आप इंटरनेट के माध्यम से भी, वेबसाइट के माध्यम से भी सुन पाते हैं। रेडियो भी अभी प्रचलित है और आकाशवाणी ने निसंदेह लोगों को सपनों की उड़ाने दी, उनको पर दिए, सोचने के लिए आयाम दिया। इसके लिए आकाशवाणी का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।
1: अभी आपने सुना जसवंत सिंह बुंदेला जी को, जिन्होंने रावण के माध्यम से देश की विभिन्न परिस्थितियों को उकेरते हुए बहुत से प्रश्न चिन्ह छोड़कर गए। बहुत ही गंभीर रचना के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आइए कवि गोष्ठी के क्रम को मैं आगे और बढ़ाता हूँ। और कविता के लेखन में कई शैलियाँ हैं, जैसे छंदबद्ध है, छंदमुक्तक है, सभी की अपनी एक विशेषता है, अपनी शैली है। ये आज हमारी कवि गोष्ठी में विभिन्न विधाओं से जुड़े हुए कवि यहाँ आए हैं। ये हमारा सौभाग्य है कि ऐसी गोष्ठी का संचालन करने का सौभाग्य मुझे मिला हुआ है। अब आइए चलते हैं, जो लेखक भी हैं और प्लस कवि भी हैं। अस्तुकांत कविता में उनकी अपनी कहने की एक शैली है। मैं आमंत्रित करता हूं बड़े आदर के साथ, बड़े सम्मान के साथ श्री विवेक जैन जी को। आपका पाठ सादर आमंत्रित है।
2: मैं आकाशवाणी के समस्त श्रोताओं को सादर प्रणाम करता हूं और मुझे लगता है कि संघर्ष के जो दिन होते हैं बड़े सुंदर दिन होते हैं, लेकिन जब वो गुजर जाते हैं तभी हमें पता चलता है कि कितने खूबसूरत वो दिन।
1: जी जी जी।
2: तो आज से 10 साल पहले जब मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा था,
1: हाँ,
2: तब के दिनों के बारे में, तुम्हारे साथ चलती सड़क, मेट्रो का डब्बा, मंदिर के चबूतरे, कुतुब मीनार और ये चार दीवारियां, सब कुछ घर हो जाते हैं। तुम्हारे साथ चलती सड़क, मेट्रो का डब्बा, मंदिर के चबूतरे, कुतुब मीनार, ये चार दीवारियां, सब कुछ घर हो जाते हैं। मैं तुम्हारे साथ अनजान सड़कों पर चल सकता हूँ, किसी चार दीवारी में महीनों बंद रह सकता हूँ, हंस सकता हूँ, रो सकता हूँ, गा सकता हूँ। तुम्हारे साथ मैं हंस सकता हूँ, रो सकता हूँ, गा सकता हूँ। तुम्हारे साथ मैं हो सकता हूँ। मैं नहीं जानता मेरी तुम क्या हो, मैं नहीं जानता कब तक हो, मैं बस इतना जानता हूँ कि जब तक हो मेरे हो, मेरा सब कुछ हो।
3: क्या बात,
2: तुम मेरा सब कुछ हो। ये नहीं कह सकता कि साथ हम क्या होंगे, क्या इतना लेकिन इतना कह सकता हूँ कि तुम्हारे साथ मैं बहुत अलग होता हूँ, अपने वजूद का सबसे सुंदर हिस्सा होता हूँ। चूंकि मैं वही बोल रहा था कि संघर्ष के दिनों के बारे में है, तो यूपीएससी की तैयारियां, एक दो स्टेप चढ़ना फिर बैक टू जीरो से स्टार्ट करना, यूपीएससी की तैयारियां, एक दो स्टेप चढ़ना फिर बैक जीरो से स्टार्ट करना, लड़ना, उम्मीद में बढ़ना, हारना, फिर कोशिशों की सीढ़ियां चढ़ना, ये सब भी खूबसूरत लगता है। कहते हैं जिसके साथ संघर्ष भी खूबसूरत लगे वो अपने होते हैं। जिनके साथ संघर्ष भी खूबसूरत लगे वे अपने होते हैं। तुम मेरे अपने हो और मेरे अपने, तुम भी मत छोड़ना सपने, हम साथ साथ करेंगे पूरा, जोड़कर हर सपना अधूरा।
3: वाह वाह,
2: हम साथ साथ करेंगे पूरा, जोड़कर हर सपना। दूसरी कविता उन्हीं संघर्ष के दिनों में घर और माँ की आती हुई याद के बारे में है, तो मैं शुरू करता हूँ।
1: जी,
3: स्वागत।
2: माँ से दूर रहने के बाद भी आप खाना बनाने वाली से कहते हैं माँ के जैसी दाल बनाने को, और धोबी को माँ को अच्छे लगे ऐसे कपड़े धुलने को, दोनों ही नहीं जानते माँ को, लेकिन हाँ भैया कहके मुस्कुरा देते हैं। माँ से दूर रहने के बाद भी आप बेइंतहा अकेलेपन, अजनबीपन में माँ की तरह ही प्रेमिका को लगा लेते हैं जोर से गले और बहा देते हैं कुछ आंसू, और वह क्या हुआ कहती रह जाती है। माथे को चूमने वाला कोई नहीं होता, ना सिर पे हाथ फेरने वाला, बस आप याद में मुस्कुरा देते हैं। माथे को चूमने वाला कोई नहीं होता, ना सिर पे हाथ फेरने वाला, बस आप याद में मुस्कुरा देते हैं। माँ से दूर रहने के बाद खुद से कहते हैं कि बेटा पढ़ लो, और खुद को ही कर देते हैं पढ़ाना शुरू। कभी कभी प्रेमिकाएं हो जाती हैं आपकी माँ, और प्रेमिका का माथा चूमते वक्त आप माँ की तरह ही मन ही मन देने लगते हैं ढेरों आशीष। माँ से दूर रहने के बाद दाल बनाते वक्त, जींस धोते वक्त, प्रेमिका का माथा चूमते वक्त, और खुद की उंगली खुद थाम सड़क पार करते वक्त आप खुद ही हो जाते हैं थोड़े थोड़े माँ। खुद की उंगली खुद थाम कर सड़क पार करते वक्त आप खुद ही हो जाते हैं थोड़े थोड़े माँ, और समझौतों के साथ खुद ही रखना शुरू कर देते हैं खुद का ख्याल। माँ से दूर रहने के बाद आप उसकी बीमारी में खुद को थोड़ा थोड़ा बीमार पाते हैं। माँ से दूर रहने के बाद आप माँ की बीमारी में खुद को थोड़ा थोड़ा बीमार पाते हैं, और प्रेमिका का भी माँ की तरह ही ख्याल रखने लगते हैं, जैसे प्रेमिका भी हो आपकी माँ।

0: मैं मुकेश पांडे चंदन सागर मध्य प्रदेश से। आकाशवाणी छतरपुर के 50 वर्ष सिर्फ वर्ष नहीं है, कई पीढ़ियों के साथ उनकी जिंदगी का एक हिस्सा है। मैं भी बचपन से आकाशवाणी को अपनी एक दिनचर्या की एक आदत सा बना के चला हूँ। सुबह बचपन में जब सुबह होती थी तो रेडियो पर लता मंगेशकर जी की आवाज में रामचरितमानस की चौपाई और दोहे से सुबह की शुरुआत होती थी। उसके बाद फिल्मी गीतें, बिना का गीतमाला, और फिर उसके बाद फरमाइशी कार्यक्रम, जयमाला कार्यक्रम जैसे, जिससे हम सैनिक भाइयों से जुड़े, और बहुत से ऐसे कार्यक्रम, रोजगार परक कार्यक्रम भी आए जिन्होंने कई युवाओं की जिंदगी बदली। तो आकाशवाणी हमारे जीवन में सिर्फ मनोरंजन का साधन नहीं, हमारे जीवन की एक दिनचर्या का हिस्सा रही है। और आकाशवाणी छतरपुर की अर्धशती जयंती पर मैं अपनी तरफ से हार्दिक आभार और बधाइयां प्रस्तुत करता हूं, और इसी तरह यह लोगों के जीवन में अपना उपयोग और उपयोगिता बढ़ाते रहे, इसी शुभकामनाओं के साथ नमस्कार, धन्यवाद।
1: आपने सुना अभी श्री विवेक जैन जी को, जिनकी कविताएं जीवन के इर्द गिर्द घूमते हुए वो पल एहसास करती है जो जिंदगी जीते समय व्यक्ति जीता है। कविता यही करती है। अब ये लिखने के ऊपर क्षमता रहती है कि हम उसको किस विधा में डालते हैं, अतुकांत कविता में, गीत में या गजल में। वो मानवीय संवेदनाएं ही कविताओं की जड़ होती है, जो संवेदनाओं को उन्हें उकेरा हमारे बीच में। बहुत सुंदर प्रस्तुति दी। आइए हम क्रम को और आगे बढ़ाते हैं। वरिष्ठ कवि हमारे बीच में हैं श्री मुकेश कुमार पांडे चंदन जी, जो गीत भी लिखते हैं, गजल भी लिखते हैं, अतुकांत भी लिखते हैं। मैं उन्हें यहाँ स्वतंत्र करता हूँ, अपनी सुविधा के अनुसार कुछ भी काव्य पाठ कर सकते हैं। मैं काव्यपाठित सादर आमंत्रित करता हूँ श्री मुकेश कुमार पांडे चंदन जी को।
0: बहुत बहुत सुरेश जी, आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा सादर प्रणाम। और जैसे कि विवेक जी ने संघर्षों की बात की है, तो उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं अपनी कविता प्रस्तुत करता हूँ, जिसका शीर्षक है जमाना चलता रहेगा। तुम चलो या ना चलो, जमाना चलता रहेगा। तुम चलो या ना चलो, जमाना चलता रहेगा। तुम बदलो या ना बदलो, जमाना बदलता रहेगा।
1: बढ़िया बढ़िया बढ़िया।
0: कदम दर कदम जमाने के साथ चलना होगा, कदम दर कदम जमाने के साथ चलना होगा। रुकना नहीं कभी, हर पल तुम्हें बस बढ़ना होगा। जब तक चलेगी घड़े की सुइयां, जब तक चलेंगी घड़ी की सुइयां, तब तक तुम्हें चलना होगा। धड़केगी जब तक दिल की धड़कन, तब तक तुम्हें धड़कना होगा। क्योंकि तुम चलो या ना चलो, जमाना चलता रहेगा। तुम बदलो या ना बदलो, जमाना बदलता रहेगा।
2: क्या बात है,
1: वाह, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। जमाना बदलता रहेगा।
0: उगते सूरज को सलाम करता है ये जमाना, उगते सूरज को सलाम करता है ये जमाना। तुम फैला दो प्रकाश, तुम्हें है बनके सूरज दिखाना। उगते सूरज को सलाम करता है ये जमाना, तुम फैला दो प्रकाश, तुम्हें है बनके सूरज दिखाना। हर दिन सुबह शाम तुम्हें पूरब से पश्चिम है जाना। जब तुम रुके दूध की मक्खी सा फेंक देगा जमाना। तुम संभलो या ना संभलो, जमाना संभलता रहेगा। तुम चलो या ना चलो, जमाना चलता रहेगा।
1: क्या बात,
0: इसके बाद अगली कविता जो है अजन्मी की पुकार। इस कविता की भूमिका इस प्रकार है कि एक कन्या भ्रूण जो अपने माँ के कोख में है, और उसे पता चलता है कि कन्या होने के कारण उसके माता पिता परिवार उसकी हत्या करने की योजना बना रहे हैं, तो उस कन्या पर क्या बीतती है। और इस बात का पता चलते ही वो अपने माँ से एक निवेदन करती है, उसे मैंने अपने शब्दों में परोया है। तो प्रस्तुत है कविता अजन्मी की पुकार। सुना है माँ तुम मुझे जीने के पहले मार रही हो, सुना है माँ तुम मुझे जीने के पहले ही मार रही हो। कसूर क्या मेरा लड़की होना, इसलिए नकार रही हो।
2: क्या बात,
1: भैया भैया,
2: बहुत सुंदर
1: बहुत सुंदर बहुत सुंदर।
0: सच कहती हूँ माँ, आने दो मुझे जीवन में एक बार। सच कहती हूँ माँ, आने दो मुझे जीवन में एक बार। न मांगूंगी खेल खिलौने, न मांगूंगी तुमसे प्यार। रूखी सूखी खाकर पड़ी रहूंगी मैं एक कोने में। हर बात तुम्हारी मानूंगी, ना रखूंगी अधिकार रोने में। ना करूंगी जिद तुमसे, जिद से पहले ही क्यों फटकार रही हो। कसूर क्या मेरा लड़की होना, इसीलिए नकार रही हो। माँ तुम भी तो थी लड़की, तो समझो मेरा दुख।
1: बढ़िया बढ़िया बढ़िया बढ़िया बढ़िया।
0: माँ तुम भी तो थी लड़की, तो समझो मेरा दुख। ना करना मुझे दुलार,

0: भी तुम्हें दूंगी सो, भैया से ना लड़ूंगी, ना छीनूंगी उसके खेल खिलौने, मेहनत मैं खूब करूंगी, पूरे करूंगी सपने सलोने। आखिर क्या मजबूरी है जो जीने के पहले ही मार रही हो माँ, आखिर क्या मजबूरी है जो जीने के पहले ही मार रही हो, कसूर क्या मेरा लड़की होना इसीलिए नकार रही हो। कहते हैं दुनिया वाले लड़का लड़की होते हैं समान, तो फिर क्यों नहीं देखने देते मुझे ये प्यारा जहान। आने तो एक बार माँ, आने तो एक बार मुझे माँ, फिर ना तुम पछताओगी, है मुझे विश्वास माँ तुम मुझे जरूर बुलाओगी। आने तो एक बार मुझे माँ, फिर ना तुम पछताओगी, है मुझे विश्वास माँ तुम मुझे जरूर बुलाओगी। क्या देख लूं मैं सपने जिसमें तुम मुझे दुलार रही हो, क्या देख लूं मैं सपने जिसमें तुम मुझे दुलार रही हो, देकर मुझको जन्म माँ तुम मेरा जीवन संवार रही हो।
1: मैं विवेक कुमार जैन, ग्राम हट्टा, जिला टीकमगढ़ से, आकाशवाणी के 50 वर्ष पूर्ण करने पर आपको और आकाशवाणी को और सभी श्रोताओं को हार्दिक शुभकामनाएं। मैं जब बचपन में था तो हमारे गांव में सिर्फ एक ही माध्यम था मनोरंजन का, वो था रेडियो, और वहां पे बहुत सारे इंटरव्यूज और बहुत सारे गाने, स्पेशली इंटरव्यूज ने काफी हमें मोटिवेट किया है कुछ जिंदगी में करने के लिए। जैसे एक बार एक आईआईटी के प्रोफेसर साहब का एक इंटरव्यू था जो मुझे अभी तक याद है, जिसमें उन्होंने बहुत सारी अच्छी बातें कही थी टू ग्रो योरसेल्फ, और उसने मुझे काफी मोटिवेट किया जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए। मैं आकाशवाणी का इसलिए शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि हमारी जिंदगी में एक अहम योगदान आकाशवाणी ने दिया है। थैंक यू।
2: अभी आपने सुना श्री मुकेश कुमार पांडे चंदन जी को, जो भ्रूण हत्या देश की बहुत बड़ी समस्या है, उस पर उन्होंने बहुत अच्छा सुंदर चिंतन किया। उस बच्ची के द्वारा माँ से जो वार्तालाप किया, सचमुच आंसू लाने वाले थे। आइए हम अब एक ऐसे कवि की तरफ चलते हैं जो कहानीकार हैं, जिनकी जो जब उनकी कहानियां हम पढ़ते हैं तो वो आंसू बहाते हैं, ऐसी कहानी वो लिखते हैं जो बहुत कुछ आंसू बहाने के लिए विवश करती है, मगर जब वो कवि के रूप में कविता चलाते हैं तो बहुत कुछ सोचने को भी विवश करवाते हैं। मैं ऐसे कलम के धनी श्री नितेश पटेल जी को कापाठे स्वादर आमंत्रित करता हूं, जो कहानीकार भी हैं और उतने ही चुनिंदा कवि भी हैं, तो मैं उनके कविपन को जगाते हुए संवेदनशील कविताओं के लिए उन्हें स्वादर आमंत्रित करता हूं। कापाठे स्वादर आमंत्रित है नितेश पटेल जी।
3: बहुत बहुत धन्यवाद सौरभ जी, आपका बहुत बहुत आभार, आकाशवाणी का बहुत बहुत आभार। हमारे पूर्व कवियों ने बहुत अलग अलग विषयों को रखा है, मैं भी एक अलग विषय को रखना चाहूंगा। जैसे कि हमारी दार्शनिक परंपरा है, हम सत्य की खोज करते रहते हैं, एक सत्य की तलाश करते रहते हैं। सत्य क्या है, यह प्रश्न हमारे विभिन्न दार्शनिकों ने, हमारे वैदिक धर्म में, ग्रंथों में इस चीज की तलाश की गई है। तो इसी चीज को मेरा मानना ऐसा है कि सत्य कोई एक नहीं होता है, कोई अटल सत्य नहीं है, जो समय काल परिस्थिति के अनुसार बदलता रहता है। तो इस पे आधारित शीर्षक से मेरी कविता है, सत्य आधा अधूरा सा।
4: स्वागत
3: है। सत्य की विजय होती है, सत्य की विजय होती है, या विजय ही सत्य को लिखता है। जो कटु पूर्ण व्यक्त है वो सत्य है, या जो निर्मल है और आधा अधूरा ही घुट जाता है। अपरिमित असत्य है सत्य की नींव, अतः झूठ बोल दो तो वो भी सत्य कहलाता है। अपरिमित असत्य है सत्य की नींव, या सीमित तथ्य सत्य का आधार। खुद को छूकर जो गुजरा है, या कहानीकार का कल्पित जहान है सत्य। सतत संघर्ष का पर्याय है, या न्याय का मुखौटा है सत्य। हमारा सत्य किसी बड़े अज्ञात का हिस्सा है, या निरपेक्ष सत्य है ही नहीं। सत्य हजारों लोगों को बांधने की कुंजी है, सत्य हजारों लोगों के बांधने की कुंजी है, और झूठों के द्वारा शासन करने का पाश। यह कविता थी जो मुझे सत्य के वैचारिक पक्ष से उपजी हुई कविता थी। मेरी कविता है निष्पक्षता। यदि आपको लगता है बड़ा निष्पक्ष सोचते हैं आप, तो इससे नुकसान भी बड़े होंगे। कठिनाई से होगी मित्रता, सहकर्मी और सामाजिक समूह भी नकारेंगे, क्योंकि निंदा रस से प्रगाढ़ता आती है इनमें। यूं मानो कि निष्पक्ष होना अलग थलग रहने के समानार्थी है। निष्पक्षता आपको बिन पैदी का लोटा, गैर सामाजिक, धर्म विरोध नवाजने के लिए तैयार रखेगा। लोग कतराएंगे आपसे बात करने में, संदेह जायज भी है, आपके पक्ष में कही गई बात भी आपके संदेह में होगी। हाँ, छोटे से समय को किसी विशेष प्राणी को आप भाभी जाएं, हमेशा हजम करना किसी के बस की बात नहीं। आपको कई बार खुद पर संदेह होगा, और यही परीक्षा होगी सच्चे निष्पक्षी की। कभी कभी गर्व हो सकता है, बात घमंड तक भी पहुंच जाए कि मैं निष्पक्ष आदमी हूं।

0: जो भी हो, इस आदमी को नींद तो अच्छी आती होगी क्योंकि किसी पक्ष में झूमने की पशुपेश और उसको ओढ़ने का तनाव कितना ही सुकून दे पाता होगा।
1: मैं कवि जसवेंद्र सिंह बुंदेला पन्ना से। मैं बचपन से मुझे याद है कि पैरामाउंट का एक रेडियो हुआ करता था, जब आकाशवाणी छतरपुर का प्रसार भारती का प्रसारण सुना करते थे, कवियों को सुनते थे, गीत सुनते थे। वहीं से कुछ सीखने की इच्छा हुई, कवियों को सुनकर लिखने की इच्छा हुई। और आज ये है कि मेरा सौभाग्य है कि मैं भी प्रसार भारती छतरपुर में मैंने अपनी प्रस्तुति दी है। तो ये 50 वर्ष पूर्ण होने के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रसार भारती छतरपुर को, बहुत बहुत बधाई।
0: अब मैं अपने इस कविता गोष्ठी के संचालक और ओजस्वी कवि आदरणीय सुरेश सौरभ जी को आमंत्रित करना चाहूंगा। आप हमारे बीच में हैं, इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ा रहे हैं। आमंत्रित करना चाहूंगा आदरणीय सुरेश सौरभ जी।
2: धन्यवाद भैया। आप सभी को पुनः आकाशवाणी के 50 वर्ष होने की ढेर सारी शुभकामनाएं। इसी विषय पे से मैं आज के अपने मुक्तक शुरू करता हूँ। बात ऐसे करता हूँ, 50 वर्षों का सफरनामा दिलों की धड़कनों में है। 50 वर्षों का सफरनामा दिलों की धड़कनों में है। यहाँ का गीत और संगीत हमारे अनथ सांसों में है। तपस्या 5 दशकों की यहाँ की माटी कहती है। तपस्या 5 दशकों की यहाँ की माटी कहती है। छतरपुर केंद्र की आवाज जन जन के तरंगों में है। छतरपुर केंद्र की आवाज जन जन के तरंगों में है। और इसी तेवर का एक मुक्तक और देता हूँ कि तरंगे ये प्रगति का नित नया पैगाम लिख जाए। तरंगे ये प्रगति का नित नया पैगाम लिख जाए। सफलता के गगन पर ये नया आयाम लिख जाए। मनाए स्वर्ण ही क्यों हम शताब्दी भी मनाएंगे। मनाए स्वर्ण ही क्यों हम शताब्दी भी मनाएंगे। छतरपुर केंद्र वाले विश्व में अपना नाम लिख जाएं। छतरपुर वाले विश्व में अपना नाम लिख जाएं। और एक किसी तेवर की और मुक्तक देना चाहता हूं कि सजे सुर ताल का आंगन सदा साहित्य मुस्काए। सजे सुर ताल का आंगन सदा साहित्य मुस्काए। सजे सुरताल का आंगन सदा साहित्य मुस्काए। छतरपुर केंद्र में गूंजे वाणी मन को हर्षाए। बधाई स्वर्ण जयंती की सभी को दिल की गहराइयों से। बधाई स्वर्ण जयंती की सभी को दिल की गहराइयों से। दुआ है ये हमारी यश का ये सूरज ढल न ढल पाए। दुआ है ये हमारी यश का सूरज न ढल पाए। परंपरा की खुशबू वो हवाओं में संजोए रखना। परंपराओं की खुशबू को हवाओं में सजोए रखना। बुंदेली लोक संस्कृति को दिलों में तुम जगाए रखना। 50 वर्षों का ये गौरव बढ़े 100 गुना आगे। अब अमर इस गूंज को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाए रखना। अब अमर इस गूंज को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाए रखना।
1: शानदार।
2: और अभी
1: क्या बात?
2: चंदन जी ने जहां बात छोड़ी थी कि बेटी माँ से बात कर रही है, इसी तेवर को मैं अपने तरीके से एक छंद के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि वसुदेव देवकी के वंशजों को क्या हुआ। वसुदेव देवकी के वंशजों को क्या हुआ। कंस जैसे कर्म पे विचार करने लगी। वसुदेव देवकी के वंशजों को क्या हुआ। कंस जैसे कर्म पे विचार करने लगी। दुनिया की श्रेष्ठ की तो कल्पना है बेटियों से, इस सत्य का प्रतिकार करने लगी। और बेटी और बेटे का भेदभाव ऐसा बढ़ा, गर्भपात जैसे उपचार करने लगी। बेटी और बेटे का भेदभाव ऐसा बढ़ा, गर्भपात जैसे उपचार करने लगी। बध का विरोध करने का काम जिनका था, वही बधिकों का सत्कार करने लगी। और आइए अपने ही तेवर का एक नया गीत आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। जब आकाशवाणी में नया ही गीत प्रस्तुत करना पड़ता है, परंतु इसका फ्लो नहीं है जैसा कि मैं मंचों में पढ़ता हूँ, जैसा आप लोग सुनते आ रहे हैं, फिर भी कोशिश करता हूँ कि वो तेवर देने की कोशिश करूँ। शीर्षक है पौरुष का तिलक। भारत

0: भार पे जो पौरुष का तिलक लगाता है, भारत माँ के भार पे जो पौरुष का तिलक लगाता है, इतिहासों के पन्नों पर वो अपनी अमरता लिख जाता है। भारत माँ के भार पे जो पौरुष का तिलक लगाता है, इतिहासों के पन्नों पर वो अपनी अमरता लिख जाता है। जो केवल सांस से जीने को इस जीवन का आधार नहीं मानते, जो शीश कटा देता है पर झुकने का व्याकरण नहीं जानता, जो केवल सांसें जीने को इस जीवन का आधार नहीं मानता, जो शीश कटा देता है पर झुकने का व्याकरण नहीं जानता, जिसकी हुंकारें सुनकर यमराज भी पीछे हट जाता, जिसके तेवर के आगे दुश्मन भी कब जाता, जिसकी हुंकारें सुनकर यमराज भी पीछे हट जाता, जिसके तेवर के आगे दुश्मन भी कब जाता, जो राष्ट्र यज्ञ की वेदी पर अपने लहू की आहुति दे आता है, जो राष्ट्र यज्ञ की वेदी पर अपने लहू की आहुति दे आता है, इतिहासों के पन्नों पर वो अपनी अमरता लिख जाता है, हिमगिर की बर्फीली चोटियों पर जो अंगारे बोता है, जिसकी सजग आंखों के कारण देश सोता है, माइनस डिग्री की सर्दी में भी जिसका खून उबलता है, जिसके केवल एक कदम से तूफान का रूप बदलता है, जो थल नभ और समंदर में भी दुश्मन का काल बन जाता है, इतिहासों के पन्नों पर वो अपनी अमरता लिख जाता है। और अगला बंद है इसका,
1: शानदार।
0: राष्ट्र सुरक्षा का ये पथ जिसके जीवन की साधना है, जिसके मस्तक पर लिखी हुई भारत माँ की आराधना है, जो माटी के कर्ज चुकाने को हंसकर सूली चढ़ जाता, जो महामानव के आगे तो जग को ईश्वर भी झुक जाता, जो मातृभूमि की वेदी पर हंसकर सर्वस्व लुटाता है, इतिहासों के पन्नों पर वो अपनी अमरता लिख जाता है। जो भारत के आंचल पर पलकर गद्दारी पर उतर रहे, जो पावन इस राष्ट्र ब्रज को बनकर दीमक कुतर रहे, उन राष्ट्रद्रोहियों की छाती पर जो बनकर ब्रज प्रहार करे, जो सीमा पार के गद्दारों का पल में पूर्ण संहार करे, जो राष्ट्र विरोधी ताकतों का हंसकर मस्तक काट गिराता है, इतिहासों के पन्नों पर वो अपनी अमरता लिख जाता है, जो पावन गंगा जमुना में पुरखों का सौर मिलाता है, जो कफन बांधकर माथे पर दुश्मन की लंका ढहाता है, जिसके बल से

0: यह जग मस्तक झुकाता है जो अपनी अमर शहादत से नया एक कल्प बना जाता है, जो विश्व पटल पर भारत का परचम सबसे ऊंचा तान आता है, जो विश्व पटल पर भारत का परचम सबसे ऊंचा तान आता है, इतिहासों के पन्नों पर वो अपनी अमरता लिख जाता है, इतिहासों के पन्नों पर वो अपनी अमरता लिख जाता है।
1: बहुत शानदार।
0: आइए कवि गोष्ठी के दूसरे और मैं सादर आमंत्रित करता हूँ बड़े प्यारे गीतकार भाई श्री जसवंत सिंह बुंदेला जी को।
2: एक बार पुनः आभार आदरणीय दादा। मैं थोड़ा सा अब श्रृंगार की तरफ रुझान करना चाहूंगा।
0: स्वागत है।
2: जब आप सच्चे प्रेम में होते हैं तो आप कैसा महसूस करते हैं, मैं चार पंक्तियां रखने का प्रयास करता हूं।
0: स्वागत।
2: उसकी

और जब आपको बहुत प्यारी सी लड़की मिल जाती है, आपके प्रेम में वो रहती है, और जब आप वो साथ नहीं छोड़ती है, तो वहां से चार पंक्तियां निकल के आती हैं। वो चार पंक्तियां मैं आप सभी के सामने रखने का प्रयास करता हूं।

यार लड़की वो खानदानी है। और जब ऐसी कोई खानदानी लड़की आपके जीवन में आ जाती है तो उसके लिए अपने आप माँ सरस्वती कुछ कृपा करती है, एक गीत उसके लिए लिखा गया है, वो गीत मैं आप सभी के सामने रखने का प्रयास करता हूँ। एक दो दिन पहले ये गीत हुआ है और सबसे पहले प्रसार भारती में ही श्रोताओं के समक्ष रख रहा हूँ। थोड़ी मासूम थोड़ी जिद्दी नक चढ़ी लड़की।

माँ वाले, थोड़ी पगली सी अनोखी सी फुलझड़ी लड़की, थोड़ी पगली सी अनोखी सी फुलझड़ी लड़की, फिर मेरे प्यार में कैसी है वो पड़ी लड़की, थोड़ी मासूम थोड़ी जिद्दी नक चढ़ी लड़की, है तो बच्चों

0: आला, फिर मेरे प्यार में कैसी है वो पड़ी लड़की।
1: बहुत आभार,
2: बहुत सुंदर, बहुत सुंदर।
3: और जब ये प्रसारण हो तो सामने खड़ी लड़की,
4: ये भाई जसवंत सिंह बुंदेला की यही विशेषता कि जब गंभीर विषय लेते हैं तो अति गंभीरता में चले जाते हैं, जब श्रृंगार में आते हैं तो उनकी, क्योंकि उनके मैंने बहुत से मुक्ता गीत सुने हैं, बहुत प्यारा पढ़ते हैं, बहुत बहुत
1: शुभकामनाएं,
4: ऐसी ही प्रगत करते रहो, हमारी यही शुभकामनाएं है। आइए कवि गोष्ठी के क्रम को थोड़ा पुनः और आगे बढ़ाते हैं, और मैं फिर अतुकांत कविता के माध्यम से जो अपनी बात कहते हैं, सटीक बात करते हैं, उन्हें पुनः आमंत्रित कर रहा हूँ, श्री विवेक जैन जी।
5: पुनः शुक्रिया दादा, श्रोताओं के लिए एक बार फिर से प्रणाम। मैं जब 10 साल का था तब एक बोर्डिंग स्कूल चला गया था, तो एक बच्चे में जो 10 साल की उम्र में घर से बाहर निकला हो, बड़े होते होते क्या क्या तब्दीलियां आती हैं और कैसे इमोशंस होते हैं, उस पर मैं अगली कविता कहना चाहूंगा। जी बिल्कुल, तो कविता इस तरह से है कि बाहर रहने के 18 साल बाद आप महसूस करते हैं कि आपके घर की दीवारों ने ही आपको पहचानने से कर दिया है इनका। बाहर रहने के 18 साल बाद आप महसूस करते हैं कि हर शहर में आपने बनाने की कोशिश की है एक नया घर, कुछ नए रिश्ते, और फिर सारा समेट यादों में आप पलायन कर जाते हैं दूसरे शहर वही दोहराने को। बाहर रहने के 18 साल बाद आप महसूस करते हैं कि कई अलग अलग लड़कियों में आपने देखी है अपनी माँ, और कई अलग अलग कमरों में आपने बनाने की कोशिश की है अपना घर। बाहर रहने के 18 साल बाद आप खुद से लड़ लेते हैं और खुद ही खुद को नोच लेते हैं अपने भाइयों की याद में। बाहर रहने के 18 साल बाद आपको पिता की डांट याद नहीं रहती और खुद को आईने के सामने रख डांट लेते हैं एक दो दफे, फिर प्रण लेते हैं कि ऐसी गलती आप फिर से नहीं दोहराएंगे। बाहर रहने के 18 साल बाद आप कई लड़कियों के संग बनाने के सोचते हैं अपना घर, बिल्कुल जैसा बचपन में आपने देखा था, लेकिन एक लेकिन रह ही जाता है। बाहर रहने के 18 साल बाद आप प्रण लेते हैं कि आपके बच्चे नहीं होंगे विस्थापित, और एक गहरी सांस ले आप घर की याद में टपरे की चाय संग फूंकते हैं एक सिगरेट, जैसे यादों में ही फूक जाएंगे इस तरह। इतने वर्ष बाद आप खुद ही के हो चुके होते हैं अपना घर, माँ और पिता अपने भी, प्रेमिका के भी, और प्रेमिका भी हो चुकी होती है थोड़ी थोड़ी माँ, लेकिन यादों में सालता रहता है वो घर, और वो दो जोड़ी आंखें माता की पिता की जो घर से जाते वक्त रास्ता तकती रहती हैं पुनः घर लौट के आने तक का। बाहर रहने के 18 साल बाद आप महसूस करते हैं कि घर की दीवारों ने आपको पहचानने से कहा।
2: क्या बात है, बहुत
5: शुक्रिया
4: आदरणीय श्री विवेक जैन जी। पुनः
5: तो अगली कविता मेरी मानव के सबसे शाश्वत इमोशन पर है, शाश्वत एहसास पर है, प्रेम पर। तुम्हारे साथ रहकर मैंने जाना कि प्रेम बस जिया जा सकता है, आंसू बस प्रेम धो सकता है, और दो लोगों के बीच कोई नहीं आ सकता सिवाय प्रेम के। मैंने जाना कि तुम्हारे होने का एहसास ही जीने के लिए काफी है, कि मैंने जो सूरज उगाए थे तुम्हारे चेहरे पर तो तुम्हें चूम कर, वो मेरे रहते ना रहते भी करते रहेंगे प्रदीप्त तुम्हें, तुम्हारे चेहरे को हर सुबह लालिमा लिए जागोगी तुम। मैंने जाना कि साथ रहकर ही नहीं प्रेम किया जा सकता, दूर रहकर भी हो सकता है प्रेम। तुम्हारे साथ रहकर मैंने जाना कि जितना भी मैं खुद को जान पाया हूँ वो तुम्हारे साथ रहकर ही जान पाया हूँ।
2: क्या बात,
4: क्या बात। आइए क्रम को और आगे बढ़ाते हैं, श्री मुकेश कुमार पांडे चंदन जी से सुनते हैं उनकी रचनाएं का पाठ, सादर आमंत्रित है।
6: धन्यवाद सुरेश जी। जैसा कि विवेक जी और बुंदेला जी ने प्रेम पर कविताएं पढ़ी, तो प्रेम में अभी संयोग रस चल रहा था, उसके बाद वियोग आता है, और ये हर प्रेम की एक नियति होती है, तो उस वियोग को मैं अपनी अगली नज्म में आगे बढ़ाता हूँ।
2: स्वागत।
6: तेरी यादों का अब ये मंजर हो गया है, तेरी यादों का अब ये मंजर हो गया है, हर कतरा अश्क का समंदर हो गया है।
2: मंजर हो गया, क्या बात है, बहुत सही।
6: भेजे थे जो तुमने फूल गुलाब के, भेजे थे जो तुमने फूल गुलाब के, वो सूखा हुआ

0: गुलाब अब खंजर हो गया है।
1: वाह क्या बात है।
0: भेजे थे तुमने जो फूल गुलाब के, वो सूखा हुआ गुलाब अब खंजर हो गया है। बह रही थी दिल में जो सदाएं, बह रही थी
1: दिल में जो
0: दिल में सदाएं, दिल की धड़कन में भी अब बवंडर हो गया है। चोट लगी थी जो सीने पर कभी, चोट लगी थी
1: जो
0: सीने पर कभी, वो जख्म बढ़ के सीने के अंदर
1: हो गया है। आहा
2: बढ़िया बढ़िया बढ़िया क्या बात है।
0: आखिरी पंक्तियां प्रस्तुत हैं।
1: स्वागत।
0: सूख गया दिल में बहता इश्क का दरिया, सूख गया दिल में बहता इश्क का दरिया, महक फैलने से पहले ही चंदन बंजर हो गया है। तेरी यादों का अब ये मंजर हो गया है। दूसरी कविता इसी वियोग में। हार गए सारी बाजी हर कसौटी पे कम निकले, हार गए सारी बाजी हर कसौटी पे कम निकले, अब आरजू है कि किसी तरह बस दम निकले, अब आरजू है कि किसी तरह बस दम निकले। हर तरह की आजमाइश हमने की हर तरकीब, हर तरह की आजमाइश हमने की तरकीब हर तरकीब, क्या पता था हमारी कोशिशें उन पर सितम निकले। जीने की आरजू नहीं अब खत्म हो गया जहान, जीने की आरजू नहीं अब खत्म हो गया जहान, खुश रहे वो जब कभी हमारा कफन निकले।
1: क्या बात।
0: जीने की आरजू नहीं अब खत्म हो गया जहां, खुश रहे वो जब कभी हमारा कफन निकले। हो गए तबाह अब गम क्या करें, हो गए तबाह
1: अब
0: गम क्या करें, मिले खुशियां उन्हें जब जब हमारा शर्म निकले।
1: क्या बात।
0: आखिरी पंक्तियां। महक बाकी रहेगी ताउम्र मेरी मोहब्बत की, महक बाकी रहेगी ताउम्र मेरी मोहब्बत की, चिता की राख को संभाल के रखना, क्या पता वो चंदन निकले। इसके बाद थोड़ा सा विषय परिवर्तित करते हुए, बुंदेलखंड क्षेत्र के लोग विंध्याचल की पहाड़ियों में पले बड़े होते हैं। आखिरी नज्म में विंध्याचल की राह ताकते जंगल, जो हिंदी के वरिष्ठ और महान कवि भवानी प्रसाद मिश्र की रचना से प्रेरित है। सतपुड़ा के जंगलों की तरह विंध्याचल के राह ताकते जंगल, विंध्याचल के राह ताकते जंगल, कभी हरे तो कभी धूल फांकते जंगल, चुपचाप सीधे खड़े सारे सागौन हैं, मानो तप करते हुए खड़े मौन हैं, ऊंची नीची घाटियां हैं अनेक, जीवन इसी तरह संदेशा देती नेक, कुछ सोते से तो कुछ जागते जंगल, विंध्याचल के राह ताकते जंगल, कुछ गहरी कुछ उथली कुछ ठहरी है घाटियां, कहीं लाल कहीं पीली कहीं काली तो रंग बदलती है माटियां, लहराए पलाश और झूमे तेंदु पत्ता, कहते अभी भी है प्रकृति की सत्ता, हर मौसम हर ऋतु में इनका अलग रंग है, मानो कुदरत को सजने सवरने की उमंग है, कुछ दिखाते तो कुछ ढांकते जंगल, कुछ दिखाते तो कुछ ढांकते जंगल, विंध्याचल के राह ताकते जंगल, झरझर झरते इनमें नदी और नाले, झरझर झरते इनमें नदी और नाले, मदमस्त होके झूमे ये जंगल मतवाले, चलती बयार में बन जाते ये नर्तक, भरतनाट्यम ओडिसी और करते कथक, दूजों को नचाते और खुद नाचते जंगल, विंध्याचल के
2: बढ़िया बढ़िया बढ़िया बढ़िया सुंदर, वाह वाह वाह क्या बात है।
0: पतझड़ आता और आ जाती फाग, फूले पलाश जैसे लगी हो आग, बाघ तेंदुए सियार और हिरणों का झुंड, बादल झरने सागौन महुआ और धुंध, कभी शीतल तो कभी दहकते जंगल, विंध्याचल के राह ताकते जंगल।
2: बढ़िया बढ़िया बढ़िया बढ़िया बढ़िया बहुत सुंदर बहुत सुंदर।
0: धन्यवाद।
2: आज चूंकि ये दूसरा दौर कुछ प्रेम का जैसा चल रहा है, तो क्यों ना मैं इसी बीच में कुछ अपनी पंक्ति पढ़ दूं, कि मैं तो वीर रस का कवि हूं, फिर भी इस ढंग की भी बात जब प्रेम की बात चलती तो ऐसा भी आता है कि हर अक्षर में तुमको पाता हूँ, हर अक्षर में
1: तुमको,
2: जिसमें ध्यान देना है तुमको, तुम्हारे धड़कते दिल को तक मैं अपने संदेश पहुंचा रहा हूँ, कि हर अक्षर में तुमको पाता हूँ फिर छंद बना के गाता हूँ, हर अक्षर में तुमको पाता हूँ फिर छंद बना के गाता हूँ, मन मंदिर की बना के देवी प्यार का दीप जलाता हूँ, मन मंदिर की बना के देवी प्यार का दीप जलाता हूँ। और ऐसा भी एहसास होता है कि जब किसी से

0: सच्चा प्यार पाओगे जब किसी से सच्चा प्यार पाओगे, हर बात में उसी का नाम लाओगे।
1: क्या बात है?
0: जब किसी से सच्चा प्यार पाओगे, हर बात में उसी का नाम लाओगे, दिल लगा के किसी से तुम देख लो।
1: क्या बात?
0: दिल लगा के तुम किसी से देख लो, प्यार की परिभाषा समझ जाओगे। दिल लगा के तुम किसी से देख लो, प्यार की परिभाषा समझ जाओगी। और एक भाव इस ऐसा भी आता है कि मन के बंद दरवाजे खोलो।
1: हाँ,
0: मन के बंद दरवाजे खोलो, खुले भाव से सबके होलो। मन के बंद दरवाजे खोलो, खुले भाव के सबके होलो। आओ चले मौन व्रत त्यागे, कुछ हम बोले कुछ तुम बोलो, कुछ हम बोले कुछ तुम बोलो। कवि गोष्ठी के क्रम को और आगे बढ़ाते हैं। मैं सादर आमंत्रित करता हूं श्री नितेश पटेल जी।
2: जैसे कि हमने देखा है, हमारी फिल्में, हमारी कहानियां कहीं ना कहीं सफल लोगों की और सफलताओं को बयां करती हुई होती हैं, लेकिन वो लोग कहां जाते हैं जो विफल होते हैं या विफलताएं जिनको अर्जित होती हैं। तो मेरी कविता विफलता और विफल एहसास को लेकर है, सुनिएगा।
1: स्वागत है।
2: केवल सफल सुखद परिणाम बहुधा आबादी के एहसासों को मारने जैसा है। सफलता के गाने, सफलता के पैमाने, बात करना आसान है और रुचकर भी, ताक पर रहती है असफलता। कलम कांपती है इस लेखन की असफलता से, खुद की असफलता से। देखे हैं कई मायूसी के परिणाम, गर्दन में धंसते चेहरे, दांतों को मीसते जबड़े, भर आए एहसासों को गटकता गला और मुट्ठी को शून्यता में दबाती उंगलियां। आंख मूंद कर दुनिया को खुद से विलग करने का एहसास सब कुछ भुला देता है सिवाय असफलता के। कोरे कोरे लगते ज्ञान ग्रंथ, सपाट लगते पहाड़, तूफान से निगलने की प्रार्थना करता मन और जीवित क्षण को सपना बताती बताने पर जुटी चेतना। हर क्षण कचोटता कल्पित भविष्य का चेहरा, एक साथ धराशायी होते कई किले, धूसर होता इंद्रधनुष, मीलों तक रेगिस्तान और लू के थपेड़े, कोई नजर नहीं आता और पल भर में कमियों का पहाड़ सा लग जाता है। अनंत से शून्य की यात्रा क्षण भर में आंखों के सामने धुंधलका करने काफी है। इन कविताओं का सुखद अंत इन एहसासों का उपहास होगा और नई आशा भ्रामक। और मेरी दूसरी कविता है जो कि हमारे मानव मन के शाह पक्ष को इंगित करती हुई, हमारे जो ग्रे एरिया होता है उसको इंगित करती हुई कविता है, अंधेरी वाली खिड़की।
1: स्वागत।
2: हम अच्छे लोग समाज धर्म राजनीति सुधारने की प्रतिज्ञा लिए आगे बढ़ने वाले अच्छे लोग अपने घर में एक अंधेरी वाली खिड़की रखते हैं। खिड़की जो खुलती है बदबूदार गली में, बेमान नग्न और काली दुनिया के बीच, जहां कभी कभी झांक लेता हूं मैं अपनी अच्छाई के बोझ को कम करने, दुनिया द्वारा प्रदत्त अस्तित्व को मजबूत करने, कभी कभी किसी प्रतियोगिता बाबत भी। वहां की मादकता की जकड़ में बनता नहीं, लेकिन भूल जाता उस समय खुद के अस्तित्व को, नैतिकता और भलाई को दरकिनार कर उस खिड़की में झेपता हुआ सा झांकता हूं। बाहरी लोगों से यह खिड़की छिपी है, लेकिन मेरे मन को उस खिड़की का पता जानते हैं। वो कभी उसे बंद करने, कभी उसे ढकने या कभी खुला रखने से खुश हैं। वक्त बेवक्त खुली ना रह जाए इसका भी ध्यान रखना पड़ता है। कई पर्दे हैं मेरे पास, उस गली में कई महामानवों की खिड़कियां भी हैं। झांकने पर शुरू में लजाते हैं, फिर मुस्कुराते हैं और फिर बातों का सिलसिला शुरू हो जाता है। मैं हमेशा डरता हूं कि खिड़की का आकार बढ़ ना जाए,
1: बढ़िया बढ़िया बढ़िया,
2: खिड़की पर बिताने का वक्त कम ही रहे। जिन जिन का यह डर खत्म हुआ है उनकी खिड़कियां दरवाजे का आकार ले रही हैं।
0: कवि गोष्ठी को हम समापन की ओर ले चलते हैं। ये आकाशवाणी छतरपुर के 50 वर्ष होने पर ये विशेष कवि गोष्ठी आप सुन रहे थे, जिसके हमारे प्रतिभागी कवि थे श्री मुकेश कुमार पांडे चंदन जी, श्री नितेश पटेल जी, श्री विवेक जैन जी और श्री जसवंत सिंह बुंदेला जी, और मैं सुरेश श्रीवास्तव।
3: अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी 890 के अंतर्गत रसावतरण। इसमें आपने सुनी कवि गोष्ठी। मीडियम वेव पर ये आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। लीजिए प्रस्तुत है फिल्म संगीत।

श्रोताओं, भी आप सुन रहे थे फिल्म लेकिन का ये बहुत प्यारा सा गीत, स्वर थी लता मंगेशकर की, गीत लिखा था गुलजार ने और संगीत था हृदयनाथ मंगेशकर का। लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत, फिल्म का नाम है सिर्फ तुम। स्वर है उदित नारायण की, शब्द रचना है आनंद बख्शी की और संगीत निर्देशन है उत्तम सिंह का।

कार्यक्रम का अगला गीत राहत फतेह अली खान की आवाज में। ये गीत रचना है फैज अनवर को और इसे संगीत में बनाया है साजिद वाजिद ने। फिर मैं दबंग

लीजिए अब सुनिए राहत फतेह अली खान की आवाज में फिल्म के सिंह स्किन का ये गीत। गीत लिखा है मयूर पुरी ने और संगीत है प्रीतम का।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत और ये है आकाशवाणी भोपाल। कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म रावण से। ये गीत गाया है नंदिनी श्रीकर और साथियों ने। शब्द रचना है पंछी जालौनवी की और संगीत है अभिजीत नलानी का।

कार्यक्रम का अगला और बहुत खूबसूरत गीत जिसे गाया है लता मंगेशकर और उदित नारायण ने, गीत लिखा है आनंद बख्शी ने और इसे संगीत में बनाया है उत्तम सिंह ने।

डुप्लीकेट। आइए श्रोताओं, अब हम आपको सुनाते हैं इस फिल्म का गीत। कुमार सानू की आवाज में, शब्द रचना है जावेद अख्तर की और संगीत है अनु मलिक का।

आइए श्रोताओं, अब हम आपको सुनाते हैं फिल्म मोहरा का गीत। स्वर है पंकज उदास और साधना सरगम के। गीत लिखा है इंदिवर ने और संगीत है बिजू शाह का।

पेश है फिल्म संगीत कार्यक्रम का अंतिम गीत, जिसे हमने लिया है फिल्म बागी से। स्वर है अमित कुमार और अनुराधा पोडवाल की, शब्द रचना है समीर की और संगीत है आनंद मिलिंद का।

0: इसी गीत के साथ ब्रह्म संगीत का कार्यक्रम यहीं पर संपन्न हुआ। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। लीजिए अब सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से ओडिशा और पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं। प्रधानमंत्री पश्चिम बंगाल के तारकेश्वर में पश्चिम बंग दिवस समारोह में शामिल होंगे। वे इस दौरान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त जारी करेंगे। इसके तहत देश के 9 करोड़ 44 लाख किसानों के बैंक खातों में 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे अंतरित की जाएगी। 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कल दुनिया भर में मनाया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य समारोह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड पर आयोजित किया जाएगा। इस वर्ष विश्वभर में लगभग 2,500 स्थानों पर योग दिवस कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का राज्य स्तरीय कार्यक्रम कल जबलपुर में होगा, जिसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शामिल होंगी। भोपाल सहित प्रदेश के सभी जिलों, विकास खंडों और पंचायत स्तर पर सामूहिक योग कार्यक्रम आयोजित होंगे, जिनमें विद्यालयों, महाविद्यालयों और तकनीकी शिक्षा संस्थानों की भागीदारी रहेगी। अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस के उपलक्ष्य में देशभर में नशा मुक्त भारत सप्ताह मनाया जा रहा है। 17 से 26 जून तक इस अभियान में जागरूकता रैलियां, युवा अभियान, नुक्कड़ नाटक, निबंध और पोस्टर प्रतियोगिताएं तथा सोशल मीडिया अभियान आयोजित किए जा रहे हैं। प्रदेश में प्री मानसून के चलते आज 38 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट है। मौसम विभाग के मुताबिक दक्षिण पश्चिम मानसून 8 से 10 दिन की देरी से 25 जून तक पहुंचने का अनुमान है। और भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरा और अंतिम एक दिवसीय क्रिकेट मैच आज दोपहर 1:30 बजे से चेन्नई में होगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। लीजिए प्रस्तुत है फिल्मी फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम आपकी फरमाइश।

आपकी फरमाइश कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को सरिता का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, कार्यक्रम में हम आपको सुनाते हैं पहला गीत सत्यम शिवम सुंदरम फिल्म से, सुमधुर आवाज है लता मंगेशकर की, शब्द रचना है आनंद बख्शी की और संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। इस गीत को पसंद करने वाले श्रोता हैं शिवाजी चौक राजिम से अनिल कुमार, अंजुलता, आदित्य कुमार और कृष श्रीवास्तव। इसी गीत को सुनना चाह है नेपाल पैलेस सागर से तिलक राणा, मीना राणा, मोनिका, नूपुर, ऋषिका और रॉबिन ने।

कार्यक्रम में अगली फरमाइश इन सभी श्रोताओं की है। गौतम नगर जिला नांदेड़ से प्रभाकर जोंधले, आरती जोंधले। छत्तीसगढ़ बनियापारा धमतरी से रामचंद्र माखीजा, काफिर श्रीमती सविता, बेबी स्वाति, माही, पूजा और इनका पूरा परिवार।

औरंगाबाद से राजेश साबले पाटिल, शीतल राजेश, राजदीप राजेश और राशि राजेश, आप सभी ने सुनना चाहा है फिल्म महबूबा का ये बहुत प्यारा सा गीत जिसे गाया है लता मंगेशकर ने। ये गीत रचना की है आनंद बख्शी ने और इसे संगीत में बनाया है राहुल देव बर्मन ने।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। आप सुन रहे हैं फिल्मी फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम आपकी फरमाइश। कार्यक्रम में अगली फरमाइश हम तक लिख भेजी है पाकिजा रेडियो श्रोता संघ इस्लामपुरा सनावत से मोहम्मद सादिक, मोहम्मद शाकिर, मुश्ताक अहमद, बेबी मनसा, रमेश गौड़ और मोहम्मद शादाब खत्री ने। इस गीत को सुनना चाहे घंटाघर चौक खंडवा से संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया, गुनगुन, संप्रीत, हेमेंद्र और सन्मति पंचोलिया ने। तो आइए आप सभी की पसंद पर सुनते हैं मंजिल फिल्म का ये बहुत प्यारा सा गीत, जिसमें सुमधुर आवाज है लता मंगेशकर की। ये गीत लिखा है योगेश ने और इसकी धुन बनाई है आरडी बर्मन ने।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपकी फरमाइश। कार्यक्रम में हम तक फरमाइश लिख भेजिए आप सभी श्रोताओं ने। छत्तीसगढ़ भाटापारा धतरेंगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा और झावेंद्र कुमार वर्मा ने इसी गीत को पसंद किया है। महादेव घाट अमलेश्वर से टोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, तारिणी ठाकुर, सूरज ठाकुर, ज्योति ठाकुर और रियांश ठाकुर ने इसी गीत को पसंद किया है। राजा रामनगर देवास से राजू अग्रवाल, शांति महाजन, मुकेश महाजन और चीकू सल्लू ने। उपाध्याय नगर देवास से मुरारीलाल वर्मा, मनीष वर्मा और शिवम वर्मा ने इसी गीत के लिए हम तक फरमाइश लिख भेजी है। सपना संगीता रोड इंदौर से लाल फतेह चंदानी, लीला फतेह चंदानी, सुनीता, संगीता, पिंकेश, साक्षी, मनन और तानिया ने। श्रोताओं, आप सभी ने सुनना चाहा है इस फिल्म का गीत जिसका नाम है दिल का क्या कसूर। सुर हैं अलका याग्निक और कुमार सानू के। ये गीत लिखा है अनवर सागर ने और अनवर सागर के लिखे गीत को संगीत में बनाया है नदीम श्रवण ने।

इसी गीत के साथ फिल्मी फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम आपकी फरमाइश यहीं पर संपन्न हुआ। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। अब समय है एक छोटे से अंतराल का।

सुनिए NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर।

0: पता है, लगभग पूरे जर्मनी की जनसंख्या के बराबर तो सिर्फ किसान क्रेडिट कार्ड दे चुकी है भारत सरकार 8 करोड़ किसानों को। तभी तो किसान कहता है कि बीज से बाजार तक देश उनके साथ है।
1: हमारा छोटा किसान बाजार से महंगे ब्याज पर ऋण लेने के लिए मजबूर था। हमने ऐसे करोड़ों छोटे किसानों को भी किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा से जोड़ा।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: पूरा रशिया का जनसंख्या कितना है बताओ? 14 करोड़ जितनी। बहुत बड़ा नंबर है ना? पर बड़ा नंबर तो ये है कि भारत में लगभग इतने ही घरों में लगे हैं नल पिछले 12 सालों में। 16 करोड़ घरों में हर दिन हर मौसम आता है नल से निर्मल जल, जिससे करोड़ों महिलाओं को पानी ढोने से तो मुक्ति मिली ही, साथ गांव में जल व्यवस्थापन की शक्ति भी मिली।
1: जल जीवन मिशन का विजन सिर्फ लोगों तक पानी पहुंचाने का ही नहीं है, ये डिसेंट्रलाइजेशन का, विकेंद्रीकरण का, उसका भी एक बहुत

0: बहुत बड़ा मूवमेंट है, ये विलेज ड्रिवन विमेन ड्रिवन मूवमेंट है।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम संग्रहालय से के अंतर्गत धारावाहिक भुवन मोहिनी का दूसरा भाग।

0: पिछली कड़ी में आपने सुना कि धार नगरी के महाराज द्युमत्सेन ने राजकुमार विजयश्रवा और नर्तकी भुवन मोहिनी के बीच प्यार की बातें जानकर भुवन मोहिनी को देश निकाला दे दिया। राजकुमार भुवन मोहिनी के वियोग में पड़ गया और उसके 3 महीने के अथक श्रम के बाद भुवन मोहिनी का एक सुंदर चित्र बनाया। एक दिन राजमाता से उसकी मुलाकात हो गई। राजमाता ने विजयश्रवा पर ताने कसे। फिर क्या था, विजयश्रवा महल छोड़कर निकल पड़ा। रास्ते में अरण्यक ने बताया, भुवन मोहिनी इंद्रप्रस्थ गई है, तो वह उससे मिलने के लिए इंद्रप्रस्थ की ओर चल दिया। क्या वो भुवन मोहिनी से मिल सका, जानने के लिए सुनते हैं धारावाहिक भुवन मोहिनी की दूसरी कड़ी।
1: आह, भुवन मोहिनी, ऐसा एक भी क्षण नहीं होता जब तुम मेरी दृष्टि के सामने नहीं होती। तुम मेरा परित्याग करके किस लोक को चली गई हो?
2: मैं स्वप्न लोक की छाया हूँ राजकुमार, एक छलावा बनकर तुम्हारे जीवन में समाई हुई हूँ। तुम मुझे कभी भी प्राप्त नहीं कर सकोगे। मेरा चिंतन करना भूल जाओ। देखो, मेरे कारण तुम्हारे जप तप और जीवन के सारे शुभ कार्य व्यर्थ हो जाएंगे। मैं तो वायु तरंगिणी बनकर

0: अंतरिक्ष में अशांत होकर उड़ती फिरती हूँ। किसी श्रापवश अप्सरा का जीवन पाकर भूलोक में अवतरित हुई हूँ। फिर भी मुझे अपने पूर्व जीवन का पूर्ण स्मरण है राजकुमार। मैं तुम्हारी भी पूर्व जीवन से परिचित हूँ। तुम देवलोक से भ्रष्ट होकर भूलोक में आए हो। वहां भी तुमने मुझे प्राप्त करने का प्रयास आरंभ किया तो देवगण तुमसे असंतुष्ट हो गए। तुम्हारे आकर्षण में मैंने भी देवताओं की अवहेलना आरंभ कर दी और देवता हम दोनों से रुष्ट हो गए और देवलोक से निष्कासित कर दिया। तुमने राजराजेश्वर के महल में जन्म लिया और मैंने अपने पूर्व जीवन के अनुकूल एक अप्सरा के गृह में, इसलिए अपने पूर्व जीवन में लौट चलने के लिए आवश्यक है कि मेरे रूप की ज्वाला में विदग्ध ना बनो। जाओ जाओ ना, मुझे सर्वदा के लिए भूल जाओ।
1: भुवन मोहिनी, तुम इतनी निष्ठुर कैसे हो सकती हो? कैसा था ये दिवा स्वप्न? एक मृग मरीचिका के सदृश? क्या वास्तव में भुवन मोहिनी मेरे जीवन में छलावा ही सिद्ध होगी? ये कौन था जो स्वप्न के बहाने पूर्व जन्म की कथा का स्मरण दिलाकर शून्य में विलीन हो गया? क्या वास्तव में इस स्वप्न की बातें सत्य हैं? क्या यह सच है कि भुवन मोहिनी पूर्व जन्म में एक अप्सरा और मैं देवलोकवासी था? क्या नारी का आकर्षण देवत्व के पद से भ्रष्ट करके भूलोक का जीवधारी बनाता है? क्या भूलोक में नारी का आकर्षण भ्रष्ट नहीं करता? यदि करता है तो फिर इस जन्म के पश्चात मुझे और क्या बनना पड़ेगा? देवत्व से प्रतीत होने पर मनुष्यत्व का पद मिला, किंतु यदि मनुष्यत्व से भी पतित हुआ तब किस योनि में जाना होगा? आह, मैं क्या करूं? कौन मेरे संदेहों का निराकरण करेगा? अरण्यक, अरण्यक!
2: युवराज, क्या हुआ?
1: क्या बात है, रथ रुका हुआ क्यों है?
2: अश्वों को विश्राम देना अनिवार्य था युवराज।
1: ओह ठीक है, विश्राम के उपरांत संध्या में ही यात्रा पुनः आरंभ होगी।
2: संध्या में ही?
1: हां, सारथी से कह दो हमारी यात्रा अनवरत तब तक चलती रहेगी जब तक इंद्रप्रस्थ नहीं आ जाता।
2: जो आज्ञा युवराज। क्या हो गया युवराज को? अरे सारथी, सारथी!
3: क्या है रण्यक? अभी अभी तो विश्राम हुआ, तनिक एक नींद तो पूरी कर लेने दो।
2: हाँ हाँ, तुम सो।
4: क्या बात है रण्यक, कोई चिंता की बात है क्या?
2: नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं। मैंने कहा ना, तुम सो जाओ।
4: झपकी आई ही थी कि तुमने जगा दिया। रात्रि में फिर से यात्रा करनी है?
2: रात्रि में नहीं, संध्या काल में ही।
4: संध्या काल में ही? तब तो चलो बात ही करते हैं। बताओ क्या बात हो गई?
2: सारथी, तुम्हें पता है कि हमारे स्वामी कहां जा रहे हैं?
4: हां, तुम्ही ने कहा था कि इंद्रप्रस्थ जा रहे हैं।
2: क्यों जा रहे हैं ये बताओ।
4: तुम्ही ने मना

0: सर्वनाश है, घोर सर्वनाश। राज राजेश्वर का भौतिक सुख त्याग कर रूप की वासना में जीवन को होम कर देना निराह मोह नहीं है तो क्या है? सारथी, तुम मेरी सहायता करो।
1: कैसी सहायता?
0: किसी भी प्रकार से राजकुमार को पतन की गर्त में जाने से हमें बचाना होगा।
1: हमें?
0: वरना सम्राट द्युमत सेन के बाद राज सिंहासन का भगवान ही स्वामी है। सोचो, अगर सम्राट द्युमत सेन के बाद युवराज सिंहासन पर न बैठे तो साम्राज्य का क्या होगा?
1: हाँ,
0: एक राजा के बिना देश कैसे चलेगा? बोलो। हे भगवान, मैं तो सोच के ही परेशान हो गया। पश्चिम और उत्तर से शक और हूड़ जातियां आक्रमण कर देंगी, जिसका सामना छोटे छोटे राज्य नहीं कर सकेंगे। परिणाम क्या होगा ज्ञात है, परतंत्रता। राष्ट्र की प्रजा असहाय की तरह लूटी जाएगी। सीमा प्रांत की असहाय नारियां विजेताओं की विलास का साधन बन जाएंगी। राष्ट्र की पतिव्रता देवियां कुल कलंकनी कहलावेंगी सारथी, और विश्व की सर्वश्रेष्ठ नारियां भुवन मोहिनी की ही भांति तुच्छ बनकर राष्ट्र के सर्वनाश का कारण बनेंगी।
1: तब क्या हो रण्यक?
0: तुम मेरी सहायता करो।
1: कैसे?
0: सुनो, इंद्रप्रस्थ पहुंचने पर इससे पहले कि युवराज और भुवन मोहिनी की भेंट हो, हम उससे मिलकर सब कुछ बता दें।
1: किससे मिलकर?
0: अरे भुवन मोहिनी से।
1: उससे क्या होगा? भुवन मोहिनी विजय श्रवा को भुला देगी।
0: अवश्य, उसे ऐसा करने के लिए प्रेरित करना होगा। यदि वो सबके लिए अपने सुखों का त्याग कर सकी तो अच्छा ही है, अन्यथा राष्ट्र पर आने वाली विपत्ति को हटा देने के लिए आवश्यक होगा भुवन मोहिनी का वैयक्तिक बलिदान।
1: तात्पर्य?
0: यह मैं नहीं जानता, किंतु इतना तो मैं कह सकता हूं कि भुवन मोहिनी स्वयं राष्ट्रहित को प्रधानता देगी। देना भी चाहिए, राष्ट्र का हित सर्वोपरि है, सबके लिए।
1: तो फिर साफ साफ बताओ, हमें क्या करना होगा?
0: जैसे भी संभव हो भुवन मोहिनी से विजय श्रवा को अलग रखने का प्रयास करना होगा।
1: अरण्यक, संध्या हो गई है।
0: होने दो।
1: अरे हमें प्रस्थान करना है।
0: अरे हाँ, परंतु ध्यान रखना इस बात का। चलो, दैनिक चर्या करके प्रस्थान किया जाए।
1: हाँ हाँ, चलो
2: चलो चलो, शीघ्रता करो। युवराज, प्रस्थान की आज्ञा है ना?
1: हाँ हाँ, शीघ्रता करो।
2: जो आज्ञा। चलो चलो।
0: मित्र सो रहे हैं, सो जाइए।
3: कहाँ जा रहा हूं, किस उद्देश्य से जा रहा हूं, क्या होगा परिणाम?
4: केवल सर्वनाश, अधिक कुछ नहीं।
3: हाँ, सर्वनाश?
4: हाँ, क्या तुम सचमुच उस प्रणयिनी को प्यार करते हो जो तुम्हारी दृष्टि से निर्वासित है?
3: हाँ।
4: क्या तुम्हें भुवन मोहिनी के अक्षय यौवना होने पर विश्वास है?
3: हाँ।
4: क्या तुम्हारा आज वाला अनुराग रंजित हृदय अपरिवर्तनशील है?
3: हाँ।
4: क्या उसकी रूप की झांकी आज जैसी कल भी रहेगी विजयश्रवा? क्या दो दिन में फूल की तरह मुरझा जाने वाला सौंदर्य अपनी सहस्त्र किरण कांति से तुम्हारी रंगीली वासनाओं को चमकाता रहेगा? क्या रुग्णावस्था झुलसकर इस सौंदर्य को क्रूर न बना देगी? क्या बुढ़ापे में आज का स्निग्ध मनोरम और आकर्षक शरीर झुर्रियों की लटकन से घृणित वृत्तियों को न उकसाएगा? क्या स्वयं तुम भी आज की ही भांति तरुण, स्वस्थ और बलिष्ठ रहोगे? बंद करो ये प्रश्नों की श्रृंखला। अरे, जीवन स्वयं ही अनित्य है तो फिर भुवन मोहिनी का सौंदर्य कैसे अनित्य नहीं होगा? सब कुछ नश्वर है, सब कुछ अनित्य है। यह जीवन अनित्य, यह शरीर अनित्य, यह सृष्टि अनित्य और इस सृष्टि के सारे व्यापार अनित्य।
3: किंतु इस अनित्यता का भय ही तो सत्यम शिवम सुंदरम की खोज में जीव को अग्रगामी बनाता है। इस अनित्यता में ही तो जीवन का शाश्वत सत्य है उससे इस अनित्य शरीर को क्यों वंचित

0: देखा जाए, इस लघु जीवन में पानी की बूंद बूंद की भांति जहां सारे व्यापार स्वयं प्रेरित होकर चल रहे हैं, मैं बाधा क्यों दूं? जब परिवर्तन ही सृष्टि का अटल नियम है, तब भुवन मोहिनी का मधुमय यौवन कैसे स्थायी रहेगा?
1: इसीलिए तुम्हें शीघ्रता है।
0: हां, इसीलिए, ताकि इस अनित्य यौवन को स्वप्न की भांति विलीन होने के पूर्व भोग लूं, अन्यथा फिर तो केवल

0: केवल पश्चाताप की घड़ियां ही शेष रह जाएंगी। यौवन को यौवन की ही प्यास होती है, यौवन को यौवन के जल से ही तृप्त करना होता है, मात्र यौवन के जल से।
1: युवराज, आप इंद्रप्रस्थ पहुंचने वाले हैं।
0: शुभ सूचना दी तुमने अरण्यक। अच्छा बताओ, तुम सब लोग मुझे यहाँ क्या कहोगे? स्मरण है ना?
1: अवश्य स्वामी, हम लोग यहाँ पर आपको श्रेष्ठीवर कहकर पुकारेंगे।
0: श्रेष्ठीवर? हाँ, मैं श्रेष्ठीवर हूँ यहाँ इंद्रप्रस्थ में।
1: मित्र, कितने दिनों बाद आपकी उन्मुक्त हंसी सुनी, बहुत अच्छा लगा।
0: सुनो अरण्यक, सारथी को कह दो कि रथ को यमुना के तटवर्ती किसी सुरम्य उपवन में छिपा कर रख दे।
2: अरे सुनो सारथी, रथ को यमुना तट पर किसी सुरम्य उपवन में छुपा कर खड़ा करना।
3: ठीक है रण्यक।
1: आइए युवराज। अरे वाह युवराज, आपने वस्त्र बदल लिए, आप तो विशुद्ध श्रेष्ठीवर ही लग रहे हैं।

0: साधु साधु।
1: अरण्यक, कितना सुंदर वन है, अपने रथ को यहीं पर कहीं खड़ा करवाओ, लगता है कोई आ रहा है। अरण्यक, उससे पूछो किसका उपवन है ये।
2: अरे भाई सुनो, कौन हो तुम?
3: उपवन का माली हूं महोदय, आप लोगों का परिचय?
2: बस ये समझ लो कि हमारे मालिक बहुत बड़े श्रेष्ठी हैं।
3: श्रेष्ठी हैं?
2: हाँ, और व्यापार के उद्देश्य से इस नगरी में आए हैं। अच्छा, इस सुंदर उपवन के स्वामी के बारे में तनिक बताओ।
3: ये उपवन चंद्रवंशी महाराज आदित्य सेन का है, जो इंद्रप्रस्थ से मिले जुले एक बड़े भूभाग के महाराजा हैं, और आजकल इस उपवन का उपयोग उनकी एकमात्र राजबाला चंद्रहासिनी के मनोविनोद के लिए किया जाता है।
2: अच्छा, तो क्या अपरिचितों का निवास निषेध है?
3: नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, किंतु ये आवश्यक है कि उपवन में निवास करने वाला व्यक्ति या तो इंद्रप्रस्थ से दूर का निवासी हो, या फिर वो किसी राजवंश का हो, अथवा किसी श्रेष्ठ वंश का लक्ष्मी पुत्र हो। साधारण लोग यहाँ नहीं रह सकते।
2: भला ऐसा क्यों?
3: इसलिए कि यदि उपवन की कोई हानि हुई तो दंड स्वरूप सहस्त्र मुद्राएं देनी पड़ती हैं।
2: अच्छा।
3: और ये तो तुम जानते ही होगे कि ये दंड कोई राजवंशी या श्रेष्ठी ही दे सकता है।
2: हाँ हाँ, ये तुमने सच कहा। सुनो, तनिक इधर तो आओ।
3: क्यों?
2: ये लो 50 स्वर्ण मुद्राएं।
3: 50 स्वर्ण मुद्राएं किस लिए?
2: अरे तुम्हारा पुरस्कार। और विश्वास मानो, हम लोग इस उपवन की एक पत्ती को भी नष्ट नहीं करेंगे, और यदि भूल से ऐसा हो भी गया तो तुरंत उसका दंड भी भर देंगे।
3: मुझे विश्वास हो गया। जानते हो,
2: हाँ,
3: अभी हाल ही में राजकुमारी यहां से लौट कर गई हैं।
2: अच्छा,
3: ये जो पर्णकुटी देख रहे हो ना,
2: हाँ,
3: विशेष रूप से उन्हीं के लिए बनवाई गई थी।
2: अरे वाह वाह, ये पर्ण कुटी तो किसी राजप्रासाद से कतई कम नहीं है।
3: बिल्कुल, और इसकी सारी सजधज अभी भी ज्यो की त्यों है।
2: सुनो माली, क्या हमारे मालिक इस पर्ण कुटी में निवास कर सकते हैं?
3: तुम्हारे मालिक श्रेष्ठ वंशी है ना?
2: हाँ हाँ, क्यों नहीं,
3: परंतु वो कब तक रहेंगे यहाँ?
2: माह दो माह। अब चिंता मत करो, जब चाहोगे चले जाएंगे।
3: तब तो ठीक है, आप लोग अपनी व्यवस्था कर लीजिए, किसी वस्तु की आवश्यकता पड़े तो मुझे बताइए।
2: अवश्य श्रीमान, अवश्य, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: अरण्यक, तुमने अद्भुत कार्य किया, इंद्रप्रस्थ में ऐसे सुंदर आवास की मैंने कल्पना भी नहीं की थी।
2: आपकी प्रसन्नता ही मेरे जीवन का ध्येय है मित्र। अब आप विश्राम करें और हम लोग शेष व्यवस्थाएं करते हैं।
1: हाँ अवश्य,
2: चलो।

0: महाराज तो विश्राम करने गए, ये सारथी कहां गया?
1: सारथ, सारथ,
2: मैं यहां घोड़ों के पास हूं अरण्यक।
1: हां हां,
0: देखो हम लोग इंद्रप्रस्थ आ गए।
2: रथ को मैं हिलाया हूं।
0: हमें अब अपनी योजना पर अमल करना है।
2: वो भी मुझे स्मरण है।
0: राष्ट्रहित के लिए किसी भी स्थिति में राजकुमार विजय शर्मा से नर्तकी भुवन मोहिनी का मिलाप नहीं होना चाहिए।
2: अधिक तेज मत बोलो, घोड़े उछलने लगेंगे।
0: अरे हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था।
3: महाराज आदित्य सेन की जय हो।
4: आइए महामाते ओंकार देव, बैठिए।
3: क्या बात है महाराज, आप कुछ चिंतित दिख रहे हैं। क्या राजकाज के बारे में चिंतित हैं?
4: नहीं महामाते, आपके होते हुए हमें राजकाज की चिंता कभी नहीं हुई और न होगी, परंतु हमें राजकुमारी चंद्रहासिनी के विवाह की चिंता है। उनके लिए कोई उपयुक्त वर न मिलना हमारे लिए तनाव का कारण बना है। कोई भी राजवंशी राजकुमार चंद्रहासिनी के रूप गुण विद्या बुद्धि के अनुरूप ठहर ही नहीं पाता।
3: महाराज क्षमा चाहता हूं आपको बीच में रोकने के लिए। आपके यमुना तट स्थित उपवन में धारा नगरी से आए हुए एक श्रेष्ठी वर ठहरे हुए हैं।
4: तो क्या हम अपनी राजकुमारी का विवाह एक श्रेष्ठी से करेंगे?
3: क्षमा चाहता हूं महाराज, मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई।
4: हाँ बोलिए।
3: उस श्रेष्ठी के अंग प्रत्यंग की कमनीयता, उसका रूप गुण प्रभाव और आकर्षण, उसका तेजस्वी ललाट, विशाल नेत्र, वृषभ कंध, उन्नत ग्रीवा, चौड़ा वक्षस्थल, केहरी कटी, उसके चक्रवर्ती राजराजेश्वर होने के संकेत देते हैं।
4: अच्छा,
3: वो श्रेष्ठी आसपास के ग्रामीण जनों में कौतूहल का विषय बना हुआ है।
4: यदि ऐसा है तो उसे पहचानना कोई कठिन काम नहीं है। यह काम भुवन मोहिनी कर सकती है।
3: भुवन मोहिनी,
4: जिसे धारा महाराज ग्युमत सेन ने निर्वासित कर दिया था और हमने अपने यहाँ शरण दे रखी है।
3: अच्छा अच्छा, वो नर्तकी?
4: हाँ वही, भुवन मोहिनी धारा नगरी के सम्राट ग्युमत सेन की प्रमुख गायिका रही है और वो वहाँ के प्रधान सामंतों और श्रेष्ठियों को अवश्य पहचानती होगी।
3: अवश्य देव, यह कार्य उसके द्वारा सरलता से कराया जा सकता है।
4: भरत।
5: आज्ञा महाराज।
4: जाकर भुवन मोहिनी से कहो कि हमने उन्हें याद किया है।
5: जो आज्ञा।
4: परंतु महामात्य, यदि वो कोई राजवंशी हैं, तो इस तरह श्रेष्ठी बनकर आने की क्या आवश्यकता है? कहीं ये कोई षड्यंत्र तो नहीं है?
3: यह बात विचारणीय है महाराज, परंतु इसका निराकरण भी उसकी पहचान होने के बाद ही किया जा सकता है।
5: महाराज, देवी भुवन मोहिनी उपस्थित होने की आज्ञा चाहती हैं।
4: हाँ हाँ, आज्ञा है।
5: आइए देवी।
6: महाराज आदित्य सेन को प्रणाम।
4: नर्तकी भुवन मोहिनी, राजसभा तुम्हारे बिना सुनी ज्ञात होती है। तुम्हें सर्वदा मेरे आने के पूर्व ही राजसभा में उपस्थित होना चाहिए।
6: अपराध क्षमा हो देव, दासी के अस्वस्थ होने के कारण ही आज अनुपस्थित होने का अपराध बन पड़ा है, भविष्य में ऐसी भूल नहीं होगी।
3: नर्तकी इधर आओ।
6: प्रणाम महामात्य।
3: देखो नर्तकी, क्या तुम्हें ज्ञात है कि यमुना के किनारे पर अवस्थित राजोद्यान में धारा नगरी का कोई व्यक्ति विश्राम कर रहा है?
6: धारा नगरी का?
3: हाँ धारा नगरी का।
6: मुझे ज्ञात नहीं है महामात्य।
3: अरे तो क्या तुम अभी राजकुमारी के साथ उस उपवन में निवास नहीं कर रही थी?
6: देव उस समय कोई नहीं था।
3: तो ठीक है, कल वहां जाकर गुप्त रूप से पता लगा कर आओ कि उस राजोद्यान में स्थित पर्णकुटी में ठहरने वाला कौन है। यद्यपि वह अपने को धारा नगरी के सर्वश्रेष्ठी का पुत्र बताता है, परंतु हमें शंका है, उसके बारे में हमें संपूर्ण जानकारी चाहिए।
6: जो आज्ञा महामात्य, कल राजकुमारी दीपरागिनी सिद्ध करने वहां पुनः जाने वाली है, मैं भी चली जाऊंगी। महाराज अभ्यास किया था महाराज। हाँ। कल उसी का महोत्सव है।
4: अच्छी बात है,
3: किंतु वहाँ उस अपरिचित व्यक्ति के होते हुए क्या बाधा उत्पन्न नहीं होगी नर्तकी?
6: नहीं महामाज।

0: कार्यक्रम संग्रहालय से के अंतर्गत अभी आपने सुना धारावाहिक भुवन मोहिनी का दूसरा भाग। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। पेश है इस घंटे की खास खबरें।
1: पेश इस घंटे की खास खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से ओडिशा के पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं। प्रधानमंत्री पश्चिम बंगाल के तारकेश्वर में पश्चिम बंग दिवस समारोह में शामिल होंगे। वे इस दौरान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किश्त जारी करेंगे। इसके तहत देश के 9 करोड़ 44 लाख किसानों के बैंक खातों में 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे अंतरित की जाएगी। 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कल दुनिया भर में मनाया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य समारोह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रूट पर आयोजित किया जाएगा। इस वर्ष विश्वभर में लगभग 2,500 स्थानों पर योग दिवस कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का राज्य स्तरीय कार्यक्रम कल जबलपुर में होगा, जिसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शामिल होंगी। भोपाल सहित प्रदेश के सभी जिलों, विकासखंड और पंचायत स्तर पर सामूहिक योग कार्यक्रम आयोजित होंगे, जिनमें विद्यालयों, महाविद्यालयों और तकनीकी शिक्षा संस्थानों की भागीदारी रहेगी। नीट परीक्षा के लिए भोपाल में कुल 32 केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षा 21 जून को 2 बजे से शाम 5 बजे तक आयोजित होगी। परीक्षार्थियों से 30 मिनट पहले परीक्षा केंद्र पहुंचने की अपील की गई है। नगरीय यातायात पुलिस ने एडवाइजरी जारी की है कि नीट परीक्षा के चलते शहर के कुछ मार्गों पर यातायात प्रभावित रहेगा। प्रदेश में प्री मॉनसून के चलते आज 38 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट है। मौसम विभाग के मुताबिक दक्षिण पश्चिम मॉनसून 8 से 10 दिन की देरी से 25 जून तक पहुंचने का अनुमान है। और भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरा और अंतिम एक दिवसीय मैच अब से कुछ देर बाद 1:30 बजे से चेन्नई में खेला जाएगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
0: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। अब महिलाओं के लिए प्रस्तुत है महिला कार्यक्रम। आज का यह कार्यक्रम आकाशवाणी रीवा की प्रस्तुति है।

बारिश की बूंदें भले ही कितनी छोटी हों, लेकिन उनका लगातार बरसना बहाव बन जाता है। वैसे ही हमारे प्रयास चाहे कितने ही छोटे हों, जिंदगी में बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। इस सुंदर से विचार के साथ हाजिर हूँ मैं कल्पना मिश्रा, आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम महिला सभा के साथ। स्वीकारिए मेरा नमस्कार। बहनों, यूं तो सरकार महिलाओं के उत्थान के लिए कई योजनाएं लेकर आती है, जिससे उनका समाज में स्तर ऊंचा हुआ है। वैसे ही एक योजना पारित की गई जिसका नाम है नारी शक्ति वंदन अधिनियम, जिसे महिला आरक्षण विधेयक भी कहा जाता है, जो कि एक ऐतिहासिक भारतीय कानून है और ये लोकसभा और सभी राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% यानी कि एक तिहाई आरक्षित करता है। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था, महिलाएं अगर किसी देश में प्रगति कर रही हैं, तो मैं समझता हूं कि वह समाज, वह राष्ट्र प्रगति कर रहा है। उनकी ये सोच साकार हुई और ये विधेयक बनाया गया। बहनों, इसकी विशेषताओं पर बात करें तो यह कानून सीधे तौर पर लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और दिल्ली विधानसभा में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण सुनिश्चित करता है। इसके साथ ही कुछ आरक्षित सीटों में से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए भी आरक्षण की व्यवस्था की गई है। इसकी जो समय सीमा है वो 15 वर्षों के लिए प्रभावी होगी, परंतु इसके बाद इसे आगे बढ़ाने के लिए संसद द्वारा नया निर्णय लिया जा सकता है। बहनों, यह कानून परिसीमन प्रक्रिया और नई जनगणना के बाद लागू होता है। यह संविधान संशोधन विधेयक सितंबर 2023 में संसद के विशेष सत्र के दौरान पेश किया गया था। दोनों सदनों द्वारा भारी बहुमत से पारित होने के बाद यह 106वां संविधान संशोधन

0: संशोधन अधिनियम बन गया और भारत सरकार ने इसे आधिकारिक तौर पर लागू कर दिया है, जो कि महिलाओं का जीवन स्तर सुधारने, क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर करने की तरफ एक बहुत बड़ा कदम है। बहनों, आज ही हमारे बीच संध्या तिवारी जी, जो कि शांति कुंज हरिद्वार महिला मंडल की कार्यकर्ता समाज सुधारक हैं, जो कि महिला सशक्तिकरण के लिए कार्य कर रही हैं, तो आइए इसी विषय पर इनसे बातचीत करते हैं।
1: आपका हमारे कार्यक्रम महिला सभा में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार।
2: नमस्कार।
1: आप इस संस्था से कब से जुड़ी हैं और इसका उद्देश्य क्या है, वो आप हमारे श्रोताओं को बताइए।
2: इस संस्था में जुड़ने का सौभाग्य बचपन से ही प्राप्त हुआ। मेरे माता पिता गायत्री परिवार से जुड़े और उन्होंने मुझे प्रेरणा के रूप में इस गायत्री परिवार के साथ जोड़ा। संस्था का उद्देश्य मनुष्य में देवत्व का उदय और धरती पर स्वर्ग का अवतरण है। वास्तव में देखा जाए तो धरती का देवता मनुष्य ही है, और उसके पूर्व मनुष्य मनुष्य बने और मनुष्य से ऊपर उठ करके देवता बन जाए, इसके लिए ये ऋषि प्रणीत योजना है, जिसे गायत्री परिवार के नाम से जाना जाता है, युग निर्माण योजना के नाम से जाना जाता है और विचार क्रांति अभियान के नाम से जाना जाता है। युग निर्माण योजना कहने का तात्पर्य यह है कि इस योजना में मूलभूत तीन सूत्रों को लिया, व्यक्ति निर्माण, परिवार निर्माण और समाज निर्माण। इन तीनों के निर्माण से ही विश्व निर्माण संभव है, जो हमारी संस्कृति में एक नारा है, वसुधैव कुटुम्बकम, और उसके पूर्व आत्मवत सर्वभूतेषु। इसी को हमारा मिशन कहता है, आत्म कल्याण से लोक कल्याण। आत्मवत सर्वभूतेषु वसुधैव कुटुम्बकम, पहले अपनी आत्मा का के उत्थान के साथ। यदि केवल आत्मा के उत्थान के साथ बहुत लोग गुफा कंदरा में बैठ करके तपश्चर्या इत्यादि करते हैं, वो आवश्यक है, लेकिन समाज में भी एक प्रकार की तपश्चर्या होती है। समाज के लिए अपने निजी स्वार्थों से ऊपर उठकर व्यक्ति जब तक लोक कल्याण या परमार्थ भाव के साथ नहीं चलेगा, तो ये समाज का उत्थान संभव नहीं है। मिशन का ये उद्देश्य है। धरती पर स्वर का अवतरण से तात्पर्य कि धारा एक सुखी, समृद्ध, सानंद, उत्साह पूर्ण जीवन जीने की स्थिति में प्रत्येक मनुष्य रहे। धरती का में स्वर का अवतरण का तात्पर्य यह है। ये दोनों सूत्र लेकर के मिशन चल रहा है। वैसे देखा जाए तो मिशन का बड़ा व्यापक उद्देश्य है। लघु से विभू तक की यात्रा ये मिशन करने की प्रेरणा देता है कि छोटे से बड़े कैसे बने, और छोटे छोटे जीव जंतुओं से लेकर के, जो हमें दिखाई नहीं देते, सूक्ष्म स्तर के जीव जंतुओं से लेकर के ब्रह्मांड में जो कुछ भी है, सारा का सारा कैसे उत्कृष्ट बने, इन विचारों को लेकर के ये मिशन चल रहा है।
1: जी दीदी, आपके विचार बहुत ही महान है, तो आप हमें ये बताइए कि आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिली।
2: जैसा कि आपको गायत्री परिवार के बारे में जानकारी होगी, गायत्री परिवार ने नारी जागरण का बीड़ा उठाया, और उस नारी जागरण के बीड़े के साथ, जिसको हम महान सत्ता ने इस बीड़ा को उठाया, उसे हम परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी, परम वंदनीय माता भगवती देवी शर्मा जी बोलते हैं। उन्होंने ऐसे समय पर नारियों को के उत्थान का मौका दिया, जब नारियां केवल चार दीवारी के अंदर बंद थी, शोषित थी, दमित थी, उनको कहीं स्वतंत्र जीने का या अपने आप को उठाने का कोई मौका नहीं मिल पा रहा था। ऐसे समय पर परम पूज्य गुरुदेव ने एक संकल्प लिया कि हमको नारियों को, महिलाओं को ऊपर उठाना है, और उन्होंने उसके लिए, जो हमारे भारतीय संस्कृति में जो पहले कभी था, आदिम जमाने में, आदिकाल में ये था कि हमारे यहाँ स्त्री पुरुष दोनों बराबर थे, महिलाएं भी वो सारा काम करती थी जो पुरुष करते थे, पर वो बीच का काल जो हमारा गुलामी का काल आया, परतंत्रता का काल आया, उस काल में महिलाओं का पतन हुआ, उनके जीवन का पतन हुआ, और एक प्रकार से देखा जाए तो पूरी तरह वो घर की चार दीवारी में बंद करके उन्होंने एक प्रकार से उनका जीवन ही बंद हुआ। ऐसे समय पर परम पूज्य गुरुदेव ने बहनों को लेकर के, नारियों को लेकर के, छोटी छोटी कन्याओं को लेकर के एक क्रम शुरू किया। उन कन्याओं को प्रशिक्षण दे करके, जिन्हें उन्होंने देवकन्या नाम दिया, देवकन्याओं के माध्यम से पूरे देश में जन जागरण का क्रम संपन्न कराया। वो देवकन्याएं साधना भी करती थी, और उन साधना कर श्रेष्ठ विचारों को जन जन तक फैलाने का काम ये घी माध्यम से, प्रवचनों के माध्यम से करती थी। एक बार वो देवकन्याओं की टोली आई उनके

0: देव कन्याओं की टोली के साथ मुझे रहने का, बातचीत करने का, उनको देखने का, निकट से देखने का मौका लगा और मेरे अंदर प्रेरणा जागी कि मैं भी ऐसा ही काम करूंगी।
1: जी जी जी।
0: और उस प्रेरणा के साथ मैंने इस मिशन को और पक्के से चुना और चुन करके गुरुदेव माता जी को अपना गुरु बनाया, इस संस्था को अपना लक्ष्य बनाया और लक्ष्य बना करके इस संस्था में मैं कितना मैं कर पाई मैं इसको नहीं कह पाऊंगी, लेकिन प्रयास मेरा यह कि इस संस्था में मैं पूरी तरह अपने आप को झोंक करके काम करती रही और अभी तक मैं काम कर रही हूँ।
1: जी जी जी, बहुत बड़ी उपलब्धि है दीदी। आपको हमारे श्रोता सुन रहे हैं तो आखिर में आप अपने सुंदर विचार उन तक पहुँचाएंगी तो हमें बहुत खुशी हो।
0: सबसे बड़ी प्रसन्नता की बात है कि हमें आप तक पहुंचने का मौका मिल रहा है। ये अपनों से अपनी बात है, कई बार अपनों से अपनों तक पहुंच नहीं पाते, इससे ये सशक्त माध्यम है। इस सशक्त माध्यम का मौका मुझे मिला, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। पर एक निवेदन तो मैं करना चाहती हूँ कि हमारा देश भारत, ये देश सोने की चिड़िया और जगत गुरु रहा है। हम सबको मिलकर के, चूंकि उस क्रम में एक प्रकार से देखा जाए देश पटरी पर आ चुका है, जगत गुरु बनने की पूरी संभावनाएं, पूरे आसार, पूरी किरण दिखाई पड़ रही है। थोड़ा सा हम लोग मिलकर के इस दिशा में हम अपने देश को धक्का लगाएं और आध्यात्मिक देश होने के नाते हम सब अपनी साधना को या अपने आध्यात्मिक आत्मिक उत्थान को देखते हुए हम अपने आप को साधना की ओर ले जाएं, क्योंकि हमारा देश साधना की धुरी पर खड़ा है। आपको एक निवेदन और करना चाहूंगी, जब हमारा देश परतंत्र था तो दो धड़े काम कर रहे थे, एक धड़ा बाहर जो सीधा देश की लड़ाई में, आजादी की लड़ाई में भाग ले रहा था, और एक धड़ा अप्रत्यक्ष परोक्ष रूप में काम कर रहा था, जिन्हें हम ऋषि कह सकते हैं, जिन्हें हम साधक कह सकते हैं। एक बल था साधना का बल, उन लोगों ने, ऋषियों ने, साधकों ने, सिद्धों ने, संतों ने, तपस्वियों ने साधना का बल देश को दिया और उस बल के सहारे लोगों ने प्रत्यक्ष लड़ाई लड़ करके देश को आजाद किया। वही क्रम हम सब मिलकर के करें, अपने साधना के बल को मजबूत करें, अर्थात हम साधना की धुरी पर खड़े होकर के अपने आप को अपना निर्माण करें, व्यक्ति निर्माण जिसको कहा है, व्यक्ति निर्माण करें। और साधना के बल पर ही यदि हमारा स्वयं का निर्माण हो तो परिवार निर्माण सहज हो जाता है। हम बने तो हमारा परिवार बना, व्यक्ति एक इकाई है, परिवार उस इकाई के सहारे परिवार बनता है और इस परिवार के सहारे समाज बनता है और समाज के सहारे पूरे विश्व का निर्माण होता है। तो निवेदन ये है कि हम मिल करके इस दिशा में सार्थक प्रयास करें और सार्थक प्रयास कर पूरी आशा और पूरा विश्वास है कि निकट भविष्य में हम उस विश्व में जी सकेंगे, धरती पर जहाँ स्वर्ग दिखाई देगा उस स्वर्ग में हम सब सुखी सानंद समृद्ध आत्मीय भाव से जी सकेंगे।
1: जी जी,
0: अपनत्व भाव से जी सकेंगे, एक दूसरे के साथ जी सकेंगे।
1: जी दीदी, आप एक पंक्ति में अपनी संस्था के बारे में कुछ बताइए।
0: एक पंक्ति में यदि संस्था के बारे में कहा जाए तो एक ही उद्देश्य है मनुष्य का कि अपना सुधार संसार की सबसे बड़ी सेवा है। दूसरा, हम सुधरेंगे युग सुधरेगा, हम बदलेंगे युग बदलेगा। संस्था केवल हर व्यक्ति से, हर मनुष्य से यही चाहती है।
1: दीदी, आपने अपना बहुमूल्य समय हमें दिया और साथ ही इतनी अच्छी जानकारी हमारे श्रोताओं से साझा की, हमें भी आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद आपका, नमस्कार।
0: नमस्कार।
2: रास्ते मुश्किल नहीं, सोच कमजोर होती है। रास्ते मुश्किल नहीं, सोच कमजोर होती है, इरादा मजबूत हो तो मंजिल भी झुकती है।

अलावा बहुत सारे बेनिफिट्स हैं चावल के। तो क्रीम बनाने के लिए जो भीगे हुए चावल हैं, उन्हें एक पतीले में ज्यादा पानी डालकर धीमी आंच में पका लेते हैं। चावल में पकने के बाद थोड़ा पानी होना चाहिए, थोड़ा ठंडा करके मिक्सर में पीस लीजिए। अब इसमें आप करीब 3 टेबल स्पून कच्चा दूध डालकर मिक्स कर लीजिए। अब सिंगल लेयर वाली चाय छन्नी से चम्मच की सहायता से इस पेस्ट को छान लीजिए। मोटा हिस्सा ऊपर रह जाएगा और महीन क्रीमी हिस्सा नीचे आ जाएगा, जिसकी हमें क्रीम बनानी है। इसमें विटामिन ई की 1 कैप्सूल डालेंगे, फिर 2 टेबल स्पून नारियल तेल, 3 टेबल स्पून ऑलिव ऑयल, और अगर ऑलिव ऑयल नहीं है आप आलमंड्स ऑयल भी डाल सकते हैं। अब इन सभी चीजों को चम्मच की सहायता से अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए, तो इस तरह क्रीम बन जाएगी। अब आप इसे 15 से 20 दिनों के लिए एक कांच की एयर टाइट डब्बे में स्टोर करके रख सकती हैं। याद रखिए, इसे फ्रिज में ही रखना है, और जब इस्तेमाल करना होगा थोड़ी देर पहले इसे फ्रिज से बाहर निकाल लीजिए। इस क्रीम को चेहरे ही नहीं बल्कि हाथों में, पैरों में भी यूज कर सकती हैं। हल्के हाथों से इसे लगाकर मसाज करिए, रात के समय लगाकर मसाज करिए, सुबह फिर वॉश कर लीजिए, तो इसका और बढ़िया इफेक्ट दिखेगा और हर तरह की स्किन वाले लोग इसे लगा सकते हैं। इससे स्किन सॉफ्ट और दाग धब्बों से रहित होगी, तो आप इसे ट्राई जरूर करिएगा। अब चलते चलते एक और गीत सुन लें। फिल्म है रामपुर का लक्ष्मण, आवाज लता मंगेशकर और किशोर कुमार की है।

0: अभी आप सुन रहे थे महिला कार्यक्रम। ये हमारे आकाशवाणी के रीवा केंद्र की प्रस्तुति थी। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। समय है अंतराल का।
1: जय हिंद। पिछले एक दशक में आपने एक बदलाव नोटिस किया? अब भारत आतंकवाद की जड़ों पर कड़ा प्रहार करने लगा है। नक्सलवाद को तो खत्म ही कर दिया है। डिफेंस के हथियार पहले हम बाहर से मंगाते थे, अब रिकॉर्ड नंबर में एक्सपोर्ट करते हैं। अब भारत चुप नहीं रहता, अब नहीं सहता।
2: हमें गर्व है कि पिछले एक दशक से हमारी सेनाएं तेजी से आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ा रही है।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के। ग्वालियर के कैंसर हॉस्पिटल

0: एलन रिसर्च इंस्टीट्यूट में डॉक्टर बी आर श्रीवास्तव के नेतृत्व में शुरू हुआ है एडवांस्ड AI बेस्ड रेडियोथेरेपी सेंटर। सरकारी योजनाओं के तहत निःशुल्क इलाज भी उपलब्ध है।
1: कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, कैंसर हिल्स, गोला।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। प्रस्तुत है कार्यक्रम लोक संगीत। आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी रीवा की प्रस्तुति है और आज हम आपको सुनवा रहे हैं ज्योति तिवारी के गाए कुछ लोकगीत। कार्यक्रम की शुरुआत बन्ना गीत से।

आकाशवाणी मध्य प्रदेश से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम लोक संगीत और आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी रीवा की प्रस्तुति है और आज आप सुन रहे हैं ज्योति तिवारी के गाए कुछ लोकगीत। पेश है परछन गीत आवाज ज्योति तिवारी की।

ज्योति तिवारी के गाए इस सोहर गीत के साथ ही कार्यक्रम लोक संगीत अब संपन्न होता है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। पेश है कार्यक्रम सुगम संगीत। आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी रीवा की प्रस्तुति है और आज हम आपको सुनवा रहे हैं प्रकाश तिवारी के गाए कुछ भजन और गीत।

अभी आप सुन रहे थे ब्रह्मानंद की रचना, आवाज थी प्रकाश तिवारी की। आइए अब सुनते हैं प्रकाश तिवारी की आवाज में ये गीत। रचना नीरस की है।

0: कार्यक्रम सुगम संगीत अब संपन्न होता है। आज का यह कार्यक्रम आकाशवाणी रीवा के द्वारा प्रस्तुत किया गया। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी।
1: Mummy, where is that airplane going?
2: My child, now every corner of India is getting connected through the skies.
3: When India takes flight, dreams take flight, cities connect, opportunities grow.
2: Over the past 12 years, under the visionary leadership of Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji, more than 160 airports have been developed. The Udaan scheme has made air connectivity possible for smaller towns and cities. Digi Yatra has made air travel smoother, simpler and more seamless.
3: Ministry of Civil Aviation, a new flight for a developing India. 12 saal vishwas ke, vikas ke, jan kalyan ke.
4: कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में थैलेसीमिया, हीमोफीलिया और एप्लासी एनीमिया जैसे रोगों का स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स के द्वारा इलाज उपलब्ध है। आयुष्मान कार्ड से निशुल्क इलाज की सुविधा भी है।
5: कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, कैंसर हिल्स।

0: अच्छे हम अकेले
1: जालिम साथ ले ले।
0: अरे अच्छे हम अकेले
1: जाग पतंग भी चल न सकोगे समझे।
0: हाँ समझे।

0: करोगे? समझे?
1: समझे।
0: अच्छा जी।
2: आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाज में भी आपने सुना काला पानी फिल्म का गीत। शब्द रचना थी मजरू सुल्तानपुरी की और संगीत एस डी बर्मन का। आकाशवाणी मध्य प्रदेश से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत और आज हम और कार्यक्रम का अगला गीत हमने लिया है फिल्म नया दौर से। आवाज मोहम्मद रफी और आशा भोसले की, शब्द रचना साहिर लुधियानवी की और संगीत ओ पी नैयर का।

0: लता मंगेशकर के गाए गाइड फिल्म के इस गीत के साथ ही आज का फिल्म संगीत का कार्यक्रम अब संपन्न होता है। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। थोड़ी ही देर में आप प्रादेशिक समाचार सुनेंगे।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं रत्नेश सोनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पश्चिम बंग दिवस पर पश्चिम बंगाल के लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि पश्चिम बंगाल साहित्य, संगीत, कला, आध्यात्मिकता, विज्ञान, व्यापार, वाणिज्य और समाज सुधार के माध्यम से देश के इतिहास में महत्वपूर्ण योगदान करने वाला राज्य है। ये दिवस राज्य के इतिहास में विशेष महत्व रखता है। आज के ही दिन इस बात की पुष्टि हुई थी कि पश्चिम बंगाल भारत का अभिन्न अंग बना रहेगा। प्रधानमंत्री ने इस दिशा में डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी की अमूल्य भूमिका का भी उल्लेख किया। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव और केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने आज इंदौर जिले के सावेर में इंदौर उज्जैन ग्रीनफील्ड कॉरिडोर का भूमि पूजन किया। कॉरिडोर की लागत 2,935 करोड़ रुपए, लंबाई 48 किलोमीटर है। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा
2: कि आज एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट जिसमें मुख्य रूप से दो बड़े शहर मध्य प्रदेश के उज्जैन और इंदौर, इसका जोड़ने वाला जो एक राष्ट्रीय राजमार्ग है, ग्रीनफील्ड मार्ग है, नए मार्ग का कुल लंबाई 40 किलोमीटर से ऊपर जो बनना है, उससे हमारी इंदौर की दूरी ये काफी कम हो जाएगी। आने वाले समय में ये जो दो नगरों का साझा क्षेत्र है, मेट्रोपोलिटन रीजन, इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर, इसमें हमारा व्यापार, इसमें हमारी शिक्षा, इसमें हमारी चिकित्सा, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर के सब विषय, बड़े स्तर पर इनका निर्माण होने वाला है।
1: इसके पहले मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री ने उज्जैन में कान डायवर्जन क्लोज एक्ट परियोजना का निरीक्षण कर विकास कार्यों की प्रगति का अवलोकन किया। ये परियोजना माँ छिपरा के जल को स्वच्छ व निर्मल बनाए रखने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। भोपाल में कल दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक होने वाली नीट परीक्षा को लेकर नगरीय यातायात पुलिस ने एडवाइजरी जारी की है। शहर में परीक्षा के लिए कुल 32 केंद्र बनाए गए और मेट्रो निर्माण कार्य के चलते कुछ मार्गों पर यातायात प्रभावित रहेगा, जिसके लिए वैकल्पिक मार्ग सुझाए गए हैं। पुलिस ने परीक्षा केंद्रों के आसपास ध्वनि विस्तारक यंत्रों और वाहन पार्किंग पर प्रतिबंध लगाया है। परीक्षार्थियों से समय से कम 30 मिनट पहले केंद्र पहुंचने की अपील की गई है। वहीं नर्मदापुरम में परीक्षा को निष्पक्ष और पारदर्शी ढंग से संपन्न कराने के लिए सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। राज्य शासन ने 21 जून को मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए जिलेवार कार्यक्रमों की मुख्य अतिथि सूची जारी कर दी है। प्रदेश में जिला विकासखंड पंचायत स्तर पर सामूहिक योग कार्यक्रम होंगे, जिनमें विद्यालयों, महाविद्यालयों और तकनीकी शिक्षा संस्थानों की भागीदारी रहेगी। भारत सरकार ने इस वर्ष की थीम एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग रखी है। आज भोपाल में बड़ा तालाब के बोट क्लब से लेकर टीटी नगर स्टेडियम तक विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसमें बड़ी संख्या में युवाओं, खिलाड़ियों और नागरिकों ने भाग लेकर स्वस्थ एवं संतुलित जीवन का संदेश दिया। मध्यप्रदेश कैडर के वरिष्ठ नौकरशाह विवेक अग्रवाल को इस वर्ष 2026-27 के लिए वित्तीय कार्रवाई कार्यबल का उपाध्यक्ष चुना गया है। वे ब्रिटेन के गाइल्स थॉमसन का स्थान लेंगे। श्री अग्रवाल वर्तमान में संस्कृति मंत्रालय में सचिव हैं। वित्तीय कार्रवाई कार्यबल में भारतीय शिष्टमंडल का नेतृत्व कर चुके हैं तथा धन

0: शोधन और आतंकवाद के लिए धन मुहैया कराने पर अंकुश कर रखने वाली वैश्विक संस्था के साथ महत्वपूर्ण भूमिका निभा चुके हैं। आकाशवाणी की 90 वर्षों की स्वर्णिम यात्रा के अवसर पर आकाशवाणी के उद्घोषकों द्वारा लिखी गई अनाउंसर्स डायरी पुस्तक का विमोचन आज भोपाल के श्यामला हिल्स स्थित इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय में होगा। पुस्तक के प्रधान संपादक पुरुषोत्तम श्रीवास ने बताया कि इसमें 21 राज्यों के 41 उद्घोषकों के आलेख शामिल हैं। समारोह के मुख्य अतिथि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय के निदेशक प्रोफेसर डॉ अमिताभ पांडे होंगे, जबकि अध्यक्षता विविध भारती मुंबई के सेवानिवृत्त वरिष्ठ उद्घोषक जी श्याम करेंगे। मौसम विभाग के मुताबिक इस बार प्रदेश में दक्षिण पश्चिम मानसून 8 से 10 दिन की देरी से 25 जून तक पहुंचने का अनुमान है, जबकि सामान्य मानसून 15 जून के आसपास प्रवेश करता है। मौसम विभाग ने आज भोपाल इंदौर समेत प्रदेश के 48 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट जारी किया है। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग 26 जून को मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस के उपलक्ष्य में 17 से 26 जून तक देश भर में नशा मुक्त भारत सप्ताह मना रहा है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। नर्सिंग कॉलेज मान्यता फर्जीवाड़ा मामले में जबलपुर हाईकोर्ट ने 245 नर्सिंग कॉलेजों के सत्र 2021-22 के करीब 8,000 छात्रों की परीक्षा कराने की अनुमति दे दी है। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए शाम 7:10 पर। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। थोड़ी ही देर में दोपहर समाचार आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित किए जाएंगे, कृपया प्रतीक्षा करें।
2: नमस्कार। आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ ओडिशा में 47,600 करोड़ रुपए से अधिक के विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास कर रहे हैं। सरकार ने 16 फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन दवाओं के उत्पादन, बिक्री और वितरण पर प्रतिबंध लगाया। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी द्वारा कल होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा से पहले देश भर में मॉक ड्रिल। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्रों और सिक्किम में कुछ स्थानों पर कल तक मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया। भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरा और अंतिम एक दिवसीय क्रिकेट मैच चेन्नई में जारी। और फीफा विश्व कप में ब्राजील ने हैती को 3-0 से हराकर पहली जीत दर्ज की। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ओडिशा के मयूरभंज जिला स्थित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के पैतृक गांव पहाड़पुर पहुंचे। राष्ट्रपति मुर्मू अपने 68वें जन्मदिन के अवसर पर अपने गांव में हैं। ओडिशा के राज्यपाल डॉ. हरिबाबू कंभमपति, मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी और स्थानीय लोगों ने उनके आगमन पर गर्मजोशी से स्वागत किया।
3: उड़ीसा के आदिवासी इलाकों तक पहुंचने की एक अहम कोशिश के तहत राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मयूरभंज जिले में अपने गांव पहाड़पुर गई। प्रधानमंत्री ने पवित्र सांथाली जोहरा और जो जहरा पूजा स्थलों पर प्रार्थना की और स्थानीय आदिवासी समुदायों के लोगों के बातचीत के, जिससे उन्हें उनकी समृद्ध सांस्कृतिक परंपराओं और जीवन शैली के बारे में जानकारी मिली। प्रधानमंत्री ने स्किल डेवलपमेंट सेंटर और SLS मेमोरियल स्कूल का भी दौरा किया, जहां उन्होंने छात्रों से बातचीत की और उन्हें शिक्षा, कौशल विकास और आत्मनिर्भरता के दिशा में बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। ये दौरा इसलिए भी खास था क्योंकि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति मुर्मू के 68वें जन्मदिन के मौके पर उनके गांव में उनका साथ शामिल हुए। इन कार्यक्रम से आदिवासी सशक्तिकरण, शिक्षा को बढ़ावा देने और समावेश विकास के प्रति उनकी साझा प्रतिबद्धता को पता चलता है। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री अब रायरंगपुर के डांडा बेस में उड़ीसा सरकार के 2 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित एक बड़े सार्वजनिक कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। यहां प्रमुख क्षेत्रों में 47,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की विकास परियोजना का उद्घाटन और उन्हें राष्ट्र को समर्पित किया जा रहा है। आकाशवाणी समाचार के लिए रायरंगपुर से मैं प्रकाश दास।
2: इस समय राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ओडिशा सरकार के 2 वर्ष पूरे होने के अवसर पर रायरंगपुर में आयोजित कार्यक्रम में उपस्थित हैं। इस अवसर पर ऊर्जा, परिवहन, औद्योगिक ढांचे, स्वास्थ्य, शिक्षा, सिंचाई और पेयजल से जुड़ी 47,600 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया। इस समय प्रधानमंत्री एक विशाल जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। आइए सुनते हैं उनका संबोधन।
4: प्रगति परिदा जी, ओडिशा के मंत्री गणेश जी खुंटिया जी,

0: कृष्णचंद्र महापात्र जी सांसद, नवाचरण माझी जी, मनमोहन सामल जी, बैजन पांडा जी, अन्य महानुभाव भाइयों और बहनों, हमारा ओडिशा इन दिनों उत्सवों के आनंद में डूबा हुआ है। यहां का गण पर्व रज पिछले हफ्ते ही धूमधाम से मनाया गया है। महाप्रभु जगन्नाथ जी की रथ यात्रा की तैयारियां भी पुरजोश चल रही है। मयूरभंज के बारीपदा रथ यात्रा को लेकर भी उत्साह का माहौल है।
1: प्रधानमंत्री मोदी आज पश्चिम बंगाल भी जाएंगे। वे हुगली जिले के तारकेश्वर में पश्चिम बंग दिवस समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री राज्य में विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। वे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त भी जारी करेंगे। इसके अंतर्गत देश के 9,44,00,000 किसानों के बैंक खातों में 18,880 करोड़ रूपये से अधिक की राशि सीधे अंतरित की जाएगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पश्चिम बंग दिवस पर राज्य के लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पर अपने संदेश में राष्ट्रपति ने कहा कि ये दिन पश्चिम बंगाल के भारत का अभिन्न अंग बने रहने के संकल्प और आकांक्षाओं का प्रतीक है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि वर्ष 1947 में इसी दिन एक ऐतिहासिक फैसले में भारत के एक अहम हिस्से के रूप में पश्चिम बंगाल राज्य के गठन का मार्ग प्रशस्त किया गया था। प्रधानमंत्री ने कहा कि पश्चिम बंगाल साहित्य, संगीत, कला, आध्यात्मिकता, विज्ञान, व्यापार, वाणिज्य के लिए प्रसिद्ध है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोलकाता में कल स्वदेश में निर्मित नौसेना की 3 जहाजों INS धुनागिरी, INS संशोधक और INS अग्रय का अनावरण करेंगे। इन जहाजों का निर्माण भारत में किया गया है। इनका उपयोग समुद्री सुरक्षा, सर्वेक्षण और पनडुब्बी रोधी अभियानों में किया जाएगा। ये भारत की रक्षा जहाज निर्माण क्षमता को मजबूत बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। गृहमंत्री अमित शाह आज कोल्हापुर और इचलकरंजी के दौरे पर हैं। वे महालक्ष्मी मंदिर परिसर में विभिन्न विकास कार्यों का उद्घाटन किया और कोल्हापुर के पुलिस परेड ग्राउंड में एक जनसभा को संबोधित किया। मोदी

0: शुरू होगा।
1: इसके बाद गृहमंत्री इचलकरंजी में जनता सहकारी बैंक के नए भवन का उद्घाटन करेंगे तथा एक सहकारी चीनी कारखाने के नामकरण और विस्तार के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। सरकार ने जनहित में 16 फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन एफडीसी दवाओं के उत्पादन, बिक्री और वितरण पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। यह फैसला सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर की गई विशेषज्ञ समिति की समीक्षा के बाद लिया गया। समिति ने पाया कि इन दवाओं के संयोजन का पर्याप्त चिकित्सीय औचित्य नहीं है और इनके उपयोग से स्वास्थ्य संबंधी जोखिम हो सकते हैं। प्रतिबंधित दवाओं में त्वचा दर्द और शरीर में ऐंठन के उपचार तथा कुछ एंटीबायोटिक दवाएं शामिल हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि इसका उद्देश्य केवल सुरक्षित, प्रभावी और वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना है। मंत्रालय ने राज्य औषधि नियामकों और संबंधित एजेंसियों को इस प्रतिबंध को सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए हैं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी कल होने वाली नीट यूजी 2026 पुनर्परीक्षा की तैयारियों के अंतर्गत आज देश भर में मॉक ड्रिल कर रही है। सुबह 9 बजे शुरू हुआ यह अभ्यास पूरे दिन जारी रहेगा। इस अभ्यास में 2.5 लाख से अधिक सुरक्षाकर्मी तैनात हैं। इसका उद्देश्य परीक्षा का सुरक्षित, निष्पक्ष और सुचारू संचालन सुनिश्चित करना है। एजेंसी के अनुसार नीट यूजी पुनर्परीक्षा भारत के

0: 551 शहरों और विदेश के 14 शहरों में आयोजित की जाएगी, जिसमें 22,79,000 से अधिक अभ्यर्थी शामिल होंगे। परीक्षा में सीसीटीवी निगरानी, आधार आधारित बायोमेट्रिक सत्यापन और परीक्षा सामग्री के सुरक्षित परिवहन जैसे विशेष सुरक्षा व्यवस्थाएं की गई हैं। सरकार के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी विवेक अग्रवाल को वर्ष 2026-27 के लिए वित्तीय कार्यवाही कार्यबल का उपाध्यक्ष चुना गया है। वे ब्रिटेन के गाइस थॉमसन का स्थान लेंगे। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस नियुक्ति से आतंकवाद के लिए धन मुहैया कराने और गैरकानूनी वित्तीय नेटवर्क के खिलाफ संघर्ष की भारत की प्रतिबद्धता मजबूत होती है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कल दुनिया भर में मनाया जाएगा। 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का विषय है स्वस्थ आयु के लिए योग। ये विषय हर उम्र में योग के महत्व को रेखांकित करता है। हमारे संवाददाता ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर संस्कृति मंत्रालय देश भर में 100 स्थानों पर विशेष कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। इनमें भारत की समृद्ध विरासत और योग परंपराओं को प्रदर्शित किया जाएगा।
1: नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान ने कल मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले रन फॉर योग और एक विशेष जुम्बा सत्र का आयोजन आज किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य लोगों को अपने दैनिक जीवन में योग अपनाने के लिए प्रेरित करना था। संस्थान के निदेशक प्रोफेसर प्रदीप कुमार प्रजापति ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि योग केवल एक दिन मनाने की चीज नहीं है, बल्कि इसे पूरे साल नियमित रूप से करना चाहिए।
2: हमारे लिए ये बहुत जरूरी है कि हम 365 डेज योगा करें, और इस बार के योगा के ऊपर ये डिक्लेरेशन भी होने जा रहा है कि हम वर्ल्ड में कम से कम 15 से 20 मिनट अगर योग करते हैं, अपने प्राणायाम करते हैं, तो जो इस तरह की हमारे लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर्स हैं, उनको हम बहुत अच्छी की तरह से मैनेज कर सकते हैं, और ये प्रूव हो चुका है।
1: अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य राष्ट्रीय कार्यक्रम कल कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आयोजित किया जाएगा। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद और विदेशों में स्थित भारतीय मिशनों के संयुक्त प्रयासों से इस वर्ष योग दिवस के कार्यक्रम दुनिया भर में लगभग 2,500 स्थानों पर आयोजित किए जा रहे हैं। इनमें 210 से अधिक भारतीय मिशन भाग ले रहे हैं। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: स्लोवाकिया में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। स्लोवाकिया गणराज्य में भारतीय राजदूत अपूर्वा श्रीवास्तव ने आकाशवाणी को बताया कि स्लोवाकिया में योग और आयुर्वेद बहुत लोकप्रिय हैं। हमारे संवाददाता ने बताया कि भारतीय दूतावास और अन्य संगठन राजधानी ब्रातिस्लावा और अन्य स्थानों पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं।
3: स्लोवाक रिपब्लिक में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए भारतीय दूतावास का मुख्य कार्यक्रम ब्रातिस्लावा शहर में आयोजित किया जाएगा। दूतावास मशहूर ब्रातिस्लावा कैसल में भी एक योग कार्यक्रम आयोजित करेगा। स्लोवाकिया में भारत की राजदूत अपूर्वा श्रीवास्तव ने बताया कि दूतावास परिसर में हर दिन 2 योग कक्षाएं आयोजित की जा रही हैं, और अब पूरे स्लोवाकिया में सैकड़ों योग प्रशिक्षण केंद्र संचालित हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हाल ही में हुई स्लोवाकिया यात्रा के दौरान आयुष मंत्रालय द्वारा हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन से स्लोवाकिया में योग को और मजबूत करने के रास्ते खुलने की उम्मीद है। स्मृति एस पल्लुरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: इस कड़ी में आकाशवाणी समाचार आयुष राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार प्रताप राव जाधव का विशेष साक्षात्कार प्रसारित करेगा। आकाशवाणी FM गोल्ड 100.1 MHz चैनल पर यह साक्षात्कार आज रात 9:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। श्री जाधव ने बताया कि कामकाजी लोगों के लिए सरकार ने वाईब्रेक ऐप भी शुरू किया है।
4: लोग दिन भर चेयर पे बैठे काम करना पड़ता है, वो लोग भी जब लंच ब्रेक होता है तब तक बहुत सारी थकान वो लोगों में आती है, तो वो थकान दूर करने के लिए भी उनके लिए वाई ब्रेक नाम का एक हमने ऐप निकाला है कि उसमें 10 मिनट में तुम चेयर पर बैठे बैठे कौन से आसन कर सकते हो, करने से जो भी तुम्हारा थकान आई होगी वो दूर हो जाएगी।
0: भारत सोमवार से शुरू हो रही 2 दिवसीय ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक की मेजबानी करेगा। बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल करेंगे। विदेश मंत्रालय के अनुसार बैठक में ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और प्रतिनिधिमंडल नई सुरक्षा चुनौतियों पर विचार विमर्श करेंगे। बैठक में नई तकनीक से जुड़े सुरक्षा खतरों और आतंकवाद से निपटने के उपायों पर भी चर्चा होगी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा करते हुए उन्हें मजबूत और प्रभावशाली नेता बताया है। उन्होंने कहा कि श्री मोदी चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ दुनिया के सबसे प्रभावशाली नेताओं में से एक हैं। एक साक्षात्कार में राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि श्री मोदी के पिछले 12 सालों के नेतृत्व

0: तो में भारत को मजबूती और स्थिरता मिली है। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्रों और सिक्किम में कल तक कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल और देश के उत्तर पूर्वी हिस्सों में भी बारिश की संभावना व्यक्त की है। भारतीय सूचना सेवा के पूर्व अधिकारी दीपांकर मुखोपाध्याय का कल रात लंबी बीमारी के बाद कोलकाता में निधन हो गया। वे 77 वर्ष के थे। क्रिकेट में चेन्नई में भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरे और अंतिम एक दिवसीय क्रिकेट मैच में ताजा समाचार मिलने तक अफगानिस्तान ने 12वें ओवर में 4 विकेट पर 42 रन बना लिए हैं। उधर फीफा फुटबॉल विश्व कप में ब्राजील ने हैती को 3-0 से हराकर पहली जीत दर्ज की। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ ओडिशा में 47,600 करोड़ रूपये से अधिक के विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास कर रहे हैं। सरकार ने 16 फिक्स डोज कॉम्बिनेशन दवाओं के उत्पादन, बिक्री और वितरण पर प्रतिबंध लगाया। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी द्वारा कल होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा से पहले देश भर में मॉक ड्रिल। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्रों और सिक्किम में कुछ स्थानों पर कल तक मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया। भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरा और अंतिम एक दिवसीय क्रिकेट मैच चेन्नई में जारी। और फीफा विश्व कप में ब्राजील ने हैती को 3-0 से हराकर पहली जीत दर्ज की। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा करें। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। पेश है कार्यक्रम आपकी फरमाइश। सभी सुनने वालों को आपके रेडियो मित्र दिनेश कुमार का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं हम अकेले हम अकेले तुम फिल्म के गीत से। आवाज शैली शैलेंद्र की, शब्द रचना मजरू सुल्तानपुरी की और संगीत अनु मलिक का है। और पसंद करने वाले हैं आप सब डोंगरगांव जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से राष्ट्रपाल गजभिये, राधिका गजभिये, बेबी अनिष्का और तन्मय गजभिये। मयंक रेडियो श्रोता संघ नवागढ़ कटई से इसे पसंद कर रहे हैं नारायण प्रसाद वर्मा, चंद्रकांत वर्मा, सीमा शारदा, दामिनी वर्मा। इस गीत की एक पसंद हमें मिली है रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा, लच्छनपुर से विश्वनाथ साहू, लेवई से गुलाब दास, मानिकपुरी दतरंगी से भागवत वर्मा और घंटाघर चौक खंडवा से संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया, गुनगुन, संप्रीत, हेमेंद्र और सन्मति पंचोलिया की। तो आइए सुनते हैं आप सबकी पसंद का फिल्म अकेले हम अकेले तुम का गीत। आवाज शैली शैलेंद्र की।

अकेले हम अकेले तुम, इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना शैली शैलेंद्र की आवाज में। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश से कार्यक्रम आपकी फरमाइश। कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं जिसे हमने लिया है फिल्म यादों की बारात से। आवाज आशा भोसले और मोहम्मद रफी की है, शब्द रचना मजरू की और संगीत राहुल देव बर्मन का। और पसंद करने वाले श्रोता हैं आदर्श नगर मलोड पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, सौरव शर्मा। गौरीनगर इंदौर से इस गीत को पसंद कर रहे हैं आनंद कुमार कामले, रेखा कामले, राखी, पारस, तपस्या और करिश्मा कामले। इसी गीत को पसंद कर रहे हैं मयंक रेडियो श्रोता संघ नवागढ़ कटई छत्तीसगढ़ से नारायण प्रसाद वर्मा, चंद्रकांत वर्मा, सीमा शारदा, दामिनी वर्मा। इस गीत की एक पसंद हमें मिली है मेहर नगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत गवांडकर, श्रीमती सविता गवांडकर, सिद्धांत गवांडकर, प्रिंस एकांश गवांडकर। आकार हाइट्स बहादुरा नागपुर से शैलेश गवांडकर, श्रीमती वैशाली गवांडकर, श्वेता, सुमित गवांडकर, कुमारी ध्वनि गवांडकर, परी की। आप सबकी पसंद का गीत सुनते हैं आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाज में फिल्म यादों की बारात से।

आकाशवाणी मध्य प्रदेश से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपकी फरमाइश और मैं आपके साथ हूं आपका रेडियो मित्र दिनेश कुमार। कार्यक्रम की अगली फरमाइश हमें मिली है डोंगरगांव जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से राष्ट्रपाल गजपिए राधिका गजपिए बेबी अनिष्का और तन्मय गजपिए की। बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से इस गीत को सुनना चाहा है रोशन देवांगन

कौशल्या देवांगन, हेमलता देवांगन, डिंपल देवांगन। रेलवे कॉलोनी बठिंडा पंजाब से इसे सुनना चाहते हैं जगमाल सिंह डागला, हैप्पी डागला, जेएस नायक, शोभा नायक, समस्त डागला परिवार। औरंगाबाद से राजेश साबले, शीतल, राजेश, राजदीप, राजेश और राशि राजेश। आप सब सुनना चाहते हैं इंदिवर का लिखा गीत राजेश रोशन के संगीत निर्देशन में, आवाज साधना सरगम और कुमार शानू की है और फिल्म है जुर्म।

जुर्म फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे कुमार सानू और साधना सरगम की आवाज में। आकाशवाणी मध्य प्रदेश से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपकी फरमाइश और आपके साथ मैं हूं आपका रेडियो मित्र दिनेश कुमार। कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं जिसे लिखा है हसरत जयपुरी ने, संगीत शंकर जयकिशन का है, आवाज लता मंगेशकर और मुकेश की और फिल्म है आस का पंछी। गीत को पसंद करने वाले श्रोताएं हैं धमनी किरवई से समेलाल धीवर, युवांश धीवर, कुणाल धीवर, गोविंद धीवर, मालवा रेडियो श्रोता संघ प्रमिलागंज आलोड जिला रतलाम मध्य प्रदेश से बलवंत कुमार वर्मा, राजूबाई वर्मा, माया वर्मा, शोभा वर्मा, राहुल, ज्योति, अतुल, प्रियांश वर्मा, ऋषि वर्मा। इसी गीत को पसंद कर रहे हैं सपना संगीता रोड इंदौर से, लाल फतेह चंदानी, लीला फतेह चंदानी, संगीता, सुनीता, पिंकेश, साक्षी, मनन और तानिया। तो सुनते हैं आप सबकी पसंद का फिल्म आस का पंछी का गीत जिसे आवाज दी है लता मंगेशकर और मुकेश ने।

और कार्यक्रम के अंत में सुनिए दम लगा के हईशा फिल्म का गीत, फिल्म का गीत पपोन की आवाज में। शब्द रचना वरुण ग्रोवर की और संगीत अनु मलिक का है। पसंद करने वाले श्रोता हैं छत्तीसगढ़ भाटापारा दतरंगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा और जावेंद्र कुमार वर्मा।

0: अभी आपने सुना पप्पून की आवाज में दम लगा के हर्षा फिल्म का ये गीत। इस गीत के साथ ही कार्यक्रम आपकी फरमाइश अब संपन्न होता है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। पेश है इस घंटे की खास खबरें।
1: पिछले घंटे की खास खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पश्चिम बंग दिवस पर पश्चिम बंगाल के लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि पश्चिम बंगाल साहित्य, संगीत, कला, आध्यात्मिकता, विज्ञान, व्यापार, वाणिज्य और समाज सुधार के माध्यम से देश के इतिहास में महत्वपूर्ण योगदान करने वाला राज्य है। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव और केंद्रीय आवास एवं

शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने आज इंदौर जिले के सावेर में इंदौर उज्जैन ग्रीनफील्ड कॉरिडोर का भूमि पूजन किया। कॉरिडोर की लागत 2,935 करोड़ रुपए, लंबाई 48 किलोमीटर है। भोपाल में कल दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक होने वाली नीट परीक्षा को लेकर नगरीय यातायात पुलिस ने एडवाइजरी जारी की है। शहर में परीक्षा के लिए कुल 32 केंद्र बनाए गए हैं और मेट्रो निर्माण कार्य के चलते कुछ मार्गों पर यातायात प्रभावित रहेगा, जिसके लिए वैकल्पिक मार्ग सुझाए गए हैं। राज्य शासन ने 21 जून को मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए जिलेवार कार्यक्रमों की मुख्य अतिथि सूची जारी कर दी है। प्रदेश में जिला, विकासखंड और पंचायत स्तर पर सामूहिक योग कार्यक्रम होंगे, जिनमें विद्यालयों, महाविद्यालयों और तकनीकी शिक्षा संस्थानों की भागीदारी रहेगी। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग 26 जून को मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस के उपलक्ष्य में 17 से 26 जून तक देश भर में नशा मुक्त भारत सप्ताह मना रहा है और आकाशवाणी की 90 वर्षों की स्वर्णिम यात्रा के अवसर पर आकाशवाणी के उद्घोषकों द्वारा लिखी गई अनाउंसर्स डायरी पुस्तक का विमोचन आज भोपाल के श्यामला हिल्स स्थित इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय में होगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

ये आकाशवाणी भोपाल है। मीडियम वेव पर सभा समाप्त करने से पहले एक नजर आज की सांतकालीन सभा के कार्यक्रमों पर। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा हुगली पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त जारी करने के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम का सीधा प्रसारण आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित किया जाएगा दोपहर 3:55 पर। सांतकालीन सभा में आकाशवाणी मध्य प्रदेश के प्रसारण के अंतर्गत शाम 5:02 पर सुनिए कार्यक्रम युववाणी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी रीवा की प्रस्तुति होगी। फिल्म संगीत का आनंद श्रोता ले सकते हैं शाम 5:33 पर, 6:15 पर और रात 8:35 पर। पॉडकास्ट सीरीज प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ का 6वां भाग आप सुनेंगे शाम 6:00। आकाशवाणी भोपाल के प्रसारण के अंतर्गत 7:21 पर सुनिए ग्रामीण श्रोताओं का कार्यक्रम ग्राम सभा। प्रायोजित कार्यक्रम उड़ान का प्रसारण समय है 7:45। समाचार सेवा प्रभाग आकाशवाणी द्वारा विशेष श्रृंखला सरकार के 12 वर्ष आप सुनेंगे रात 8:00। 9:30 पर आप सुनेंगे चित्र भारती और रात 10:00 संगीत के अखिल भारती कार्यक्रम में सुनिए विवेक कर्माही का गायन। ये दोनों कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित किए जाएंगे। मीडियम वेव 188.32 यानी 1593 किलोहर्ट्ज़, साथ ही डीटीएच के ऑडियो चैनल और न्यूज ऑन AIR एप्लीकेशन पर यह आकाशवाणी भोपाल है। इस समय दोपहर के 3:02:21 हुए हैं। हमारी ये सभा मीडियम वेव पर अब समाप्त होती है। शाम 5:00 अपने कार्यक्रमों के साथ हम पुनः उपस्थित होंगे। इस बीच प्रसारण डीटीएच पर जारी रहेगा।

0: गणेश
1: जी स्थान भी लिखेंगे?
0: नहीं, वो तो उसमें जाएगा, स्थान स्थान उसमें थोड़ी जाता। जब जी आप पेज ऐसे करना एक दूसरे फिर पढ़ना नहीं, क्या वो पेज की आवाज कट जाएगी,
1: तो अलग अलग कर देते हैं ना।
2: हाँ। अलग
0: खड़े हो गए, बैठे रहते तो हमें लगता बैठो सर बैठो।

444.4 मीटर अर्थात 675 किलो हर्ट्ज पर और प्रसार भारती के ऑफिशियल ऐप न्यूज ऑन AIR पर यह आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। शाम के 5 बजने को है। अब हमारी आज की सांध्यकालीन सभा आरंभ होती है। सभा के आरंभ में रिले करते हैं भोपाल केंद्र से न्यूज हेडलाइंस।

0: कई सारी।
1: किसान सम्मान निधि पीएम योजना की जो 23वीं किस्त का हस्तांतरण माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने रिमोट का बटन दबाकर किया, और इसके साथ ही ये किसानों के

0: खाते में ये रकम पहुंच गई। आज 9 करोड़ 44 लाख से अधिक किसानों के बैंक खातों में 18,880 करोड़ रुपए वो उनके खाते में पहुंचे हैं।
1: एंड सिद्धार्थ, मोर देन 2 crore वुमेन बेनिफिशरीज आर अमंग्स दोज फार्मर्स हु विल बी गेटिंग दिस डायरेक्ट ट्रांसफर, दिस इंस्टॉलमेंट ऑफ पीएम किसान सम्मान निधि। इमेजिन द लेवल एट विच दिस scheme is now operationalized, is functional, is being executed. Imagine what is happening. And now the moment that everyone has been waiting for, everyone is now waiting for the fact that yes, the Honorable Prime Minister will speak his heart out. And there he is on stage, Prime Minister Modi.
2: Mahadev. मंच पर विराजमान राज्यपाल आरएन रवि जी, यहां के लोकप्रिय और ऊर्जावान मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी जी, अन्य सभी महानुभाव और बंगाल के मेरे भाई और बहनों, बाबा तारकनाथ और बंगाल की पुण्य भूमि पश्चिम बंग दिवस की ऐतिहासिक तारीख और इतनी बड़ी संख्या में आप सभी की उपस्थिति आज चुनाव और शपथ ग्रहण के बाद मुझे पहली बार आपके बीच आने का सौभाग्य मिला है। बंगाल की हवा में अब एक नई ताजगी है। यहां के कण कण से एक नई खुशबू आ रही है। ऐसा लग रहा है जैसे बंगाल अब बेड़ियों से आजाद हो गया है, जैसे बंगाल का गौरव लौटने का आरंभ हो गया है। आज का ये कार्यक्रम साक्षी है, इन परियोजनाओं का शुभारंभ गवाह है कि हमारा बंगाल अपने नए भविष्य के निर्माण में जुट गया है। बंगाल के लोगों के चेहरों की चमक, गांव गांव में खुशी और विश्वास का भाव, मैं आपके इस आनंद में भागीदार बनने के लिए आया हूं। आपका एक वोट, एक चुनाव कितना कुछ परिवर्तन कर सकता है ये बंगाल में साफ साफ नजर आ रहा है। परिवर्तन भालो लागे छे तो मैं इस अवसर पर बंगाल के लोगों को और सभी देशवासियों को इस आयोजन की, पश्चिम बंग दिवस की बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, आज आप सभी की मैं स्वच्छता से स्वागत पहल के लिए भी सराहना करना चाहता हूं, भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं। स्वच्छता हमारे दैनिक जीवन का अभिन्न हिस्सा होना चाहिए। जहां स्वच्छता होगी वही विकास भी उतना ही सुंदर दिखेगा। मैं आपको स्वच्छता से स्वागत के लिए भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, इस बार पश्चिम बंग दिवस की ये तारीख और भी

इतिहास है। आजादी के बाद बंगाल के उज्जवल भविष्य के लिए जो सपना देखा गया था, बंगाल की महान आत्माओं ने जो परिकल्पना की थी, आज एक तरह से पहली बार हम पश्चिम बंग दिवस पर उन सपनों को सच्चाई में बदलते देख रहे हैं। ये ऐतिहासिक तारीख पश्चिम बंगाल के विकास की प्रेरणा बने, हम एक नया और गौरवशाली इतिहास रचे। आज बीजेपी एनडीए सरकार में इसके लिए विकास के महाअभियान की शुरुआत हो रही है। साथियों, बंगाल में दशकों तक पहले लेफ्ट और फिर टीएमसी ने जो गड्ढे बनाए, उन्हें भरने के लिए डबल इंजन सरकार ने सुपर फास्ट स्पीड से काम करना शुरू कर दिया है। बिजली की रफ्तार से फैसले हो रहे हैं, रुकी हुई योजनाओं पर काम आगे बढ़ने लगा है। इसी कड़ी में आज यहां सैकड़ों करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास हुआ है। रेल, रोड, कृषि, मछली पालन, इससे जुड़ी ये परियोजनाएं बंगाल के विकास को नई गति देगी। इन परियोजनाओं से यहां की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। मैं बंगाल के लोगों को इन विकास परियोजनाओं की बधाई देता हूं। आज पीएम किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त भी जारी की गई है। देश भर के 9 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खातों में लगभग 19,000 करोड़ रुपए सीधे भेजे गए हैं। मैं देश के सभी लाभार्थी मेरे किसान परिवारों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, गुलामी के दौर में हमारे बंगाल ने क्या कुछ नहीं सहा, कितने बलिदान दिए, कितने त्याग किए। 1946 में कोलकाता में हुई हिंसा, नोआखली के दंगे, कितने निर्दोष बंगाली मानुष, बंगाल के लोग उसकी भेंट चढ़ गए। भाई बहनों, बंगाल ने रक्तपात सहा, बंगाल ने अपनों को खोया, अपनी मातृभूमि के टुकड़े होते देखे, लेकिन बंगाल ने अपनी अस्मिता और पहचान को नष्ट नहीं होने दिया। इसी का परिणाम था जब पूरे बंगाल को भारत से अलग करने की साजिश हो रही थी, तब अलग पश्चिम बंगाल बनाकर उन मंसूबों को कामयाब नहीं होने दिया गया। हजारों वर्ष पुरानी सभ्यता और संस्कृति, यहां की मूल आस्था और परंपरा, तब अनेक संघर्षों के बाद बच गए थे, और आज भी वो मूल्य इस धरती के संस्कार आज पश्चिम बंगाल के रूप में

न केवल सुरक्षित है बल्कि जीवंत भी है। इसलिए पश्चिम बंग दिवस के रूप में हम केवल एक तारीख को याद नहीं कर रहे हैं, हम पूरे इतिहास को याद कर रहे हैं। हम हजारों साल पुरानी बंगाल की विरासत को नमन कर रहे हैं। साथियों, आज की पीढ़ी को हमें बार बार पश्चिम बंग दिवस की अहमियत बताने की जरूरत है। उस दौरान क्या हो रहा था, ये युवा पीढ़ी को जानना जरूरी है। जब पूरे बंगाल को पाकिस्तान का हिस्सा बनाए जाने की कोशिशें हो रही थी, तो कांग्रेस उन षड्यंत्रकारियों के सामने घुटने टेके पड़ी थी। और यही वो समय था जब डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने उसके खिलाफ आवाज उठाई। अप्रैल 1947 में उन्होंने ऐतिहासिक रिजोल्यूशन पास कराया। उन्होंने घोषणा की पूरा बंगाल पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बनेगा। इसके लिए बंगाली हिंदू होमलैंड मूवमेंट शुरू किया गया। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी इसका नेतृत्व कर रहे थे। प्रसिद्ध वैज्ञानिक मेघनाथ साहा, इतिहासकार आरसी मजुमदार, इतिहासकार जदुनाथ सरकार, सुनीति कुमार चट्टोपाध्याय, बंगाल के ऐसे कितने प्रबुद्ध और प्रसिद्ध लोग इस मूवमेंट का हिस्सा बने। जीडी बिरला जैसे उद्यमियों ने इसे आगे बढ़ाया। मतवा लीडर पीआर ठाकुर ने आगे आकर इस मूवमेंट को समर्थन दिया। अखबारों में लेख लिखे गए, किससे कहानियां लिखी गई। वंदे मातरम की भावना को एक बार फिर स्फुरित किया गया। बंगाल की जिस आवाज को मजहबी एजेंडों से दबाया जा रहा था, इस जन आंदोलन से वो स्वर फिर से मुखर हो उठे। इसी का नतीजा था भारत विरोधी लोगों को ये पता चल गया, पूरे बंगाल को भारत से तोड़ना नामुमकिन होगा। और पश्चिम बंगाल के रूप में ये हिस्सा मां भारती के साथ रह गया। साथियों, जिस भावना से पश्चिम बंगाल को बचाया गया था आजादी के बाद, उसी भावना पर इसे आगे बढ़ाने की जरूरत थी। लेकिन दुर्भाग्य से ठीक इससे उलट काम हुआ। पश्चिम बंग दिवस और इसकी भावना को भुलाने की कोशिश हुई। सियासी एजेंडों के कारण इतिहास का व्हाइट वॉश किया गया। भाइयों बहनों, विभाजन के समय जो कांग्रेस बंगाल को लावारिस छोड़ना चाहती थी, विभाजन के बाद उसने बचे हुए पश्चिम बंगाल में भी तुष्टीकरण के खेल खेलने शुरू कर दिए। पश्चिम बंगाल के इस इतिहास को दबाया गया। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जनसंघ के संस्थापक बने।

इसलिए उनके योगदान को नकारा गया। जिस भावना को लेकर उन्होंने बंगाल के लिए लड़ाई लड़ी थी, उस विचार को भी खत्म करने की कोशिशें होती रही। गुरुदेव रविन्द्रनाथ ठाकुर, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, स्वामी विवेकानंद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस और ईश्वर चंद्र विद्यासागर जैसे जिस धरती का ऐसी महान संतानों से नाता रहा हो, उस पर विदेशी विचारधारा थोपी गई। पहले कांग्रेस, फिर लेफ्ट, फिर टीएमसी, दशकों तक पश्चिम बंगाल को सहेजने और संवारने की जगह इसे अवैध घुसपैठियों का अड्डा बनने दिया गया। जो बंगाल भारत के विकास का नेतृत्व कर सकता था, वो आगे बढ़ने की जगह पिछड़ता चला गया। साथियों, आज पश्चिम बंग दिवस पर हमारा कर्तव्य है, हम संकल्प लें, अब इतिहास की वो गलतियां दोहराई नहीं जाएगी। अब पश्चिम बंग दिवस से प्रेरणा लेकर नया इतिहास रचा जाएगा। साथियों, दशकों के कुशासन ने पश्चिम बंगाल को मीलों पीछे पहुंचा दिया है। आप सबने देखा है, पुरानी सरकारों के समय में कैसे हालात हो गए थे। यहां से बड़े उद्योगों का पलायन हुआ, छोटे उद्योग धंधे ठप पड़ते चले गए, युवाओं का रोजगार छिनता गया, संसाधनों पर घुसपैठियों का कब्जा होता चला गया। जो पश्चिम बंगाल कभी अवसरों की भूमि होती थी, वो पलायन का केंद्र बनती चली गई। इसी माहौल में आपने एक संकल्प लिया, टीएमसी सरकार को पलटने का, उसे हटाने का। आपने बीजेपी को आशीर्वाद दिया, रिकॉर्ड सीटों के साथ हमें विजयी बनाया। और आज पूरा देश देख रहा है कैसे तुरंत ही इसका नतीजा भी बंगाल को मिलने लगा है। जिन अधिकार से आपको बरसों तक दूर रखा गया, आज वो हक आपके द्वार तक पहुंच रहा है। मैंने चुनाव के समय आपको आयुष्मान भारत योजना की गारंटी दी थी। जब बंगाल के हर गरीब को आयुष्मान भारत का लाभ मिलना तय हो गया है, माताओं बहनों को अन्नपूर्णा योजना का सीधा लाभ मिलना शुरू हो गया है, हर घर स्वच्छ पानी पहुंचे, इसके लिए भी पश्चिम बंगाल सरकार और केंद्र सरकार के बीच जल जीवन मिशन को लेकर एमओयू साइन हो गया है। हमने चुनाव के समय बंगाल के युवाओं से वादा किया था, वो वादा पूरा करते हुए नौकरियों में आयु की सीमा में ढील दी गई है। महिलाओं को फ्री बस यात्रा का वादा भी पूरा हो चुका है। साथियों, सालों साल राजनीतिक दुश्मनी में जिन योजनाओं को रास्ते में ही अटकाया गया, लटकाया गया, आज उन सारी बंदिशों को तोड़कर जनकल्याण शिविरों के जरिए

सरकारी योजना का लाभ सीधे आप तक पहुंचाया जा रहा है। अब कोई बिचौलिया नहीं, कोई रुकावट नहीं, सिर्फ आपके अधिकार पर फोकस है, बंगाल के विकास पर फोकस है, बंगाल और देश की सुरक्षा पर फोकस है। आपने देखा होगा सीमा पर फेंसिंग के लिए पिछली सरकारों ने जमीन ट्रांसफर का जो काम दशकों से रोक रखा था, नई सरकार बनते ही वो काम भी पूरा करने का काम शुरू हुआ है। भाइयों बहनों, मुझे खुशी है कि पश्चिम बंगाल में औद्योगिक प्रगति की नींव फिर से बननी शुरू हो गई है। इस नींव के दो अभिन्न अंग है, ईमानदार और पारदर्शी शासन, और दूसरा कानून का राज। पश्चिम बंगाल ही नहीं, पूरा देश आज इस बदलाव को देख रहा है। जिन्होंने आपको लूटा वो खुद आकर लूट के पैसे लौटा रहे हैं। बड़े बड़े लुटेरों को जेल भेजा जा रहा है, सिंडिकेट वाले जनता से माफी मांग रहे हैं, टोल नाकों पर अवैध वसूली करने वाले गुंडे नाके छोड़कर भाग गए हैं। बंगाल के लोग बिना रोक टोक के आ जा रहे हैं। एखन काट मानी शेष काज शुरू होए गए छे। साथियों, जो बंगाल अभी तक खराब सड़कों और खस्ताहाल इंफ्रास्ट्रक्चर से जूझ रहा था, वहां अब वर्षों से लटके अटके प्रोजेक्ट्स तेजी से आगे बढ़ने लगे। आप देखिए, चिंगरी घाटा क्रॉसिंग पर कोलकाता मेट्रो की ऑरेंज लाइन का रुका हुआ काम पूरा भी हो गया है। हावड़ा में लगभग 100 करोड़ रुपए की लागत से नए डिविजनल रेलवे अस्पताल की नींव भी रखी गई है। यहां इमरजेंसी सेवाएं होगी और गंभीर बीमारियों के इलाज की व्यवस्था होगी। पूर्व मेदिनीपुर में हौर और राधा मोहनपुर के बीच रोड ओवर ब्रिज, संकरेल संतरागाछी लिंक लाइन, ऐसे प्रोजेक्ट से यहां के लोगों को सुविधा होने वाली है। साथियों, आज पीएम किसान सम्मान निधि के तहत देश भर के 9 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खातों में पैसे भेजे गए हैं और पश्चिम बंगाल के किसानों के लिए एक और खुशी की खबर है। आज से राज्य में पीएम फसल बीमा योजना शुरू की जा रही है। फसल बीमा योजना मुश्किल समय में किसान के परिवार को सहारा देगी। फसल को नुकसान होने पर किसान पर बोझ नहीं पड़ेगा। साथियों, अब पश्चिम बंगाल डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन से भी जुड़ रहा है। एग्रीस्टैक के माध्यम से किसान रजिस्ट्री बनेगी, गांवों के नक्शे और बोई गई फसल की जानकारी डिजिटल रूप में उपलब्ध होगी। खाद की खरीद, किसान क्रेडिट कार्ड, डीबीटी और न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद जैसी सेवाओं में इससे आसानी होगी। साथियों, कृषि क्षेत्र में जो सबसे पिछड़े जिले हैं उन्हें आगे लाने के लिए सरकार ने पीएम धनधान्य कृषि योजना शुरू की है। इसमें पश्चिम बंगाल के 4 जिले

पुरुलिया, दार्जिलिंग, अलीपुरद्वार और झाड़ग्राम शामिल है। इन जिलों में खेती की उत्पादकता बढ़ाने, स्टोरेज की सुविधा बनाने और किसानों के लिए लोन आसान करने पर काम होगा। बंगाल में मछली पालन से किसान, मछुआरे, व्यापारी सब जुड़े हैं। इसे दक्षिण 24 परगना के फेसरगंज फिशिंग हार्बर की क्षमता बढ़ाई गई है। वीरभूम में आधुनिक फिश मार्केट बनाने का भी काम हुआ है। अब बंगाल थमेगा नहीं, बंगाल अब इतिहास रचेगा। ए बार बांग्ला थाम्बे ना, एखोन इतिहास गोरबे। साथियों, आज इस कार्यक्रम में देश के अलग अलग हिस्सों के लाखों किसान साथी भी जुड़े हुए हैं, वहां के मुख्यमंत्री गवर्नर भी जुड़े हुए हैं, देश भर की सरकारों के मंत्री भी जुड़े हुए हैं। इसके साथ साथ लाखों किसान भी आज हमारे इस दिवस को मनाने में वो वहां भी भागीदार बने हैं। ये सभी किसान पीएम किसान सम्मान निधि के लाभार्थी हैं। आज अपने इन सभी किसान भाइयों बहनों से मैं एक आग्रह भी करना चाहता हूं, और मेरे किसान भाई बहन मेरी बात को जरा गौर से सुनिए। मैं आपको हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं, क्योंकि हमें अपने बच्चों को बर्बाद होते खेत नहीं देने हैं। हमें अपने बच्चों को उपजाऊ खेत देने हैं। हमें हमारी धरती माता को बचाना है। इस समय भारत सरकार खेत बचाओ अभियान चला रही है। इसके तहत मिट्टी की सेहत बचाने, केमिकल खाद का इस्तेमाल कम करने और प्राकृतिक खेती अपनाने पर जोर दिया जा रहा है। आप भी ज्यादा से ज्यादा संख्या में खेत बचाओ अभियान से जुड़े, खुद का खेत बचाने का संकल्प करें, आसपास के किसानों को खेत बचाने के लिए प्रेरित करें, और हम सब मिलके हमारी धरती मां की रक्षा करें। वो हमारी मां है। हम केमिकल से हमारी मां को मारने का पाप नहीं कर सकते हैं। हमें हमारी धरती मां को बचाना होगा। साथियों, भारत 2047 तक विकसित देश बनने के लक्ष्य पर काम कर रहा है। विकसित भारत के संकल्प का सबसे बड़ा आधार है पूर्वी भारत का विकास। इसके लिए हम मिशन पूर्वोदय पर काम कर रहे हैं। इसमें बंगाल की भूमिका बहुत बड़ी है। बंगाल की प्रगति से पूर्वी भारत की गति बढ़ेगी। भाइयों बहनों, विकास के इस अभियान में हमें एक और बात का ध्यान रखना है। विकास की पहली शर्त है, जिसे हमें कभी भूलना नहीं है, और वो है शांति, सौहार्द और सामाजिक स्थिरता। हमें बंगाल की सांस्कृतिक पहचान और सामाजिक ताने बाने को और मजबूती देनी है। हमें सबको साथ लेकर चलना है। साथियों, कल देश और दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी मनाया जाना है। इस बार मैं बंगाल में ही योग दिवस का हिस्सा बनूंगा। स्वामी विवेकानंद

0: और महर्षि अरविंद जैसे योगियों की भूमि, यहां से जो संदेश जाएगा उससे पूरे विश्व का मार्गदर्शन होगा। मैं चाहूंगा इस बार बंगाल कोने कोने में योग दिवस के आयोजन हो, आप सब योग करें, योग दिवस का हिस्सा बने। इसी अनुरोध के साथ मैं एक बार फिर आप सभी को विकास परियोजनाओं की बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज जब हम उत्साह और उमंग के साथ पश्चिम बंगाल दिवस मना रहे हैं तो मेरा आप सबसे आग्रह है, अपना मोबाइल फोन निकालिए, अपने मोबाइल फोन की फ्लैश लाइट चालू कीजिए और हम सब मिलकर के आज ये बंग दिवस मनाएं। सबके मोबाइल फोन की लाइट चालू हो, मेरे साथ बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे वंदे वंदे वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद।
1: Moving towards a future, towards a Viksit Bharat, developed India by 2047, we hope and pray that the resolve and the vow of the Prime Minister bears fruit and we see all those great results in our lives, in the lives of the country, in the lives...
2: आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम लोक संगीत। लोक संगीत कार्यक्रम में आज कलाकार हैं शंकर लाल प्रजापति। आपके साथ ढोलक पर संगीत कर रहे हैं महेश कुमार। कार्यक्रम के आरंभ में सुनते हैं चौकड़िया।

0: शंकरलाल प्रजापति से अभी आपने सवाल जो कर लिया, आइए इन्हीं से अब सुनते हैं चेतावनी।
1: हाँ हाँ ये बुढ़ापो कौन है।

सुंदरलाल प्रजापति से अभी आपने सुनी चेतावनी। श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम लोक संगीत आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र से। कार्यक्रम में लीजिए अब सुनिए वर्षा गीत। कलाकार एक बार फिर सुंदरलाल प्रजापति।

0: अभी आपने सुना वर्षा गीत, कलाकार थे शंकर लाल प्रजापति। आइए अब सुनते हैं जल विहार गीत, कलाकार एक बार फिर शंकर लाल प्रजापति।
1: जल विहार खोने के रे।

आपने सुना शंकर राय प्रजापति से जल बिहार गीत। इसी के साथ कार्यक्रम लोक संगीत अब संपन्न होता है। आज इस कार्यक्रम में कलाकार थे शंकर राय प्रजापति। आपके साथ ढोलक पर संगत कर रहे थे महेश कुमार। रेडियो नेट पर और प्रसार भारती के ऑफिशियल ऐप न्यूज़ ऑन एआईआर पर यह आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है।

আমি পার অফিসার ভারতীকে অফিসের মৌসুম এআইআর পার ये आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। आइए अब आपको सुनवाते हैं सुगम संगीत। सुगम संगीत में आज कलाकार हैं सुनामी जलोटा। आइए कार्यक्रम की शुरुआत में सुनते हैं अनिल जलोटा के संगीत निर्देशन में ये गजल।

अनूप जलोटा के संगीत निर्देशन में अभी आपने सुना सोनाली जलोटा को। लीजिए अब सुनिए सोनाली जलोटा के सुर में जिगर मुरादाबादी की रचना को। संगीत अनूप जलोटा का है।

0: अब कैंसर इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं,
1: क्योंकि अब ग्वालियर के कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में पेट सीटी स्कैन, लीनियर एक्सेलरेटर जैसे एडवांस मशीन उपलब्ध है। कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, कैंसर हिल्स, मंदिर की माता।
2: सुगम संगीत कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं पारंपरिक गीत, कलाकारी पर फिर सुनिए जलोटा।

0: सुनहरे जलूटे की सुर में अभी आपने सुना पारंपरिक गीत, संगीत दिया अनूप जलूटा ने।
1: अब कैंसर इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं,
2: क्योंकि अब ग्वालियर के कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में पेट सीटी स्कैन, लीनियर एक्सेलरेटर जैसे एडवांस मशीन्स उपलब्ध हैं। कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, कैंसर हिल्स, मंदिर की माता।
0: सुगम संगीत कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं। बीता में अपने भी के इस गीत को संगीत दिया अनूप जलूटा ने और आवाज सुना।

किताब लिखने में की रचना को अभी आपने सुना सुनहरी जलोटे के सुर में। आइए कार्यक्रम के अंत में सुनते हैं ताबिश रोमानी की रचना को, कलाकार एक बार फिर सुनहरी जलोटा।

0: अभी आप सुन रहे थे ताबिश रोमानी की रचना को। संगीत दिया अनूप जलोटा ने और कलाकार थी सोनाली जलोटा। इसी के साथ कार्यक्रम सुगम संगीत अब संपन्न होता है। आज इस कार्यक्रम में कलाकार थी सोनाली जलोटा। मीडियम ऐप पर और प्रसार भारती की ऑफिशियल ऐप न्यूज ऑन EIR पर यह आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। अब सुनिए बुंदेली लोकगीतों का कार्यक्रम लोकधारा। लोकधारा कार्यक्रम में आज कलाकार है महेश कुमार मिश्रा। आपके साथ ढोलक पर संगत कर रहे हैं गोविंद, बैंजो पर लखनलाल वेशकर और हारमोनियम पर सतीश कुमार पांडे। आइए कार्यक्रम की शुरुआत में सुनते हैं लोक शैलीबद्ध गीत।
1: मगन रहना हो, मगन रहना।

0: महेश कुमार मिश्रा से अभी आपने सुने लोक शैलीबद्ध गीत।
1: ग्वालियर के कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में डॉक्टर बी आर श्रीवास्तव के नेतृत्व में शुरू हुआ है एडवांस्ड एआई बेस्ड रेडियोथेरेपी सेंटर। सरकारी योजनाओं के तहत निःशुल्क इलाज भी उपलब्ध है।
2: कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, कैंसर हिल्स, ग्वालियर।
0: ये कहानी है एक नर्स और उसके अंतर्मन की।
3: ओके सैलरी, नहीं झुमके
4: ना,
3: पहले बचत,
4: नहीं झुमके।
3: सुनो, हर महीने थोड़ा बचाओ और थोड़ा निवेश करो और कुछ इमरजेंसी के लिए भी बचाओ ताकि रहो टेंशन फ्री।
4: लेकिन झुमकों का क्या,
3: जाते हो कि लगाओ इंजेक्शन।
5: आरबीआई कहता है
6: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।

गाते हुए आए अब आपको सुनवाते हैं एक और लोकशैली गीत, कलाकारी पर फिर महेश कुमार मिश्रा।

0: सुरेश कुमार मिश्रा से अभी आपने सुना लोकशैली बद्ध गीत।
1: ग्वालियर के कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में डॉक्टर बी आर श्रीवास्तव के नेतृत्व में शुरू हुआ है एडवांस्ड एआई बेस्ड रेडियोथेरेपी सेंटर। सरकारी योजनाओं के तहत निशुल्क इलाज भी उपलब्ध है।
2: कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, कैंसर हिल्स, ग्वालियर।

0: पूरा रशिया का जनसंख्या कितना है बताओ? 14 करोड़ जितनी। बहुत बड़ा नंबर है ना? पर बड़ा नंबर तो ये है कि भारत में लगभग इतने ही घरों में लगे हैं नल पिछले 12 सालों में। 16 करोड़ घरों में हर दिन हर मौसम आता है नल से निर्मल जल, जिससे करोड़ों महिलाओं को पानी ढोने से तो मुक्ति मिली ही, साथ गाँव में जल व्यवस्थापन की शक्ति भी मिली।
1: जल जीवन मिशन का विजन सिर्फ लोगों तक पानी पहुंचाने का ही नहीं है, ये डिसेंट्रलाइजेशन का, विकेंद्रीकरण का उसका भी एक बहुत बड़ा मूवमेंट है। ये विलेज ड्रिवन, विमेन ड्रिवन मूवमेंट है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं गिनी रहे कलाकार एक बार फिर महेश कुमार मिश्रा।

0: अभी अपने समय महेश कुमार मिश्रा से जुड़े रहे। श्रोताओं, आप सुन रहे हैं बुंदेली लोकगीतों का कार्यक्रम लोकधारा आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र से। इस कार्यक्रम में आज कलाकार है महेश कुमार मिश्रा। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब आपको सुनवाते हैं गाने।
1: चले राधा प्यारी जू, अरे बन गए।

0: अभी अपने सुनिए गाली महेश कुमार मिश्रा से। आइए इन्हीं से अब सुनते हैं भजन।
1: लड़का में

कार्यक्रम लोकधारा अब संपन्न होता है। अभी आप सुन रहे थे बुंदेली लोकगीतों का कार्यक्रम लोकधारा। आज इस कार्यक्रम में कलाकार थे महेश कुमार मिश्रा। आपके साथ ढोलक पर संगीत कर रहे थे गोविंद, बैंजो पर लखनलाल वंशकर और हारमोनियम पर सतीश कुमार पांडे। मीडियम एप पर और प्रसार भारती के ऑफिशियल एप न्यूज ऑन एआईआर पर यह आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है।

पर ऑब्जर्वेटरी के ऑफिशियल ऐप न्यूज़ॉन ईएनआर पर यह आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। आइए अब आपको बताते हैं आज के शेष कार्यक्रमों के बारे में। अब से कुछ देर बाद यानी 7:20 पर आप सुनेंगे ग्रामीण भाइयों का कार्यक्रम ग्राम सभा। इसमें आप सुनेंगे श्रोताओं के फोन कॉल्स पर आधारित बुंदेली लोकगीतों का फरमाइशी कार्यक्रम हेलो लोकरंजन। प्रस्तुति होगी रविन्द्र कुमार प्रजापति की। साथ ही होगी आज की सीख घरों में सोप पिट बनवाए। फिल्म संगीत रात्रि 8:35 पर। भोपाल केंद्र से आप सुन सकेंगे रात्रि 8:00 विशेष श्रृंखला सरकार के 12 वर्ष संस्कृति। रात्रि 9:30 पर राष्ट्रीय फिल्म पत्रिका चित्र भारती। रात्रि 10:00 संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम। दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे 9:15 पर स्पॉटलाइट। ये थे आज के शेष कार्यक्रम।

सुनिए कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में। कल सुबह 6:05 पर आप सुनेंगे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। खेती किसानी का प्रसारण समय रहेगा 6:35। श्री रामचरित मानस गायन 6:40 पर, चिंतन 6:50 पर, सब कुछ 20 पर हिंदी महक के अंतर्गत वार्ता योग का महत्व। वार्ताकार होंगे जगदीश प्रसाद भट्ट। भोपाल केंद्र से रिले करेंगे 7:30 पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर भारत के माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू की गरिमामयी उपस्थिति में जबलपुर में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण। सुबह 8:30 पर धारावाहिक गीता भाग 17। 8:43 पर फिल्म संगीत होगा। लोकरंग कार्यक्रम में 9 कलाकार होंगे देवी सिंह। फरमाइशी फिल्मों का फोन इन कार्यक्रम हेलो फरमाइश 9:30 पर प्रस्तुति होगी रविंद्र कुमार प्रजापति की। 10:30 पर पत्र उत्तर का साप्ताहिक कार्यक्रम भर दिए प्रस्तुति होगी रविंद्र कुमार प्रजापति की। शाम 5:30 पर फिल्म संगीत भजन संध्या शाम 6 कलाकार होंगे शर्मा बंधु। लोकधारा कार्यक्रम में 6:30 पर कलाकार होंगे विमला देवी परिहार। ये थे कल के कार्यक्रम। मीडिया नेट पर और प्रसार भारती के ऑफिशियल ऐप न्यूज़ ऑन एआईआर पर यह आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है।

रश्मि परिहार, उम्र करीब 20 वर्ष, पति का नाम श्री कृष्ण, निवासी ग्राम धुंदौली थाना जिला चालान। ये दिनांक 30 मई सन 2026 को घर से बिना बताए अपने बच्चे के साथ कहीं चली गई है। गुमशुदा महिला का शारीरिक विवरण, लंबाई 4.5 फीट, रंग सांवला, लंबा चेहरा, ये लाल साड़ी पैरों में चप्पल पहने हुए हैं। इनके बारे में किसी को कोई भी जानकारी प्राप्त हो तो इस नंबर पर संपर्क करें 9454401428। सूचना समाप्त हुई।

से लिए एक और गुमशुदा सूचना। गुमशुदा महिला का नाम नीलम, उम्र 28 वर्ष, पति का नाम महेंद्र सिंह, निवासी ग्राम मदनीपुर थाना गोहन जनपद जालौन। ये दिनांक 26 मई सन 2026 को सुबह 10 बजे से लापता है। गुमशुदा महिला का शारीरिक खुलिया, रंग गोरा, लंबाई 5.3 फुट, कंजी आंखें। इनके बारे में किसी को कोई भी जानकारी प्राप्त हो तो इस नंबर पर संपर्क करें 9454401430। सूचना समाप्त हुई।

0: विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पश्चिम बंगाल के जिला हुगली के तारकेश्वर में आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किश्त जारी की। 9,44,00,000 से अधिक लाभार्थी किसानों के बैंक खातों में 18,880 करोड़ से अधिक की धनराशि का हस्तांतरण किया गया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, इस बार पश्चिम बंगाल दिवस की यह तारीख और भी खास है। आजादी के बाद बंगाल के उज्जवल भविष्य के लिए जो सपना देखा गया था, बंगाल की महान आत्माओं ने जो परिकल्पना की थी, आज भाजपा सरकार में विकास के महाअभियान की शुरुआत हो रही है।
1: सुपर फास्ट स्पीड से काम करना शुरू कर दिया है। बिजली की रफ्तार से फैसले हो रहे हैं। रुकी हुई योजनाओं पर काम आगे बढ़ने लगा है। इसी कड़ी में आज यहाँ सैकड़ों करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास हुआ है। रेल, रोड, कृषि, मछली पालन, इससे जुड़ी ये परियोजनाएं बंगाल के विकास को नई गति देगी।
0: इससे पहले प्रधानमंत्री ने ओडिशा के मयूरभंज जिले के रायरांग में मोहन चरण मांझी सरकार के 2 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि आदिवासी आबादी द्वारा दशकों से झेली जा रही अभावग्रस्तता की जगह शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, आजीविका और सामाजिक उन्नति के नए अवसर मिल रहे हैं। इस अवसर पर उन्होंने 47,000 करोड़ रूपये से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने आज इंदौर जिले के सावेर में इंदौर उज्जैन ग्रीनफील्ड कॉरिडोर का भूमि पूजन किया। कॉरिडोर की लागत 2,935 करोड़ रुपए, लंबाई 48 किलोमीटर है। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि इंदौर उज्जैन ग्रीनफील्ड कॉरिडोर विकास का पर्याय बनेगा। इससे स्थानीय लोगों के साथ साथ भविष्य की पीढ़ियों को व्यापक लाभ मिलेगा। इस महत्वपूर्ण परियोजना से मेट्रोपॉलिटन रीजन के विकास को भी नई दिशा मिलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार किसान हित के लिए निरंतर कार्य कर रही है। इसी क्रम में दूध, फल और सब्जियां लेकर मोटरसाइकिल से परिवहन करने वाले किसानों के लिए हेलमेट वितरण अभियान शुरू करने का निर्णय लिया गया है।
2: मोटरसाइकिल से दूध, फल, सब्जी लेकर के गांव से जो किसान निकलते हैं, उनकी जिंदगी की कीमत भी होना चाहिए। इसलिए हमने अभियान चालू करने का निर्णय लिया है कि हम हेलमेट का अभियान चलाएंगे। हेलमेट से व्यक्ति की जान भी सुरक्षित रहती है। प्रतीकात्मक रूप से इंदौर प्रशासन द्वारा कुछ हेलमेट वितरण का कार्यक्रम यहाँ किया जाएगा ताकि हमारे लोगों की जान भी बचे। सुना चाहिए कि उनका आशीर्वाद माननीय मोदी जी के माध्यम से लगातार मिलता रहेगा।
0: इसके पहले मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री ने उज्जैन में कान्हा डायवर्जन क्लोज डक्ट परियोजना का निरीक्षण कर विकास कार्यों की प्रगति का अवलोकन किया। यह परियोजना माँ क्षिप्रा के जल को स्वच्छ व निर्मल बनाए रखने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। वहीं केंद्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रायसेन के बाड़ी में आयोजित प्रदेश स्तरीय जन कल्याण शिविर में कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की। श्री चौहान ने भोजपुर क्षेत्र के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 31 नई ग्रामीण सड़कों को मंजूरी दी। साथ ही उन्होंने राज्य के किसानों के लिए मूंग खरीदी की औपचारिक स्वीकृति और कम बारिश की आशंका के मद्देनजर केंद्र व राज्य सरकार के साझा कंटिजेंसी प्लान का ऐलान किया।
3: भारत सरकार से मूंग खरीदी की अनुमति मांगी है और आज ही बाड़ी की इस पवित्र धरती से मूंग खरीदी की स्वीकृति मध्य प्रदेश सरकार को दी जाएगी ताकि किसान भाई अपने मूंग को बेच सकें। यह मूंग अपनी तीसरी फसल है और इसलिए मूंग किसान की मेहनत है। उस मेहनत के पूरे दाम दिए जाएंगे, किसान के पसीने की पूरी कीमत दी जाएगी।
0: नीट यूजी पुनर्परीक्षा कल देश के 551 शहरों और विदेश के 14 शहरों में आयोजित की जाएगी, जिसमें 22,79,000 से अधिक अभ्यर्थी शामिल होंगे। परीक्षा में सीसीटीवी निगरानी, आधार आधारित बायोमेट्रिक सत्यापन और परीक्षा सामग्री के सुरक्षित परिवहन जैसी विशेष सुरक्षा व्यवस्थाएं की गई हैं। भोपाल में कल दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक होने वाली नीट परीक्षा को लेकर नगरीय यातायात पुलिस ने एडवाइजरी जारी की है। शहर में परीक्षा के लिए 32 केंद्र बनाए गए और मेट्रो निर्माण कार्य के चलते कुछ मार्गों पर यातायात प्रभावित रहेगा। परीक्षार्थियों से कम 30 मिनट पहले केंद्र पहुंचने की अपील की गई है। जबलपुर जिले में परीक्षा के लिए 23 केंद्र बनाए गए हैं, जहां 10,426 परीक्षार्थी शामिल होंगे। समाचारों में अब वक्त एक छोटे से विराम का।
4: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक, साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर EIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in

0: अथवा न्यूज ऑन EIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
1: समाचारों पुनः स्वागत है आपका। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कल दुनिया भर में मनाया जाएगा। इस वर्ष 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का विषय है स्वस्थ आयु के लिए योग। ये विषय हर उम्र में योग के महत्व को रेखांकित करता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर संस्कृति मंत्रालय देश भर में 100 स्थानों पर विशेष कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। इनमें भारत की समृद्ध विरासत और योग परंपराओं को प्रदर्शित किया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल जबलपुर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि होंगी। समारोह सदर के गैरिसन ग्राउंड में सुबह 7:30 बजे से शुरू होगा। योग दिवस कार्यक्रम के बाद राष्ट्रपति मुर्मू रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जाएंगी और 36वें दीक्षांत समारोह मुख्य अतिथि होंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। सरकार ने गरीबों किसानों महिलाओं और युवाओं के कल्याण तथा सशक्तिकरण के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाएं शुरू की। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर एक विशेष श्रृंखला 12 साल विश्वास के विकास के जन कल्याण के प्रस्तुत कर रहा है। आज के अंक में हम सशक्त भारत के संकल्प को साकार करने वाली सरकार की परिवर्तनकारी पहलों के बारे में जानकारी देंगे।
2: पिछले 12 वर्षों में सरकार ने भारत के हाईटेक क्षेत्र में बड़ा बदलाव लाने का काम किया है। सशक्त भारत के दो महत्वपूर्ण आधार हैं सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम का विकास और स्पेस स्टार्टअप्स की तेजी से बढ़ती संख्या। सरकार की नीतियों और फैसलों से सेमीकंडक्टर क्षेत्र में सिर्फ योजनाएं ही नहीं बनी बल्कि अब निर्माण और डिजाइन से जुड़े कई इकाई भी काम कर रहे हैं। दिसंबर 2021 में इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन शुरू किया गया। इसके लिए 76,000 करोड़ रुपए का बजट रखा गया। इस योजना के तहत सिलिकॉन फैब कंपाउंड सेमीकंडक्टर इकाई असेंबली और टेस्टिंग सुविधाओं था चिप डिजाइन के लिए 50% तक वित्तीय सहायता दी गई। साल 2026 में सरकार ने सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 शुरू किया जिसके लिए 1,000 रुपए का प्रावधान किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य उद्योगों के सहयोग से शोध और प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करना नई तकनीकों का विकास करना और भविष्य के लिए कुशल मानव संसाधन तैयार करना है।
1: केंद्र सरकार ने 16 फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन FDC दवाओं के निर्माण बिक्री और वितरण पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। ये फैसला सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर की गई विशेषज्ञ समिति की समीक्षा के बाद लिया गया। समिति ने पाया कि इन दवाओं के संयोजन का पर्याप्त चिकित्सकीय औचित्य नहीं और इनके उपयोग से स्वास्थ्य संबंधी जोखिम हो सकते हैं। प्रतिबंधित दवाओं में त्वचा रोग दर्द निवारण ऐंठन और कुछ एंटीबायोटिक दवाएं शामिल हैं। प्रदेश में मॉनसून 25 जून के आसपास प्रवेश कर सकता है। फिलहाल प्री मॉनसून गतिविधियों के चलते मौसम में बदलाव बना हुआ है और आज भोपाल इंदौर समेत कई जिलों में आंधी गरज चमक और बारिश होने के समाचार मिले हैं। मौसम विभाग ने आज सीहोर और आगरमालवा जिले समेत 38 जिलों में आंधी और बारिश का दौर जारी रहने की संभावना जताई है। वहीं रीवा सतना मऊगंज सिटी सिंगरौली मैयर उमरिया शहडोल नीमच मंदसौर रतलाम उज्जैन झाबुआ अलीराजपुर बड़वानी धार और खरगोन जिलों में तेज धूप और उमस बने रहने के आसार हैं। अब कुछ समाचार संक्षेप में। मध्य प्रदेश की भावांतर भुगतान योजना को स्कॉच गोल्ड अवार्ड 2026 से सम्मानित किया गया है। इंदौर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के केंद्रीय संचार ब्यूरो द्वारा 2 दिवसीय चित्र प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है। मध्य प्रदेश जनजातीय संग्रहालय में नृत्य गायन और वादन पर केंद्रित गतिविधि संभावना का आयोजन किया जा रहा है। शहडोल जिले में आकाशीय बिजली की चपेट में आकर बीते 2 दिनों में 3 लोगों की मौत हो गई है। झाबुआ में 5 और 15 वर्ष की आयु वाले बच्चों के अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट के लिए स्कूलों में विशेष शिविर लगाए जाएंगे। आगरमालवा में नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत कल मास्टर वॉलंटियर्स को जिला स्तरीय नशा मुक्ति जन जागरूकता प्रशिक्षण दिया गया और झाबुआ कलेक्टर ने जिले में खुले और अनुपयोगी बोरवेलों से बच्चों और पशुओं की सुरक्षा के लिए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए सुबह 7:10 पर। नमस्कार।

0: जो भूले निज देश को विपदा सहे हजार, मानवता की दृष्टि से करो सदा मनुहार। पंचो, यही दोहा के संगे शुरुआत कर रहे हैं आज के कार्यक्रम ग्राम सभा की। स्वीकार करो अपने किशोरी भैया की, राम राम। कार्यक्रम का अपन आगे बढ़ावी, लेकिन उके पहला लें एक छोटो सो विराम।
1: कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में थैलेसीमिया, हीमोफीलिया और एप्लासी एनीमिया जैसे रोगों का स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स के द्वारा इलाज उपलब्ध है। आयुष्मान कार्ड से निशुल्क इलाज की सुविधा भी है।
2: कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, कैंसर हिल्स।
3: हर परिस्थिति में थामे रहे एक दूसरे का हाथ, बहुत खुशनुमा गुजरा इन 43 वर्षों का साथ। इसलिए तो सभी कहें कि चतुर्वेदी जी आप में कुछ अलग है बात। सभी बच्चों, नाती पोतों की ओर से आपको शादी की 43वीं सालगिरह की बहुत बहुत शुभकामनाएं।
0: ई विराम के बाद कार्यक्रम ग्राम सभा में अपन सबको फिर से स्वागत है। पंचुन, जोन बात हमने अपन से कार्यक्रम की शुरुआत में कही थी, उको मतलब सीधो सीधो जो है के ऐसे पंच जोन अपने देश से या देश की सीमा से दूर कोनो कारण बस कोनो दूसरे देश में शरणार्थी बन के रह रहे हैं, उनके प्रति हमेशा अपन खा प्रेम, सद्भाव और मानवता की भावना रखो चाहिए। जा बात अपन से आज हम इसे कह रहे हैं कि आज 20 जून है और हर साल 20 जून खा विश्व शरणार्थी दिवस मनाओ जात है। 4 दिसंबर 2020 खा संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा ने जो निर्णय लाओ तो कि विश्व भर के पंचन खा शरणार्थियन की स्थिति के बारे में जागरूक करवे के लाने 20 जून खा हर साल विश्व शरणार्थी दिवस मनाओ जे है। विपत्ति के मारे, आफत से जूझ रहे ऐसे पंच जो शरणार्थी बन के कोनो भी देश में रह रहे हैं, उन शरणार्थियन के प्रति सम्मान की भावना, उनका सम्मानित करवे के लाने और उनके प्रति उ देश की पंचन खा जागरूक करवे के लाने जोन देश में भी शरणार्थी बन के रह रहे हैं और शरणार्थियों के समर्थन के लाने हर साल 20 जून का विश्व शरणार्थी दिवस मनाओ जात है। अब लें एक छोटो सो विराम और उके बाद कार्यक्रम ग्राम सभा अपन जारी रख भी।
1: कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में थैलेसीमिया, हीमोफीलिया और एप्लासी एनीमिया जैसे रोगों का स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स के द्वारा इलाज उपलब्ध है। आयुष्मान कार्ड से निशुल्क इलाज की सुविधा भी है।
2: कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, कैंसर हिल्स।
0: पंचो, ई विराम के बाद कार्यक्रम ग्राम सभा में अपन सबको फिर से स्वागत है। आज शनिवार है और हमें पता है अपन सब बात जो है वो अपने मनपसंद, अपने हृदय का छूलेवे वाले कार्यक्रम हेलो लोक रंजन की। बिना कोनो हीला हवाले के अपन हम सीधे जोड़ रहे हैं कार्यक्रम हेलो लोक रंजन से। कार्यक्रम की प्रस्तुति है रविन्द्र कुमार प्रजापति की। सुनो और कार्यक्रम को आनंद लो।

0: हेलो लोक रंजन,
1: साथियों जीवन में शिक्षा को विशेष महत्व है। बिना शिक्षा के अपन अधूरे हैं। विश्व को कोनो भी देश अगर तरक्की कर रहा है तो जो मान के चलो कि उस देश की आबादी पढ़ी लिखी है, सुशिक्षित है और साक्षर है। साथियों 16 जून से मध्य प्रदेश के विद्यालय बच्चन खिलाने भी खुल गए हैं। ई के संगे संगे कक्षन में प्रवेश की प्रक्रिया और विद्यालय में अध्यापन को कार्य शुरू हो गया है। बेपंच जिनके बाल गोपाल प्राथमिक विद्यालय में प्रवेश ले रहे हैं या कक्षा 1 से 5 तक प्रवेश ले वो चाह रहे हैं, उनसे हम आज जरूर इतना चर्चा कर भी कि जब वे अपने बच्चन खां विद्यालय में प्रवेश के लाने लेके जाएं तो उके संगे कछु जरूरी कागज अपने संगे जरूर लेके जाएं, जैसे बच्चा को जन्म प्रमाण पत्र, बच्चा को आधार कार्ड, अपनो निवास प्रमाण पत्र और बालक की तत्काल में खींची भई कम से कम 4 रंगीन पासपोर्ट साइज की फोटो और संगे संगे परिवार की समग्र आईडी को पत्रक। जे कागज इसे जरूरी है कि एक बार अपन ने विद्यालय में बच्चा को जो नाम लिखवा दो वही नाम उके आधार कार्ड में भाव चाहिए, वही नाम उकी समग्र आईडी में भाव चाहिए, वही नाम बच्चा के जाति प्रमाण पत्र में भाव चाहिए और वही नाम बच्चा के दाखिला में लिखो रहो चाहिए। अगर कक्षा 1 से

0: जे सब बातें दुरुस्त भई तो आगे कोनू भी कक्षा में प्रवेश लय में ना अपनखा भटकने पड़े ना अपने बच्चा परेशान हुए। शिक्षा कभो भी बेकार नहीं जात, ई सूत्र खा अपने जीवन में उतार लें और जितनो हो सके जहाँ तक हो सके उतने तक अपन अध्ययन निरंतर करत रहे। कैसे कि पढ़वे की और लिखवे की कोनो उम्र नहीं होती। सभी साथीगण ई बात को भी ध्यान रखें कि जब प्रवेश कराएं तो शिक्षा के मामले में मोड़ा और मोड़न को भेद अपन खां बिल्कुल अपने मन में नहीं ले आने हैं। हमें विश्वास है कि हमारे साथी ई बात खां समझें भी और कुन्हें भी, और आपके विश्वास का बनाए रखत भय हम शुरू कर रहे हैं रविंद्र कुमार प्रजापति की प्रस्तुति में आज को कार्यक्रम हेलो लोकरंजन। हमें अपन सबके सखा मैथिली शरण तिवारी स्वीकार करो हमारी राम राम।
1: हेलो लोकरंजन से।
0: हाँ हेलो लोकरंजन से।
1: हम बोल रहे
0: हैं बताओ भैया क्या है हाल चाल।
1: अब बस देख लीजिए घर में गर्मी लिखे असर।
0: चलो आज की को कौन सो लोग सुन रहे कार्यक्रम लोकरंजन में।
1: हमें लोकरंजन में राजू पटेल की आवाज में कोई भी लोग
0: राजू पटेल की आवाज में कोनो भी लोग सुनवा दे हैं। चलो ठीक है, तो आपने राजू पटेल की आवाज में कोनो भी लोग सुन की इच्छा प्रकट करी है, आप उनकी इच्छा हम पूरी कर रहे हैं। फोन लगा लेने पर उनका बहुत बहुत धन्यवाद।

0: जय श्रीराम सर जी, मैं ग्राम परसमा जिला मुरैना से हरबिलास सिंह तोमर बोल रहा हूँ।
1: अरे तोमर जी, कार्यक्रम में स्वागत है।
0: धन्यवाद सर जी। सर जी, चंद्रभूषण पाठक के सुर में सुना देना कोई भी गीत।
1: चलो, आपने चंद्रभूषण पाठक की आवाज में लोकगीत सुनने की इच्छा प्रकट करी है तोमर साहब
0: जी,
1: जहाँ हम अब निश्चित पूरी कर भी कार्यक्रम के माध्यम से। और विद्यालय वगैरह खुल गए आपके गांव के?
0: बिल्कुल खुल गए सर जी।
1: मास्टर आऊं लगे?
0: हाँ, आते हैं।
1: चलो, बच्चन को प्रवेश वगैरह जारी है विद्यालय में कि नहीं? हुए?
0: हाँ, जारी होने लगा, बच्चे जाने लगे।
1: चलो ठीक है, अच्छी बात है। चलो धन्यवाद आपका भी फोन लगा लाने। आपका हम सुनवा रहे हैं चंद्रभूषण पाठक को गाओ, जो लोकगीत जी के लाने पर फोन लगाओ है।
2: हेलो लोक रंजन।
1: हाँ भैया, बिल्कुल कार्यक्रम। हेलो लोक रंजन से।
2: बिल्कुल किशोरी भैया, राम राम पहुँच जावे।
1: अपन खा भी हमारी राम राम पहुँच जावे मित्र।
2: मैं फूलचंद पाल मनकारी से बोल रहा हूँ।
1: मनकारी तो अमर है, और मनकारी के नाम से आप जुड़े हो तो आप भी अमर हो।
2: चलो बहुत बहुत धन्यवाद, आपको आशीर्वाद मिल गया। सुनो सुनो जी, भट्टा ककड़िया जो है परेशान कर रही हमें, तिवारी जी कब लो आ रहे, कैसो कहा है?
1: देखो, आओने तो हमें आज ही कल में है तो यार, लेकिन क्या करिए, शादी ब्याह ऐसे फंसे ही समय पे फूलचंद भैया।
2: हाँ।
1: कि अगर उदसा खा जाये तो ज्यादा सा छूटी जात।
2: अच्छा, अच्छा।
1: और ज्यादा सा छोड़ रहे सो व्यवहार टूटो जात।
2: बिल्कुल बिल्कुल।
1: और व्यवहार टूट जात तो सामाजिकता छूटी जात।
2: देखो आप, बहुत दिन हो गए, मजा नहीं आ रहा हमें, बिल्कुल सपने में भी दिखा रहे आप अपन जो है।
1: नहीं चलो, तो आपके साक्षात सामने खड़ी हुई हम।
2: हाँ,
1: ठीक है,
2: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
1: चलो, और फूलचंद भैया क्या हाल चाल है?
2: हाल बढ़िया है भैया, बहुत अच्छी है, लेकिन गर्मी बहुत परेशान कर रही।
1: हर एक मौसम को अपना महत्व भी अलग अलग है।
2: बिल्कुल सही बात कही आपने, हर मौसम का आनंद है।
1: चलो तो ये गर्मी को आनंद ले चलो, और जामुन की कसेली मिठास के संगे संगे।
2: हाँ।
1: जो बताओ, जाओ आज के कार्यक्रम में कौन से लोग की सुनने अपन खा फूलचंद भैया?
2: चंद्रभूषण पाठक जी की आवाज में गीत, और गीत के बोले कि न

0: फूलचंद पाल भैया अपन ने अपनी पसंद पे अब चंद्रभूषण पाठक को गाओ जो भ्रूण हत्या पे आधारित गीत सुनो, फोन लगावे के लाने और ये गीत का पसंद करके सुनबे के लाने अपन का बहुत बहुत धन्यवाद। अब कार्यक्रम को अगलो फोन। हेलो लोकरंजन।
1: गांधी पार्क मनपुरा जिला शिवपुरी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं सर जी, मनोज नामदेव।
0: कार्यक्रम में स्वागत है मनोज भैया।
1: धन्यवाद सर जी।
0: और क्या हो रहा हो?
1: बस वो टिकटिकी लगी आए पानी बरसो और बस अपने खेत में बोनी मोनी कर दे, मूंगफली हमने तैयार कर ली बिल्कुल।
0: चलो बड़ी अच्छी बात है। और बाल बच्चा कहाँ कैसे है?
1: बाल बच्चों आपको आशीर्वाद है और भगवान कृपा से खूब खूब बढ़िया है साहब।
0: पढ़ाई लिखाई का कैसी है?
1: बिल्कुल सर, पढ़ाई लिखाई बराबर चल रहा है। स्कूल की ड्रेस मेरेस है और बस मस्त बिल्कुल रेडी करके रखता हूँ। हमने कहा बस एक तारीख से स्कूल खुले और ना खुल जाओ।
0: नहीं, आपके तो एक तारीख से स्कूल काय खुल रहे? सबरे मध्य प्रदेश में 16 तारीख से स्कूल खुल गए।
1: हाँ मतलब स्कूल खुलेगा लेकिन बच्चा तो लगभग एक ही तारीख से हैं।
0: एक चीज आपका हम बताएंगे नामदेव जी, अपन का अपनी सोच बदलने पड़े है अब, है कि नहीं?
1: बिल्कुल सब हाँ।
0: पहला का हो तो वार्षिक परीक्षा भाई अपन मान लेते कि गर्मियों की छुट्टी शुरू हो गई।
1: बिल्कुल।
0: और स्कूल का खुले अब 1 जुलाई से खुले है।
1: हाँ।
0: अब इस सोच का बदलने पड़े कैसे? आजकल तो परीक्षा फरवरी जनवरी में पड़ जाती।
1: हाँ
0: तो परीक्षा देवे के बाद भी अपन का 30 अप्रैल तक अपने बाल गोपालन का स्कूल पहुँचाने।
1: बिल्कुल साहब बढ़िया।
0: और उसके बाद 15 तारीख तक छुट्टी रहा तो 16 जून से स्कूल फिर बच्चन कराने खुल जात।
1: ठीक है।
0: तो 16 जून तक अपने बच्चन की तैयारी पूरी करके उनका जोन क्लास में पढ़ने हैं वो कक्षा में उनको प्रवेश दबाव निश्चित करो। और जब प्रवेश लेवे स्कूल में जाओ,
1: ठीक है,
0: तो 2 कागज जरूर अपने संगे लेके जाओ, एक समग्र आईडी और एक बच्चा को आधार कार्ड।
1: बहुत ही बहुत बढ़िया।
0: जोन नाम बच्चा को आधार कार्ड में और समग्र आईडी में आज लिख गयो,
1: ठीक है,
0: वही नाम उको जीवन भर चल है और वही नाम से वो जानो जे है।
1: बिल्कुल सर, बहुत अच्छी आपने जानकारी दी। और हमारे देखो कितने किसान भैया जो कार्यक्रम से जुड़े हैं तो बिल्कुल टिक्का से सुन ले सब जनी।
0: कक्षा 1 में ही अपने बच्चा को नाम वो लिखवाओ जो उनके आधार कार्ड में लिखो है और वो जन्मतिथि लिखवाओ।
1: बहुत बहुत बढ़िया साहब, बहुत बढ़िया।
0: एक चीज और आजकल होने लगी, जब बच्चा जैसे ही जन्म लिए थे अस्पताल में वैसे ही उनको जन्म प्रमाण पत्र बन जात।
1: हाँ।
0: सो वो जन्म प्रमाण पत्र भी अपने पास रख लो।
1: देखो साहब
0: आपने हमारी बात बड़े ध्यान से सुनी, तो ई के संगे संगे आप बता दो आज के कार्यक्रम में की को गाओ लोग सुनने।
1: जी सर जी, आज हमें संवाद छक्की लाल प्रजापति जी की आवाज में कोई सोभी लोग की।
0: चलो छक्की लाल प्रजापति जी की आवाज में अपने सुनने की इच्छा प्रकट करी है नामदेव जी, जय इच्छा हम पूरी कर रहे हैं। और अपने बाल गोपाल खूब पढ़ाओ लिखाओ, अच्छे से उनको नाम लिखवाओ, यही कामना कर सुनो जो लोकगीत फोन लाओ के लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद।

0: साथियों आनंद ले रहे हो कार्यक्रम ग्राम सभा के अंतर्गत कार्यक्रम हेलो लोकरंजन को। इस कार्यक्रम का अपन न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पे भी सुन सकत हो। इस कार्यक्रम के लाने फोनन की रिकॉर्डिंग हर शुक्रवार दोपहर 3 बजे से 3:30 तक करी जात है। वे श्रोता जोन हमारे कार्यक्रम से पहली बार जोड़ रहे हैं उनका हम इस कार्यक्रम के फोन नंबर बता दें। हमारे फोन नंबर है 241588, दूसरा फोन नंबर है 245805। बाहर से फोन लगाए वाली श्रोतन के लाने STD कोड है 07682। अब जुड़े कार्यक्रम हेलो लोकरंजन के अगले फोन से।
1: नमस्कार सर।
0: जय सियाराम की।
1: हरीश रेखवार बोल रहे सर सानुदा से।
0: हाँ रेखवार जी, कार्यक्रम में स्वागत है।
1: जी सर, बहुत खुशी हुई सर, लग गया।
0: नहीं, हमें भी आप जैसे श्रोतन से जुड़ के बड़े आनंद की अनुभूति होते है।
1: जी जी सर।
0: बता दो जाए का हो रहा है इस समय पे आपको।
1: हम तो सर हरियाणा में जॉब करते हैं, अभी घर पे आए हैं, शादी है। तो
0: अच्छा, की शादी है?
1: अपनी भतीजी की है।
0: चलो अच्छी बात है, बिटिया सुखी रहे, संपन्न रहे।
1: जी जी सर।
0: बता दो जाए आज के कार्यक्रम में किको को आप कौन से लोकगीत सुनने?
1: सर बधाई लोकगीत सुनवा देना।
0: चलो ठीक है, बधाई लोकगीत की अपन ने इच्छा प्रकट करी है, कोनो भी कलाकार की आप सुनवो चाहते हैं।
1: जी जी सर, सुनवा देना।
0: जा इच्छा हम अपन की कार्यक्रम हेलो लोकरंजन के माध्यम से पूरी कर भी। हरियाणा में क्या करत आप?
1: हम सिक्योरिटी में करते हैं जॉब।
0: अच्छा अच्छा
1: जी सर।
0: प्राइवेट सेक्टर की है कि गवर्नमेंट जॉब है?
1: प्राइवेट है सर।
0: कितो भत्ता वगैरह मिल जाए तुम्हें आपका?
1: हाँ सर मिल जाता है, अच्छा मिलता है, सैलरी तो।
0: चलो ठीक है, आपको जो काम सुरक्षा से जुड़ो भाव है इसमें कछु गोपनीयता भी रहा तुम्हें, बाप बरकरार रखो।
1: जी जी।
0: तो भाई आपका सुनवा रहे हैं आपकी इच्छा पे जो विदाई लोग की जो अपने सुनबो चाहो है।
1: जी।
0: फोन लगा रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद एक बार जी।

0: हरीश रेगवार जी अपने आज के कार्यक्रम हेलो लोकरंजन में विदाई गीत सुनने की इच्छा प्रकट करी थी और ये इच्छा को सम्मान करत भाई हमने अपन का कार्यक्रम में सुनाओ अखिलेश सुनकिया को गाओ जो विदाई गीत। अब कार्यक्रम को अगलो फोन।
1: हाँ दादाजी नमस्कार।
0: जय जय सीताराम की।
1: हम पाठक मोहल्ला बहुत गला से बोल रहे हैं पाठक।
0: पाठक जी बताओ।
1: हमें आज उर्मिला पांडे की आवाज में सुनवा दो विवाह गाड़ी।
0: बिल्कुल उर्मिला पांडे की आवाज अपन हम विवाह गाड़ी सुनवा रहे हैं।
1: जी दादाजी।
0: और क्या हो रहा हो?
1: बस कुछ नहीं, थोड़ा यहाँ से जा रहे थे।
0: तो चलो अपना काम करत चलो और सुनियो कार्यक्रम हरो लोकरंजन में उर्मिला पांडे की गाई जा विवाह गाड़ी। फोन लगा बहुत धन्यवाद अपन का।
2: हेलो लोकरंजन।
0: बिल्कुल भैया हेलो लोकरंजन से।
2: जी सर जी प्रणाम नमस्कार।
0: जय जय सीताराम की मित्र।
2: जी मैं राजू यादव ग्राम उपरेका तहसील सरीला थाना मस्करा जिला हमीरपुर बुंदेलखंड
0: उत्तर प्रदेश से। हाँ बतलाओ राजू भाई।
2: हम तो सर जी बढ़िया हैं, फिर बगीचे में बैठे हुए हैं।
0: काका लगो बगीचा में?
2: बगीचा में आम है और नींबू है, आंवला है, इमली है, समय इमली बहुत है।
0: आम जो देसी वैरायटी के हैं कोनो अच्छी?
2: लंगड़ा है, चौसा है और अपना देसी है।
0: तो हम कब यहाँ खावे के लाने?
2: अरे भाई साहब आपके लिए तो चाहे जब चले आओ।
0: चलो ठीक है, जब भी मुस्कुरा तरफी हमारा चक्कर लगे आपके बगीचा के फलन को हम रस ले भी और आनंद ले भी।
2: हाँ भैया।
0: अबे आप बता जाओ आज के कार्यक्रम लोकरंजन में कौन सी विधा को रस लेना है आपका?
2: हमें उनको उर्मिला पांडे की आवाज में।
0: चलो उर्मिला पांडे की आवाज में कौन सा गीत सुन रहे?
2: कोई भी गीत सुना दीजिए बढ़िया सा।
0: चलिए
2: क्योंकि शादी विवाह भी चल रहे हैं तो शादी विवाह वाला कोई गीत चला दीजिए।
0: ठीक है राजू भैया, आपने उर्मिला पांडे की आवाज में शादी विवाह से जुड़ो कोनो भी गीत सुनने की इच्छा प्रकट करी है।
2: और हमारे भैया मित्र हैं भी आपको कार्यक्रम ग्राम सभा में बहुत हमारे साथ बैठकर सुनते हैं। बलवान सिंह यादव हैं उपराहका के और अनूप कुमार राजपूत जी हैं और महेश भैया राजपूत जी हैं। ये कार्यक्रम सर जी आपका दिल से सुनते रहते हैं।
0: चलो इन सभी भैयन का भी हमारी राम राम पहुँचे और आपके माध्यम से इन भैयन से हमारा परिचय भाव।
2: ठीक है राम राम भैया।
0: जय जय सिया राम की। सुनो अपनी पसंद की उर्मिला पांडे को गाओ लोकगीत जी खिलाने पुण्य फोन लगाओ है।
3: हेलो लोकरंजन से।
0: बिल्कुल हेलो लोकरंजन से।
3: हम श्री राम रेडी सोता संगमरी कलांजल पाठक बोल रहे भैया।
0: हाँ पाठक जी।
3: तिवारी जी बोल रहे हैं आप?
0: बिल्कुल तिवारी जी बात कर रहे हैं।
3: हम आपकी आवाज पहचान लीजिए। ब्याह चल रहा है इस ब्याह को एक गाड़ी है सुनने
0: की आवाज में
3: उर्मिला पांडे की आवाज।
0: चलो आपकी जा इच्छा पूरी कर रहे हो उर्मिला पांडे की आवाज में विवाह गाड़ी अपन हम सुनवा रहे हैं।
3: हाँ साहब
0: सुनो और कार्यक्रम को आनंद लो। फोन लगाने बहुत बहुत धन्यवाद।
4: मैं बीरेंद्र कुमार शुक्ला अपने गांव रतवाज से बात कर रहा है। मेरी बात किससे हो रही है?
0: आपकी बात आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र से हो रही है।
4: तिवारी जी नमस्कार।
0: जय जय सीताराम की।
4: आज एक गीत सुना दो।
0: हाँ बताओ।
4: उर्मिला पांडे जी की आवाज में कोई सो भी लोग गीत सुनवा दो।
0: जय इच्छा पूरी कर भी शुक्ला जी आपकी हम। और बता दो क्या हाल चाल है गाँव के?
4: अरे तिवारी जी बहुत गर्मी है।

0: तो बस ये बात की खुशी मनाओ और ये मौसम को आनंद लेते भाई, ठंडो पानी पियत चलो और सुना चलो जो लोकगीत अपने पसंद पे जो अपन ने सुनवो चाहो है।
1: बिल्कुल
0: फोन लगा के अपन का बहुत बहुत धन्यवाद शुक्ला जी।

साथियों, आज के कार्यक्रम हेलो लोकरंजन के निर्माण में तकनीकी सहयोग हमें प्रदान करो है अरविंद सक्सेना ने, और कार्यक्रम की प्रस्तुति रही है रविन्द्र कुमार प्रजापति की।

साथियों अर्मला पांडे की गाई ई गारी विधा के बुंदरी लोकगीत के संगे आज के कार्यक्रम हेलो लोकरंजन को समय पूरा हो रहा है। आज्ञा दो अपने सखा मैथिली शरण तिवारी खां, स्वीकार करो हमारी राम राम।

पंचों अबे अपन रविंद्र कुमार प्रजापति की प्रस्तुति में कार्यक्रम हेलो लोकरंजन को मजा ले रही थी। पंचों, कई समस्याएं हैं जो पानी की कमी का पैदा करती हैं, लेकिन सबसे बड़ी समस्या है भूजल स्तर में कमी आवो। अभी भूजल स्तर का अपन कैसे ऊपर ले आए, इसके बारे में हम कछु अपन खाज बता रहे हैं। अपने घर से निकले वालों नहानी को रसोई घर को पानी जोन होते है वो अपन नर्दा से ऐसे ही बहा दी, वो पानी को भी अपन सदुपयोग कर सकते हैं और ई पानी के माध्यम से भी भूजल स्तर में वृद्धि कर सकते हैं। ई के लाने करने का है बात जाऊत है। ई पानी का बचाव के लाने अपन घर में सोकपिट बनवा सकत। सोकपिट का कहूत, सोकपिट एक धरती के अंदर बनो गड्ढा है जो गंदे पानी का प्राकृतिक रूप से छान के जमीन में सुखा देते है और धरती के जल स्तर का बढ़ाऊत है। ई सोकपिट बनावे के लाने अपन का करने का है जो प्रश्न अपने मन में जरूर उठ रहे हुए, जोन जा बात अपने मन में उठ रही है ई को समाधान हम कर दे। ई के लाने अपने घर की आवश्यकता, पानी की मात्रा और जमीन के अनुसार अपन का जमीन में 3 से 5 फीट चौड़ो और 5 से 7 फीट गहरो गड्ढा ये खोदने हैं। ई बात को ध्यान रखने की गड्ढा की मिट्टी धसवे से बचावे के लाने ई की दीवारन पे ईटन की चुनाई कर देने हैं। ध्यान रखने ई बात को है कि जब ईटन की अपन चुनाई करें तो ईटन के बीच में छोटे छोटे छेद अपन छोड़ दें ताकि उन छेदन से पानी आसानी से रिसके धरती में जा सके, और गड्ढा के ऊपरी हिस्सा में लगभग 1 से 1.5 फीट का अपन पक्के तौर पे बंद कर दीजिए जिसे कि बाहर को गंदो पानी गड्ढा के अंदर ना जा सके। तीसरे चरण में अपन का गड्ढा की भराई करने है। क्या करने है, गड्ढा की जो पेंदी मतलब तरे वालो हिस्सा हुई है ऊके नीचे अपन का लगभग 6 इंच ऊंचाई तक बड़े बड़े पत्थर और गिट्टी की एक परत बिछाने है। जो अपन ने ईटें चुनी है गड्ढा के चारों तरफी और उनमें जो गड्ढा छोड़े हैं उन गड्ढन में कच्ची मिट्टी की जगह अपन का रोड़ी या बजरी भर देने हैं। ई के बाद अगलो काम अपन का करने है कि एक इनलेट पाइप ढक्कन अपन का ई गड्ढा तक पहुंचाने हैं। घर से निकलने वाले गंदे पानी के पाइप का सोकपिट के अंदर अपन जोड़ दें। पानी के सीधे दबाव का रोक बिकलाने पाइप के सिरा पे मतलब नीचे जो गड्ढा के अंदर जाते है उमे अपन एक टी आकार को पाइप भी लगा सकते हैं। अंत में सोकपिट खा कंक्रीट या सीमेंट की मजबूत ढक्कन से पूरी तरह बंद कर देने हैं। इसे जो घर को गंदो पानी है वो ही गड्ढा में जे है और रिस के धरती के अंदर इकट्ठो होते रहे। अगर अपने घर में बोर है या आसपास कहूं कुआं है तो निश्चित इन गड्ढन को असर अपन पानी के स्तर बढ़ावे में देख सकते हैं। तो हमारे सरपंचन से यही कहबो है कि अपने घर में एक सोकपिट जरूर बनवाए। ई बात खा अपन आज की सीख मान लो। पंचो, बातें तो और करवे को मन है लेकिन अब समय हो रहा है प्यारी करवे को। यही से अपन का हम बता दें काल की ग्राम सभा में अपन कौन

कौन से कार्यक्रम सुनो। कल अपनी जो रोज की चर्चा होती है वे तो हुई है, संगे संगे एक धारावाहिक चिट्ठियां देवर भोजाई की को पहलो भाग अपन सुनो। इस धारावाहिक में वाचन स्वर हुए प्रीति पित्रे को और धारावाहिक की प्रस्तुति हुए शंभु दयाल अहरवार की। इसके अलावा शरद कुमार रैगवार से एक वार्ता अपन का सुनवाई जे है, विषय हुई है ग्रामीण विकास में युवाओं की भूमिका और आज की सीख को विषय हुए जोड़ी तो ऊपर वारो बनाऊ थे। जो सब सुनने के लाने अपन कल की ग्राम सभा की प्रतीक्षा करियो और ट्यून करियो अपने रेडियो सेट पे ठीक शाम के 7:20 पे आकाशवाणी छतरपुर को केंद्र मीडियम वेव 444.4 मीटर यानी 675 किलो हर्ट्ज पे। और अब आज्ञा दो अपने किशोरी भैया का पंचो राम राम।

अभी आप सुन रहे थे ग्रामीण भाइयों का कार्यक्रम ग्राम सभा, मीडियम ऐप पर और प्रसार भारती के ऑफिशियल ऐप न्यूज ऑन AIR पर। यह आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। रात्रि के 8 बजने को है। रिले करते हैं भोपाल केंद्र से विशेष श्रृंखला सरकार के 12 वर्ष संस्कृति।

0: देश है। रात्रि के 8 बज रहे हैं। आइए अब सुनते हैं समाचार सेवा प्रभाग आकाशवाणी द्वारा विशेष श्रृंखला सरकार के 12 वर्ष।
1: ये आकाशवाणी है। 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के विशेष श्रृंखला के अंतर्गत आज सुनिए सशक्तिकरण से समृद्धि की ओर बढ़ते भारत पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार नीलू रंजन और सर्जना शर्मा। परिचर्चा का संचालन कर रही हैं सोनू सूद।
2: 12 वर्षों के कार्यकाल में वर्तमान सरकार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सभी को भागीदार बनाकर राष्ट्र विकास का जो मूल मंत्र है, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास, उसके तहत उन्होंने जो एक लक्ष्य रखा है 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनाने का भारत को, उसमें उन्होंने 4 जो स्तंभ है उनकी पहचान की है, जिसे ज्ञान भी कहा जाता है, गरीब, युवा और अन्नदाता यानी कि हमारे किसान और नारियां। तो इन चारों जो वर्ग हैं उनके सशक्तिकरण पर सरकार ने लगातार बल दिया है। अगर हम हर बजट में देखें, जो भी प्रमुख संबोधन होता है प्रधानमंत्री जी का, उसमें इन वर्गों को सशक्त करने की बात की जाती है। और आज हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट सर्जना शर्मा जी और नीलू रंजन जी जुड़े हैं। इनसे हम समझना चाहेंगे कि इन 12 वर्षों में जो ये 4 वर्ग है, इनको सशक्त करके कैसे जो देश को समृद्ध करने का सपना है उसको साकार करने की तरफ हम बढ़े हैं। सो आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत कार्यक्रम।
3: थैंक यू सोने जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।
4: बहुत बहुत धन्यवाद।
2: सर्जना जी, सबसे पहले आपसे शुरू करते हैं, लेडीज फर्स्ट कहा जाता है। सो आपसे मैं महिलाओं की ही बात करना चाहूंगा। मूल मंत्र रहा है कि विमेन्स डेवलपमेंट से आगे बढ़कर हमें विमेन्स लेड डेवलपमेंट यानी महिलाओं के नेतृत्व में विकास जो है उसकी ओर बढ़ना है। हमें बताएं कि इन 12 वर्षों में कौन से ऐसे परिवर्तनकारी रिफॉर्म्स हैं जो महिलाओं के लिए लाए गए हैं, जिनको आप सबसे महत्वपूर्ण मानती हैं?
3: सोनू जी, देखिए, महिला जो है वो कोई भी परिवार है, परिवार की धुरी महिला है, और जो एक अच्छा परिवार है वो एक अच्छे समाज का, और एक अच्छा समाज अच्छे राष्ट्र का निर्माण करता है। अगर महिला सशक्त है, अगर महिला समृद्ध, मेरा मतलब खाली पैसे से नहीं, और भी बहुत सारी चीजें होती है जिसको समावेशी विकास कहते हैं, अगर महिला उस तरह की है तो वो पूरे अपने परिवार को बढ़िया करेगी, समाज को अच्छा बनाएगी और फिर राष्ट्र को। तो इसका मतलब धुरी जो है परिवार से लेकर राष्ट्र तक महिला के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता, भले ही आज से कुछ साल पहले तक

0: महिलाएं बहुत घर से बाहर नहीं निकलती थी, लेकिन घर में रहते हुए भी जो उनकी अर्थव्यवस्था है, जो उनका मनी मैनेजमेंट है, जो उनका रिलेशनशिप मैनेजमेंट है, पुरुषों को तो शायद बहुत चीजें घर की पता भी नहीं होती जितना वो खुद सब मैनेज कर लेती हैं। आपने देखा होगा कि कोविड में पूरी दुनिया की इकोनॉमी ध्वस्त हुई, लेकिन भारतीय महिलाओं को जिस तरह की ट्रेनिंग है पैसे को जोड़ने की और आत्मनिर्भरता का जो उनका मूल मंत्र है, तो उसके कारण हमारी अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी रही, क्योंकि सेविंग की बहुत आदत है हमारी महिलाओं को। तो मोदी जी ने जो ये सोचा, तो उसमें देखिए दो तीन चीजें तो मैं कहूंगी कि जो सबसे अच्छी रही, एक है उज्ज्वला योजना और एक है हर घर नल हर घर जल। तो ये जो दो चीजें सुलभ हुई हैं महिलाओं को, उससे उनकी जो फिजिकल लेबर है वो कम हुई है, उनकी एफिशिएंसी इम्प्रूव हुई है। आपको लकड़ियां बिनने जंगल में नहीं जाना और धुएं में काम नहीं करना। उज्ज्वला योजना के अंतर्गत आपको सब्सिडाइज सिलेंडर मिल रहा है, तो आप सोचिए उसकी कितनी मेहनत कम हुई। खाना अच्छा बनेगा, वो भी खुद भी रिलैक्स रहेगी। दूसरा है, अगर हम देखें कि हमारे भारत में बहुत सी ऐसी जगहें थी जहां पे महिलाओं की आधे से ज्यादा एनर्जी पानी लाने में भी लगती थी
1: जी।
0: तो ये जल मंत्रालय ने जो काम किया है, हर घर नल जो पहुंचाया है, हर घर जल पहुंचाया है, उसका भी बहुत लाभ हुआ है। फिर आपने इनको कहा है कि जरूरी नहीं कि आप 10 से 5 की जॉब करने जाओ, अगर आपके घर के आसपास या अपने घर में बैठे आप क्रोशिया भी बुनते हैं, आप स्वेटर भी बुनते हैं, आपको सिलाई भी आती है, या आपके आसपास जैसे कि मखाना की खेती में आपने देखा होगा मशरूम खेती, बहुत सी ऐसी महिलाएं हैं जो लखपति दीदी बनी है उन्हीं चीजों से। जरूरी नहीं कि आपके पास बीए एमए की डिग्री हो, ऐसा भी नहीं है। तो जो इस तरह की योजनाएं हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप जो बनाए, जिसमें कि लगभग 91 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप है और 10 करोड़ से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बन गई हैं
1: जी।
0: तो इस तरह की जो योजना, और दूसरा मुद्रा योजना जो है कि अगर अपने घर में मुझे कोई काम शुरू करना है, मुझे लगा कि मुझे एक सिलाई स्कूल खोलना है, मुझे लगा कि मुझे क्रोशिया सेंटर बनाना है अपने घर में, मुझे लगा कि मेरे पास जो स्किल है जो मुझे किसी स्कूल से नहीं अपनी फैमिली से ट्रेडिशनल मिली है, अगर मैं उसी को आगे विकसित कर, कौशल हुनर जो कि परंपरागत हमारे यहाँ आपने देखा कि कोई साड़ी बनाता है तो कोई लकड़ी का सामान बनाता है, तरह तरह की चीजें हैं, मतलब गिनाना मुश्किल है क्योंकि भारत में इतनी विविधता है। अब कुछ तो महिलाएं जैसे हल्दी उगा रही हैं, कोई मशरूम उगा रहा है, तो उनको जो लोन मिल रहा है सस्ती किश्तों पर, मतलब कि उनको बहुत ज्यादा भागदौड़ नहीं करनी, और मुद्रा लोन जो मिल रहा है इससे भी उनका जो लाइफ है वो बहुत आसान हुई है। दूसरा है शिक्षा को लेकर भी बहुत काम हुए हैं, केजी टू पीजी जो है कि आप केजी से लेकर पीजी तक बच्चियां जो है वो पढ़ेंगी। और फिर ये है कि सुरक्षा का वातावरण, आप देखेंगे कि कई राज्यों में तो ऐसा था कि 6 बजे के बाद लड़कियां घर से नहीं निकलती। उत्तर प्रदेश का मैं आपको एक उदाहरण दूं जैसे कि, तो अब देखिए वहां बेखौफ लड़कियां रात को 2-2.5 बजे तक भी आराम से घूम सकती हैं, क्योंकि सुरक्षा इतनी ज्यादा। जब तक माँ और बेटी को नहीं लगेगा कि वो सुरक्षित है, तो बेटी बाहर काम करने उसको कोई जाने नहीं देगा।
1: बहुत इंपॉर्टेंट, ये सशक्तिकरण का
0: ये बहुत, हाँ, सुरक्षा की भावना, वो जो इस सरकार ने सुरक्षा की भावना दी, महिला थाने खोले, महिला हेल्पलाइन खोली कि आप तुरंत फोन कीजिए आपको मदद मिलेगी। और एक और देखिए कि महिलाओं को मैटरनिटी लीव में डबल किया है
1: जी।
0: 3 महीने से 6 महीने किया, ये भी एक बहुत बड़ा सशक्तिकरण है महिला का।
1: बिल्कुल,
0: मातृत्व सुरक्षा योजना है, शिशु योजना है, इन सब योजनाओं ने महिलाओं के जीवन को आसान किया है, सुविधा दी है। मैं बात कर रही हूँ उन महिलाओं की जो की अभी तक बहुत बाहर निकल के काम नहीं करते। अब हम बात करते हैं उन महिलाओं की जो पढ़ लिख के आगे, जैसे कि आपने सैनिक स्कूल लड़कियों के लिए खोल दिया गया, जैसे कि एनडीए खोल दिया गया लड़कियों के लिए, लड़कियां फाइटर पायलट हैं। तो ये जो इस तरह की चीजें भी आई है ना, उससे पूरे देश में बाकी लड़कियों को भी एक प्रेरणा मिली। 26 जनवरी परेड का आपने जो स्वरूप बदलते हुए देखा होगा, आप देखिए कैसे स्वरूप बदला है। पहले आप देखिए किसी भी कंटिजेंट में लेडी नहीं लीड करती,
1: एकदम गर्व से सर ऊंचा हो जाता।
0: अब आप देखिए, अब 26 जनवरी परेड का रूप बदल गया है। तो मुझे लगता है बहुत सारे, और इसका सबका कारण मैं एक समझती हूँ, क्योंकि इस सरकार का जो है अंत्योदय, जनसंघ के संस्थापक पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, शुरू से ही भाजपा का ये मूल नियम रहा है अंत्योदय, अंत से उदय करना है। तो ये बहुत सी योजनाएं जो है जो सबसे वंचित वर्ग है वहां से शुरू होती हैं, और जैसे कि जो अफोर्ड कर सकते हैं एलपीजी, तो उनको अब आप देखिए सबका हटा दिया, हमने भी सरेंडर किया, और वो उन वर्गों तक पहुंचा जिनको उसकी आवश्यकता थी।
1: सो बिल्कुल टारगेटेड जो है, फोकस्ड इम्प्लीमेंटेशन भी हुई है रिफॉर्म्स की। नीलू जी, अगर हम एक बहुत बड़ी जो शक्ति मानी जाती है भारत की कि भारत एक युवा देश है, यहाँ पे डेमोग्राफिक डिविडेंड है, तो जिस तरह से जो युवा पीढ़ी है उस पर जो ध्यान दिया है सरकार ने और जिस तरह से उनका सशक्तिकरण हुआ है, आप किन पहलों को इन 12 वर्षों में सबसे महत्वपूर्ण मानते हैं? अगर आप टॉप 2-3 हमें बताएं कि कौन सी आपको पॉलिसी डिसीजन जो है वो सबसे आपको लगता है कि परिवर्तनकारी सिद्ध हुए हैं या हो सकते हैं?
2: देखिए, सबसे बड़ी बात यह है युवाओं के लिए कि युवाओं में अपनी ऊर्जा बहुत होती है, शक्ति उनकी अपनी बहुत है
1: जी।
2: उस ऊर्जा को अवसर देने की जरूरत है, उसके लिए बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं है आपको
1: जी।
2: ये पहली बात है, सबसे महत्वपूर्ण बात है। और समस्या ये थी कि युवाओं को अवसर नहीं मिलता था और वो जीवन के हर फील्ड में, चाहे वो अर्थव्यवस्था के किसी भी फील्ड में चले जाएं, शिक्षा में चले जाएं, खेल में चले जाएं, हर फील्ड में वो काम कर सकते हैं, उनकी एनर्जी है और सबके अपने अपने खासियत है। तो जो उनकी रुचि है, जो वो कर सकते हैं, उसमें अवसर कैसे दिए जाएं, तो मैं ये कह सकता हूं कि युवाओं के लिए अवसर की ऐसी अनंत संभावनाओं के दरवाजे खुल गए हैं कि हर युवा जो है वो अपने अपने कौशल के विकास में, अपने अपने क्षेत्र में जिसमें करना चाहता है वो कर रहा है। और इसलिए आप देखें, खेल हो, शिक्षा हो, चाहे वो स्वरोजगार हो, चाहे वो साइंटिफिक चीजें डेवलपमेंट हो, नई टेक्नोलॉजी हो, जो अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी है, आईटी से रिलेटेड है, आप युवाओं को देखेंगे पूरी दुनिया में छा रहे हैं भारत के युवा। इसमें 2-3 चीजें महत्वपूर्ण है जो देखने की बात है कि जैसे युवाओं के लिए अवसर की जब मैं बात करता हूं तो पहले मेडिकल की सीटें जो थी, अगर MBBS के देख लें तो 55,000-56,000 की होती थी, 140 करोड़ के देश में केवल 56,000 MBBS आप बना रहे थे, आज वो 1,25,000 की सीटें हो गई हैं, डबल से भी ज्यादा हो गई हैं। जो पोस्ट ग्रेजुएट थी वो लगभग 30-32,000 के आसपास थी, वो लगभग 65-70,000 हो गई, डबल से ज्यादा वहां भी हुई हैं। ये यूथ पहले बाहर जाता था, यूक्रेन से कर रहा है, चीन से कर रहा है, नेपाल से कर रहा है, वहां जो यूक्रेन की आपदा में कैसे फंस गए थे सब देख रहे हैं, MBBS कर रहे थे, इंजीनियरिंग कर रहे थे। वैसे यूनिवर्सिटीज जो है, मेडिकल कॉलेजों की संख्या जो है, सीटें बढ़ी हैं तो मेडिकल कॉलेज की संख्या बढ़ी है, वो लगभग 380 के आसपास की आजादी के बाद 2014 खोली गई थी, वो लगभग 750 के आसपास हो गई है। 50-60 और मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं, जो सिटी जो है MBBS की वो 50,000 और बढ़ने वाली है। ये युवाओं को अवसर दिया देश के भीतर कि आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, आपके लिए है। ऐसे यूनिवर्सिटीज, क्योंकि यूनिवर्सिटीज में एडमिशन आप देखते थे कितना मारामारी है, एडमिशन नहीं मिलता था, लोग जो है वो ओपन स्कूलिंग करते थे। ओपन स्कूलिंग अभी भी खुला है और वो एक बढ़िया विकल्प है कि उसमें हम कैसे कर सकते हैं, क्या हम और कोई काम करते हुए भी हम ओपन स्कूलिंग से कोई शिक्षा ले सकते हैं। लेकिन यूनिवर्सिटीज की संख्या लगभग 800 से बढ़ करके और 1300-1400 हो गई है, वो डबल हो गई है, ये तो उन्हीं के लिए हुआ है। और खेल में प्रतिभाओं को निखारने के लिए सरकार ने पैसे दिए हैं, जो स्कीमें लाई हैं, जो युवा खेल जो प्रतिभाएं हैं उनको कैसे ट्रेनिंग दी जा रही है। तो आप देखें कि ओलंपिक खेल हो, चाहे एशियाड खेल हो, चाहे कोई भी खेल हो, जो भारतीय युवा, जो कहा जाता था कि खेलों के लिए भारत में युवाओं का जो शारीरिक संरचना है वो ऐसे खेलों में कंपटीशन के लिए नहीं है, वो कहीं ना कहीं कम है, वो गलत थी बात, वो कहा जाता था।
1: और ये अपॉर्चुनिटी दी खेलो इंडिया जैसे आयोजनों के,
2: खेलो इंडिया, वही मैं कह रहा हूँ, खेलो इंडिया आयोजन वो तो एक आयोजन है, लेकिन आप जो साई के सेंटर्स हैं, जो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जो सेंटर्स हैं, वहां पे युवाओं पे जो इन्वेस्ट किया जा रहा है, उनको जो ट्रेनिंग दी जा रही है, उनपे जो खर्च हो रहे हैं, इंटरनेशनल कोचेज अगर युवा को अच्छा कर रहा है, ओलंपिक के और एशियाड के लायक कर रहा हो, तो जर्मनी हो चाहे कहीं, वो सरकार के खर्चे पे ट्रेनिंग हो रही है। तो ये एक बड़ा अवसर जो है युवाओं के लिए है। निश्चित रूप से आप कह सकते हैं कि सारे युवाओं को जो है वो सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती है, सारे युवा इस तरफ नहीं जाएंगे, तो वोकेशनल स्टडीज का जो है एक बड़ा उन्होंने किया है ट्रेनिंग, और जो ITI हमारा जो ट्रेनिंग का जो था उसका मॉड्यूल को पूरा चेंज किया है। पहले युवाओं को होता था कि वहीं पे है ITI करो, जो कोर्सेज है वही करो, वो सब पुराने कोर्सेज हो गए, अब उसको रीडिजाइन किया जा रहा है कि हर डिस्ट्रिक्ट में अगर ITI है तो उस डिस्ट्रिक्ट में कौन से उद्योग हैं, वहां कहां प्रशिक्षित युवाओं की मांग है, तो ऐसे वहां पे उसी लेवल पे उनको ट्रेनिंग दें, वहां फैसिलिटीज दें। अब कितने ट्रेनर हैं, किस किस फील्ड में हैं, ये नहीं पता था, अब सरकार एक नया बना रही है डायरेक्टरी जिसमें कि किस फील्ड के कितने अच्छे ट्रेनर हमारे कहां कहां हैं, कहां कहां गैप है, कहां क्या डिमांड है, दे सकते हैं। तो एक बड़ा चीज है। और सबसे बड़ी चीज जो है वो सबसे बड़ी चीज जो सबसे ऊपर जाती है वो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी। वो तो बिल्कुल विशुद्ध युवाओं के लिए है,
1: और बदलते परिवेश के अनुसार जो जरूरतें हैं उसके अनुकूल है।
2: उसने जो 10+2+3+2 का जो पूरा का पूरा शिक्षा मॉडल था उसका शिकंजे से युवाओं को मुक्त कर दिया है कि आपको 12th करना है, फिर 3 साल जो है आपको BA करना है, फिर 2 साल PG करना है, फिर MPhil करना है, ये करना

0: करना है, उसके बाद कम्पिटेटिव एग्जाम देना है। अगर बीच में आपकी पढ़ाई छूट गई तो छूट गई, आपकी सारी मेहनत खत्म। अब उसमें बिल्कुल फ्लेक्सी कर दिया है कि क्रेडिट सिस्टम होगा, आपने एक साल पढ़ा, एक साल के बाद आपकी जरूरत पड़ गई, घर में कोई समस्या हो गई, कुछ कहीं नौकरी आपको करनी पड़ रही है, या आपको कहीं कोई अच्छी नौकरी मिल गई, आप वहां चले गए, आपको लगा कि वो पढ़ लेते तो मेरा हो जाता। तो जो आपने एक साल पढ़ा हो, दो साल पढ़ा हो, वो आपके क्रेडिट में है, वो आप कर सकते हैं। जो सिलेबस चुनने में जो था, जो समस्याएं थी कि बच्चा क्या करेगा, साइंस लेगा तो बायोलॉजी लेगा, केमिस्ट्री लेगा, जब वो क्या होता मैथमेटिक्स लेगा, फिजिक्स लेगा, मतलब एक था कि आप सेट हैं उसी में हैं। अब कोई बच्चा जो है वो हिस्ट्री में पढ़ना चाहता है और मैथमेटिक्स में अच्छा हो, वो क्यों नहीं ले?
1: तो युवाओं के लिए बहुत सारे जो
0: मतलब जितने शिकंजे थे, जो अनंत संभावनाएं, जो अवसर उसके युवाओं के लिए है, वो अवसर के दरवाजे सरकार ने खोले हैं।
1: बिल्कुल,
0: कि आप जो करना चाहे करो। युवाओं में इतनी ऊर्जा है कि वो बाकी सब कुछ कर लेंगे, उनको करने के लिए आपको कुछ सपोर्ट की जरूरत नहीं है, केवल अवसर देने की जरूरत है। और पिछले 12 सालों में वो अवसर मैंने इतने गिनाए आपको कि जो जो करना चाहे, जहां करना चाहे, इस देश में अवसर है, आपको देश छोड़ के जाने की जरूरत
1: तो नहीं। सरकार का जो ये एक सोच है कि आप जॉब सीकर के बजाय जॉब क्रिएटर बने, आत्मनिर्भर उद्यमी, जिस तरह से अगर हम स्टार्टअप्स की अगर हम जब स्टैटिस्टिक्स देखते हैं कि 350 स्टार्टअप्स थे 2014 में और अब वो बढ़कर जो संख्या है 2.2 लाख हो गई है, आपको लगता है कि ये जो एक इनोवेशन की स्पिरिट, एंटरप्रेन्योरशिप की स्पिरिट, इसको बहुत बढ़ावा दिया गया है इन 12 वर्षों में?
0: बिल्कुल निश्चित रूप से। स्टार्टअप्स जब शुरू शुरू आया था तो लोग कह रहे थे कि भाई युवाओं को नौकरी चाहिए, स्टार्टअप में क्या कर लेंगे, कैसे कर लेंगे। अब आप देखें कि उसमें जो स्टार्टअप्स हैं वो अब बड़े बड़े बन रहे हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों के रूप में हो रहे हैं। 8,000-10,000 करोड़ का उनका टर्नओवर वो तत्काल हो रहा है। 150-200 स्टार्टअप ऐसे हो गए हैं जिनका टर्नओवर जो आप देखें तो अच्छी अच्छी कंपनियों से बेहतर है। वो तो वो एक अवसर, और स्टार्टअप में सरकार का जो मदद है
1: स्टार्टअप
0: इंडिया द्वारा कि उसमें आपको ये टैक्स में छूट है, और इसमें आपके जो पुराने इंस्टीट्यूट हैं, IIT हैं, IIM, उन्होंने जिस ढंग से उनको आगे बढ़ाया है, वहां उनके टीचर जो मेंटोर हैं, वहां पे एक इकोसिस्टम बन रहा है, वो चल रहा है। और अगर स्टार्टअप में देखेंगे तो टेक के क्षेत्र में जो कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी में ज्यादातर वो काम कर रहे हैं, बाकी तो नए नए जो वेंचर्स उसमें भी आ रहे हैं, उसमें आप देखेंगे कि पेटेंट की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ी। यानी कि जो हमारे यूथ जो कहीं रिसर्च में लगे हुए हैं, कुछ नई चीज ढूंढ रहे हैं, पहले पेटेंट नहीं होता था, पूरा पेटेंट के जो रजिस्ट्री, जो पूरे मैकेनिज्म है वो चेंज किया जा रहा है। लाखों यूथ जो हैं वो अब नए नए पेटेंट के लिए हर साल लाखों अप्लाई हो रहे हैं और पेटेंट मिल रहा है। पेटेंट मिलने का मतलब यह है कि बिल्कुल नई चीज, नए इनोवेशन करके आप दे रहे हैं। तो ये हर क्षेत्र में यूथ के लिए उन्होंने, चाहे खेल हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे रोजगार हो, अगर आप रोजगार देने वाला स्टार्टअप जैसा अगर आप उद्यमी बनना चाहते हैं तो वो अवसर भी है जो पहले नहीं मिलता था।
1: बिल्कुल। और अगर हम तीसरे स्तंभ की बात करें किसानों की, तो किसानों के सशक्तिकरण का रंजन जी जो एक क्रांतिकारी हमने बदलाव देखा है प्रोडक्शन फिगर्स में, अगर हम एक्सपोर्ट की बात करें तो हम टॉप 10 एक्सपोर्टर्स ऑफ द वर्ल्ड में अब शामिल हो गए एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स, और जिस तरह से नई मिनिस्ट्रीज का गठन हुआ है, मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन, एलाइड सेक्टर्स के लिए एक अलग मिनिस्ट्री, किसानों के सशक्तिकरण को आप कैसे देखते हैं पिछले 12 सालों में, और इसका आधुनिकीकरण जो हुआ है उसके प्रमुख पहलू आप क्या मानते हैं?
0: देखिए, उसमें पहले आपको समझना पड़ेगा कि जब खेती में दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण होती है, एक तो होता है इनपुट कॉस्ट, कि आप जब खेती करने जा रहे हैं तो आपको क्या क्या उसमें लगाना पड़ेगा, और अगर खराब हो गई फसल, बाढ़ आ गई, सूखा पड़ गया, कुछ भी हो गया, आपदा आ गई, तो आपका क्या होगा। पहले जो समस्या थी कि इनपुट कॉस्ट की तुलना में जो हम मिनिमम जो गारंटी सरकार देती भी थी कि हम खरीदेंगे, तो कुछ फसलों पे थी, चावल था, गेहूं था, एक दो फसलें और थी, वो नहीं थी कि ये हम आपको खरीदेंगे। अगर आप देखेंगे 12 सालों में तो जो उर्वरक है, जो फर्टिलाइजर है, कीमत उसकी लगभग सेम है, 12 साल में नहीं बढ़ा है, सरकार को सब्सिडी बढ़ रही है, लेकिन वो लगभग 250-300 रुपए की बोरी जो 45 किलो की जो यूरिया की थी आज भी वही है,
1: बहुत बड़ा समर्थन है।
0: इसका मतलब कि जो कॉस्ट आपका है वो उर्वरक वाला वो नहीं बढ़ा है, वो सेम है। दूसरा कि पूरे देश में बिजली जो है वो 24 घंटे उपलब्ध है लगभग, मतलब ग्रामीण इलाकों में कहते हैं कि एवरेज 22-23 घंटे बिजली आज है, पहले नहीं होती थी। या और किसान अधिकांश जो राज्य है उसमें किसानों की बिजली फ्री है, तो सिंचाई के लिए आपको अलग से कोई कॉस्ट नहीं आ रहा है, और आपके खाद्यान्न की कीमत अगर आप देखेंगे तो कुछ बढ़ा ही है। दूसरी इससे भी बड़ी बात यह है कि सरकार जो सहायता दे रही है 2,000

0: 6,000 प्रति वर्ष तीन इंस्टॉलमेंट्स
1: तीन इंस्टॉलमेंट में, दो दो हजार के, तीन इंस्टॉलमेंट में 6,000 के हैं, तो वो उसका अगर आप समय देखेंगे कि वो उस वक्त दिया जाता है और छोटे किसान, आपके अधिकांश जो देश में किसान हैं 12 करोड़ छोटे किसान हैं, उनके पास पैसे नहीं होते हैं, जिस वक्त उनको बुआई करनी होती है, जो खेत लगाना होता है, कुछ करना हो तो बीज खरीदने के लिए पैसे नहीं होते हैं, उनके लिए उस वक्त उनको पैसे दिए जाते हैं, वो मदद उनको दी जा रही है, किसान क्रेडिट कार्ड उनको दिया जा रहा है कि लाख रुपए तक आपका खर्च कोई करना हो तो बहुत सस्ते में, कुछ नहीं देना है आपको, आप उसमें खर्च कर सकते हैं। जो फिशरीज का जो अलग से मिनिस्ट्री बना करके उनका जो ब्लू रेवोल्यूशन जो उनका किया है और जो एक्सपोर्ट बढ़ा है वो आप देखिए, हॉर्टिकल्चर में जो भारत का एक्सपोर्ट जो मेनली जो आपको दिख रहा है एक्सपोर्ट जो कृषि क्षेत्र में, वो उसमें दिख रहा है, क्योंकि उसमें 10% 12% का ग्रोथ है, वो एक बड़ी ताकत के रूप में भारत उभर रहा है। तो किसान एज ए होल कह लें आप, बड़ा परिवर्तन हुआ है। और किसान अगर आप कहते हैं ना सिर्फ, तो किसान नहीं होता है सिर्फ, उसी घर में महिलाएं भी, महिलाओं का जो सेल्फ हेल्प ग्रुप बन रहा है,
0: जैसे अभी सर्जना जी बता
1: रही, सर्जना जी बता रही हैं, तो वो भी तो वहीं बन रही हैं, जो 10 करोड़ महिलाएं हैं वो भी तो किसान परिवारों से ही आती हैं, वो किसान परिवार सशक्त हो रहा है। जो मार्केट का डेवलपमेंट, जो आपकी सड़कें बन रही हैं, तो उन सड़कों के बनने से किसान का जो प्रोडक्ट है वो मार्केट तक आसानी से पहुंच रहा है। और आपने आज 20-25 फसलें ऐसी हो गई हैं जिनकी गारंटी सरकार दे रही है खरीदने के लिए कि हम उसको खरीदेंगे, है ना, आप उपजाओ और गारंटी है इस कीमत पे हम करेंगे। कई राज्य सरकारों ने इधर भावांतरण योजना शुरू कर दी है कि अगर आपको मार्केट से कम कीमत आपको बेचना पड़ रहा है, मार्केट नहीं बेच रहे हैं, तो वो उस कीमत का पैसा हम आपको देंगे, यानी किसानों को कोई नुकसान नहीं होगा। तो जो अन्नदाता है उसके लिए उन्होंने खोला है, सारी चीजें व्यवस्था हो रही है, जो मतलब जो जो सीधे से कहां से नहीं जुड़ा है, किसान से लगता है कि जुड़ा हुआ नहीं है। अब मान ले कि जो सरोवर बनाने का था कि जीर्णोद्धार करना है, तमाम तालाबों का सब भर गए थे, सब कुछ है, वो किसका पानी का लेवल बढ़ रहा है, वहां सिंचाई की सुविधाएं उपलब्ध हो रही है, किसको जा रहा है फायदा, ये कई चीजें सीधे उनसे जुड़ी हुई नहीं है। जो ग्रामीण इलाकों में जो गरीब परिवार हैं उनका जो फ्री में इलाज जो 5 लाख का हो रहा है, उसमें बहुत सारे परिवार ऐसे गरीब हैं जो आयुष्मान भारत योजना के तहत, वो किसान परिवार से आते हैं। जो 55-60 करोड़ लोग हैं वो कहां से 55-60 करोड़ लोग हैं, बहुत सारे वहां से भी हैं। इसीलिए किसानों पे जो इनपुट कॉस्ट है, उनके जो जीवन के लिए जरूरी चीजें हैं, जो खर्चे हैं, सरकार ने उसे कम किया है, उनकी उत्पादकता बढ़ाई है, और अब कोऑपरेशन मिनिस्ट्री अलग से बना करके उनका कैसे वो जो फार्मर का जो प्राथमिक जो है वो संघ बने, कोऑपरेटिव बने, उसकी 1 लाख के आसपास हो गया है, उसमें है कि 2-3 लाख कोऑपरेटिव बनाने हैं, कोऑपरेटिव बना करके सिर्फ कोऑपरेटिव नहीं करना है, इंटरनेशनल कैसे उनका ऑर्गेनिक खेती करे, कैसे वो विदेश में एक्सपोर्ट हो, इसके लिए अलग से कोऑपरेटिव बना दिया है।
0: बिल्कुल,
1: तो हर तरफ से किसानों को सशक्त, किसान सशक्त मतलब देश सशक्त।
0: बिल्कुल सर्जना जी, अगर आपके पास आए, जैसा कि अभी नीलू जी कह रहे थे कि सब कुछ आपस में जुड़ा हुआ है, जो सारे चारों स्तंभ हैं ये भी आपस में जुड़े हुए हैं, अगर हम खासतौर से वंचितों की बात करें, जो इन्हें मार्जिनलाइज्ड कहते हैं या आर्थिक रूप से कमजोर, इनके बारे में थोड़ा सा बताएं कि इनके जैसे जो जनजातीय समूह के लिए जो स्टेप्स उठाए गए हैं या जो पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज के लिए स्टेप्स उठाए गए हैं, ये मार्जिनलाइज सेक्शन के लिए आप हमें बताएं कि किस तरह के परिवर्तनकारी उपाय हुए हैं।
2: वर्ग में तो एक क्रांतिकारी परिवर्तन आया है, वो ऐसे आया है कि एक तो सबसे पहले उस वर्ग में आत्म सम्मान, आत्म गौरव की भावना पैदा करना, जो हमारे शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं, जिनको पहले आदिवासी बोला जाता है, अभी वनवास जनजाति जैसे हैं, तो इनके लिए आप देखें कि जो उनके हीरो रहे हैं, बिरसा मुंडा हैं और बहुत सारे, उन सबको इन्होंने निकाला और जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है बिरसा मुंडा जी के नाम से। फिर आदि मेले लगने शुरू हुए और एकलव्य स्कूल बनाए गए हैं इन बच्चों के लिए, उसका नाम है एकलव्य स्कूल, कि जितने ट्राइबल बच्चे हैं, क्योंकि अगर वो रेगुलर स्कूल में नहीं जा पा रहे तो आप उनको बोर्डिंग स्कूल है ये, उसमें आप उनको पूरी तरह से एक आधुनिक शिक्षा भी दे रहे हैं, आप उनको शिक्षा से जोड़ रहे हैं। दूसरा, जो ट्राइबल्स हैं वो हमारे जल वन के रक्षक और संस्कृति के रक्षक सबसे ज्यादा वो हैं। हम जो पढ़े लिखे शहरी हैं, हम पर्यावरण की उतनी रक्षा नहीं कर सकते जितना वो लोग करते हैं, तो उनके लिए जो वन धन योजना है उससे बहुत लाभ है। उनको कहीं नहीं जाना, नौकरी के लिए एप्लीकेशन नहीं देना, क्योंकि उन लोगों को ये भी मालूम है कि कौन सी जड़ी बूटी का क्या असर है। उन पत्तों को हम नीलू जी या आप जंगल में जाके नहीं पहचान सकते, उनको

0: पता है कि कौन सा फूल जब खिलेगा तो उसके बाद कब बारिश होगी, कब आंधी आएगी, तो वो लोग प्रकृति के साथ सहचर हैं, प्रकृति के। ये जो मंत्रालय है, ट्राइबल अफेयर मिनिस्ट्री है, तो ये भी आप देखिए कि वैसे तो अटल जी के समय में बना था, लेकिन अब इसमें बहुत सारे परिवर्तन आए हैं। और ये खेलने में बहुत अच्छे हैं, ये हॉकी में है, स्पेशली तीरंदाजी में, कुश्ती में, तो उस पर भी ध्यान दिया गया है। इनके लिए बोर्डिंग्स खोले गए, इनके लिए कोचेस दिए गए हैं, इनके लिए बहुत सारी योजनाएं हैं। और जिस एरिया में जो चीज ज्यादा जो पैदावार हो रही है, अब देखिए कि जैसे मखाना बोर्ड बिहार में बनाया गया है, पहले तो नहीं था। दूसरी बात, खाली मखाना बोर्ड बना देने से काम नहीं होगा, ट्रेनिंग है उनकी, फिर उनकी प्रोडक्ट की कीमत है, फिर उनकी प्रोडक्ट को देश में और विदेश में सब जगह पे उनको मंच मिले, ई कॉमर्स जिसको वो भी चला रहे हैं। अभी जब मोदी जी यात्रा पर गए, हमारे प्रधानमंत्री जी, फ्रांस, स्लोवाकिया और G7 में, तो मैं जो लिस्ट देख रही थी, आप सोचिए, उसमें वो पिछली बार मखाने लेके गए थे, इस बार वो ठेकुआ भी लेके गए। ठेकुआ भी आप मतलब,
1: हाँ,
0: हाँ,
1: उन्होंने सम्मान दिलाया है पूरे
0: श्री अन्न उसको
1: जी,
0: नाम दिया, जिसको मोटा अनाज सब बोलते थे, अब उसको देखिए मान श्री अन्न। और सब चीजों की कीमतें भी बढ़ी है उसकी वजह से, और उसका किसान को लाभ हो रहा है। आज मखाने का आप रेट देखिए बाजार में, तो वो सारा आप सोचिए कि वो लाभ किसान को जा रहा है। और दूसरा, जैसा अभी नीलू जी ने कहा कि खाली विकास समग्र होना चाहिए, अगर मेरे पास प्रोडक्ट है और मैं मंडी तक ही नहीं पहुंच पाऊं, तो मेरे पास मंडी तक पहुंचने के लिए सड़क नहीं है, साधन नहीं है, तो मेरी प्रोडक्ट का क्या होगा, क्योंकि ये तो पेरिशेबल आइटम जो होती है, तो उनको तुरंत बाजार चाहिए। तो ये भी बहुत सुविधा हुई है उसके लिए
1: जी।
0: और जब ये MSP की बात होती है, तो MSP अब कहा कि आप जाके किसान अपनी फसल, जरूरी नहीं कि किसी को, भाई जिसको जो कीमत दे रहा है किसान को, जितनी दे रहा है, और जिसके पास वो जाके खरीद ले,
1: हो जाता है।
0: नहीं, खरीद लीजिए जाके जितना रेट है। तो ये विपक्ष जो कहता रहा, जो किसान आंदोलन हुआ, उन्होंने MSP की बात की, तो वो उससे 4 कदम आगे चले। तो वंचित वर्ग में फिर है कि पढ़ाई है उनकी, पहले लोगों को लगता था कि अगर बेटी पैदा हो गई तो क्या होगा, अब किसी को नहीं लगता।
1: बिल्कुल,
0: सुकन्या समृद्धि योजना है, लड़कियों को वर्दी है, लड़कियों को सब कुछ। और दूसरा, अगर मान लीजिए अब जो असंगठित क्षेत्र था, जहां पर ये वंचित वर्ग जिसकी आप बात कर रहे हैं, क्योंकि उसके पास कोई स्किल, कोई एजुकेशन कुछ नहीं था, या उसके पास अपना पारंपरिक हुनर भी, कौशल भी नहीं है कोई, तो खैर कौशल विकास मंत्रालय भी खोला गया और कौशल विकसित किया जा रहा है। तो अगर उसके पास कुछ भी नहीं, तो वो किसी मान लो फैक्ट्री में काम कर रहा है, तो ये भी सरकार ने सुनिश्चित किया, जो नए 4 लेबर कोड आए हैं, कि अगर कोई असंगठित क्षेत्र में है और काम कर रहा है, स्पेशली महिलाएं हैं, तो उनका वेजेस तय कर दिए गए हैं कि आप इससे कब वेज पे बिल्कुल काम नहीं करवाओगे
1: जी।
0: तो ये आप देखिए कितनी अच्छी बात है।
1: हाँ।
0: फिर दूसरा, अगर महिला आपके यहाँ काम कर रहे हो, तो आप उसको घर पहुंचाने की व्यवस्था भी करेंगे, फैक्ट्री आपकी करेगी, तो ये भी एक अच्छी बात है। अब सैनिटरी पैड पर देखिए, लड़कियों की जो सबसे बड़ी एक समस्या होती है, कि वैसे इसको कहा गया था कि ये बातचीत करने के, लेकिन ये भी 1 रुपए में जन औषधि केंद्र में सैनिटरी नैपकिन मिल रहा है लड़कियों को, किशोरियों को, तो आप सोचिए महिलाओं को, तो ये भी
1: बहुत बड़ा,
0: हम इसको एक अगर देखें तो एक तरह से ये भी एक सशक्तिकरण की ओर एक बड़ा कदम है। पिंक टॉयलेट्स हैं महिलाओं के लिए, अलग से अच्छे शौचालय बनाए गए हैं। तो ये ऐसी चीजें हैं जो आपको, अगर हम किसी मैनेजमेंट स्कूल की बुक देखें, तो उसमें ये चीजें नहीं दिखेंगी, लेकिन पिछले 12 साल में जो इतनी छोटी छोटी चीजों को सोच के समझ के जिनके ऊपर काम किया गया, पिछले 12 साल में जनधन खाते खोले गए, डायरेक्ट बेनिफिट उनको मिल रहा है, लेकिन उसके साथ साथ उनका कौशल विकसित किया गया,
1: और एक तरह से जो हमारी ट्रेडिशन है हमारे देश की, वो भी अलाइव,
0: मतलब कि हमारी एजुकेशन पॉलिसी जो मैकॉले ने जो लाया था, उसने व्हाइट कॉलर जॉब को बहुत प्रेफरेंस दिया था, पर ये जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, जो सरकार की औद्योगिक नीतियां हैं, जो MSME आप देखिए ना, MSME सेक्टर में कितनी चीजें हैं जो महिलाएं घर में बैठे बैठे शौक शौक में बना लेती हैं, जिनको ये शौक है, जिनके पास स्किल है, अपनी दादी नानी माँ से सीखा है, तो उसके लिए भी सरकार लोन दे रही है।
1: बिल्कुल,
0: तो ये बहुत महिलाओं का सशक्तिकरण। दूसरा, मैं आपसे कहूंगी कि जैसे मातृत्व वंदन है, वो योजना कितनी अच्छी है, जो मातृ शिशु रक्षा योजना है, तो ऐसी योजनाएं पहले था कि हाँ,
1: और एक्चुअली वो फिगर्स में दिखाई दे रहा है कि इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज जो अस्पतालों में अब हो रही हैं, उनका संख्या इतनी बढ़ गई है, 98% पे पहुंच गई है, और भी जो मोर्टेलिटी रेट है,
0: बेसिक मेरी जरूरत है वंचित वर्ग की, अगर हम बात करते हैं कि रोटी कपड़ा और मकान
1: जी,
0: उनको प्रधानमंत्री आवास योजना में घर दिया जा रहा है
1: जी,
0: ठीक है।

0: उनको जो राशन दिया जाता है, एक बीपीएल जो है उससे बिलो में जो राशन मिलता है, ठीक है वो आज नहीं तो कल कमाने लगेगा, वो भी बाकी समाज के साथ पेस मिलेगा, लेकिन जब उसको अपनी बेसिक जरूरतें पूरी हो रही हैं तो उसको उसके लिए नहीं स्ट्रगल करना, इसलिए उसका जीवन स्तर आगे बढ़ा। और कितने करोड़ लोग नीलू जी गरीबी रेखा से ऊपर उठे,
1: 25 करोड़
0: गरीबी रेखा से ऊपर उठे। और डिजिटल पेमेंट देखिए, आप सारी दुनिया आज हमसे सीखना चाहती है भारत,
2: और ये जो डिजिटलाइजेशन की आप बात कर रही हैं वो पूरे देश में है।
0: सब्जी वाला भी कहता है जी यहाँ पे पेमेंट कर दो, जो फूल बेच रहे वो भी कहता है, गोलगप्पे वाला
2: जी,
0: टिक्की वाला,
2: व्यापक सशक्तिकरण है। अगर हम सामाजिक न्याय की बात करें, समावेशी विकास की बात करें, तो कुछ ऐसे आंकड़े हैं जैसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में 71% बेनिफिशियरीज जो है शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी फार्मर्स हैं। और मुद्रा योजना की अगर हम बात करें या जनधन योजना की बात करें तो 70% से अधिक जो अकाउंट्स है वो महिलाओं के हैं। सो आपको लगता है कि जो स्कीम्स हैं वो अच्छी भी हैं, लेकिन वो ज्यादा जरूरी है कि वो इम्प्लीमेंट बहुत कहें कि सिंसियरिटी से हुई है।
3: निश्चित रूप से मैं ये अनुभव अपना बताता हूँ, जहाँ मैं अभी गया था पिछले दिनों, जगदलपुर गया था। जगदलपुर का नाम सुनते ही बस्तर सोचते हैं लोग, नक्सली प्रभावित था, नक्सली इलाके में कोई सरकारी कर्मचारी जा ही नहीं सकता था, स्कूल जला दिए थे, जो जंगल में जो लोग थे उनको सारी चीजें नहीं मिलती थी। अब वहां के जो प्रोडक्ट हैं, जो वहां ट्रेनिंग दी जा रही थी और बिल्कुल एक संस्थागत रूप में सब कुछ लाया जा रहा है वहां पे, कि जो कैंप लगे थे, नक्सल समस्या खत्म हो गई, तो जो सुरक्षा बलों के कैंप थे उसको सेवा केंद्र में बदला जा रहा है। अमित शाह जो गृह मंत्री हैं वो खुद हमारे साथ थे, उनके साथ मैं भी था। वहां मैंने देखा कि जो जंगल के प्रोडक्ट हैं, से इमली बहुत होती है, अब इमली वहां पे जो तोड़ा अब वो बिचौलिए सब खाते थे और जैसे थे जाता था, अब वो मशीनें लगी हैं, उनको ट्रेनिंग दी जा रही है कि इमली को कैसे आप पैकेजिंग करो, 500 ग्राम के, 1 किलो के छोटे पैकेजिंग बिल्कुल एकदम उसको, और उसके बीज हटने चाहिए, उसका ये होना चाहिए, और बिल्कुल शुद्ध ऑर्गेनिक बिना किसी केमिकल, और उसकी बहुत डिमांड है। एक वहां महुआ बहुत होता है, फ्री में चुनते हैं, अब महुआ और बाकी जो श्री अन्न है मिला करके इतने अच्छे अच्छे प्रोडक्ट बन रहे हैं उसके, तो मार्केटिंग की एक सोच का अंतर आया है,
2: एक अवेयरनेस क्रिएट,
3: अवेयरनेस नहीं, सोच का अंतर ये है कि जब देश आजाद हुआ था तो हमने ये मान लिया था कि ये तो ट्राइब्स हैं, ये जैसे हैं वैसे ही खुश हैं, इनमें हमें छेड़छाड़ नहीं करनी, इनको हमारे डेवलपमेंट होते हैं, इनको हमारे स्कूल नहीं चाहिए, इनको हमारी बिल्डिंग नहीं चाहिए, इनको गाड़ी नहीं चाहिए, इनको जहाज नहीं चाहिए, इनको कुछ नहीं चाहिए, इनको ये जंगल में ही खुश है। अब आपने उनको छोड़ दिया तो उस जंगल में नक्सली घुस गए। अब जो चेंज आया है कि सारी सुविधाएं वो जंगल में रहें, जहां है जैसे जी रहे हैं रहें, लेकिन सारी सुविधाएं हम पहुंचाएं और उनके जो चीजें हैं वो अंतर्राष्ट्रीय मार्केट तक भी जाए, बाकी जगह भी जाए,
2: विकास और उनके बच्चे पढ़े भी, अगर वो चाहे शिक्षा वहां पे पहुंची।
3: एकलव्य स्कूल का उन्होंने नाम लिया कि आदिवासी बच्चे।
2: अच्छा, आप जो सोच की बात कर रहे हैं नीलू जी, यहाँ पे मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि जो टर्मिनोलॉजी भी यूज की गई है, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट, कितनी खूबसूरत है कि रिकॉग्नाइज कर रही है सरकार की एस्पिरेशंस है उन लोगों की और उनको पूरा करने के लिए ये पॉलिसी मेजर्स उठाए जा रहे हैं।
3: वो यही है कि जब आप सिंसियरली देखते हो कि जिले हैं तो कौन कौन से जिले देश में जो है वो पिछड़े, पहले होता था पिछड़े राज्य की बात, लेकिन अगर आप देखोगे केरल में भी तो केरल कहें कि वहां बहुत साक्षरता है, वहां महिलाओं का सशक्तिकरण है, ये है, तमाम चीजें हैं, लेकिन वहां भी कुछ जिले जो है पीछे रह जाते हैं। और जब बिल्कुल आप पिछले जो कहोगे छत्तीसगढ़ का, तो छत्तीसगढ़ के कुछ जिले बहुत अच्छे हैं, तो जो जिले पीछे छूट गए हैं वो किन किन मापदंडों पे छूटे हैं, वहां क्या करने की जरूरत है। अब वो जब हो गया तो जिले के भीतर ब्लॉक हैं, तो अब 500 ब्लॉक्स के अलग चल पड़ी है वहां पे, यानी कि जब समग्र और समेकित विकास की आप बात सोचते हो कि अंत्योदय जो उन्होंने कहा कि दीनदयाल उपाध्याय जी का था कि कोई छूटे न पीछे, ये जब आपकी सोच होती है तो जितने लोग छूटे हुए हैं सबको आप चुनते हो, क्यों छूट गया, क्या कमी है, क्या हम लगाएं कि यहाँ पे आ जाए, वो चीजें हो रही है।
2: संजना जी, आप भी कुछ कहना चाहेंगी?
0: देखिए, मुझे जो सबसे अच्छा 2-3 चीजें लगती हैं, एक है विरासत के साथ विकास
2: जी,
0: जो स्लोगन है वो बहुत बढ़िया लगता है मुझे, कि हम अपनी परंपराओं को, अपनी ट्रेडिशंस को बचाते हुए विकास की राह पर चले। ऐसा विकास ना हो जो हमें हमारी जड़ों से अलग कर दे, तो हमारी जड़ों से जोड़ने का जो विकास है वो, ये सोच बहुत अच्छी है। अगर मैं अपनी जड़ से उखड़ कर कहीं बहुत उन्नति करती हूँ अपने समाज से, अपने रीति रिवाज से, अपनी परंपराओं से, तो वो विकास

0: एक दिन जाकर मुझे दिल को बहुत दुखी करेगा, लेकिन मैं अपनी जड़ों से भी जुड़ी हूँ, अपनी परंपरा से, अपनी संस्कृति से, और उसके साथ मेरा विकास हो रहा है। अब एक चीज मैं और कहना चाहूंगी कि यूनेस्को धरोहर में अब हमारी टेंजिबल एंड इनटेंजिबल कितनी सारी चीजें आ गई। आप सोचिए, हमारा गरबा, हमारी दुर्गा पूजा, हमारी दिवाली, हमारे बहुत सारी चीजें हैं जो अब यूनेस्को की लिस्ट में शामिल होगी। और एक और सोचिए, पर्यावरण की दृष्टि में रामासर जो आर्द्र भूमि जिनको हम बोलते हैं, अब वो 100 होने वाली है। 99 तो हो ही चुकी, हो गई शायद, 100 हो गई।
1: और ये सब चीजें युवाओं को भी प्रेरित करती है कि हमारा कितना
0: रामासर लेक जो है, पहले हमारे पास 13 या 14 थी, अब आप देखिए कितनी हो गई। तो ये समग्र विकास जो है ना, विद मेरे विरासत के साथ, तो ये एक बहुत 12 साल की एक उपलब्धि है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर्जना जी, नीलू जी, आप आए और आपने हमें इतनी खूबसूरती से समझाया कि जो 4 स्तंभ जो माने गए हैं वर्तमान सरकार द्वारा विकास के, गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी, उनके सशक्तिकरण के लिए क्या क्या किया गया है पिछले 12 सालों में और आगे भी क्या हम उम्मीद कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद
0: सोनू जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमें आमंत्रित करने के लिए।
2: बहुत बहुत धन्यवाद।
3: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के विशेष श्रृंखला के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे सशक्तिकरण से समृद्धि की ओर बढ़ते भारत पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे थे वरिष्ठ पत्रकार नीलू रंजन और सर्जना शर्मा। परिचर्चा का संचालन कर रही थी सोनू सूद। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया।

मेदी में पर और प्रसार भारती के ऑफिशियल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर यह आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। अब पेश है फिल्म संगीत।

0: एक दूजे के लिए इस फिल्म में भी आपने सुना लता मंगेशकर और एसपी बाला सुब्रमण्यम को।
1: मम्मी, ये जहाज कहाँ जा रहा है?
2: बेटा, अब तो भारत का हर कोना आसमान से जुड़ रहा है।
3: जब भारत उड़ान भरता है तो उड़ान भरते हैं सपने, जुड़ते हैं शहर, बढ़ते हैं अवसर।
2: पिछले 12 वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सक्षम नेतृत्व में विकसित हुए हैं 160 से ज्यादा एयरपोर्ट्स। उड़ान योजना से संभव हुआ है छोटे शहरों तक हवाई संपर्क। डीजी यात्रा से सरल एवं सुगम हुई हवाई यात्रा।
3: नागर विमानन मंत्रालय, विकसित होते भारत की नई उड़ान। 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

एसपी बाला सुब्रमण्यम और साथियों के स्वर में अभी आपने सुना द जेंटलमैन फिल्म का गीत। इसी के साथ फिल्म संगीत का यह कार्यक्रम अब संपन्न होता है। मीडियम वेव पर और प्रसार भारती के ऑफिशियल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर यह आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। रिले करते हैं अब दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जागृति शर्मा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत को शांति और सहयोग का पक्षधर बताया। कहा, वैश्विक संकटों और युद्ध जैसी परिस्थितियों का समाधान संवाद और कूटनीति से ही संभव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, जनजातीय समुदाय देश के विकास में महत्वपूर्ण भागीदार बन रहा है। ओडिशा में 47,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का शुभारंभ। श्री मोदी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किश्त जारी की। 18,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि किसानों के खातों में अंतरित। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री कल कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड पर राष्ट्रीय समारोह का नेतृत्व करेंगे। नीट यूजी 2026 पुनर्परीक्षा कल, परीक्षा केंद्रों पर कड़े सुरक्षा प्रबंध। ईरान ने युद्ध विराम उल्लंघन के बाद होर्मुज जल डमरू मध्य फिर से बंद किया। और चेन्नई में तीसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में भारत ने अफगानिस्तान को 9 विकेट से हराकर श्रृंखला 3-0 से जीती। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि भारत हमेशा शांति और सहयोग का पक्षधर रहा है, क्योंकि जटिल वैश्विक मुद्दों और युद्ध जैसे संकटों का समाधान केवल संवाद और कूटनीति से ही संभव है। राष्ट्रपति ने मोहन चरण मांझी सरकार के 2 वर्ष पूरे होने के अवसर पर ओडिशा के मयूरभंज जिले के रायरंगपुर में एक जनसभा में ये बात कही। राष्ट्रपति ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व नेताओं के साथ अपने दूरदर्शी शासन और संपर्क के जरिए वैश्विक मंच पर भारत की प्रतिष्ठा को बढ़ाया है।
1: देशर प्रधानमंत्री भाव्य दायित्व ग्रहण करिवा दिनरु
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना पदभार संभालने के बाद से राष्ट्रीय हित में कई कदम उठाए हैं। इस महीने उन्होंने लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल पूरा करने का रिकॉर्ड बनाया। मैं सभी नागरिकों की तरफ से इस ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए उन्हें बधाई देती हूं। मैं कामना करती हूं कि वे देश के लोगों के हित के लिए निरंतर काम करते रहें और भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का सपना साकार करने में राष्ट्र का नेतृत्व करते रहें।
1: यह मोर आंतरिक कामना।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे। श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार की योजनाओं से सशक्त होकर जनजातीय समुदाय भारत के विकास में सक्रिय योगदान दे रहे हैं। उन्होंने पूर्वी भारत के

0: विकास में तेजी लाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार के पूर्वोदय दृष्टिकोण का भी उल्लेख किया।
1: ओडिशा में आर्थिक गतिविधियां, निवेश और उद्योगों को आकर्षित करने का सामर्थ्य आज नजर आ रहा है। केंद्र सरकार का विजन है पूर्वी भारत के विकास से भारत का विकास, इसलिए हम पूर्वोदय की नीति पर काम कर रहे हैं। जिस पूर्वी भारत को कांग्रेस के दौर में पिछड़ेपन का पर्याय बना दिया गया था, आज वो प्रगति का प्रवेश द्वार बन रहा है।
0: इस दौरान ओडिशा में 47,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया गया। बाद में प्रधानमंत्री हुगली जिले के तारकेश्वर में पश्चिम बंगाल दिवस समारोह में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने राज्य में विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। श्री मोदी ने कहा कि इन परियोजनाओं से राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। श्री मोदी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किश्त के रूप में 18,880 करोड़ रुपए जारी किए। प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे देश भर के 9,44,00,000 से अधिक किसानों को लाभ मिलेगा।
1: साथियों, आज पीएम किसान सम्मान निधि के तहत देश भर के 9 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खातों में पैसे भेजे गए हैं और पश्चिम बंगाल के किसानों के लिए एक और खुशी की खबर है, आज से राज्य में पीएम फसल बीमा योजना शुरू की जा रही है।
0: प्रधानमंत्री कोलकाता में कल आईएनएस दुनागिरी, आईएनएस संशोधक और आईएनएस अग्रय का अनावरण करेंगे। इन पोतों में 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: सुरक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कल विश्व भर में मनाया जाएगा। इस वर्ष का विषय है बढ़ती उम्र के प्रभाव को रोकने के लिए योग। मुख्य कार्यक्रम कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड पर आयोजित किया जाएगा। प्रधानमंत्री इस कार्यक्रम में योगाभ्यास के दौरान राष्ट्र का नेतृत्व करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि रेड रोड पर राष्ट्रीय कार्यक्रम सुबह 5 बजे शुरू होगा।
2: संस्कृति मंत्रालय द्वारा देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, ऐतिहासिक स्थलों और योग परंपराओं को जोड़ते हुए देश भर के 100 विशेष स्थानों पर योग के विशेष कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इस पहल के तहत 12 प्रमुख स्थलों पर बड़े कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिनमें नई दिल्ली में लाल किला, उत्तराखंड में हरिद्वार, उड़ीसा में कोणार्क, कर्नाटक में हम्पी, तमिलनाडु में महाबलीपुरम, महाराष्ट्र में मुंबई, बिहार में नालंदा, गुजरात में अहमदाबाद, उत्तर प्रदेश में सारनाथ, लद्दाख में लेह, तेलंगाना में हैदराबाद और असम में सिलचर शामिल है। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के साथ मिलकर विदेशों में मौजूद 210 से ज्यादा भारतीय मिशन लगभग 2500 स्थानों पर योग कार्यक्रम आयोजित करेंगे। वहीं दिल्ली में शांति पथ, यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, कर्तव्य पथ, न्यू मोतीबाग, सेंट्रल पार्क और तालकटोरा गार्डन जैसे प्रमुख सार्वजनिक स्थानों पर योग कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: उपराज्यपाल मनोज सिन्हा कल श्रीनगर में डल झील के किनारे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह का नेतृत्व करेंगे। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय कल नई दिल्ली के भारत मंडपम में विशेष योग दिवस समारोह आयोजित करेगा। इस आयोजन में लगभग 1500 वरिष्ठ नागरिकों के शामिल होने की संभावना है। इसी कड़ी में आकाशवाणी समाचार आयुष राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार प्रताप राव जाधव का विशेष साक्षात्कार प्रसारित करेगा। आकाशवाणी एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज चैनल पर यह साक्षात्कार आज रात 9:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। श्री जाधव ने बताया कि कामकाजी लोगों के लिए सरकार ने वाई ब्रेक ऐप भी शुरू किया है।
3: लोग दिन भर चेयर पे बैठे के काम करना पड़ता है। वो लोग भी जब लंच ब्रेक होता है तब तक बहुत सारी थकान वो लोगों में आती है, तो वो थकान दूर करने के लिए भी उनके लिए वाई ब्रेक नाम का एक हमने ऐप निकाला है कि उसमें 10 मिनट में तुम चेयर पर बैठे बैठे कौन से आसन कर सकते हो, करने से जो भी तुम्हारा थकान आई होगी वो दूर हो जाएगी।
1: दुनिया भर में भारतीय दूतावास और राजनयिक मिशन

कल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए पूरी तरह तैयार हैं। आज नेपाल में भारतीय दूतावास ने लुम्बिनी में योगासन कार्यक्रम आयोजित किया। चीन में भारतीय दूतावास ने पेइचिंग में आयोजित योग कार्यक्रम की झलकियां साझा की। उधर जापान में भारतीय दूतावास ने कल सुकिजी होंगन जी मंदिर में योग दिवस कार्यक्रम आयोजित करने की घोषणा की है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले संयुक्त अरब अमीरात में भी कई कार्यक्रम आयोजित हुए। राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2000

0: दिवस से पहले संयुक्त अरब अमीरात में भी कई कार्यक्रम आयोजित हुए। राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा कल आयोजित की जाएगी। परीक्षा देश के 551 शहरों और विदेश में 14 शहरों में होगी। इसमें 22,79,000 से अधिक परीक्षार्थी शामिल होंगे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने नीट यूजी पुनर्परीक्षा की तैयारियों के अंतर्गत आज राष्ट्रव्यापी मॉक ड्रिल आयोजित की। एक रिपोर्ट।
1: परीक्षा के सुरक्षित, पारदर्शी और सुचारू संचालन के लिए पर्यवेक्षकों, समन्वयकों, पुलिस बलों और प्रशासनिक अधिकारियों सहित 2,00,000 से अधिक कर्मियों की तैनाती की गई है। निष्पक्ष और पारदर्शी परीक्षा सुनिश्चित करने के लिए बहुस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था लागू की गई है। एनटीए भ्रामक सूचनाओं पर रोक लगाने और किसी भी प्रकार की अनियमितता को रोकने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की भी सक्रिय रूप से निगरानी कर रहा है। परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक आयोजित की जाएगी। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा कल संयुक्त अरब अमीरात में 3 निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के अंतर्गत पिछले 12 वर्ष में उल्लेखनीय बदलाव आया है। आकाशवाणी समाचार पिछले 12 वर्ष में प्रमुख क्षेत्रों में सरकार के प्रयासों पर विशेष कार्यक्रम का प्रसारण कर रहा है। आज जानकारी सशक्त भारत के संकल्प को साकार करने वाली सरकार की परिवर्तनकारी पहलों के बारे में।
2: पिछले 12 वर्षों में सरकार ने भारत के हाईटेक क्षेत्र में बड़ा बदलाव लाने का काम किया है। सशक्त भारत के 2 महत्वपूर्ण आधार हैं, सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम का विकास और स्पेस स्टार्टअप्स की तेजी से बढ़ती संख्या। सरकार की नीतियों और फैसलों से सेमीकंडक्टर क्षेत्र में सिर्फ योजनाएं ही नहीं बनी बल्कि अब निर्माण और डिजाइन से जुड़े कई इकाई भी काम कर रहे हैं। दिसंबर 2021 में इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन शुरू किया गया। इसके लिए 76,000 करोड़ रुपए का बजट रखा गया। इस योजना के तहत सिलिकॉन फैब, कंपाउंड सेमीकंडक्टर इकाई, असेंबली और टेस्टिंग सुविधाओं तथा चिप डिजाइन के लिए 50% तक वित्तीय सहायता दी गई। साल 2026 में सरकार ने सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 शुरू किया, जिसके लिए 1,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य उद्योगों के सहयोग से शोध और प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करना, नई तकनीकों का विकास करना और भविष्य के लिए कुशल मानव संसाधन तैयार करना है। इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि मिशन 1.0 ने इस जटिल उद्योग की मजबूत नींव रखी है।
3: हम अपने सेमीकंडक्टर मिशन के पहले चरण में ये हासिल कर पाए हैं। 75,000 से ज्यादा इंजीनियर इस क्षेत्र में प्रशिक्षित हो चुके हैं। 300 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज छात्रों को चिप डिजाइन करना सिखा रही हैं और भारत में 2 नैनोमीटर चिप्स डिजाइन की जा रही हैं, जो दुनिया की सबसे एडवांस चिप्स हैं। इनमें एनवीडिया और इंटेल की चिप्स भी शामिल हैं और ये सभी अब भारत में ही डिजाइन की जाती हैं।
2: वहीं भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 ने निजी कंपनियों को अंतरिक्ष क्षेत्र में पूरी तरह काम करने की अनुमति दी है। अब निजी संस्थाएं रॉकेट लॉन्च, उपग्रह निर्माण और संचालन, डेटा संग्रह और वितरण तथा ग्राउंड स्टेशन जैसी गतिविधियां कर सकती हैं। इस नीति के बाद भारत में स्पेस स्टार्टअप्स की संख्या 2014 में केवल 1 से बढ़कर 400 से अधिक हो गई है। इससे देश की निजी अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था को नई गति मिली है। भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था वर्तमान में लगभग $8 अरब से अधिक की है और अगले 8 से 10 वर्षों में इसके 4 से 5 गुना बढ़कर 40 से 45 अरब डॉलर तक पहुँचने की संभावना है। आकाशवाणी के साथ बातचीत में अनिल प्रकाश, स्पेस इंडस्ट्री एसोसिएशन ऑफ इंडिया के महानिदेशक, ने बताया कि भारत में अब 400 से अधिक स्पेस टेक स्टार्टअप्स हैं।
4: नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में स्पेस सेक्टर रिफॉर्म, स्पेस की स्थापना और प्राइवेट पार्टिसिपेशन में को बढ़ावा देने वाली नीतियों ने एक नई क्रांति की शुरुआत की है। आज भारत में 400 से अधिक स्पेस टेक स्टार्टअप कार्यरत है, जो सैटेलाइट, लॉन्च व्हीकल, अर्थ ऑब्जर्वेशन और डाटा सर्विस जैसे क्षेत्रों में इनोवेशन कर रहे हैं।
2: सेमीकंडक्टर मिशन की उपलब्धियों और तेजी से बढ़ती निजी अंतरिक्ष क्षेत्र के माध्यम से भारत विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में लगातार आगे बढ़ रहा है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। ईरान की संयुक्त सैन्य कमान ने आज घोषणा की है कि होर्मुज जलडमरू मध्य को एक बार फिर बंद कर दिया गया है। ये फैसला लेबनान में इसराइल की सैन्य कार्रवाई का हवाला देते हुए लिया गया है।

0: सरकारी टेलीविजन पर प्रसारित बयान में ईरान ने चेतावनी दी है कि अगर इसराइल के हमले जारी रहे तो वह और कड़े कदम उठा सकता है। उधर दक्षिणी लेबनान में इसराइल के हवाई हमलों में 2 बच्चों सहित 16 लोगों की मौत हो गई। ये हमले संघर्ष विराम की खबरों के कुछ ही घंटों बाद हुए। कैलाश मानसरोवर यात्रा के तीर्थयात्रियों का पहला जत्था आज नाथुला दर्रे से होते हुए चीन में प्रवेश कर गया। इस दल में 47 लोग हैं। चेन्नई में भारत ने तीसरे और अंतिम एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में अफगानिस्तान को 9 विकेट से हराकर श्रृंखला 3-0 से जीत ली है। भारत ने 29वें ओवर में 1 विकेट पर 224 रन बनाकर जीत हासिल की। 5 विकेट लेने वाले प्रसिद्ध कृष्णा को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत को शांति और सहयोग का पक्षधर बताया। कहा, वैश्विक संकटों और युद्ध जैसी परिस्थितियों का समाधान संवाद और कूटनीति से ही संभव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, जनजातीय समुदाय देश के विकास में महत्वपूर्ण भागीदार बन रहे हैं। ओडिशा में 47,000 करोड़ रूपये से अधिक की परियोजनाओं का शुभारंभ। श्री मोदी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किश्त जारी की। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री कल कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड पर राष्ट्रीय समारोह का नेतृत्व करेंगे। नीट यूजी 2026 पुनर्परीक्षा कल, परीक्षा केंद्रों पर कड़े सुरक्षा प्रबंध और चेन्नई में तीसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में भारत ने अफगानिस्तान को हराकर श्रृंखला 3-0 से जीती। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: Good evening. This is Akashvani and I am Valsa Williams with the news at 9. The headlines. President Draupadi Murmu says India has consistently emerged as voice of peace, dialogue and cooperation as it believes issues can only be resolved through mutual discussion and not war. Prime Minister Narendra Modi asserts tribal communities are emerging as active participants in India's development journey, launches development projects worth more than 47,000 crore rupees in Odisha. Prime Minister releases 23rd installment of PM Kisan Samman Nidhi scheme of over 18,000 crore rupees. Prime Minister to lead International Day of Yoga 2026 celebrations at Kolkata's historic Red Road tomorrow. NEET UG 2026 re-examination to take place tomorrow under strict vigil. Iran closes Strait of Hormuz over ceasefire violation. And in cricket, India clean sweep 3-match series against Afghanistan 3-0, defeating the visitors by 9 wickets. In third ODI at Chennai. President Draupadi Murmu today lauded Prime Minister Narendra Modi's leadership, stating that he has significantly enhanced India's prestige and influence on the global stage through his visionary governance and constructive engagement with world leaders. Addressing a large public gathering at Rai Rangpur in Odisha's Mayurbhanj district, organized to mark the completion of 2 years of the Mohan Charan Majhi government, in the presence of Mr. Modi, the President said India has consistently emerged as a voice of peace, dialogue and cooperation under Prime Minister Modi's stewardship.
2: Since assuming the office, Prime Minister Narendra Modi has taken several steps in the national interest. This month, he set a record for the longest continuous tenure as an elected Prime Minister. On behalf of all citizens, I congratulate him on this historic achievement. I wish that he may continue to benefit the people of the country with his vision and lead the nation in realizing the resolve to transform India into Viksit Bharat by 2047.
1: Addressing the public gathering, Prime Minister Narendra Modi lauded Odisha's progress as the state completed 2 years under Chief Minister Mohan Charan Majhi, saying it is moving rapidly on the path of development and contributing significantly to the growth of eastern India. He said the centre's Purvodaya vision aims to drive India's growth through the rapid development of eastern India.
3: Odisha mein aarthik gatividhiyan, nivesh aur udyogon ko आकर्षित करने

0: कांग्रेस के दौर में पिछड़ेपन का पर्याय बना दिया गया था, आज वो प्रगति का प्रवेश द्वार बन रहा है।
1: वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज ओडिशा में मुख्तलिफ शोबों में तकरीबन 47,000 करोड़ रुपए मालियत के तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया और संगे बुनियाद रखा। जनाब मोदी ने जोर देकर कहा कि कबायली तबके भारत के तरक्की के सफर में सरगर्मी के साथ शामिल हो रहे हैं। जनाब मोदी ने सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू को उनकी सालगिरह पर मुबारकबाद भी पेश की और कहा कि उन्हें सदर जमहूरिया के आबाई गांव पहाड़पुर में आने का शर्फ हासिल हुआ है। बाद में वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मगरबी बंगाल के हुगली जिले में ताराकेश्वर के मकाम पर पश्चिम बंगा दिवस तकरीबात में शिरकत की। जनाब मोदी ने 18,880 करोड़ रुपए मालियत की पीएम किसान स्कीम की 23वीं किस्त भी जारी की, जिससे मुल्क में 9,44,00,000 से ज्यादा किसानों को फायदा होगा। वजीर आजम ने मगरबी बंगाल का यौम तासीस मनाने के लिए मुनक्कदा एक शानदार तकरीब में भी शिरकत की। इस मौके पर रियासत के वजीर आला शोभेंदु अधिकारी भी मौजूद थे। जनाब मोदी ने मुख्तलिफ शोबों में कई तरक्याती प्रोजेक्टों का आगाज किया, मुल्क के नाम वक्फ किया और कुछ प्रोजेक्टों का संगे बुनियाद रखा। इन शोबों में रेलवेज, ज़राअत, देही तरक्की, माही परवरी और मवेशी परवरी के शोबे शामिल हैं। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि बीजेपी सरकार ने बंगाल की तरक्की के लिए सुपरफास्ट रफ्तार से काम शुरू कर दिया है।
0: आज यहां सैकड़ों करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास हुआ है। रेल, रोड, कृषि, मछली पालन, इससे जुड़ी ये परियोजनाएं बंगाल के विकास को नई गति देगी। इन परियोजनाओं से यहां की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। मैं बंगाल के लोगों को इन विकास परियोजनाओं की बधाई देता हूं।
1: योग का बैन अलावामी दिन कल पूरी दुनिया में मनाया जाएगा। इस साल योग का ये 12वां बैन अलावामी दिन है और इस साल का मौजू है सेहतमंद बढ़ती उम्र के लिए योग। इससे सेहतमंद, सरगर्म और बावकार बढ़ती उम्र की खातिर योग को जिंदगी भर के लिए अपनाने की अहमियत उजागर होती है। 2026 के योग के बैन अलावामी दिन की बड़ी तकरीब मगरबी बंगाल में कोलकाता में तारीखी रेड रोड पर होगी, जहां वजीर आजम नरेंद्र मोदी मुश्तरका योग प्रोटोकॉल अपनाने में मुल्क की क्यादत करेंगे। रेड रोड पर कौमी सतह की तकरीब कल सुबह सवेरे 5 बजे शुरू होगी। वहां हजारों लोग शिरकत करेंगे, जबकि मुल्क और बैरून मुल्क से करोड़ों लोगों के इसमें वर्चुअल वसीले से शामिल होने की उम्मीद है। इस तकरीब से सेहत, हम आहंगी और इज्तिमाई बहबूद को फरोग देते हुए एक आलमी तहरीक के तौर पर योग के बढ़ते हुए रोल का इयादा होगा। मजीद तफसील हमारे नामनिगार से।
2: सकाफत की वजारत मुल्क भर के 100 सरकर्दा मकामात पर योग के खुसूसी तकरीबात का एहतमाम कर रही है, जिसका मकसद भारत के मालामाल सकाफती विरसे, तारीखी मकामात और योगा की रिवायत को मजबूत करना है। इस पहल के तहत 12 सरकर्दा मकामात पर अहम तकरीबात का इनेकाद किया जाएगा, जिनमें दिल्ली में लाल किला, उत्तराखंड में हरिद्वार, उड़ीसा में कोणार्क, कर्नाटक में हम्पी, तमिलनाडु में महाबलीपुरम, महाराष्ट्र में मुंबई, बिहार में नालंदा, गुजरात में अहमदाबाद, उत्तर प्रदेश में सारनाथ, लद्दाख में लेह, तेलंगाना में हैदराबाद और असम में सिलचर शामिल है। सकाफती राब्तों की भारतीय कौंसिल के साथ इश्तराक में बैरून मुल्क 210 से ज्यादा भारतीय मिशन दुनिया भर में तकरीबन 2500 मकामात पर योगा तकरीबात का इनेकाद करेंगे। दिल्ली में अहम आवामी मकामात पर योगा तकरीबात का एहतमाम किया जाएगा, जिनमें शांति पथ के लॉन, यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, कर्तव्य पथ, सीपी सेंट्रल पार्क और तालकटोरा गार्डन शामिल हैं। दिल्ली से आनंद कुमार की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं मोहम्मद आजम खान।
1: ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी कल कोलकाता में मुल्क में ही बनाए गए भारतीय बहरिया के 3 बहरी जंगी जहाजों को पानी में उतारने की रस्म अंजाम देंगे। इनमें आईएनएस दूनागिरी, आईएनएस संशोधक और आईएनएस अग्रय शामिल हैं। इनका डिजाइन बहरिया के जंगी बहरी जहाजों के ब्यूरो ने तैयार किया है और गार्डन रीच शिप बिल्डर्स और इंजीनियर्स ने इन्हें तामीर किया है। इसका मकसद मुकाबला करने की सलाहियत को मुस्तहकम बनाना, हाइड्रोग्राफिक सर्वे और आबदोज शिकन निजाम को मजबूत बनाना है। भारत ने पिछले 12 साल में वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क्यादत में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास के उसूलों के तहत बहुत सी काबिल जिक्र तब्दीली

नमस्कार, राष्ट्रीय फिल्म पत्रिका चित्र भारती के जून महीने के अंक में आपका स्वागत है। चित्र भारती के इस अंक में संपादकीय शास्त्रीय संगीत के दिग्गज फिल्म संगीत की दुनिया में

मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह पर एक रपट और स्मृति शेष में नमन जानी मानी गायिका सुमन कल्याणपुर को सबसे पहले संपादकीय शास्त्रीय संगीत के दिग्गज फिल्म संगीत की दुनिया में 21 जून को मनाया जाता है विश्व संगीत दिवस। इस दिन को मनाने की शुरुआत हुई थी सन 1982 में। 21 जून का ही दिन इसलिए चुना गया था क्योंकि इस दिन होता है समर सोल्स्टिस यानी ग्रीष्म संक्रांति, साल का एक सबसे लंबा दिन, ताकि आप संगीत की स्वर लहरियों का ज्यादा मजा ले सकें। संगीत सिर्फ एक कला नहीं, संगीत जीवन का सुकून है। संगीत न होता तो कितनी सूनी होती ये दुनिया। आज चित्र भारती के संपादकीय में हम विश्व संगीत दिवस पर लाए हैं एक खास पेशकश, ऐसे कलाकारों की बातें जो वैसे तो शास्त्रीय संगीत में सक्रिय रहे पर जब वो फिल्म संगीत के मैदान में आए तो उन्होंने अपनी और ज्यादा चमक बिखेरी और हमें दिए कुछ अनमोल गाने, यानी कुछ ऐसे गायक और संगीतकारों की बातें जो शास्त्रीय संगीत की दुनिया से आते हैं। शास्त्रीय संगीत और फिल्म संगीत हमेशा दो अलग अलग ध्रुव रहे हैं। एक लंबे समय तक शास्त्रीय संगीत की दुनिया में फिल्म संगीत को कमतर माना जाता रहा और शास्त्रीय संगीत के कलाकारों ने फिल्म संगीत से बाकायदा दूरी बनाकर रखी। पर फिर ऐसा वक्त आया जब शास्त्रीय संगीत की दुनिया के दिग्गजों ने फिल्म संगीत की जमीन पर अपने कदम रख ही दिए। अगर शुरू से बात करें तो बेगम अख्तर जैसी दिग्गज गायिकाओं ने फिल्मों में काम भी किया और गाने भी गाए। सन 1930 के जमाने में उन्होंने एक दिन का बादशाह, नल दमयंती और

जवानी का नशा जैसी फिल्मों में अभिनय किया था। सन 1942 में उन्होंने महबूब खान की फिल्म रोटी में संगीतकार अनिल विश्वास के निर्देशन में गाना भी गाया। इसके अलावा सत्यजीत रे ने सन 1958 में एक फिल्म बनाई जलसा घर। इस फिल्म में उस्ताद विलायत खान साहब का संगीत था। ये फिल्म अपने लाजवाब संगीत के लिए जानी जाती है। बेगम अख्तर ने इस फिल्म में ये ठुमरी गाई।

ऐसे मौकों पर फिल्म संगीत अपनी अप्रतिम ऊंचाई तक पहुंच जाता है। शास्त्रीय संगीत के कई दिग्गजों ने फिल्म संगीत में अपना योगदान दिया है। सन 1952 में विजय भट्ट ने एक फिल्म बनाई बैजू बावरा। इस फिल्म के लिए संगीतकार नौशाद ने राजी किया मालवा घराने के संस्थापक उस्ताद अमीर खान साहब को। इतना सुखद था कि इस फिल्म का एक गाना पंडित डी वी पलुस्कर और उस्ताद अमीर खान साहब ने साथ में गाया था।

यहाँ ये जिक्र जरूरी है कि उस्ताद आमिर खान साहब ने सिनेमा के लिए शायद सबसे पहले नौशाद के ही संगीत निर्देशन में गाया था। फिल्म थी सन 1954 में आई शबाब। दूसरी बार उन्होंने सिनेमा के लिए तब गाया जब वी शांताराम ने फिल्म बनाई झनक झनक पायल बाजे, साल 1955। सन 1956 में राजा नवाथी की फिल्म आई बसंत बहार। इस फिल्म में ऐसा मौका आया जब फिल्म की सिचुएशन के मुताबिक शास्त्रीय संगीत की दिग्गज हस्ती पंडित भीमसेन जोशी को हराने की जिम्मेदारी पार्श्व गायक मन्ना डे को सौंपी गई। मन्ना डे तनाव में आ गए और चुपचाप पूना चले गए। उनकी पत्नी ने उन्हें समझाया कि आपका जो फर्ज है वो आपको निभाना होगा, ये तो सिर्फ फिल्मी गाना है, आपको ये गाना रिकॉर्ड करना ही होगा। और तब जाकर ये गाना रिकॉर्ड हुआ जो कालजयी बन गया।

0: अब आते हैं हिंदी सिनेमा की एक अजीमुशान फिल्म की ओर। ये फिल्म थी के आसिफ की मुगले आजम। इस फिल्म में एक खास सिचुएशन ऐसी है जिसके लिए के आसिफ को चाहिए थी पटियाला घराने के दिग्गज गायक उस्ताद बड़े गुलाम अली खां की आवाज। किसी तरह उन्हें मनाया गया। कहते हैं कि उन्होंने के आसिफ से एक बड़ी रकम की मांग की थी जिसे आसिफ साहब ने फौरन मान लिया था, और इस तरह से मुगले आजम में उस्ताद बड़े गुलाम अली खां की आवाज में दो गाने रिकॉर्ड हुए। एक गाना था ये
1: जो गाना बना,
0: और दूसरा गाना था

सन 1960 में आई फिल्म कोहिनूर। इस फिल्म में एक गाने में सितार बजाया था उस्ताद अब्दुल हलीम जाफर खान साहब ने। कहते हैं कि इस गाने में अभिनय के लिए दिलीप कुमार ने महीनों उस्ताद जी से सितार की तालीम ली थी। इसी तरह से फिल्म मेरी सूरत तेरी आंखें के इस गाने में तबला बजाया था बनारस के बेमिसाल तबला वादक गुदई महाराज यानी पंडित सामता प्रसाद जी ने। वी शांताराम ने सन 1964 में बनाई फिल्म गीत गाया पत्थरों ने। इस फिल्म में संगीत था रामलाल जी का, जो खुद एक

0: जानी मानी गायिका विदुषी बेगम परवीन सुल्ताना ने भी कई फिल्मी गाने गाए हैं। उनका सबसे मशहूर गाना है फिल्म कुदरत का वो गीत, जिसे आर डी बर्मन ने स्वरबद्ध किया था। इस गाने के गीतकार थे मजरूह सुल्तानपुरी।
1: हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर
0: पर उन्होंने इसके अलावा भी कई फिल्मों में गाया है। विदुषी परवीन सुल्ताना ने फिल्म गदर में ये गीत गाया। इस गाने में उनके साथ थे पटियाला घराने के जाने माने गायक पंडित अजय चक्रवर्ती। सन 1985 में अमोल पालेकर ने फिल्म अनकही बनाई। इस फिल्म का संगीत जयदेव ने दिया था। पंडित भीमसेन जोशी ने इस फिल्म में दो गाने गाए थे।

85 में फिल्म आई सुरसंगम, जिसके जरिए शास्त्रीय संगीत की दुनिया के अनमोल पंछी उतरे फिल्म संगीत के मैदान पर। पंडित राजन और पंडित साजन मिश्र, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

0: माने बांसुरी वादक पंडित हरि प्रसाद चौरसिया और जाने माने संतूर वादक पंडित शिव कुमार शर्मा ने ऐसे तो कई फिल्मी गानों में अपने अपने साजों का कमाल दिखाया है, पर आगे चलकर उन्होंने जोड़ी बनाई शिव हरि की जोड़ी और कई फिल्मों में संगीत दिया। ऐसी ही एक फिल्म थी सिलसिला।
1: जो तुम तोड़ो पिया मैं ना ही तोड़ू रे।
0: जाने माने सितार वादक पंडित रविशंकर ने कई फिल्मों में संगीत दिया, जैसे नीचा नगर, पाथेर पांचाली, अपराजितो वगैरह। पर उन्होंने ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्म अनुराधा में क्या कमाल के गाने बनाए थे।

0: पंडित रविशंकर के संगीत से सजी एक और फिल्म थी गोदान।
1: ओ बेदर्दी क्यों तड़पाए, ये राम रज जाए थे, ओ निर्दर्दी मैं पछताई तुझसे निहाल।
0: सन 1997 में सई परांजपे ने फिल्म साज बनाई। इस फिल्म में उस्ताद जाकिर हुसैन ने न केवल अभिनय किया था बल्कि कुछ गाने भी बनाए थे। चूंकि जिक्र चला है तो आपको बता दें कि उस्ताद जाकिर हुसैन के पिता उस्ताद अल्लाह रखा खां साहब ने भी कई फिल्मों में संगीत दिया था। यह है उनका संगीतबद्ध किया एक गाना।

आपने देखा कि शास्त्रीय संगीत की दिग्गज हस्तियों ने फिल्म संगीत का हाथ कभी कभी पकड़ा है। जब शास्त्रीय संगीत की बड़ी हस्तियां फिल्मी गानों से जुड़ती हैं, तो फिल्म संगीत और ज्यादा निखर जाता है। ये था विश्व संगीत दिवस के मौके पर चित्र भारती का संपादकीय शास्त्रीय संगीत के दिग्गज फिल्म संगीत की दुनिया में। और अब मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह पर एक रपट। मुंबई में 15 जून से 21 जून तक आयोजित किया जा रहा है 19वां मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। इस फिल्म समारोह का आयोजन नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन और भारत सरकार का सूचना और प्रसारण मंत्रालय करता है। ये एक ऐसा फिल्म समारोह है जिसमें डॉक्यूमेंट्री, शॉर्ट फिक्शन और एनिमेशन फिल्में दिखलाई जाती हैं। ये दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा और सबसे पुराना डॉक्यूमेंट्री फिल्म समारोह है। आपको बता दें कि मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आरंभ सन 1990 में हुआ था। ये फिल्म समारोह हर दूसरे वर्ष आयोजित किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में सर्वश्रेष्ठ वृत्त चित्र को गोल्डन कॉन्च पुरस्कार दिया जाता है और 10 लाख रुपए नकद मिलते हैं। इस समारोह में इस बरस कुल मिलाकर 55 लाख रुपए के पुरस्कार दिए जाएंगे। प्रतियोगिता श्रेणी के सभी पुरस्कारों का निर्णय अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय जूरी के द्वारा किया जाता है। प्रतियोगिता फिल्मों के अलावा AIFF जूरी रेट्रोस्पेक्टिव, बेस्ट ऑफ द फेस्टिवल्स, MIFF प्रिज्म, कंट्री फोकस डॉक्यूमेंट्री और रीस्टोर्ड क्लासिक्स जैसे कई विशेष पैकेज इस फिल्म समारोह का हिस्सा हैं। इस फिल्म समारोह के दौरान पैनल चर्चा, एक खुला मंच, सेमिनार और डॉक्यूमेंट्री फिल्म निर्माण पर कार्यशालाएं भी आयोजित की जाएंगी। ये फिल्म निर्माताओं और फिल्म प्रेमियों के लिए एक अनूठा मंच है जहां आकर वो अपने विविध दृष्टिकोण साझा कर सकते हैं और आगे बढ़ने के अवसरों का पता लगा सकते हैं। इस फिल्म समारोह में एक सेक्शन है प्रिज्म, जिसमें भारत और दुनिया भर की चोटी की शानदार डॉक्यूमेंट्री फिल्में दिखाई जाएंगी। इस फिल्म समारोह में वेव्स डॉक बाजार का भी आयोजन किया जा रहा है। ये एक ऐसा मंच है जो फिल्म निर्माण की यात्रा को पोषित करेगा और गति प्रदान करेगा। इसमें है एक व्यूइंग रूम जहां रजिस्टर्ड रिप्रेजेंटेटिव को एक समूह के सामने अपनी डॉक्यूमेंट्री, लघु फिल्म या एनिमेशन फिल्म प्रदर्शित करनी होगी। इस तरह से ये जगह वितरण सौदे हासिल करने, सह निर्माताओं को आकर्षित करने और फिल्म महोत्सव स्क्रीनिंग के लिए पैसे जुटाने का एक लॉन्च पैड बनेगा। इसके अलावा एक इमर्सिव मार्केट भी है जो पहली बार शामिल किया जा रहा है। इसमें इमर्सिव कंटेंट क्रिएटर्स, प्रोड्यूसर्स और टेक्नोलॉजी पार्टनर्स के लिए एक मिलन स्थल होगा जहां आकर वो आपस में कोलैबोरेट कर पाएंगे। VR, AR, XR और इंटरएक्टिव अनुभवों पर केंद्रित ये मार्केट नई परियोजनाओं को प्रदर्शित करने और सहयोग को बढ़ावा देने का काम करेगा। इस बार के फिल्म समारोह में कई मास्टर क्लासेस भी आयोजित की जाएंगी, जैसे फास्ट फिल्म क्या माइक्रो ड्रामा सिनेमा का फास्ट फैशन है, या फिर विचार से रूपरेखा तक एक दृश्य की संरचना। ये थी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह पर एक रपट। और अब स्मृति शेष में आज हम नमन कर रहे हैं जानी मानी पार्श्व गायिका सुमन कल्याणपुर को। 31 मई को सुमन कल्याणपुर हमारे बीच नहीं रही। स्मृति शेष।

0: कम लोग जानते हैं कि सुमन कल्याणपुर का जन्म 28 जनवरी 1937 को भवानीपुर बंगाल में हुआ था। ये जगह अब बांग्लादेश में है। पांच बहनों में सबसे बड़ी सुमन की परवरिश मुंबई में हुई। ये वो जमाना था जब लड़कियों को बाहर खेलने की इजाजत नहीं थी। ऐसे में उनकी दिलचस्पी गायन में हो गई।
1: 1953 में जब मैं आर्ट स्कूल में थी, मुझे किसी फिल्म के लिए गाने का मौका मिला, मगर केवल गाने ही रिकॉर्ड हो पाए, फिल्म नहीं बनी। उसके बाद एक मराठी फिल्म में गाना गाया, उसका नाम था शुक्राची चांदनी। लेकिन बात यह है कि उस फिल्म की चांदनी भी स्टूडियो के सेट पर भी उतरी नहीं, वो भी नहीं बन पाया। फिर उसके बाद शेख मुख्तार की फिल्म बनी मंगू, जिसका संगीत मोहम्मद शफी साहब ने दिया है। इस फिल्म के लिए मेरा गाना जब रिकॉर्ड हो रहा था तो मेरी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। ये देख कर के लता दीदी स्वयं वहां आई हैं और बहुत देर तक मुझसे बात करती रही, बिल्कुल सगी बहन की तरह।

जिसके बाद उन्हें कुछ और गाने मिले, जैसे मियां बीवी राजी, बात एक रात की,

और राजकुमार सुमन कल्याणपुर के जीवन का सबसे बड़ा दुख ये रहा कि उनकी आवाज लता मंगेशकर से मिलती जुलती थी, तभी तो उनके गानों को लता मंगेशकर के गाने समझ लिया जाता था।

0: बहुत बरस पहले सुमन कल्याणपुर विविध भारती के स्टूडियो में आई थी और उन्होंने फौजी भाइयों के लिए जयमाला कार्यक्रम पेश किया था।
1: कई बरसों के बाद आज फिर से मुझे आपसे बात करने का मौका मिला है। आप हमें सुरक्षित जीवन प्रदान करते हैं, देश की आन बान के लिए अपने प्राणों की आहुति तक देने में पीछे नहीं हटते, लेकिन ऐसा मत सोचिए कि हम आपके लिए कुछ नहीं सोचते। हम कलाकार अपनी कला से आपका मनोरंजन करते हैं, अपने गीतों से आपके हर क्षण में सहभागी बनते हैं। आप युद्ध में हों या शांति में, सुख में हों या दुख में, परिवार के साथ हों या अकेले, भीड़भाड़ वाले शहर में हों या सीमा के एकांत मोर्चे पर, हर जगह हर पल हम अपनी कला से अपने गीतों के जरिए आपके आसपास ही रहते हैं। आप सुन पाएं या ना सुन पाएं, मगर यकीन मानिए हम आपको ही आवाज देते रहते हैं।

मुझे बचपन से ही गाने का बड़ा शौक था। मेरे पिताजी और माताजी को भी संगीत का शौक था और इसीलिए हम सब बहन भाई संगीत में रुचि रखते हैं। जब मैं स्कूल में पढ़ती थी तो उस जमाने में कुछ लोकप्रिय गीत गाया करती थी। उस जमाने के गायिकाओं में से नूर जहां जी और लता दीदी के गीत मुझे बहुत ही अच्छे लगते थे। जिन गीतों ने मुझे बहुत आकर्षित किया वो गीत एक से बढ़कर एक मधुर हैं और ऐसे कई गीत हैं जो मुझे बहुत ही पसंद हैं। जब भी कोई नया गीत हमें मिल जाता तो मैं और मेरी सहेली शारदा बल से हमारे छत पर बैठकर अक्सर वो गीत गाया करते थे। उनमें से कुछ गीतों की शुरुआत मैं आपको गाकर बताती हूँ। नूर जहां जी का ये गाना मुझे बहुत पसंद है। सखी नहीं आए सजन।

और मेरी सहेली शारदा बलसे हमारे छत पर बैठकर अक्सर वो गीत गाया करते थे। उनमें से कुछ गीतों की शुरुआत मैं आपको गाकर बताती हूँ। नूरजहाँ जी का ये गाना मुझे बहुत पसंद है।

0: मुझे याद है लता दीदी एक बार हमारे पड़ोस में आई थी। तब मैं स्कूल में पढ़ती थी। मैं बार बार इधर से उधर उधर से इधर आ जा रही थी, बस लता दीदी को देखने के लिए, कुछ बोलने के लिए। मगर बोलना तो क्या, उनको देख भी ना पाई। खैर, धीरे धीरे समय बीत गया, मैं भी बड़ी हो गई।
1: एक समय ऐसा आया जब लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी के बीच रॉयल्टी को लेकर मनमुटाव हो गया था। ऐसे में लता जी ने रफी साहब के साथ गाना बंद कर दिया था। इस पूरे दौर में सुमन कल्याणपुर ने मोहम्मद रफी के साथ कई युगल गीत गाए। फिल्म दिल ने फिर याद किया।
2: फिर कोई

सुमन जी के गीतों में शामिल हैं कुछ भोजपुरी गाने भी। सुमन कल्याणपुर चली गई लेकिन उनकी आवाज हमेशा कायम रहेगी और हमारे मन की वादियों में यादों के फूल खिलाती रहेगी।

0: संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवाने जा रहे हैं डॉक्टर विवेक करमहे का शास्त्रीय गायन।
1: नमस्कार। इन टुडेज नेशनल प्रोग्राम ऑफ म्यूजिक वी आर गोइंग टू ब्रॉडकास्ट अ क्लासिकल वोकल परफॉर्मेंस बाय डॉक्टर विवेक करमहे।
0: सुरों के प्रति अगाध समर्पण और रागों की शुद्धता जब किसी साधक के कंठ से प्रस्फुटित होती है तो संगीत का एक नया अध्याय जन्म लेता है। भारतीय शास्त्रीय संगीत के आकाशदीप पर ऐसा ही एक दैदीप्यमान नाम है डॉक्टर विवेक करमहे। 15 से अधिक वर्षों के अनवरत रियाज और देश विदेश के प्रतिष्ठित मंचों पर अपनी मंत्रमुग्ध कर देने वाली प्रस्तुतियों से आपने शास्त्रीय संगीत जगत में अपनी एक अमिट छाप छोड़ी है।
1: When profound dedication of musical notes and the purity of ragas spring forth from the voice of a devotee practitioner, a new chapter in music is born. One such radiant name shining on the firmament of Indian classical music is Dr. Vivek Karmahe. With over 15 years of relentless practices and spellbinding performances on prestigious stages in India and abroad, he has left an indelible mark on the world of classical music.
0: स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर पर स्वर्ण पदक विजेता तथा संगीत में डॉक्टरेट की उपाधि से विभूषित डॉक्टर विवेक ने पद्मश्री पंडित उल्हास कशालकर, विदुषी गिरिजा देवी, श्री ओंकार दादरकर और श्रीमती कुमुदिनी मुंदकुर जैसे महान संगीत मनीषियों के सानिध्य में इस कला की सूक्ष्मताओं को आत्मसात किया है। आकाशवाणी के ए ग्रेड प्राप्त कलाकार डॉक्टर विवेक जब तानसेन समारोह और पंडित कृष्णराव शंकर पंडित समारोह जैसे ऐतिहासिक मंचों पर अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं तो श्रोता भाव विभोर हो उठते हैं। भूटान, नेपाल, श्रीलंका से लेकर दक्षिण अफ्रीका, मॉरिशस और संयुक्त अरब अमीरात तक भारतीय संस्कृति का परचम लहराने वाले डॉक्टर विवेक आज के दौर में शास्त्रीय गायन की एक प्रखर और प्रेरक आवाज है।
1: A gold medalist at both the undergraduate and postgraduate levels and honored with a doctorate in music, Dr. Vivek assimilated a subtle nuances of this art under tutelage of great musical maestros such as Padma Shri Pandit Ulhas Kashalkar, Vidushi Girija Devi, Shri Onkar Dadarkar and Srimati Kumudini Mundukur. An A-grade artist of All India Radio, when Dr. Vivek showcases his art of historic stages like the Tansen Samaroh and Pandit Krishnarao Shankar Pandit Samaroh, the listeners are left utterly spellbound. Proudly flying the flag of Indian culture from Bhutan, Nepal and Sri Lanka to South Africa, Mauritius and United Arab Emirates. Dr. Vivek is a brilliant and inspiring voice of classical vocal music in today's era.
0: Dr. Vivek Karmahe अपनी गायन की शुरुआत राग श्री से कर रहे हैं। विलंबित रचना तिलवाड़ा ताल में निबद्ध है जिसकी बोल है वारी जाऊं रे तुम पे। द्रुत रचना तीन ताल में है जिसकी बोल है चलो रे माई राम सिया दर्शन। आपके साथ हारमोनियम पर संगत कर रहे हैं रविंद्र किल्लेदार और तबले पर निशांत शर्मा।
1: डॉक्टर विवेक करमहे इज कमेंसिंग हिज रिसाइटल विद राग श्री।

ये था राष्ट्रीय फिल्म पत्रिका चित्र भारती का इस महीने का अंक। शोध, आलेख, स्वर और संपादन यूनुस खान, प्रस्तुति अनुश्री पाठक।

0: सभी आपने सुना डॉक्टर विवेक करमहे का गायन। डॉक्टर विवेक करमहे अब प्रस्तुत करने जा रहे हैं राग बागेश्री। विलंबित रचना एक ताल में है जिसकी बोल है कौन गत भई। द्रुत रचना भी एक ताल में निबद्ध है जिसकी बोल है बेग बेग बेग बेग आओ।
1: You were just listening to Dr. Vivek Karmahe's rendition in Rag Shri. Dr. Vivek Karmahe is now going to present Rag Bageshri. The Vilambit composition is in Ektal with the lyrics Kaun Gat Bhai. The Drut composition is also set to Ektal with the lyrics Beg Beg Beg Beg Aao.

डॉक्टर विवेक करमहे का गायन राग बागेश्री। डॉक्टर विवेक करमहे अपने गायन का समापन राग सो

0: से कर रहे हैं। मध्य लय तीन ताल में निबद्ध रचना की बोल है देख देख मन ललचाई, और द्रुत तीन ताल में निबद्ध रचना की बोल है रंग न डारो श्याम जी।
1: That was Dr. Vivek Karmahe's vocal rendition in Raag Bageshri. Dr. Vivek Karmahe is concluding his recital with Raag Sohini. The Madhyalay composition set to Teen Taal has the lyrics Dekh Dekh Man Lalchai. And the Drut composition set to Teen Taal has the lyrics Rang Na Daro Shyam Ji.

0: डॉक्टर विवेक करमहे के द्वारा प्रस्तुत ये था राग सोहिनी। आपके साथ हारमोनियम पर संगत कर रहे थे रविंद्र किल्लेदार और तबले पर निशांत शर्मा। ये कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर की प्रस्तुति थी। इसके साथ ही आज की अखिल भारतीय संगीत सभा संपन्न होती है।
1: That was Rag Sohini presented by Dr. Vivek Karmahe. Accompanying him were Ravindra Killedar on harmonium and Nishant Sharma on tabla. This program was presentation of Akashwani Indore. With this, today's national program of music comes to an end.

0: 710 किलोहर्ट्ज पर। अब से कुछ ही देर बाद समाचार होंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि भारत हमेशा शांति और सहयोग का पक्षधर रहा है, क्योंकि जटिल वैश्विक मुद्दों और युद्ध जैसे संकटों का समाधान केवल संवाद और कूटनीति से ही संभव है। राष्ट्रपति ने मोहन चरण मांझी सरकार के 2 वर्ष पूरे होने के अवसर पर ओडिशा के मयूरभंज जिले के रायरंगपुर में एक जनसभा में ये बात कही। राष्ट्रपति ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैश्विक नेताओं के साथ अपने दूरदर्शी शासन और संपर्क के जरिए वैश्विक मंच पर भारत की प्रतिष्ठा को बढ़ाया है।
2: देशर प्रधानमंत्री भावे दायित्व ग्रहण करिवा दिनरु
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना पदभार संभालने के बाद से राष्ट्रीय हित में कई कदम उठाए हैं। इस महीने उन्होंने लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल पूरा करने का रिकॉर्ड बनाया। मैं सभी नागरिकों की तरफ से इस ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए उन्हें बधाई देती हूं। मैं कामना करती हूं कि वे देश के लोगों के हित के लिए निरंतर काम करते रहें और भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का सपना साकार करने में राष्ट्र का नेतृत्व करते रहें।
2: यह मोर आंतरिक कामना।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे। श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार की योजनाओं से सशक्त होकर जनजातीय समुदाय भारत के विकास में सक्रिय योगदान दे रहे हैं। उन्होंने पूर्वी भारत के विकास में तेजी लाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार के पूर्वोदय दृष्टिकोण का भी उल्लेख किया।
4: ओडिशा में आर्थिक गतिविधियां, निवेश और उद्योगों को आकर्षित करने का सामर्थ्य आज नजर आ रहा है। केंद्र सरकार का विजन है पूर्वी भारत के विकास से भारत का विकास, इसलिए हम पूर्वोदय की नीति पर काम कर रहे हैं। जिस पूर्वी भारत को कांग्रेस के दौर में पिछड़ेपन का पर्याय बना दिया गया था, आज वो प्रगति का प्रवेश द्वार बन रहा है।
1: बाद में प्रधानमंत्री हुगली जिले के तारकेश्वर में पश्चिम बंगाल दिवस समारोह में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने राज्य में विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। श्री मोदी ने कहा कि इन परियोजनाओं से राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किश्त के रूप में 18,880 करोड़ रूपये जारी किए। प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे देश भर के 9,44,00,000 से अधिक किसान को लाभ मिलेगा। प्रधानमंत्री कोलकाता में कल INS दुनागिरी, INS संशोधक और INS अग्रह का अनावरण करेंगे। इन पोत में 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है। 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कल विश्वभर में मनाया जाएगा। इस वर्ष का विषय है बढ़ती उम्र के प्रभाव को रोकने के लिए योग। मुख्य कार्यक्रम कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड पर आयोजित होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम में योगाभ्यास के दौरान राष्ट्र का नेतृत्व करेंगे। रेड रोड पर राष्ट्रीय कार्यक्रम सुबह 5 बजे शुरू होगा। राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट UG 2026 की पुनः परीक्षा कल आयोजित की जाएगी। ये पुनः परीक्षा भारत के 551 शहरों और विदेश के 14 शहरों में होगी। इस पुनः परीक्षा में 22,79,000 से अधिक परीक्षार्थी शामिल होंगे। महाराष्ट्र के परभणी जिले के मनवथ तालुका में आज एक निर्माणाधीन मंदिर का एक हिस्सा गिरने से कम 5 श्रद्धालुओं की मौत हो गई और लगभग 40 अन्य घायल हो गए। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस त्रासदी पर गहरा दुख व्यक्त किया। उन्होंने प्रत्येक मृतक के परिवार को 5,00,000 रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की। चेन्नई में भारत ने तीसरे और अंतिम एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में अफगानिस्तान को 9 विकेट से हराकर श्रृंखला 3-0 से जीत ली है। भारत ने 29वें ओवर में 1 विकेट पर 224 रन बनाकर जीत हासिल की। 5 विकेट लेने वाले प्रसिद्ध कृष्णा को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। और मौसम विभाग ने कल पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्र और सिक्किम में अत्यधिक तेज वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने अगले 2 दिनों तक असम और मेघालय में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: मीडियम वेव 444.4 मीटर अर्थात 675 किलो हर्ट्ज पर और प्रसार भारती के ऑफिशियल ऐप न्यूज ऑन AIR पर। यह आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। इस समय रात्रि के 11:10 हुए हैं। अब हमारी आज की सांध्यकालीन सभा संपन्न होती है। कल अपनी प्रातःकालीन सभा में 5:55 पर आपकी सेवा में हम पुनः
1: मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विल लीड द नेशन इन द प्रैक्टिस ऑफ द कॉमन योगा प्रोटोकॉल। In cricket, India completed a clean sweep of the three-match one-day international series with a comprehensive 9-wicket win over Afghanistan in the final match at the M.H. Chidambaram Stadium in Chennai today. Chasing a modest 219-run target, India raced to victory in just 28.4 overs, losing 1 wicket.